मीडियम वेव 406.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:55 और 50 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

भोर की किरणों ने छेड़ा है नया मधुर राग, गर्मी की सुबह में छिपा है जीवन का अनुराग। दिन भले ही तपन लेकर आए पर उसकी शुरुआत हमेशा शीतलता, आशा और उत्साह से होती है।

नमस्ते लखनऊ में मैं अंजलि श्रीवास्तव भोर की सुहानी बेला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। सुबह के 6 बजने वाले हैं, समय है समाचारों का। आइए चलते हैं दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर

राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। धरती की गोद में सपनों को बोता है किसान, अपनी मेहनत से हर सुनी रात समझौता है किसान। अपने इन्हीं किसान भाइयों के लिए कृषि चर्चा कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं जायद फसलों में कीट रोग प्रबंधन विषय पर डॉक्टर अरुण कुमार राय से की गई भेंट वार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां जायद की फसलें आपके खेत में खड़ी हैं, तो उनमें कीट रोग प्रबंधन इस समय कैसे करें, क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि रक्षा विशेषज्ञ अरुण कुमार राय साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। राय साहब, ये बताएं कि इस समय जो जायद की फसलें हैं, तो इनमें कीट रोग प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन?
2: किसान भाइयों नमस्कार। मुख्य रूप से जिन फसलों की बात हुई है जायद की, इनमें कीट और रोग इनके प्रबंधन बेहद आवश्यक होते हैं। सामान्यतया अगर बीमारियों की बात करें, पर्णीय बीमारियों में जो आएंगे,

0: इसमें फोमा दाग और अल्टरनेरिया बीमारी होती है, अगेती झुलसा जिसको बोलेंगे, और इसके अलावा चूर्डिल आसिता, मृदुरोमिल आसिता, ये दो अन्य मुख्य बीमारियों में आएंगे। तो ये मुख्य रूप से बीमारियां हैं जो हमारे इस क्षेत्र में आती हैं और जिनके नियंत्रण के लिए हमें बचावकारी छिड़काव करने आवश्यक हो जाते हैं, अन्यथा उत्पादन पर असर आते हैं।
1: इसी तरह कुछ हानिकारक कीट भी हैं जो अपनी दुश्मनी करते हैं।
0: सामान्यतया कीटों को अगर देखें तो दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक रस चूसक कीट, रस चूसक कीट जो पौधे से रस चूसते हैं, जिसमें व्हाइट फ्लाई या सफेद मक्खी जिसको बोलते हैं। दूसरे काटने और चबाने वाले कीट, कटवर्म, जिसमें हेलियोथिस या स्पोडोप्टेरा या लेपिडोप्टेरियन सारे पेस्ट आते हैं, जो भी काटते हैं और चबाते हैं, पत्तियों को खाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं।
1: तो शुरुआत करें कि सफेद मक्खी इस हानिकारक कीट का प्रकोप, चाहे वो उर्द मूंग है या अन्य फसलें हैं, उन पर होता ही होता है।
0: इसका उर्द, मूंग, मूंगफली और सूरजमुखी सभी फसलों पर इसका प्रभाव होता है और यह कीट दो तरह से नुकसान पहुंचाता है। एक तो पौधे का रस चूसकर उसके भोजन लेके नुकसान पहुंचाता है और दूसरा यह कीट वाहक है बीमारी, वायरस जनित बीमारी का, पीला
1: जैसे पीला सिरा मोज़ेक।
0: सिरा मोज़ेक या लीफ कर्ल वायरस जिसको पत्ती मोड़ने वाला मोज़ेक बोलेंगे या वायरस बोलेंगे, तो उसका वाहक भी होता है। इसलिए इसका नियंत्रण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके लिए जब भी किसान भाई खेत में जाएं, पौधे को हल्का सा हिलाएं, अगर कुछ उड़ता हुआ दिखता है सफेद सा, वो
1: छोटा छोटा
0: छोटा छोटा नन्हा नन्हा खेत में उड़ता हुआ, दिन में जब आप पौधे को हिलाएंगे कहीं से भी घुस के, तो तत्काल इसके नियंत्रण के लिए रसायनों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। अन्यथा एक बार अगर मोज़ेक फैल गया तो उसका कोई नियंत्रण नहीं है और आज तक बाजार में कोई भी दवा उपलब्ध नहीं उसके लिए।
1: तो सुरक्षात्मक छिड़काव में क्या करें?
0: सुरक्षात्मक छिड़काव में हम कुछ आसानी से उपलब्ध दवाएं बाजार में हैं, जैसे इमिडा क्लोरोप्रिट 17.8%, 17.8% इमिडा क्लोरोप्रिट 100 ml प्रति एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। या अगर ज्यादा परेशानी है, ज्यादा कीटों का प्रकोप है, तो डाइनोटे फ्यूरान 20% ESG आता है दानेदार, इसको थोड़े से पानी में, 1 ग्लास पानी में घोल बना लें और फिर इसको 10 ग्लास पानी में घोल बढ़ा दें, उसमें 9 ग्लास पानी और मिला के, और 10 टंकी से एक एकड़ खेत में छिड़काव करें। इससे बेहतरीन नियंत्रण हो जाएगा सफेद मक्खी और रस चूसक कीटों का।
1: और अगर पहली बार इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग कर रहे हैं तो दूसरी बार दूसरी दवा का प्रयोग कर दें?
0: हाँ, हमेशा दवा अदल बदल कर प्रयोग करें, इससे दवाओं के प्रति प्रतिरोधी क्षमता डेवलप नहीं कर पाते कोई भी कीट हो या बीमारी। यह हमेशा किसान भाइयों को सलाह रहेगी कि दवाओं को अदल बदल कर प्रयोग करें।
1: राय साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे जायद फसलों में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9450932236 94509-32236 94509-32236। हानिकारक कीटों के लिए, रस चूसक के लिए हमने इमिडा क्लोरोप्रिड बोला है और अगर काटने चबाने वाले कीट हैं तो उसके लिए इमेमेक्टिन बेंजोएट बाजार से ले लें 100 ग्राम प्रति एकड़ और प्रयोग कर दें तो काटने चबाने वाले कीटों का भी नियंत्रण किया जा सकता है।
1: अरुण कुमार राय साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और जायद फसलों में कीट रोग प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप डॉक्टर अरुण कुमार राय से की गई ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। विषय था जायद फसलों में कीट रोग प्रबंधन। भेंटकर्ता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ कृषि चर्चा कार्यक्रम समाप्त हुआ। आपने ट्यून किया है मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। जब हम रोज अच्छे विचार सुनते या पढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है, हम समस्याओं में भी समाधान ढूंढने लगते हैं। तो आज के इस विचार में सुनिए सुंदरकांड का महत्व।

0: के बारे में स्वर प्रेम नारायण मेहरोत्रा का है।
1: जो तो महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के सातों कांडों में प्रभु राम के पावन चरित्र का वर्णन है, इसलिए प्रभु के बाल रूप से लेकर राजा राम तक की पूरी कथा का अद्भुत आनंद और पूर्ण प्रदान करने वाली है। परंतु सुंदरकांड में प्रभु राम के सबसे प्रिय भक्त और सेवक हनुमान जी की वीर गाथा का वर्णन है, इसलिए उसे मानस का हृदय कहा जाए तो अतिशयोक्त न होगी। तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा कि इसमें कई चीजें बहुत सुंदर हुई हैं, जैसे देवताओं द्वारा सुरसा के माध्यम से हनुमान जी के बल बुद्धि की परीक्षा और उसमें उनका पूर्ण सफल होना, लंका में हनुमान जी की विभीषण से भेंट जिसके माध्यम से राम रावण युद्ध में कई रहस्य प्राप्त हुए और अंततः प्रभु राम की विजय, हनुमान जी का माता सीता से भेंट और राम जी के संदेश को बुद्धिमत्ता पूर्वक सुनाकर माता के दुख का निवारण, माता सीता का अंतर मन से हनुमान जी को अजर अमर होने का और प्रभु राम की अविरल भक्त प्राप्त करने का वरदान दिया जाना, हनुमान जी ने राम जी की महिमा बताकर रावण को सद्ज्ञान देने का प्रयास किया परंतु रावण के अहंकार ने किसी सद्ज्ञान को मानने नहीं दिया और उसने हनुमान जी की पूछ में कपड़ा बांधकर और घी तेल डालकर आग लगाने का आदेश दे दिया। इससे रामदूत हनुमान जी को अपनी प्रखर बुद्धि का परिचय देने का एक उत्तम अवसर प्राप्त हुआ। वो अपनी पूछ को तब तक बढ़ाते रहे जब तक लंका का सारा कपड़ा और घी तेल समाप्त नहीं हो गया। ज्यों ही उनकी पूछ में आग लगाई गई, वो अपनी पूछ से लंका की अट्टालिकाओं को जलाने लगे। इस कार्य में उन्होंने विभीषण के महल को छोड़ दिया क्योंकि वो प्रभु राम का भक्त था। प्रभु के कार्य में हनुमान जी के पिता पवन देव ने भी 49 हवाओं को चलाकर हनुमान जी को अपना आशीष प्रदान किया और इससे जरा सी देर में रावण की सोने की लंका जलकर खाक हो गई। तत्पश्चात हनुमान जी ने समुद्र में कूदकर अपनी पूछ की आग बुझाई और अशोक वाटिका में माँ सीता से विदा लेने पहुँचे। माँ ने उन्हें अपने अंतर मन से अजर अमर और सर्वश्रेष्ठ राम भक्त होने का वरदान दिया। अजर अमर गुणनिष्ठ हो करो सदा रघुनायक छोहु। हनुमान जी लंका से लौटकर जामवन जी और अंगद आदि के साथ जब श्री राम के पास पहुँचे और माता सीता के दुख की कथा सुनाई तो राम और लक्ष्मण जी की आंखें भर आईं और प्रभु ने सुग्रीव को तत्काल बानर सेना बुलाकर लंका की ओर प्रस्थान करने का आदेश दे दिया। प्रभु ने हनुमान जी से पूछा कि तुमने इतना कठिन कार्य कैसे किया, तो उनके चरण पकड़कर हनुमान जी ने केवल इतना कहा कि सो सब तब प्रताप रघुराई। इससे सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि जो कार्य प्रभु को अर्पित करके किया जाए उसमें सिर्फ सफलता मिलती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए भक्तों को सुंदरकांड का पाठ नित्य करना चाहिए और यदि नित्य संभव न हो तो मंगलवार और शनिवार को अवश्य करना चाहिए।
0: आज के सुविचार में आप सुन रहे थे सुंदरकांड का महत्व के बारे में स्वर प्रेम नारायण मेहरोत्रा का था। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
0: आप सुन रही

आराधना का ये सुंदर पल मानो शिव ध्यान की एक सुगंध हो। आप सभी अपने मन को स्थिर करें और इस शिव भक्ति से सुवासित भजन को सुनें।

कृष्ण के प्रेम में मीरा इस कदर खो गई, ऐसी लगन जगी कि फिर ना कोई बंधन था न लोकलाज, बस एक धुन तो प्रभु श्याम की।

प्रभु एक शक्ति है, ऐसी शक्ति जो कभी बढ़ती या घटती नहीं। ईश्वर अनंत है, सदा प्रभु का जप करते रहना चाहिए।

ईश्वर अनंत है और सभी प्राणियों की अंतरात्मा उसी का अंश है। हम सब उस ईश्वर से मिलने से ही तो कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

आप सुन रहे हैं नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम। भक्ति के रस का और आनंद लेने के लिए हम चलते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुनने के लिए। आज आप सुनेंगे भाग संख्या 196।

अपने दल के वयोवृद्ध सदस्य का कथन निषाद राज को जचा। बूढ़ा ठीक कह रहा है, मूर्ख होते हैं जो बिना विचारे जल्दी में काम करके बाद में पछताते हैं। अतः भरत का शील स्वभाव जानकर ही युद्ध अथवा मित्रता करना श्रेयस्कर होगा। पहले भरत से मिल लेना उचित समझकर निषाद राज ने कंद मूल फल इत्यादि मंगवाए और भेंट का सामान सजाकर उनसे मिलने चले। भरत के दल के निकट पहुंच निषाद राज वहां मुनिवर वशिष्ठ को देख दूर से ही अपना परिचय देकर दंडवत प्रणाम करते हैं। वे श्री राम के मित्र हैं ये सुनकर भरत रथ से उतर आते हैं और दंडवत पड़े निषाद राज को उठाकर अंक में भर लेते हैं। लगता है जैसे स्वयं लक्ष्मण से उनकी भेंट हो गई हो। भरत तथा निषाद का ये मिलन देख देवगण धन्य धन्य कह पुष्प वर्षा करने लगते हैं। जिसे इस लोक में अत्यंत तुच्छ और नीचा माना जाता है उसी निषाद को गले लगाकर भरत अत्यंत पुलकित हो जाते हैं। इस निषाद को तो श्री राम ने छाती से लगाकर जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है।

0: अभी आप श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। गायक कलाकार थे अनूप जलोटा, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
2: 870-001-4242।
0: मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 6:55 होने को हैं। आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: उद्घाटनं करिष्यति। अस्य सम्मेलनस्य आयोजनं हरियाणा विधानसभया क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः, राज्यस्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभायाः अध्यक्षः हरविंदर कल्याणः, सम्पूर्ण देशस्य 15 विधानमण्डलानां पीठासीन उपपीठासीन अधिकारिणः, विधानसभायाः सदस्याः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। राष्ट्रियपरीक्षा अभिकरणेन एनटीए इत्यनेन अस्मिन् मासे 21 दिनांके आयोक्ष्यमाणस्य 26,000 नीट यूजी पुनः परीक्षायाः कृते परीक्षानगरसूचनापत्रं प्रकाशितम्। पुनः परीक्षाः अपराह्णे 2 सायं 5:45 भारतस्य 51,500 नगरेषु 14 विदेशेषु च भविष्यन्ति। एनटीए इत्यनेन स्पष्टीकृतं यत् परीक्षा नगर सूचना पत्रं प्रवेशपत्रं नास्ति, अपितु केवलं अभ्यर्थिनां परीक्षा केंद्र ज्ञानाय सूचना एव अस्ति। अभिकरणेन अभ्यर्थिनः प्रार्थिताः यत् ते परीक्षायाः प्रवेशपत्रस्य विमोचनस्य च विषये नवीनतमानां घोषणानां कृते स्वस्य आधिकारिक जालपटले अद्यतनीयाः भवेयुः। विश्वस्य बृहत्तमा सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वस्ति योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः कार्यान्वयन राज्येषु पश्चिम बंगाल राज्यं 37वां राज्यं भविष्यति। राज्ये एबीपीएम जय इत्यस्य कार्यान्वयनार्थम् अद्य राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राधिकरणं पश्चिम बंगाल सर्वकारश्च सहमतिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यतः। नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रिणः जेपी नड्डायाः तथा पश्चिम बंगस्य मुख्यमन्त्रिणः शुभेन्दु अधिकारिणः उपस्थितौ एमओयू इत्यस्य हस्ताक्षरं भविष्यति। भारतस्य पूर्वोत्तर राज्यैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं द्विदिवसीय यात्रायै यूरोपीय संघस्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य असमराज्यस्य गुवाहाटी नगरम् आगमिष्यति। यूरोपीय संघस्य मतानुसारं चर्चाः तेषु विषयेषु केन्द्रिताः भविष्यन्ति यत्र यूरोप देशस्य तथा पूर्वोत्तरस्य च समानहितानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः श्वः नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबन्धन व्यवस्थायाः उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् एलपीएमएस इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तन्त्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबन्धन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। भारतीय मल्ल क्रीडकाः ह्यः मंगोलियायां ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते 2 स्वर्णपदके 2 कांस्यपदके च विजितवन्तः इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे जीवन के लिए स्वास्थ्य अमूल्य है, क्योंकि यह हमें कार्य करने की शक्ति देता है, सपनों को साकार करने की ऊर्जा और कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस। आज की स्वास्थ्य चर्चा में सुनिए विश्व महासागर दिवस समंदर की सेहत से हमारी सेहत, इस विषय पर नीना सुनकर की ये जानकारी।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज का विषय बहुत ही सुंदर, गहराई भरा और जिंदगी से जुड़ा है। आज है 8 जून यानी विश्व महासागर दिवस। ये दिन समर्पित है उस विशाल जल राशि को जो हमारी पृथ्वी के 70% हिस्से को ढकती है और जो हमारे जीवन, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हवा, पेड़ और मिट्टी। महासागर हमारे जीवन का आधार है। ये केवल समुद्र तटों की खूबसूरती तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे लिए भोजन, ऑक्सीजन, जलवायु संतुलन और जैव विविधता का सबसे बड़ा स्रोत है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर 2 सांसों में से 1 सांस हमें समुद्रों की वजह से मिलती है। समुद्री शैवाल और प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन वातावरण में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा हिस्सा उत्पन्न करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर हमारे महासागर अस्वस्थ हो जाएं, तो ये असर केवल समुद्री जीवों पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि हम सब

आपकी सांसों पर भी पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में महासागरों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन ने समुद्री जीवन को संकट में डाल दिया है। समुद्र की गहराइयों में रहने वाली विविध प्रजातियां, जो हमारी खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है, वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। और ये समस्या केवल तटवर्ती देशों की नहीं है, बल्कि हर उस देश की है, हर उस व्यक्ति की है जो पृथ्वी पर सांस लेता है। भारत जैसे देश जहां सैकड़ों किलोमीटर का समुद्री तट फैला है, वहां समुद्र केवल व्यापार और यात्रा का माध्यम नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका का स्रोत भी है। मछुआरे समुदाय, तटीय किसान और जल आधारित पर्यटन, ये सभी समुद्र पर निर्भर हैं। यदि समुद्रों की सेहत बिगड़ती है तो ये केवल प्रकृति का नुकसान नहीं करते, बल्कि मानव जीवन और आर्थिक संरचना पर भी सीधा प्रभाव डालता है। पर्यावरण और स्वास्थ्य का संबंध हमेशा से रहा है, और जब हम जल की बात करते हैं तो ये संबंध और भी गहरा हो जाता है। समुद्र से मिलने वाली ताजगी, वहाँ की नमी, वहाँ की जलवायु, ये सभी हमारे मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। समुद्री हवा में मौजूद नमी, आयोडीन और अन्य खनिज तत्व हमारे श्वसन तंत्र के लिए लाभकारी माने जाते हैं। समुद्र किनारे की सैर मानसिक तनाव को कम करती है और मूड को अच्छा बनाती है। विश्व महासागर दिवस पर हमें ये समझने की जरूरत है कि महासागर की रक्षा केवल समुद्र के पास रहने वालों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबकी है। हम चाहे किसी भी राज्य में रहते हों, हमारे द्वारा इस्तेमाल किया गया प्लास्टिक, केमिकल युक्त उत्पाद या कचरा कभी न कभी नदी और नालों के रास्ते समुद्र तक पहुँच ही जाता है। इसलिए हमें अपने उपभोग की आदतों में बदलाव लाना होगा, समुद्री जीवों का अधिक दोहन रोकना होगा और जल स्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। समुद्र हमें जीवन देता है। मछलियाँ, नमक, समुद्री जड़ी बूटियाँ और कई औषधीय तत्व, ये सब हमें समंदर से मिलते हैं। हमारी रसोई से लेकर दवा खानों तक समंदर की देन हमारे जीवन में छाई हुई है। ऐसे में क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम इसके अस्तित्व की रक्षा करें? यदि हम समुद्र को सम्मान देंगे तो वो हमें बदले में और भी सुंदर, स्वस्थ और समृद्ध जीवन देगा। श्रोताओं, आज स्वास्थ्य चर्चा के इस विशेष अंक में आप सभी से एक अनुरोध है, आइए हम सब इस दिवस को केवल जानकारी तक सीमित न रखें, अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लाएं जो महासागरों की रक्षा में सहायक हो। बच्चों को समुद्रों के महत्व के बारे में बताएं, स्कूलों में जागरूकता बढ़ाएं और स्वयं भी जिम्मेदार उपभोक्ता बने। यही छोटे प्रयास मिलकर हमारे महासागरों को एक बार फिर से स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बना सकते हैं। अंत में मैं यही कहूंगी, जब समंदर लहराता है तो ये केवल पानी की तरंग नहीं होता, वो हमारे जीवन की गहराई को दर्शाता है। उसकी हर लहर में प्रकृति की पुकार छिपी होती है, एक पुकार जो कहती है मुझे बचाओ ताकि तुम्हें जिंदगी मिलती रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, सचेत रहिए और महासागरों से अपने रिश्ते को फिर से जीवंत बनाइए। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति, सभी को नमस्कार।

आकाशवाणी लखनऊ आज जिन कार्यक्रमों को आपके लिए ला रहा है उनके बारे में आपको जानकारी दे दी। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला प्रसारित होगी रात 11:10 पर। विषय है किसान सशक्तिकरण। आप सुनेंगे सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 10:20 से केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रसारित होगा। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत रात 8:00 मुक्तिनाथ झा की कहानी सुनिएगा उलझन। रात 10:00 रूपक प्रसारित होगा विकल्पों के द्वार।

आलेख कीर्ति श्रीवास्तव का, स्वर कुमकुमधर और नवनीत मिश का और प्रस्तुति अतिश श्रीवास्तव की। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर समाप्त फरमाइएगा आकाशवाणी लखनऊ मरकज की पेशकश सुनिएगा नगमगी प्रोग्राम, पेशकश आसिफ इकबाल की है। जिले की हलचल कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर आज अमरोहा और कानपुर देहात जिलों की हलचल प्रसारित होगी। सुबह 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आज का विषय है विश्व महासागर दिवस। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर उस्ताद राशिद खान का गायन प्रसारित होगा। इसी कार्यक्रम में रात 10:30 पर निशांत खान का सितार वादन श्रोता सुनेंगे। घनांगन कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर अलका गुप्ता का कविता पाठ बहने सुनेंगी। दिन में 2:30 पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम में धान की सीधी बुआई तकनीक विषय पर डॉक्टर दीक्षा मिश्रा से की गई भेंटवार्ता किसान भाई सुनेंगे। भेंटकर्ता हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय। युवा साथी युवा तरंग कार्यक्रम सुनते हैं शाम 5:10 पर। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर नेशन नेक्स्ट के अंतर्गत ओबी पर आधारित कार्यक्रम भविष्य की अर्थव्यवस्था और भारत कल की अर्थशक्ति भारत आप सुनेंगे। शाम 6:30 पर लोकार्थन कार्यक्रम में गुर्दे की पथरी कारण और निवारण विषय पर डॉक्टर विवेक कुमार सिंह से की गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर डॉक्टर काजल चक्रवर्ती से की गई भेंटवार्ता का विषय है मत्स्य तालाब की तैयारी और मिश्रित मत्स्य पालन। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 7:31 पर स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें डॉक्टर ओपी पटेल की वार्ता आप सुनेंगे, दवाओं को लेने का सही तरीका। साथ ही गर्मियों में आंखों की देखभाल विषय पर डॉक्टर रचना अग्रवाल की वार्ता आप सुनेंगे। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में सुबह 9:50 पर और लोकमाधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर विमला कठेरिया के गाए अवधि लोकगीतों का आनंद आप ले सकते हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर पंडित कैलाश श्रीवास्तव के गाए गीत और भजन आप सुनेंगे। श्रोताओं के पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत जरूर सुनिएगा सुबह 8:45 पर। फिल्म संगीत का फोन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुनना न भूलिएगा सुबह 11 बजे से। इसके अलावा समय समय पर प्रायोजित कार्यक्रम और चित्रपट से कार्यक्रम का प्रसारण होगा। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा।

विविध रंगों को समेटे कार्यक्रम विविधा में मैं अंजलि श्रीवास्तव आपको नमस्कार करती हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल पृथ्वी के मानचित्र का हिस्सा नहीं बल्कि समस्त जीव जगत के अस्तित्व का आधार है। यह विषय है विश्व महासागर दिवस। हर वर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को महासागरों के महत्व, उनके संरक्षण की आवश्यकता और मानव जीवन से उनके गहरे संबंध के प्रति जागरूक करना है। जब हम महासागर शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में दूर दूर तक फैला नीला जल, ऊंची ऊंची लहरें और अनंत क्षितिज की छवि उभरती है। लेकिन महासागर केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं, वे पृथ्वी के फेफड़े हैं, जलवायु के नियंत्रक हैं, करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार हैं और जीवन के सबसे बड़े संरक्षक हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग महासागरों से ढका हुआ है और हमारी सांसों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का लगभग आधा हिस्सा समुद्री वनस्पतियों द्वारा निर्मित होता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो महासागर हम सभी

के लिए जीवन से सीधे जुड़े हुए हैं। महासागर पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को अवशोषित कर उसे विभिन्न क्षेत्रों में वितरित करते हैं, जिससे मौसम और जलवायु संतुलित रहती है। यदि महासागर ना हो तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी कठिन हो जाएगा। बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में महासागर एक विशाल प्राकृतिक ढाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्रोताओं, आज जब पूरी दुनिया पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है, तब महासागरों की उपयोगिता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। समुद्र केवल जल का भंडार नहीं, बल्कि वे खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और जैव विविधता के प्रमुख स्रोत हैं। लाखों मछुआरों और समुद्री उद्योगों से जुड़े लोगों की आजीविका महासागरों पर निर्भर है। समुद्री व्यापार विश्व अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। विश्व के अधिकांश देशों के बीच होने वाले व्यापार समुद्री मार्गों से ही तो संपन्न होता है। महासागरों की गोद में अनगिनत प्रकाश के जीव जंतु और वनस्पतियां निवास करती हैं। सूक्ष्म पल्लवकों से लेकर विशालकाय व्हेल तक असंख्य जीव समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। यह जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करती है। समुद्र हमें भोजन, औषधियां और अनेक प्राकृतिक संसाधन प्रदान करते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में उपयोग होने वाली कई महत्वपूर्ण दवाओं के स्रोत समुद्री जीव और वनस्पतियां हैं। शुद्ध दुख की बात यह है कि जिन महासागरों ने सदियों से मानवता को जीवन दिया, आज वही महासागर मानव गतिविधियों के कारण संकट में हैं। प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, रासायनिक अपशिष्ट, अत्यधिक मत्स्य दोहन और जलवायु परिवर्तन महासागरों के लिए गंभीर खतरे बन चुके हैं। प्रतिवर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में पहुंच जाता है, जिससे समुद्री जीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है। अनेक जीव प्लास्टिक को भोजन समझकर निकल जाते हैं और असमय मृत्यु का शिकार होते हैं। आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि महासागरों की रक्षा केवल समुद्री क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी नहीं। हम चाहे समुद्र तट से हजारों किलोमीटर दूर क्यों न रहते हों, हमारी दैनिक आदतें महासागरों को प्रभावित करती हैं। जब हम प्लास्टिक का अनावश्यक उपयोग करते हैं, जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं या पर्यावरण के प्रति लापरवाही बरतते हैं, तो उसका प्रभाव अंततः महासागरों तक पहुँचता है। विश्व महासागर दिवस हमें यह संदेश देता है कि विकास और संरक्षण दोनों साथ साथ चलते हैं। यदि हम टिकाऊ जीवन शैली अपनाएं, प्लास्टिक के उपयोग को कम करें, जल संरक्षण को बढ़ावा दें और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बने, तो महासागर को सुरक्षित रखा जा सकता है। विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों को मिलकर महासागर संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए।

प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, रासायनिक अवशिष्ट, अत्यधिक मत्स्य दोहन और जलवायु परिवर्तन महासागरों के लिए गंभीर खतरे बन चुके हैं। प्रतिवर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में पहुंच जाता है, जिससे समुद्री जीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है। अनेक जीव प्लास्टिक को भोजन समझकर निगल लेते हैं और असमय मृत्यु का शिकार होते हैं। आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि महासागरों की रक्षा केवल समुद्री क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी नहीं। हम चाहे समुद्र तट से हजारों किलोमीटर दूर क्यों न रहते हों, हमारी दैनिक आदतें महासागरों को प्रभावित करती हैं। जब हम प्लास्टिक का अनावश्यक उपयोग करते हैं, जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं या पर्यावरण के प्रति लापरवाही बरतते हैं, तो उसका प्रभाव अंततः महासागरों तक पहुंच जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित महासागर छोड़कर जाएं। यदि महासागर स्वस्थ रहेंगे तो पृथ्वी स्वस्थ रहेगी, पर्यावरण संतुलित रहेगा और मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। महासागरों की रक्षा वास्तव में अपने भविष्य की रक्षा है। आइए इस

विश्व महासागर दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि प्रकृति के इस अमूल उपहार की रक्षा करेंगे, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करेंगे, जल स्रोतों को स्वच्छ रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में भागीदारी निभाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। याद रखिए, महासागर केवल जलराशि नहीं, वे जीवन की धड़कन हैं, पृथ्वी की शक्ति हैं और मानव सभ्यता के मौन संरक्षक हैं। इन्हीं प्रेरणादायी विचारों के साथ विश्व महासागर दिवस के अवसर पर यही संदेश है, महासागर सुरक्षित होंगे तो जीवन सुरक्षित होगा, समुद्र स्वच्छ रहेंगे तो भविष्य उज्ज्वल रहेगा। आइए महासागर के प्रति अपना कर्तव्य निभाए और पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक सुंदर बनाए। इसी के साथ मैं अंजलि श्रीवास्तव कार्यक्रम विविधा से अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की। कहा, रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है प्रदेश की राजधानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 की लखनऊ में की समीक्षा। अधिकारियों को नई स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए यह दृढ़ संकल्पित। और उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए आज से शुरू होगी भर्ती परीक्षा। 10 जून तक 2 पालियों में 1180 केंद्रों पर होने वाली लिखित परीक्षाओं के लिए किए गए हैं विशेष इंतजाम। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित केंद्र सरकार के

0: कई मंत्रीगण ने कल अलग अलग स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र के मंडल एक में आयोजित प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कानपुर देहात के अकबरपुर में प्रबुद्ध वर्ग से संवाद किया और केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की। श्री चौधरी ने पार्टी के जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक कर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंडल स्तर तक योग शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए।
1: भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव काम करता रहा, 365 दिन काम करता है, चुनाव हो या चुनाव ना हो। यह सही है कि चुनाव जब आता है तो थोड़ा सा और रणनीति चेंज करनी, और मुझे पूरा विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, और जो 12 साल तक प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और जो 10 साल तक योगी जी ने काम किया है।
0: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वाराणसी में पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक मामले पर सख्त कार्रवाई कर रही है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
2: मोदी जी का नेतृत्व सबको साथ में ले जाने वाला नेतृत्व है, देश के विकास का नेतृत्व है, किसान है, गरीब है, महिला है, युवा है, सबको न्याय देने वाला उनका नेतृत्व है। उनके पास मेजोरिटी है और नीट एग्जाम में जो भी मतलब गड़बड़ हुई है, नीट घोटाले में या नीट पेपर भुट्टी में जो भी लोग है उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 के विभिन्न प्राविधानों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने प्रदेश को देश का अग्रणी स्टार्टअप गंतव्य बनाने के लिए नई स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रारंभिक चरण से लेकर विस्तार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक हर स्तर पर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। नई नीति में भरण पोषण भत्ता, प्रोटोटाइप अनुदान, सीड कैपिटल सहायता तथा पेटेंट एवं गुणवत्ता प्रमाणन से जुड़े प्रोत्साहनों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उद्यमियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर उद्यमियों तथा पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भी उपयुक्त प्राविधान शामिल किए जाएं। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 की समीक्षा करते हुए कहा कि डेटा, एआई और डिजिटल अवसंरचना भविष्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हैं। प्रदेश ने वर्ष 2030 तक 2 गीगावाट से अधिक की अतिरिक्त डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल आगरा में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, केंद्र और प्रदेश सरकार इसे मजबूत बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। श्री मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 जून को सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का गौरव मिलने पर अग्रिम बधाई दी।
4: मैं इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और यह देश के लिए गौरव की बात है। और अभी हम मानते हैं कि 2029 तक ही नहीं, आगे भी अभी कई चुनावों में

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हम सबका नेतृत्व करेंगे और देश को विकसित बनाएंगे, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए आज से 10 जून तक 75 जिलों में 1180 केंद्रों पर 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: भर्ती परीक्षा में 32,000 से अधिक पदों के लिए 30 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भागीदारी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच 2 विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। अभ्यर्थी बिना टिकट बुकिंग के आसानी से यात्रा कर सकेंगे। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को सरकार ने बस के किराए में भी 50% छूट देने का फैसला लिया है। इस छूट का लाभ अभ्यर्थियों द्वारा अपना एडमिट कार्ड दिखाने पर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं।
3: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: कल से घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। प्रदेश भर में एक बार फिर तेज धूप, भीषण गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने आज से लेकर अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की आशंका जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की। कहा, रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है प्रदेश की राजधानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 की लखनऊ में की समीक्षा। अधिकारियों को नई स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्पित। और उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए आज से शुरू होगी भर्ती परीक्षा। 10 जून तक 2 पालियों में 1180 केंद्रों पर होने वाली लिखित परीक्षाओं के लिए किए गए हैं विशेष इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना हो।

सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

मीडियम वेव 400.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। नमस्ते लखनऊ में, अब समय है शास्त्रीय संगीत का। आज सुनिए उस्ताद राशिद खान का राग भटियार और राग बहार में गायन। पहले हम आपको सुनवाते हैं उस्ताद राशिद खान का राग भटियार में गायन।

0: अभी आप उस्ताद राशिद खान का राग बहार में गायन सुन रही थी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।

0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल, गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया? जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
5: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
0: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
0: 8700014242।
6: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम अब यही समाप्त हो रहा है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
4: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36

0: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काशफी नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसुलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
6: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनर्

0: उद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
2: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
1: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल सम्पन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
4: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
3: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है।

0: लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते बरेली। श्रोताओं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका इस कार्यक्रम में। तो भाई आप सभी को गुड मॉर्निंग बरेली। जी हाँ, आकाशवाणी बरेली श्रोताओं आपको गुड मॉर्निंग बोल रहा है और आपके कानों में संगीत का मीठा मीठा रस घोल रहा है। श्रोताओं, आकाशवाणी की बात की जाए तो इसकी जो गौरवमयी गाथा है उसका इतिहास अनूठा है। 8 जून है आज। जी हाँ, और 8 जून को आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे कर रहा है। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी कि ISBS का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से ऑल इंडिया रेडियो किया गया था। इस ऐतिहासिक उपलक्ष्य में प्रसार भारती द्वारा पूरे देश में 90 वर्षों का हमसफर आकाशवाणी नाम से एक विशेष उत्सव और अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी के गौरवशाली ये सब सफर है वो मील का पत्थर साबित हो रहा है। और हम बात करें अपने आकाशवाणी बरेली की, तो आकाशवाणी बरेली के केंद्राध्यक्ष मिथिलेश श्रीवास्तव की अगुवाई में बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि आकाशवाणी के दीवाने कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हमारे जो श्रोता हैं देश के श्रोता जहां से भी बात करते हैं उनसे हम कनेक्ट हैं। इसके अलावा आकाशवाणी बरेली में 3 जून को अभी मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।

इसमें तमाम श्रोता और कवियों का आगमन हुआ। इसके अलावा एक पेड़ मां के नाम पर कार्यक्रम प्रमुख और केंद्र अध्यक्ष के द्वारा आकाशवाणी प्रांगण में पौधारोपण किया गया। साथ ही आकाशवाणी बरेली में अभी चल रहा है क्या, जी हाँ, पौधा वितरण। तो अगर आप आकाशवाणी बरेली आएंगे तो आपको जरूर एक उपहार स्वरूप पौधा दिया जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम जो श्रोता मंच कार्यक्रम है उसके द्वारा जो हमारे श्रोता हैं हम उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। तो ऐसी कुछ गाथा है आकाशवाणी बरेली की। और आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे कर रहा है, तो हमारे जो भी श्रोता हमें इस वक्त सुन रहे हैं, जहां भी सुन रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाहे वो अधिकारी गण हो, स्टाफ हो, श्रोता हो, और भी तमाम तरह के, चाहे वो बुजुर्ग श्रोता हो, चाहे वो युवा श्रोता हो, चाहे वो बच्चे हो, आप सभी के साथ आकाशवाणी के साथ रहा और यूं ही सफर चलता रहेगा। आकाशवाणी बरेली और आकाशवाणी और प्रसार भारती तमाम जितने भी नाम हैं सब एक ही हैं। और आज 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो बहुत मन प्रफुल्लित है।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते बरेली। आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे कर रहा है। आकाशवाणी की अपनी गौरव गाथा है, अपना अनूठा इतिहास है। श्रोताओं, बरेली में बात करें तो आज 19 केंद्रों पर परीक्षा है पुलिस की, जिसमें 17,000 अभ्यर्थी आज शामिल होंगे और ये परीक्षा दो पालियों में कराई जाएगी। 3 दिन में 52,500 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं बरेली में, और साथ ही रेलवे की परीक्षा है। और तो बता दें, जो भी परीक्षार्थी बाहर से आए हैं उनको उनका स्वागत है बरेली में, और आप अपने परीक्षा केंद्र पर समय से पूर्व पहुँचें, हड़बड़ी ना मचाएं, कहीं कोई दिक्कत आ रही है पूछें तो जो आसपास पूछताछ केंद्र बनाए गए हैं वहाँ आप पता कर लें कि कौन सा स्कूल कहाँ है। बिल्कुल भी घबराएं नहीं और समय से अपने केंद्र पहुँचें और बहुत ही ठंडे दिमाग से परीक्षा हाल में अपना परीक्षा पूरी करें। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: लंदन की लड़की नाना, अमरीकन गोरी नाना, लंकन की छोरी नाना, पारस की पोरी नाना, इंडिया, आहा, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट।

में पायल बाबा, ओटो पे लाली बाबा, हाय भोली भाली बाबा, हाय शर्मीली बाबा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज

की बैटिंग वाह वाह, बच्चन की एक्टिंग वाह वाह, सुनील गावस्कर वाह वाह, कपिल द सिक्सर वाह वाह, लता मंगेशकर वाह वाह, जाकिर का तबला वाह वाह, भारतनाट्यम वाह वाह, यहाँ का भांगड़ा वाह वाह, यहाँ की लावणी वाह वाह, यहाँ का डांडिया वाह वाह, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा, चनिया चोली बाबा, मीठी बोली बाबा।
1: North, South, East or West, India is the best, the land of culture, the land of dreams, this is the land of you and me.
0: राजे शिवाजी बाबा, अकबर बादशाह बाबा, महात्मा गांधी बाबा, चाचा नेहरू बाबा, बाबा अंबेडकर बाबा, मदर टेरेसा बाबा।
1: We're taking it up and we're taking it down, this is the Indian sound, together so strong in God we trust. You cannot beat us.
0: ताज महल बाबा, चार मीनार बाबा, आम का अचार बाबा, यहाँ का प्यार बाबा, ऐश्वर्या राय बाबा, सुष्मिता सेन बाबा, ऑल इंडिया रेडियो बाबा, डीडी मेट्रो बाबा, दूरदर्शन बाबा।

0: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
1: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
0: हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशन हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट,
2: कम ऑन लेट मी हियर यू से, कम ऑन एवरीबॉडी से।
3: आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य,
4: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
5: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते बरेली। बता दें आपको, 8 जून को आज आकाशवाणी अपने गौरवमय 90 वर्ष पूरे कर रहा है। श्रोताओं, आज है विश्व महासागर दिवस। इस पर अवसर पर हमने बात की है प्रोफेसर नाजिया से, तो सुनते हैं ये बातचीत।
6: श्रोताओं नमस्कार, आज कार्यक्रम नमस्ते बरेली में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर नाजिया जी, जो कि भूगोल विषय की प्रोफेसर हैं। और श्रोताओं, अभी हमने 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया। आप जानते हैं कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो पेड़ पौधों का कितना महत्व हमारे जीवन में है, पशु पक्षी

0: का कितना महत्व हमारे जीवन में है। आज है विश्व महासागर दिवस। महासागरों का महत्व तो क्या है हमारे जीवन में, पर्यावरण में, इसके बारे में हम आज बात करेंगे प्रोफेसर साहिबा से। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस आवश्यक और महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए। ये हमारा 8 जून विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
0: जी
1: ये दिवस मनाना सिर्फ एक मनाने के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि हमें ये बताया जाए कि हमें इन चीजों को कैसे संरक्षित करना है,
0: जी
1: क्योंकि महासागर हमारे लिए जितना, देखिए पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र दो तरह के होते हैं, एक धरातलीय होते हैं और एक सागरीय होते हैं। जैसे हमारे धरातल पर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र यानी संसाधन हैं, पौधे, मृदा, ये सारी चीजें, उसी प्रकार से महासागर के भीतर भी ये पूरी स्थिति पाई जाती है। दो तरह के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, एक तो होता है धरातलीय पारिस्थिति

0: स्थिति पाई जाती है। दो तरह के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, एक तो होता है धरातलीय पारिस्थितिकी तंत्र या स्थलीय, और
1: जी
0: दूसरा होता है हमारा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो हमें दोनों को ही संरक्षित करना है, क्योंकि जैसे हमारे धरातल आप पर्यावरण दिवस मनाते हो तो आप उसमें ये पता है कि हमें ये सब चीजें संरक्षित करना है, हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ऐसे
1: जी
0: ही महासागर के लिए भी हमारा पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यक है। कि विश्व महासागर दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को उसकी महत्वता के बारे में बताना है, कि
1: जी
0: महासागर केवल महासागर देखने में सुंदर या वैसे नहीं है, इनका महत्व यह है कि जो हमारे वायु परिवर्तन होते हैं, जो हमारे उद्योग धंधे हैं, जो हमारे संसाधन हैं, हम
1: जी
0: उन महासागरों से भी प्राप्त करते हैं।
1: ये
0: महासागर पृथ्वी के तापमान को भी नियंत्रित करते हैं, जितनी दूरी हमारी महासागरों से होती जाएगी उतना टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, जितने हम उसके पास होते जाएंगे उतना टेम्परेचर नॉर्मल होता चला जाता है।
1: बिल्कुल, आम जन को उसका लाभ मिलता है ना, तो आम जन की जो क्या जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से इसमें अपनी भूमिका निभाएं कि इन चीजों को संरक्षित करें, इनकी साफ सफाई, इनकी स्वच्छता, या आजकल देखिए ना अमूमन लोग प्लास्टिक प्लास्टिक है ये या और जो कूड़ा कचरा है वो पानी में डाल देते हैं, इसमें आप क्या कहेंगे, जो आम नागरिक है क्या भूमिका है उसकी?
0: वो यही है कि हमारे महासागर आज जो जिन चुनौतियों के सामना कर रहा है,
1: जी
0: जिसमें पहला है प्लास्टिक प्रदूषण, तेल का रिसाव होना, अत्यधिक मत्स्य दोहन होना, समुद्री जैव विविधता को समाप्त कर देना, उसमें अपशिष्ट डालना, ये
1: जी
0: सारी चीजें हमारे महासागर को प्रदूषित करती हैं।
1: बिल्कुल
0: और जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जो टेम्परेचर, हम कहते हैं कि भाई वहां लड़ाई हुई, उस देश में युद्ध हो रहा है तो हमारे पूरे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये कोई सीमा नहीं है पर्यावरण।
1: जी
0: पर्यावरण की हर वायु, हर दिशा, हर में बदल सकती है, तो उसके वो प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, वो हर चीज पर पड़ता है। सागर महासागरों को दूषित करेंगे तो हमारा पर्यावरण भी दूषित होगा, ये
1: बिल्कुल
0: पारितंत्र भी और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी। तो हमें उनको संरक्षित करना है ताकि आगे आने वाले टाइम में हम और लोगों को वो संरक्षित करने के लिए छोड़ सकें, दूषित करें या उसका उतना अपशिष्ट उसमें डालें कि हम उसको अपने उपयोगी लायक भी ना छोड़ सकें।
1: जो हमारे महासागर हैं उन्हें हम पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, अर्थ ऑफ लंग्स है ना। अब जब लंग्स हमारे बॉडी में कितना महत्वपूर्ण है समझिए, तो फिर
0: जी वही वही चीज
1: तो
0: कि
1: वही
0: जब हमारा 70% भाग धरातल का जल
1: जी
0: से घिरा हुआ है, उससे हमें असंरक्षित व्यापार, उद्योग धंधे, ये सारी चीजें हमारी, हम उसी सबसे बड़ा संसाधन है हमारा जल,
1: बिल्कुल
0: के जलवायु को भी प्रभावी बना देता है अगर हम उसको दूषित करते हैं, और अगर हम उसे संरक्षित करेंगे, उसका सही प्रयोग करेंगे, तो वो हमारे लिए उपयोगी भी साबित होगा।
1: बिल्कुल, हमारे जो श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं, क्या अंत में क्या उनसे कहेंगी?
0: यही कहना चाहूंगी कि महासागर की एक हमारी धरोहर है, वो भी
1: जी
0: यदि महासागर सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। विश्व महासागर दिवस पर हम सभी इसलिए नहीं सुन रहे कि ये एक दिवस है, ये
1: जी
0: दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि हम उन लोगों को, जिन लोगों को इस चीज के बारे में पता नहीं है, उनको जागरूक कर सके। तो उन चीजों को जो हम अपना अपशिष्ट है या कुछ भी हम उसको दूषित करने की जो भी क्रियाएं हैं, उनको अगर अपने रोक लेंगे तो हमारा आगे आने वाले पीढ़ियों में स्वस्थ महासागर छोड़कर जाएंगे।
1: बिल्कुल, जीवन में पानी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और अगर आप देखिए इस समय तपती धूप में अगर जल न मिले हर व्यक्ति कैसा अनुभव करेगा, प्यास के मारे जान निकल गई है ना।
0: हम सिर्फ कोटेशन के लिए ही चीजें नहीं मनाते हैं, कोई भी
1: जी
0: दिवस हम सिर्फ एक कोटेशन या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं मनाते हैं, कोई भी दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि जिन लोगों को उन चीज के बारे में नहीं पता है उनको
1: जी
0: उसके लिए जागरूक कर सके।
1: बिल्कुल
0: लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ जानने के बाद भी ये सब करते हैं, तो मैं
1: बिल्कुल
0: मानती हूँ कि उस चीज के लिए कोई एक नियम लागू किया जाना चाहिए। हर चीज का टैक्स कटता है, हर चीज का आपने कुछ रूल्स तोड़े तो आपका टैक्स कटेगा, तो मुझे लगता है कि इन चीजों को भी दूषित करने पर हमारे लिए नियम लागू किए जाने चाहिए सरकार के द्वारा।
1: बिल्कुल, निकट भविष्य में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्ते।

0: मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: श्रोताओं, बता दें कि आज से 3 दिन रूट डायवर्जन रहेगा, जो कि सुबह 5 से रात 8 बजे तक भारी वाहनों को शहर में नहीं मिलेगा प्रवेश। दोपहिया वाहन, ऑटो और ई रिक्शा से परीक्षार्थी पहुंच सकेंगे अपने परीक्षा केंद्र तक, और बरेली कॉलेज का पूर्व गेट रहेगा बंद। और इन दिनों जिन छात्रों की परीक्षा है वो परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। तो श्रोताओं, कार्यक्रम कैसा लगा आपको हमारे आज का, जरूर लिखें। आपने हमारा पता है कार्यक्रम आपका पता मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन नंबर है हमारा 2403001। और अब आपका दोस्त चाचा अनुमति, नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते बरेली। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। आज आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे कर रहा है। जी हाँ, गौरवमयी ये 90 वर्ष है। ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी और हर्ष की बात है। श्रोताओं, समय हुआ है 8:45:23, डीजे प्रस्तुत है। अब सुनवाते हैं आपको लोकगीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं लोकगीत आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, और आप सुनवाते हैं आपको ये लोकगीत। स्वर है दामोदर शर्मा का।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। और सुन रहे हैं लोकगीत कार्यक्रम। मिस्टर माते हैं आपको ये लोकगीत स्वर है डोरीलाल गोरा का।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। अभी आप सुन रहे थे लोकगीत और सुबह के 9 बज चुके हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा के साथ।
1: लीजिए सुनिए दीपमाला हॉस्पिटल के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला। लाया दीपमाला।
2: बरेली शहर में गंभीर और अति गंभीर मरीजों की सांस बंद होने पर
3: अब विश्व स्तरीय चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं।
2: बरेली शहर का सबसे किफायती ICU अति गंभीर मरीजों के लिए विशेष आइसोलेशन ICU
4: दीपमाला हॉस्पिटल निकट टेलीफोन एक्सचेंज चौपला बरेली।
2: हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, फॉलिज और जहर खाए मरीजों के आधुनिकतम इलाज की विशेष किफायती सुविधा क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा के द्वारा।
3: इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारा मोबाइल नंबर
2: 9837000048।
5: कार्यक्रम है सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला और मेरे साथ मौजूद हैं बरेली के दीपमाला अस्पताल के वरिष्ठ क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: नमस्कार
5: डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे फॉलिज के विषय में। फॉलिज किस तरह की समस्या है, क्यों होती है?
6: देखिए, फॉलिज आमतौर पे पैरालिसिस को कह दिया जाता है। पैरालिसिस तो एक इंग्लिश का शब्द है जिसका मतलब है किसी भी फंक्शन का बंद हो जाना।
5: जी,
6: जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ट्रैफिक पैरालाइज हो गया, गवर्नमेंट पैरालाइज हो गई।
5: जी जी,
6: उसका बस शाब्दिक अर्थ है किसी चीज़ का चलते हुए से रुक जाना।
5: अच्छा,
6: और जो आमतौर पर बोलचाल की भाषा में हम लोग ये फालिज कहते हैं, इसके माने ये हैं एक हाथ और एक पैर का काम करना बंद कर देना।
5: जी,
6: तो हम लोग अपने सवाल पे आते हैं कि पैरालिसिस या स्ट्रोक क्या होता है।
5: जी बिल्कुल,
6: पैरालिसिस जो मनुष्य के शरीर में मेनली दो कारणों से हो सकती है, या तो ब्लीडिंग होने से, ब्रेन हेमरेज होने से, इसको इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज कहते हैं, या फिर दिमाग के अंदर थक्का आ जाने से, जिसको इश्कीमिक स्ट्रोक कहा जाता है या वास्तव में स्ट्रोक कहा जाता है।
5: जी।
6: तो ये जो दूसरी किस्म की वो है, ब्रेन के अंदर क्लॉट आ जाना, इसको कभी कभी लोग हिंदी में फालिज कह देते हैं।
5: डॉक्टर साहब, वजह क्या मानते हैं आप?
6: देखिए, ब्रेन हेमरेज होने की मेन वजह बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होता है, और स्ट्रोक यानी कि इश्कीमिक स्ट्रोक यानी कि दिमाग में थक्का आने की मेन वजह होती है शरीर के अंदर थक्के बनने की प्रवृत्ति होना, जो शुगर में होती है, ब्लड प्रेशर की वजह से होती है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू करने की वजह से होती है, कोलेस्ट्रॉल बड़ा होने की वजह से होती है, फोलिक एसिड कम होने की वजह से होती है, और दिल की नर्व गलत चलने की वजह से होती है।
5: अच्छा, उम्र का भी कोई लेना देना है डॉक्टर साहब?
6: जी, उम्र का बहुत लेना देना है। पहली बात तो यह है, रजोवृत्ति होने से पहले,
5: जी
6: यानी कि 48 साल की उम्र होने से पहले औरतों में पैरालिसिस और दूसरी हार्ट की दिक्कत आम

0: तौर पे नहीं देखने को मिलती हैं
1: जी।
0: लेकिन 48 साल की उम्र के बाद औरतों में भी उतने ही स्ट्रोक देखने को मिलते हैं जितने आदमियों में, और आदमी की नाड़ियाँ उम्र बढ़ने के साथ साथ संकुचित होती जाती हैं, खुरदरी हो जाती हैं, तो बड़ी उम्र के लोगों में पैरालिसिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो शुगर के पेशेंट हैं या डायबिटीज़ जिन लोगों को है उनमें संभावना ज़्यादा रहती है, इसके पीछे क्या वजह है?
0: देखिए, शुगर जो है वो शरीर के सारे मांसपेशियों को ग्लाइकेशन कर देता है
1: जी।
0: उसका मतलब ये है कि वो नाड़ियों की जो अंदर की दीवार है उनको खुरदरी कर देता है। शुगर बड़ा होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। शुगर होने की वजह से खुद जो नाड़ियों की ब्लड सप्लाई होती है वो भी पतली हो जाती है। शुगर होने की वजह से हृदय रोग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और हृदय रोग की वजह से भी थक्के बनना बढ़ जाते हैं।
1: दो तरह की पैरालिसिस या फॉलेज की बात आपने की है डॉक्टर साहब। एक स्थिति आप ही बता रहे हैं वो होती है जबकि थक्का बनता है, और एक स्थिति वो होती है जबकि दिमाग के अंदर नस फट जाती है। दोनों में क्या फर्क होता है? लक्षण के विषय में अगर हम जानना चाहें तो क्या लक्षण अलग अलग होते हैं, एक से ही होते हैं?
0: देखिए, जो ब्रेन हेमरेज होता है आमतौर वो बिल्कुल पटाखे की तरह आता है।
1: अच्छा।
0: कि अचानक दिक्कत शुरू हुई, सिर में दर्द हुआ, उल्टी आई, हाथ चलना बंद हो गया, पैर चलना बंद हो गया, और अगर वो रुक नहीं रहा है तो फिर आदमी बहुत तेज़ी से बेहोश की तरफ जाता रहता है, बेहोश हो जाता है
1: जी।
0: जबकि जो इस्कीमिक स्ट्रोक है या थक्का दिमाग में है, अगर वो बहुत बड़ा ना हो, एक्सेप्शनली बड़ा ना हो, तो आमतौर पर आदमी का बीपी बहुत बड़ा हुआ नहीं होता है। उसे दिक्कत होती है, जैसे हाथ चलना बंद हो गया, पैर चलना बंद हो गया, आवाज़ आनी बंद हो गई, लेकिन एकदम से जान का खतरा नहीं होता है
1: जी।
0: दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन दोनों का इलाज बिल्कुल उल्टा है।
1: अच्छा।
0: देखिए, दिमाग की नस फट गई तो आपको ये पता करना है कि खून पतला तो नहीं है, और खून को गाढ़ा करने का इंतज़ाम करना है
1: जी।
0: और अगर दिमाग में थक्का आ गया है तो आपको खून पतला करने का इंजेक्शन देना है। ये दोनों इलाज एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, इसलिए कभी भी पैरालिसिस का केस हो तो कम से कम उसका MRI या CT स्कैन के बिना कभी उसको दवा नहीं देनी चाहिए
1: जी। अच्छा, इसीलिए CT स्कैन या MRI आप लोग कराते हैं?
0: जी हाँ, बिल्कुल। और देखा यह गया है कि शुरू के 6 घंटे से लेकर 12 घंटे तक MRI अच्छी जाँच होती है जो थक्के को ढूंढ सकती है। CT स्कैन 12 घंटे के बाद ठीक होता है।
1: डॉक्टर साहब, कुछ घंटे गोल्डन आवर्स कहे जाते हैं, वो भी हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे। अगर किसी को फॉलिज का अटैक हुआ है तो गोल्डन आवर्स वाली बात क्या है?
0: ये 2007 में एक इंजेक्शन आज़ाद हुआ जिसका नाम है TPA
1: जी,
0: टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। उस इंजेक्शन के लिए शुरू में ये कहा गया था पैरालिसिस पड़ने के 3 घंटे के अंदर अगर इसे लगा दो तो वो ये क्लॉट को बिल्कुल ऐसे तोड़ देगा कि जैसे पता भी नहीं चलेगा कि कभी पैरालिसिस हुई थी।
1: अच्छा।
0: फिर बाद में इसका टाइम बढ़ा के 6 घंटे किया गया, फिर बाद में कम करके 4.5 घंटे किया गया। अब ये कहते हैं कि 4.5 घंटे के अंदर अगर मरीज आ जाए तो वो इंजेक्शन लगा दो तो वो मरीज बिल्कुल ठीक हो सकता है।
1: 100% ठीक हो जाता है, जैसा पहले था वैसा ही हो जाता है?
0: देखिए, 100% तो मेडिसिन में कुछ भी नहीं होता
1: जी, बिल्कुल।
0: लेकिन ये बात है कि अगर थक्का बहुत बड़ा नहीं है
1: जी,
0: छोटा या मध्यम का थक्का है, तो वो मरीज को बहुत ज़्यादा रिस्पांस एकदम से मिल जाता है
1: जी।
0: लेकिन अगर थक्का बहुत बड़ा है या थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो इंजेक्शन लगाने से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा
1: जी।
0: मतलब अगर आप दवाई नहीं देते तो मरीज़ की तबीयत ख़राब होती है, उसके हाथ पैर की ताकत जाती है, वो बेहोश होता, उतना ख़राब नहीं होगा लेकिन शायद पूरा नॉर्मल ना हो। मैं इसी विषय में आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगा।
1: बिल्कुल।
0: हमने जो शुरू में ये TPA इंजेक्शन लगाना शुरू किया, ये बात होगी 2009-2010 की
1: जी।
0: तो जिसमें हमने एक दूसरे नंबर का जो मरीज था वो हमारे पे टाइम रहते आ गया। उसको उस समय हाथ नहीं चल रहा था, पैर नहीं चल रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी
1: जी,
0: और सीधे हाथ से दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब वो पूरी उसकी पावर बिल्कुल कम थी। हमने इसको TPA लगाया और उसको काफ़ी अच्छा फ़र्क आया। उसका हाथ चलने लगा, पैर चलने लगा और आँख से दिखना स्टार्ट हो गया। लेकिन तब भी वो हमसे झगड़ा करके गया। क्यों? उसने कहा मेरी आवाज़ वापस नहीं आई है। आप समझ रहे हैं कि वो उस ज़माने में हमने TPA दिया, इतना अच्छा रिस्पांस आया, फिर भी मरीज खुश नहीं था। उसने कहा मेरी आवाज़ तो वापस नहीं आई है, इसलिए उसकी समझ में नहीं आया अगर ये इंजेक्शन नहीं लगाते तो उसका हाथ भी नहीं चलता। तो फिर इस हिसाब से मरीज को समझाया, इस तरह से जाता है कि अगर इंजेक्शन आपको नहीं लगाया होता

0: तो आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती। एक आदमी जिसमें ये इंजेक्शन लगाओ और एक आदमी जिसमें इंजेक्शन ना लगाओ
1: जी,
0: पैरालिसिस, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन पूरा फर्क तुरंत समझ में नहीं आता है
1: जी,
0: पूरा फर्क समझ में आता है 10-15 दिन के बाद, जब इंजेक्शन लगे वाला बिल्कुल ठीक हो जाता है, महीने भर का टाइम मान लीजिए, और जिसका इंजेक्शन नहीं लगा है उसकी स्थिति वैसे ही रहती है या और बिगड़ जाती है।
1: आज भी समाज में ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं जिनका मुंह टेढ़ा होता है, एक हाथ एक पैर काम नहीं कर रहा होता है, शरीर एक तरफ को झुका रहता है, और उसके पीछे अगर कारण जानने की कोशिश करें तो वो पैरालिसिस ही होती है। क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब, ये किस तरह होता है?
0: जो आप कह रहे हैं कि समाज में बहुत सारे लोग ये दिक्कत लेके चलते रहते हैं
1: जी,
0: उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो है कि ये टीपीए का इलाज थोड़ा महंगा है
1: जी,
0: उसके इंजेक्शन की कीमत करीब 50,000 रुपये होती है अगर कोई वो 60 किलो का आदमी है तो। और दूसरी बात है, वो इंजेक्शन शुरू के 4.5 घंटे में ही फ़ायदा करता है। और तीसरी बात यह है कि इंजेक्शन लगाना भी सिंपल काम नहीं है, वो बहुत डेंजरस है। पहले तो आप समझें कि 4.5 घंटे के अंदर लगाना है
1: जी,
0: तो इसका मतलब ये है कि 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर मरीज वो आ जाए अस्पताल, और फिर वही 1/2 घंटे 20 मिनट के अंदर उसका MRI CT स्कैन हो जाए
1: जी,
0: और फिर उसको इंजेक्शन भी लग जाए। और आमतौर पर 70-80 किलो के जो लोग होते हैं उनमें करीबन 75,000 रुपये तक का इंजेक्शन लगाना होता है, डोज वजन के हिसाब से होती है
1: जी।
0: अब मान लीजिए कोई पेशेंट आया तो वो इतने सारे पैसे आमतौर पर लेके तो साथ में चलेगा नहीं
1: जी,
0: हाँ UPI का जमाना जरूर है, लेकिन इतनी बड़ी रकम UPI से पेमेंट भी आमतौर पर लोग को नहीं होती है। तो फिर अगर आपको इंजेक्शन लगाना है तो आपको उसे उधार ही लगाना होगा, क्योंकि अब अगर पैसे लाने का उसका वेट करेंगे तो उसका टाइम निकल जाएगा
1: जी।
0: और अगर मान लीजिए उसमें पेशेंट खराब हो गया या ठीक नहीं हुआ, तो आज का जमाना ऐसा है कि डॉक्टर्स की बात फिर कोई सुनता नहीं है। तो मेरा मतलब यह है कि TPA लगाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए पूरी टीम चाहिए। तो जल्दी से एक मोडस ऑपरेंडी के अंडर जल्दी से जल्दी CT MRI कर ले, और कुछ बातें परहेज देखने होते हैं, कहीं मरीज की प्लेटें कम तो नहीं है, कहीं मरीज को कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं है, कहीं मरीज को पहले कभी ब्रेन हेमरेज तो नहीं हो चुका है। अगर इनमें से कोई दिक्कत ना हो तो TPA लगाया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, लोगों को फॉलिस का एकदम अटैक होता है, मुंह टेढ़ा भी होगा, एक आंख भी डिस्टर्ब हो जाती है, हाथ पे भी जोर नहीं रहता, और ये चंद सेकंडों में ही दोबारा ठीक हो जाता है, ये किस बात का संकेत है?
0: ये जो आपने बताया इसको मिनी स्ट्रोक या TIA कहते हैं
1: जी।
0: TIA का मतलब है कि ट्रांजिट इश्कीमिक अटैक। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर बहुत बड़ा थक्का कोई दिमाग के अंदर आया तो वो दिमाग की नस को या दिमाग के सर्कुलेशन को पूरी तरह से रोक देगा। मगर मान लीजिए थोड़ा सा थक्का है या जो थक्का बहुत पतला सा है वो दिमाग में, दिमाग की नाड़ी में फंसा, ब्लड प्रेशर बढ़ने से दिमाग के बहाव से वो टूट के निकल गया, ये पैरालिसिस के लक्षण कुछ समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन एक खास बात है, जिनको ये TIA या स्मॉल स्ट्रोक या जो जरा क्षण भर का जो स्ट्रोक पड़ता है, उनको अगले 72 घंटे में दोबारा बड़ा पैरालिसिस पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं
1: जी।
0: मैं आपको बताऊं मुकेश बाबू, ब्रेन के अंदर जो क्लॉट्स पहुंचते हैं वो बहुत ही कम ब्रेन में बनते हैं। 80% तक जो क्लॉट्स हैं वो गर्दन की नाड़ी या दिल से बन के जाते हैं और दिमाग के अंदर पहुंचते हैं
1: जी।
0: तो अंदाज़ा ये देखा गया है कि दिमाग के अंदर अगर एक क्लॉट पहुंचा है तो गर्दन की नाड़ी और दिल के अंदर कम से कम 150 क्लॉट्स तक बनने की संभावना होती है। उसके माने ये हैं, जिसको एक बार पैरालिसिस का अटैक पड़ता है उसको कई बार पैरालिसिस का अटैक पड़ सकता है, अगर आपने गर्दन की नाड़ी और दिल के क्लॉट्स को घुलने की दवा नहीं दी तो।
1: यानी तुरंत इलाज और डॉक्टर कंसल्टेंसी की ज़रूरत होती है ऐसे लोगों को। अच्छा, देसी इलाज किया जाता है डॉक्टर साहब, उसके विषय में आपका क्या कहना है?
0: आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा
1: जी।
0: उसका जवाब मैं एक आपको एक कहानी से बताता हूँ। आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में पोलियो की एपिडेमिक हुई थी
1: जी।
0: हिंदुस्तान में ही क्या, वो तो पूरे यूरोप में भी हुई थी, और उस दौरान अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तानी जो वैद्य पहलवान जर्रा और जितने भी चिकित्सक हुआ करते थे उन सबको 3-4 बातें अच्छे से सिखा दी थी। पहली ये, ऐसे मरीजों के जिस पैरालिसिस वाला जो पैर है और हाथ है उसमें इंजेक्शन मत लगाओ, उसको ठंडा मत रखो, उसे गर्म करके रखो
1: जी,
0: और बुखार उतर जाने के बाद या जब पैरालिसिस हो गई है बाद में तो तेल से मालिश करो, और उसको कभी भी कुछ भी ठंडा खाने को मत दो। तो वही बात जो पोलियो

0: के लिए उन्होंने सिखाई, वो उस जमाने के जो चिकित्सक थे, जर्रा झोला छाप टाइप, उन सब ने सीख ली और धीरे धीरे जनरेशन बाई जनरेशन वो बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ सीख ली है कि साफ पैरालिसिस का मरीज है तो उस पर तेल मलने से ठीक हो जाएगा
1: जी,
0: उसमें इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, उसमें कोई अंग्रेजी दवा नहीं देनी चाहिए, उसको गर्म रखना चाहिए, और यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि उनको सब गर्म चीज़ें खिलाओ
1: जी, जी।
0: और कुछ लोग कबूतर का मांस खिलाते हैं, कबूतर के खून की मालिश करते हैं
1: जी।
0: मैं इन सभी लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि 2011 के बाद से हिंदुस्तान में एक भी पोलियो का केस नहीं है, पिछले 14 सालों से हिंदुस्तान पोलियो फ्री है
1: जी।
0: तो वो जो इलाज आपको ये कहकर करा जा रहा है फालिज का इलाज हो रहा है, वो दरअसल पोलियो का इलाज है। उस जमाने में ट्रांसफार्मर का ऑयल निकाल के रब करने को देते थे और ट्रांसफार्मर के ऑयल को कहते थे बिजली का तेल
1: जी जी।
0: अब वही बिजली का तेल फालिज की दवा बन गई है, इनके पास बड़ी भीड़ लगी रहती है, अगर जाके देखें तो वो बैरल के हिसाब से जला हुआ ट्रांसफार्मर का मोबिल ऑयल खरीदते हैं और वह लोगों में बांटते हैं। तो सर मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर ब्रेन में क्लॉट की वजह से अगर आपको पैरालिसिस है तो आप कितना भी तेल रगड़ लें हाथ पैर पे, वो दिमाग तक नहीं पहुँचेगा। पैरालिसिस के पेशेंट को जो ब्रेन में क्लॉट या हेमरेज की वजह से हुआ, सबसे ज़्यादा फिजियोथेरेपी की यानी कि कसरत की ज़रूरत होती है
1: जी।
0: कसरत में और मालिश में बहुत जरा सा फ़र्क है लेकिन उसके इम्प्लीकेशन में, उसके रिजल्ट में जमीन आसमान का फ़र्क है। मालिश करने से बस आपको ये फील होगा कि हमने तेल लगा दिया और उनका मांस अच्छा हो गया, लेकिन असली फ़र्क, असली फिजियोथेरेपी वो कसरत कराने से होती है।
2: बड़ी महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर साहब आपने बताई हैं फॉलिज के विषय में, बहुत कुछ अभी जानने को बाकी है, आपसे फिर बात करेंगे विशेष तौर से फॉलिज जैसी बीमारी को लेकर के। अगले कार्यक्रम में फिर मिलने के वादे के साथ मैं मुकेश कुमार पांडे आज की सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला कार्यक्रम से अनुमति चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
0: धन्यवाद मुकेश जी।
3: आप सुन रहे थे दीपमाला हॉस्पिटल के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला।
4: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया। अब जोड़ रहे हैं आपको विविध भारतीय प्रसारण सेवा कार्यक्रमों से, निर्णय कर रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: आज अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है। शिल्पा शेट्टी अपनी खूबसूरती, फिटनेस और बेहतरीन अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करने वाली लोकप्रिय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जी को जन्मदिन की विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको फिर से याद दिला दें, रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा सुप्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पर।
1: दिल ने ये कहा है दिल से।

धड़कन फिल्म का गीत अलका याग्निक सोनू निगम की आवाजों में आप सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा था और नदीम श्रमण ने धुन बनाई थी।

अभी आप सुन रहे थे मलाल फिल्म का गीत ऋत्विक तलाशिखर की आवाज थी, प्रशांत इंगोले ने इसे लिखा था, संजय लीला भंसाली का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए सविता सिंह को इजाजत, नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर, और सुबह के 9:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कंडप्रिया अग्रवाल।
1: लीजिए सुनिए फोकस नेत्रालय डेलापीर बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 90-68-80-50-50।
2: बहनों भाइयों, छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती हैं। जान है तो जहान है कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस कार्यक्रम में फिर से उपस्थित हैं डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, जो कि वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, फोकस नेत्रालय डेलापीर बरेली से।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर कनुप्रिया, डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट, फोकस नेत्रालय आई हॉस्पिटल बरेली से आज आपसे फिर जुड़ी हूँ। हम लोगों ने बहुत बातें करी हैं मोतियाबिंद के बारे में, मोतियाबिंद में कौन सा लेंस पड़ना चाहिए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब कराना चाहिए, किन लोगों को ज्यादा मोतियाबिंद होता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कैसे कराना चाहिए। लेकिन मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दिन हमें क्या क्या करना है और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मोतियाबिंद वाले दिन हमें क्या करना चाहिए, मोतियाबिंद जिस दिन हम लोगों ने हमने निर्धारित कर लिया है कि आज हमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, तो उस दिन हम लोग जो हैं सुबह सर से नहा कर जाएंगे, क्योंकि मोतियाबिंद के जो ऑपरेशन है उसमें सर से नहाने के बाद का थोड़ा सा परहेज है। पहले जमाने में चीरा वाला ऑपरेशन होता था, चीरे वाले ऑपरेशन में पूरा एक महीने का परहेज हुआ।

करता था। लेकिन अब मोतियाबिंद का जो दूरबीन द्वारा ऑपरेशन होता है उसमें मात्र हफ्ते से 10 दिन का परहेज होता है, लेकिन फिर भी हफ्ते भर सर से ना नहाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पहले से ही जिस दिन हमारा ऑपरेशन हो रहा है उस दिन सुबह सुबह में ही हम लोग सर से नहा लेंगे, ताकि एक हफ्ते तक अगर हमारा सर नहीं धुलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। और साथ ही साथ जो हमारे भाई लोग हैं वो लोग अपनी जो लोग शेव करते हैं तो

0: लोग अपनी, जो लोग शेव करते हैं तो वो अपनी शेव भी कर लेंगे, ताकि एक हफ्ते के लिए या 3-4 दिनों के लिए आंख में या किसी तरीके से कोई केमिकल ना जाए, कोई साबुन ना जाए या फिर कोई चीज़ और ना जाए। तो इसके लिए हम आंखों में किसी भी केमिकल को दूर रखने के लिए हम लोग सुबह शेव भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो कि सब मुझसे पूछते हैं वो ये है कि बीपी, शुगर, एस्थमा, हार्ट या इन सब की, या गठिया या किसी भी चीज़ की, किसी भी मर्ज़ की आपकी कोई भी दवाई चल रही है तो आप वो उसी नियम से, मतलब अगर आप सुबह खाते हैं तो सुबह लेंगे, दोपहर में खाते हैं तो अगर आपका ऑपरेशन है तो दोपहर में भी आप अपना जो बैग में है बैग में वो दवाई लेकर जाएंगे और उसी नियम से दवाई को लेंगे। और जो परहेज, जो खान पीन आपका ऑपरेशन से पहले चल रहा था वही खान पीन, वही सब बातें आपकी ऑपरेशन के बाद चलेंगी। दूरबीन वाले मोतियाबिंद में कोई परहेज नहीं है, आपका जिस तरीके से जो भी रूटीन चल रहा था वो उसी तरीके से चलता रहेगा।
1: डॉक्टर साहब, ये जो बात ऑपरेशन से पहले की हुई है, लेकिन अब मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद क्या हमारे श्रोता ध्यान रखेंगे, ये बात हमारे श्रोताओं जरूर बताइए।
0: जब आपका ऑपरेशन होगा मोतियाबिंद का, ऑपरेशन मात्र 10 से 15 मिनट की एक सर्जरी होती है। कहने को तो ये बहुत छोटी सर्जरी होती है, उसी दिन जो है पट्टी नहीं लगती है, उसी दिन आपको क्या कहते हैं घर भेज दिया जाता है और उसी समय आपको क्या कहते हैं वार्ड में शिफ्ट कर देंगे और रात को रुकने की आपको जरूरत नहीं होती है। लेकिन ऑपरेशन के बाद हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं ताकि हमारी आंख की रोशनी जो बरकरार है वो अच्छी तरीके से बनी रहे। ठीक है, ऑपरेशन के बाद जो हमें परहेज रखना है वो हमें ये रखना है कि हल्का फुल्का हो सकता है आंख में से पानी आए या लाली हो आंख में, तो जो पानी आंख में आता है तो वो हमें साफ रुमाल या साफ कपड़ा रखना है और हमको अपनी आंख के नीचे जब वो पानी बहता है तो उसे पोंछ लेना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का कोई दुपट्टा है या कोई पल्लू है या फिर कोई अंगोछा है उससे हम अपने पसीने को पोंछते हैं, उसी से हम अपने नाक को पोंछते हैं, उसको हम आंख में इस्तेमाल ना करें। और अगर हमें आंख पोंछने की किसी समय ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि हल्का फुल्का ऑपरेशन के बाद पानी आता ही है, तो उस पानी को हम साफ कपड़े से पोंछें। तो आपको सबसे पहले ज़रूरत है कि आप एक साफ रुमाल अपने हाथ में रखें और उस रुमाल को रोज बदलें ताकि हमारी आंख की साफ सफाई बनी रहे। दूसरा, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम गर्दन से नीचे नहाएं। हमें सर से मग्गे से पानी डालना नहीं है, मात्र एक हफ्ते के लिए, सिर्फ एक हफ्ते के लिए।
1: हाँ डॉक्टर साहब, इस मौसम में आपने हमारे श्रोताओं की मन की बात कही है, नहाना नहीं है,
0: हमें नहीं डालना है
1: मतलब पानी।
0: और हम जो है गर्दन से नीचे आप 2 बारी भी दिन में नहा सकते हैं, लेकिन चेहरे को, तो इसके लिए आप जो हैं गर्दन से नीचे नहाएं और चेहरे को साफ रुमाल या सॉफ्ट तौलिए को निचोड़कर, पानी से निचोड़कर अपने चेहरे को और सर को पोंछ सकते हैं, है ना। तो ये बात है जब हम दूरबीन वाला ऑपरेशन कराते हैं, लेकिन चीरे वाला ऑपरेशन में तो बिल्कुल भी आप सर के ऊपर, सर से नहीं नहा सकते हैं महीने भर के लिए।
1: डॉक्टर, महिलाएं तो खासतौर रसोई में रहती हैं, उनको तो खासतौर पर ध्यान देना चाहिए ना।
0: बिल्कुल, आपने सही बात बताई कि क्या कहते हैं महिलाओं को खासतौर से इस बात का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन दूरबीन वाले ऑपरेशन में महिलाएं जो किचन में जा रही हैं वो किचन का भी काम कर सकती हैं। सिर्फ एक काम नहीं करना है, वो है छौके मारने वाला, जिससे किसी तरीके का धुआं आंख में ना जाए। उसके अलावा सब्जी काटना है, रोटी सेकना है, चाय बनाना है और छोटे मोटे जितने भी किचन के काम हैं आप सारे अपने काम कर सकती हैं। दूरबीन वाले ऑपरेशन में इन तरीके का कोई परेश नहीं है।
1: आपकी बातों से एक बात याद आती है कि जिनके जो महिलाएं हैं उनकी बहुएं हैं तो बहुओं से काम करा लें इन दिनों के लिए, बहुओं को ध्यान रखना चाहिए सासू माँ का।
0: बिल्कुल बिल्कुल, घर परिवार में हम सबको एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए ताकि जिस समय जिसको जरूरत हो तो उसकी अच्छे से सेवा हो पाए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: उसके बाद जो आप दवाई खा रहे हैं वो आप दवाई खा सकते हैं, उसी नियम से आप दवाई को खाना है। जो अगर आपको शुगर है, बीपी है, तो आपके जो परहेज चल रहे हैं उसका भी आपको उसी तरीके से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि मोतियाबिंद के बाद आँख में रोशनी अच्छी आ गई है, आप बहुत खुश हैं, तो आप मिठाई बांट तो रहे हैं लेकिन साथ में खा भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर शुगर बढ़ती है या किसी वजह से बीपी बढ़ता है तो वो आँख को नुकसानदायक हो सकता है और रोशनी हल्की पड़ सकती है।
2: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध, पर्दे, काला पानी, नासूर, पलक बंदी के इलाज की सुविधा, हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिक

0: क्लिनिक होता है जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय राजेंद्र नगर निकट डेलापीर तालाब बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050।
1: डॉक्टर साहब ये भी तो होता होगा कि आप दवाइयाँ देते होंगे खाने के लिए, तो वो दूसरी दवाई बीपी गोली कितनी देर बाद खाएं ये भी तो जरूरी होगा।
2: जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद की दवाइयां हैं वो बिल्कुल बेसिक दवाइयां हैं। उन दवाइयों से बीपी शुगर या किसी भी तरीके से, सपोज ऑपरेशन के बाद आपको बुखार हो जाता है
1: जी,
2: है ना, तो आप अपने, या खांसी हो जाती है तो आप अपने डॉक्टर से खांसी की भी दवाई ले सकते हैं, बीपी की भी दवाई जो चल रही है वो चलती रहेगी। इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इनका कोई रिएक्शन उन दवाइयों की वजह से नहीं है। तो अगर बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, तो आप बिल्कुल उसके लिए दवाई ले लें और अपनी दवाई कर सकते हैं। चौथी चीज, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि काला चश्मा हर समय लगा के रखना है। ये जो काला चश्मा हम लोग देते हैं ये एक अलग तरीके का चश्मा होता है, ये नॉर्मल जो हमें गॉगल्स हमें बाजार में मिलते हैं उस तरीके का नहीं होता है, क्योंकि ये चश्मा जो है ये चारों तरफ से बंद होता है, और जो बंद चश्मा है वो हमें बचाता है कि किसी भी प्रकार का कोई धुआं, कोई धूल, कोई मिट्टी या हवा, तेज हवा, गंदी हवा हमारी आंख में ना जाए, इस बात से हमें बचाता है। तो काला चश्मा हमको हर समय लगाना है, सिर्फ और सिर्फ सोते समय हमारे को क्या कहते हैं उतारना है।
3: डॉक्टर साहिबा, जो काला चश्मा आपने बताया वो गोरे चेहरे पर तो बहुत ज्यादा फपता है, तो लोग उतारते ही नहीं होंगे, इसलिए कहेंगे आप जब आईने में देखते होंगे तो उनका चेहरा बहुत खिल उठता होगा।
2: बिल्कुल, आजकल तो इतने स्मार्ट गॉगल्स आने लगे हैं कि कई बारी बाबूजी ऑपरेशन के बाद आते हैं तो ऐसा लगता है कोई हीरो ही अंदर चला आ रहा हो।
1: जब खान पान कैसा रहना चाहिए?
2: खान पान के लिए क्या कहते हैं हमारी तरफ से कोई अलग से परहेज नहीं है। सभी लोग यही पूछते हैं कि ऑपरेशन के बाद हम क्या खाएं, क्या ऐसी कड़क चीज हम खाया लें उससे कहीं हमारा लेंस तो नहीं हिल जाएगा, या हम कसकस के चबाए ना। तो मैं सभी भाई बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि दूरबीन वाला जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन है उसमें इतने अच्छे लेंसेज हैं कि अगर आप बोलते हैं या कड़क चीज खाते हैं या कोई भी चीज आप खान पीन के करने से आपके लेंस जो है वो नहीं हटता है, नहीं हिलता है। तो आप अपना जो नियम ऑपरेशन से पहले चल रहा था, खाने का जो रूटीन आपको पहले चल रहा था, उसी नियम को ऑपरेशन के बाद में भी रख सकते हैं, ताकि क्या कहते हैं कोई भी किसी भी शुगर का, बीपी का फ्लक्चुएशन हमारे शरीर में ना हो, और आप हर चीज थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब चीज खा सकते हैं, किसी भी चीज का कोई परहेज नहीं है। रोटी अच्छे से चबा के खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, आपको दलिया या किसी और चीज को खाने की ऐसी जरूरत स्पेशली नहीं है। आपका मन है तो खा सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई परहेज नहीं है।
1: यानी कहीं अगर मेहमानी में जाएं तो जा सकते हैं आराम से, वहां पे खा भी सकते हैं?
2: बिल्कुल बिल्कुल, मेहमानी में जाएं आप और खूब खाएं, और क्या कहते हैं बस इस बात का ध्यान रखें कि शुगर नहीं बढ़े,
1: मतलब मटर पनीर खा सकते हैं आराम से।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, खा भी सकते हैं और खिला भी सकते हैं।
3: डॉक्टर कनुप्रिया जी, हमारे श्रोताओं के मन में जिज्ञासा होगी कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आंखों को कैसे धोएं, और कहीं धोने पर आंखों का लेंस हट तो नहीं जाएगा, रोशनी खराब तो नहीं हो जाएगी, बहुत सी बातें मन में आती होंगी, ये जिज्ञासा होगी, तो ये जिज्ञासा आप हमारे श्रोताओं की दूर करें।
2: तो मैं सभी श्रोताओं को ये फिर से कहूंगी कि दूरबीन वाले ऑपरेशन में फोल्डेबल लेंस पड़ता है, बिना चीरे के एक छोटे से छेद द्वारा लेंस को डाला जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे को आंख धुलना का तो परहेज रहता है कि हम आंख को पानी नहीं जाना चाहिए, तो आपको आंख नहीं धोनी है। चेहरे को साफ करने के लिए आप उबला हुआ या पका हुआ पानी को तौलिए में निचोड़कर आप अपने चेहरे को पोंछ सकते हैं। आंखों को साफ करने के लिए आजकल आई वाइप्स आने लगे हैं, ये वेट वाइप्स की तरीके से नहीं है, क्योंकि वेट वाइप में काफ़ी खुशबू और काफ़ी केमिकल होते हैं तो वो हमारी आंख को नुकसान दे सकते हैं, लेकिन आंखों को साफ करने के लिए एक अलग से वाइप या कपड़ा आता है, आप उसको भी ले सकते हैं अस्पताल से और उससे अपनी आंख को दिन में एक बार पोंछ सकते हैं, क्योंकि जो दवाई होती है कई बार हमारी आंखों के चारों तरफ जमने लगती है, और जब ये जमने लगती है तो उससे थोड़ी सी गंदगी आने लगती है। तो ये जमे ना, इसके लिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि हम आंख की सफाई का भी ध्यान रखें। कुछ कुछ लोग आते हैं अस्पताल में, जब मुझे 15 दिन के बाद मिलते हैं तो उन्होंने 15 दिन से आंख की सफाई नहीं करी है और उनके आंखों के चारों तरफ दवाई जमती ही चली जा रही है। तो उन सभी भाई बहनों को मैं यही समझाती हूँ

0: कि आंख में कोई चीज जाए नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंख की सफाई भी ना करें। तो आंख की सफाई करनी बहुत जरूरी है और साफ कपड़े से आप आंख की सफाई दिन में एक बार ही करना है।
1: ये तो आपने बात की कि आंखों को कैसे साफ रखें, लेकिन आजकल फैशन चल रहा है कि लोग दाढ़ी रखते हैं, शादी ब्याह में देखते हैं दूल्हे भी रखते हैं, लेकिन जो दाढ़ी बनाना चाहते हैं, कहीं जाना ऑफिस जाना है, एक नियम भी होता है कि भाई दाढ़ी बना के आना, से बना के आना, तो क्या मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद दाढ़ी बना सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑपरेशन वाले दिन अपना सर धोना और दाढ़ी बनाने का कार्यक्रम आप कर सकते हैं ताकि आपको कम से कम 2-3-4 दिन की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन उसके बाद भी आप अगर चाहें तो हर समय आप शेव कर सकते हैं, आप अपनी दाढ़ी बना सकते हैं। आंखों को बंद, मतलब एक आंख अपनी बंद कर लीजिए और अपना, लेकिन थोड़ा सा एहतियात से या थोड़ा सा ध्यान से करिएगा ताकि आँख में एकदम छींटे या पानी या साबुन ना जाए। जब हम शादी की बात कर रहे हैं तो हम आँखों में मेकअप या लेडीज जो है आईब्रो बनाने की चिंता,
1: जैसे कि शादी में जाते हैं तो सब लोग मेकअप तो करते ही हैं, महिलाएं भी अक्सर करती हैं, लेकिन जो पुरुष हैं वो भी, उनकी मान लो आंख बनी है, दोनों की बात बताइए कि मेकअप कर सकते हैं, आंखों में काजल लगा सकते हैं, ये जरूर या दवाई पड़ सकती है जी?
0: हाँ, तो आंख में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आप किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ आपको 1 महीने के लिए नहीं लगानी है, जैसे कि आईलाइनर, काजल, मस्कारा, कुमकुम, चंदन, सुरमा, ये सब चीज़ें आँख में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है आँख के अंदर, है ना। तो आपको अगर कुछ भी करना है, लेकिन हाँ ये है, कुछ कुछ फीमेल्स आती हैं, वो महिलाएं कहती हैं कि हमें आईब्रो बनवानी है, थ्रेडिंग करवानी है, हाँ तो आप थ्रेडिंग ज़रूर करवा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कि आँख में कोई केमिकल ना जाए, लेकिन आँख में मेकअप बिल्कुल नहीं करना है, आँख में किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं जाएगा।
1: डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि मेकअप के बारे में बताई, तो डॉक्टर साहब क्या भारी वजन उठा सकते हैं? महिलाओं को कभी रसोई में आटे का पीपा उठाना पड़ता है, मसाला उठाना पड़ता है ऊंचा करके कैसे भी, तो क्या वो वजन उठा सकती हैं?
0: झुक कर उठाने में कोई परहेजी नहीं है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो हम सामान उठा रहे हैं वो 5 किलो से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और ये परहेज मात्र 1 हफ्ते के लिए है, 1 हफ्ते की बात है, उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं। भारी वजन के लिए भी मैं यही कहूंगी कि भारी वजन का ध्यान रखें, आपको अगर जैसे कपड़े की बाल्टी होती है वो उठाना है, या पानी की बाल्टी है वो उठाना है, पीपा उठाना है, तो आप बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन वो बहुत, मतलब 5 किलो से ज़्यादा उसका वजन ना हो। झुक कर काम करना है, सीढ़ी चढ़ना उतरना है, और क्या कहते हैं बाकी, और पोछा लगाना है, या कोई भी ऐसे काम है, तो आप ये सारे अपने काम कर सकते हैं, इनमें कोई परहेजी नहीं है।
1: सही कहा आपने, तो परिवार में अगर बेटी हैं, बहुएं हैं, वो काम कर सकती हैं, अपने आप स्वयं ना काम करें। और खासतौर पर मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा श्रोताओं से कि जो बहुएं हैं, बेटियाँ हैं, अपनी मम्मी को काम ना करने दें उन दिनों, बिल्कुल, और उनकी सेवा करें।
0: बिल्कुल, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, उसी से हमारा परिवार जुड़ा रहता है, और उसी से ही हमारे परिवार की में खुशियां रहती हैं।
1: अब जैसे पूजा अर्चना करते हैं, है ना, नमाज भी पढ़ते हैं लोग, तो क्या झुककर नमाज पढ़ सकते हैं, ये बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: हाँ, मैं इसके लिए, फिर से आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं सबसे यही कहूंगी कि क्या कहते हैं, जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो आप दीपक जरूर जला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगरबत्ती का प्रयोग थोड़ा सा कम करें ताकि धुआं जो है वो हमारी आंख में ना जाए, या फिर अगरबत्ती जलानी भी है तो आप बिल्कुल अगरबत्ती जला सकते हैं, लेकिन पूजा के आखिर में फिर अगरबत्ती जला लीजिए ताकि उसका धुआं हमारी आंख में ना हो और आप जलाकर मंदिर से बाहर निकल जाए। इसी तरीके से जब आप नमाज कर रहे हैं तो समस्या आती है झुकने की और वजू की, है ना, तो नमाज करते समय आप झुक तो सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, वजू करते समय आपके पानी जो है वो आँख में नहीं जाना चाहिए, आप सूखा कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है।
1: डॉक्टर साहब पहले तो टीवी होते थे, बहुत दूर होते थे, और लोग के बड़े घर भी बड़े हुआ करते थे, तो लोग टीवी बहुत दूर से देखते, अब तो एलईडी का जमाना आ गया है, तो क्या मोतियाबिंद का ऑपरेशन का व्यक्ति या महिला टीवी देख सकती है क्या?
0: हाँ, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया रविंदर जी, इस बात के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कई लोग जो हैं वो आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि पिछले 1 हफ्ते से हम अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं और हमने कोई काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, तो मैं इन सब श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी कि दूरबीन वाला ऑपरेशन जब हमने किया है तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जो हैं आपको अंधेरे कमरे में बैठने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपकी आँख फोक बहुत ही अच्छी बना दी है और आँख को और

0: या बेहतर कर दिया है ताकि वो और काम करे।
1: जी
0: हमने आंख इसलिए नहीं बनाई है कि आप काम ना करें या देखें ना, हमने आंख इसलिए बनवाई है आपकी ताकि आप जो है खूब दूर तक देखें और आंख अपने पूरी सीमा तक काम कर पाए। तो आप जो है वो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं अंधेरे कमरे में रहने की, आप टीवी देखिए, आप मोबाइल देखिए, आप सब काम करिए, है ना, लेकिन आपको कोई परेशानी है, आप सब कर सकते हैं जब तक आपको आराम है। अगर आपको लग रहा है कि टीवी की लाइट, क्योंकि आजकल एलईडी, जैसे आपने कहा एलईडी टीवी आने लगे, एचडी टीवी आने लगे हैं, ये एलईडी और एचडी टीवी के कई बारी रंग बहुत तेज होते हैं तो हमारी आंख में चुभते हैं, है ना, क्योंकि नई नई आंख बनी है, आंख को आदत नहीं है देखने की, है ना, आंख देख तो रही है लेकिन उसको आदत खत्म हो जाती है जब मोतियाबिंद होता है देखने की, तो कभी कभी लाइट चुभती है। अगर आपको लाइट चुभ रही है तो ना देखें, लेकिन अगर आप बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप आंखों का पूरा काम लें।
1: डॉक्टर कनुप्रिया जी, पहले एक जमाना था जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे तो आंखों में कोई असर नहीं हुआ करता था, इस बारे में थोड़ा बता दीजिए श्रोताओं को, कितना अच्छा जमाना था ब्लैक एंड व्हाइट देखने में।
0: बिल्कुल, ब्लैक एंड व्हाइट का मजा ही कुछ और था, उसमें जो खूबसूरती थी वो कभी कभी ब्लैक एंड व्हाइट की खूबसूरती रंगों से फीकी पड़ जाती है।
1: कभी पुरानी फिल्में आ जाती हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं,
0: बहुत ही अच्छी लगती हैं।
1: रक्षा, अंत में हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगी?
0: मैं आप श्रोताओं से सबसे ये कहना चाहूंगी कि दूरबीन वाला ऑपरेशन कराएं। ये दूरबीन वाला ऑपरेशन जो है इसमें चीरा नहीं लग रहा है, टाका नहीं लग रहा है, इंजेक्शन नहीं लग रहा है, आप उसी दिन अपने घर चले जा रहे हैं। इसमें एक एक दो दो महीने के जो पहले परहेज होते थे वो कुछ परहेज नहीं है, आप अपना 90% काम दूसरे दिन से कर सकते हैं, इसलिए आप अपने तीसरे दिन से आप अपने ऑफिस जा सकते हैं, टहल सकते हैं और घर के भी सारे काम कर सकते हैं, खाने पीने में भी कोई परहेज नहीं है। तो इसलिए दूरबीन वाला ऑपरेशन जो है वो बहुत बेहतर है चीरे वाले ऑपरेशन से। दूरबीन वाला ऑपरेशन कराएं, अपनी रोशनी को अच्छे से वापस पाएं और खूब अपना जिंदगी को स्वस्थ रखें।
1: फोकस नेत्रालय में जो सुविधाएं हैं वो हमारे श्रोताओं को कुछ बता दीजिए खास खास।
0: फोकस नेत्रालय में मोतियाबिंद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। ये अपने रोहिलखंड मंडल में पहली ऐसी मशीन है जो कि आंख की बनावट की जांच करती है। हमारे पास हर तरीके के लेंस हैं। लेंस की शुरुआत आप जो है वो कम सस्ते भी होते हैं और महंगे भी होते हैं, तो अक्सर ये सवाल उठता है कि हमें कौन सा लेंस पढ़वाएं, कि हम सस्ता वाला पढ़वाएं, हम महंगा वाला पढ़वाएं। तो मैं सभी श्रोताओं से ये कहना चाहूंगी कि लेंस सस्ता हो या महंगा हो, लेंस महंगे लेंस में ज़्यादा रोशनी नहीं होती, रोशनी सभी लेंस में बराबर होती है, लेकिन कौन सी आंख में कौन सा लेंस पड़ना है, उचित लेंस क्या है, ये जानना जरूरी रहता है। अगर हम आंख में उचित लेंस डालेंगे तब रोशनी पूरी बनकर आएगी, बजाय कि महंगे लेंस डालने से ज्यादा रोशनी नहीं आएगी। ये नहीं होता है कि आप ज्यादा महंगा लेंस डलवा लेंगे तो आपकी आंख में ज्यादा रोशनी आएगी। तो इसलिए मैं ये कहूंगी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोहिलखंड मंडल में एक ही इकलौती मशीन है, इस मशीन से पहले आंख की जांच कराएं, उस जांच में इस बात को समझें कि आपकी आंख में कौन सा लेंस उचित है। कई कई लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमें नहीं पता, आप जो सा डाल दीजिए, आपको जो सा भी लेंस डालना है। तो मैं कहूंगी क्यों ना समझें, आप समझिए पहले इस बात को। आप बाजार जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि आप टमाटर भी खरीदेंगे तो आप देखेंगे ना कि कोई ऐसा तो टमाटर हमारे थैले में नहीं आ गया जो सड़ तो नहीं गया, या आप कपड़ा भी खरीदने जाते हैं तो देखते हैं ना कि कपड़े की क्वालिटी किस तरीके से है, छूकर देखते हैं कपड़ा। तो अपना लेंस भी आप खुद चुनेंगे, अपनी रोशनी भी आप आंख में खुद चुनिए। आप आइए, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेस्ट कराइए, आप जानिए कि आपकी आंख के लिए क्या उचित है, और उसके बाद आप अपना लेंस और अपनी रोशनी खुद चुनिए। तो अपने अस्पताल में इस तरीके की मशीन है, ये आप जो हैं क्या कहते हैं जरूर टेस्ट कराएं, इस मशीन से अपने आंख के लिए उचित लेंस के बारे में समझें।
1: फोकस नेत्रालय बरेली में हमने बात की श्री राम कुमार जी से, जो कि आंवला से आए, जिन्होंने दूसरी आंख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया।
2: आंवला से राम कुमार, ये हमने दूसरी आंख बनवाई है, इससे पहले भी बनवाई थी हमने 7 नवंबर के लिए, हमारी सक्सेसफुल है, बिल्कुल सही दिखाई देता है। थोड़ा इससे देर में बिना किसी दवा बिना किसी इंजेक्शन के आंख सही से बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो नई तकनीकी लाके, और इस तरह से नहीं तो घंटों बताते थे कि पहले रहते थे, भर्ती करते थे, दो दो दिन रहते थे, इलाज चलता था, कुछ नहीं, 5-10 मिनट में ऑपरेशन हुआ, फ्री कर दिया।

0: संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: मोबाइल कम से कम देखना चाहिए, जितना जरूरी हो। मोबाइल आज की आधुनिक चीज है, उससे बचा तो नहीं जा सकता
2: जी,
1: लेकिन जितना आवश्यक हो उतना ही देखें।
0: डॉक्टर साहब, फोकस नेत्रालय सभी लोग जानते हैं और परिचित भी हैं, लेकिन कुछ जानना चाहेंगे हमारे श्रोता कि आयुष्मान है आपके यहाँ और क्या क्या सुविधा के अंतर्गत इलाज किया जाता है आंखों का?
3: फोकस में कैशलेस सर्विसेज हैं और इन कैशलेस सर्विसेज में आयुष्मान आता है, CAPF आता है, CGHS आता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाली स्कीम है ये भी आती है, और इसके अलावा TPA में जितने भी स्टार हेल्थ पॉलिसी है या क्या कहते हैं पैरामाउंट है, HDFC अर्गो है, मतलब ICICI लॉम्बार्ड है, मतलब जितने भी हेल्थ कार्ड होते हैं आपके ये सब ही वैलिड हैं, तो आप कैशलेस सर्जरी भी अपनी करा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने कैशलेस की बात की, लेकिन जो चश्मे की बात अगर करें तो आप क्या कहेंगी, चश्मा कैसे लगाना चाहिए, कौन सा लगाना चाहिए जी?
4: इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा ये चश्मा ना लगाना पड़े। क्या चश्मा नहीं लगाने से आंख में चश्मे का नंबर बढ़ेगा, या फिर अगर हम चश्मा लगा लेंगे तो क्या यह नंबर स्टेबल रहेगा? इन सवालों को लेकर ही मैं अवेयरनेस कुछ क्रिएट करना चाहती हूँ। आपको बताना चाहती हूँ इस प्रॉब्लम का सलूशन दो कैटेगरीज में। पहला कैटेगरी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 12 साल से कम में उनका चश्मा लगा है पहली बार, और वो बच्चे जिनको चश्मे का नंबर 12 साल के बाद लग रहा है। तो 12 साल से कम अगर आपका बच्चा है और अभी अभी हमको चश्मा लगा है, तो चश्मा लगाना कंपलसरी है। कंपलसरी इसलिए है क्योंकि अगर हम चश्मा नहीं लगाएंगे तो चश्मे का नंबर तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ में आपको एम्ब्लायोपिया होने का रिस्क है। बच्चे को एम्ब्लायोपिया हो सकता है। ये एम्ब्लायोपिया होता क्या है? एम्ब्लायोपिया मतलब कि जैसे मैंने अगर मैं चश्मा उतार लूंगी नहीं धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं चश्मा लगा लेती हूँ क्योंकि मैंने चश्मा बचपन से ही लगाया है, सही समय पे लगा लिया, इसलिए मुझे अब बिल्कुल क्लियर दिखता है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन की विजन होती है। तो लेकिन एम्ब्लायोपिया में चश्मा लगाने पर भी हमारे को क्लियर नहीं दिखता है। तो इससे को बचाने के लिए कि बड़े होकर भी हमारे को चश्मे का नंबर से क्लियर दिखे, इसके लिए हमें ये बहुत जरूरी है कि हम बचपन में ही चश्मे का नंबर लगाएं। सब लोग कहते हैं अरे अभी तो 2 ही साल का बच्चा है, अभी तो 5 साल का बच्चा है, अभी ये कैसे लगाएगा? लेकिन आपको ये बात समझनी जरूरी है कि चश्मे का नंबर लगाने से आंख के पर्दे पे रोशनी क्लियर इमेज बनेगी, मतलब अगर वो आपको भी देख रहा है तो आपकी वो इमेज उसके पर्दे पे धुंधली नहीं पड़ेगी, वो इमेज क्लियर दिखाई देगी और वो पर्दा पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा और एम्ब्लायोपिया नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपका बच्चा 12 साल से कम है तो चश्मा लगाना कंपलसरी है। चश्मे का नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये बहुत सारे और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि बच्चे का खान पीन कैसा है, बच्चे कितना मोबाइल TV देख रहा है, बच्चा आउटडोर एक्टिविटीज कर रहा है कि नहीं। इसी तरीके से अगर बच्चे को पहली बार चश्मे का नंबर 12 साल के बाद लगा है तो आंख तो डेवलप हो गई है, एम्ब्लायोपिया हुआ है या नहीं हुआ है ये बात अलग है, लेकिन चश्मे का नंबर अगर कभी कभी हम नहीं लगाएंगे तो चलेगा। उससे सिर्फ हेडेक हो सकता है, आंखों पे जोर पड़ सकता है, आई स्ट्रेन हो सकता है, लेकिन एम्ब्लायोपिया का रिस्क नहीं रहेगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका बच्चा किस कैटेगरी में है और चश्मा लगाना कंपलसरी है हर बच्चे के लिए जिसको चश्मा का नंबर आया है, वरना आंख की बनावट सही होने के बावजूद, चश्मा लगाने के बावजूद हम जो है इस दुनिया को धुंधली ही देख पाएंगे, एम्ब्लायोपिया डेवलप हो जाएगा और हमें हमेशा धुंधलेपन में ही जीना पड़ेगा। सो फॉलो अस फ्रेंड्स टू नो मोर कि हम क्या करें कि हमारी आंखों की सेहत अच्छी रहे, क्या क्या आई की एक्सरसाइजेस हम लोग कर सकते हैं, एंड मेनी मोर एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग टू योर आई केयर। थैंक यू फ्रेंड्स।
0: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। दोस्तों, चलते चलते एक बात याद आती है कि प्रतिदिन सुप्रभात करने का यही एक आशय है कि मुलाकात चाहे जब भी हो, अपनेपन का एहसास प्रतिदिन महसूस होता है ना। और अब रविंद्र कुमार मिश्र को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार।

0: नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी और दिन। दोस्तों, मित्रों, बहनों, भाइयों, ये कार्यक्रम जान है तो जहान है आप सुनते हैं माह के प्रत्येक सोमवार और शनिवार को समय 9:30 पर रविंद्र मिश्रा के साथ।
1: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जान है तो जहान है रविंद्र मिश्रा के साथ।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम जाने तो जहान है।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। 10 बज चुके हैं हमारे शूट की घड़ी में, और श्रोताओं बता दें आपको भाई, आकाशवाणी 8 जून यानी आज अपने 90 वर्ष, गौरवशाली 90 वर्ष पूरे कर रहा है। और इसी उपलक्ष में कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने लेकर आते हैं हम हर रोज सुबह 10 बजे से और शाम को 4 बजे से। तो सुनते हैं ये कुछ श्रोताओं के संदेश।
1: मैं वीना सिन्हा, मंडल रेल प्रबंधक, इज्जत नगर मंडल, पूर्वोत्तर रेलवे। आज आकाशवाणी के माध्यम से ही आकाशवाणी के अधिकारी और कर्मचारीगण को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर सभी को बधाई देती हूं और समाज में आपके योगदान को भी सराहती हूं।
2: पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। आनंद गौतम,

आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने पर मैं समस्त आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। 9 दशकों से आकाशवाणी ने अपनी विश्वसनीय, निष्पक्ष और जनोन्मुखी प्रसारण सेवा के माध्यम से देश की एकता, संस्कृति, साहित्य, संगीत और जन जागरण को सशक्त बनाने में अद्वितीय योगदान दिया है। यह केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं, आशाओं और विश्वास की आवाज रही है। आकाशवाणी बरेली से प्रिय श्री मिथिलेश श्रीवास्तव जी ने 90 वर्ष पूरे होने पर मुझे अपने उद्गार व्यक्त करने का अवसर दिया, मैं आभारी हूँ। इसी तारतम्य में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं आकाशवाणी से वर्ष 1986 से जुड़ा रहा हूँ। आकाशवाणी के प्रति मेरा समर्पण ऐसा है कि आज भी मैं नियमित श्रोता के साथ साथ आकाशवाणी में काव्य पाठ के लिए जाता हूँ। अपने प्रदेश की बरेली, रामपुर, नजीमाबाद, प्रयागराज, फैजाबाद के अतिरिक्त देवभूमि उत्तराखंड की आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से काव्य पाठ करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आकाशवाणी रामपुर से मेरा पहला काव्य पाठ 25 फरवरी 1986 को हुआ था। मुझे स्मरण है कि मैंने पेन शीर्षक से एक हास्य व्यंग की कविता प्रस्तुत की थी जो कि मंच पर मील का पत्थर साबित हुई। उसी कविता की एक वीडियो क्लिपिंग भेज रहा हूं। अंत में इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देना चाहता हूं कि आने वाले वर्षों में आकाशवाणी अपनी समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए नवीन तकनीकों और जनसेवा के उच्च आदर्शों के साथ सफलता के नए आयाम स्थापित करे। पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। आनंद गौतम।

श्रोताओं, आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे कर रहा है। भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक है, जो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन साथ माध्यम से देश की सेवा करते हुए इसने आकाशवाणी ने अपने गौरवमयी इतिहास के 90 से अधिक वर्ष पूरे कर लिए हैं।

आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्थात सबके हित के लिए सबके सुख के लिए। आकाशवाणी ने हमेशा इसी सिद्धांत पर काम किया जहां दूर दराज के गांवों तक सूचना पहुंचाना इसका मुख्य लक्ष्य रहा है। आकाशवाणी की प्रसिद्ध और सुकून देने वाली सीजर ट्यून धुन को 1936 में चेक संगीतकार वाल्टर कॉफमैन ने तैयार किया था, जो उस समय AIR के पश्चिमी संगीत विभाग के निदेशक थे। इस धुन में तानपुरा और वायलिन का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया। श्रोताओं लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं। फिल्म का नाम है आनंद आश्रम। इसे गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। बोल हैं दीवर के, संगीत है श्यामल मित्र का, और पसंद आप सभी के आप हैं। मोताला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलकर, रतनमाला आरती गौरी और ओमकार सुरलकर। ये है पाकोड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद। बोगड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। आप हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद नब्बासी, मोहम्मद नियत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सोहान अब्बासी, अजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार। आप हैं मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकाश मलिक और साथ में है माही मलिक। और ये कमेंट हम तक पहुंचा है, साथी हमारे हैं, ये हैं अमरावती से हैं साइदा साइद भाई, सुफियान, अनस, आयजा, अल्फिया, सरोज चौक से हैं अमरावती से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीबन बेगम, आयशा खान और साथ में हैं हादिया खान।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, और अब सुनवाने जा रहे हैं आपको फिल्म का नाम है हीरा पन्ना। इसे गाया है लता मंगेशकर, किशोर कुमार ने, बोल हैं आनंद बख्शी का, संगीत है आर डी बर्मन साहब का, और पसंद आप सभी की है। आप हैं पटना टॉकी जी नेपाल एमपी से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलवेन शाह, और साथ में हैं राजेंद्र जी शाह। और आप हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर यूपी से, मुकेश कश्यप, नीलम कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। आप हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया, एवरग्रीन रेडियो क्लब्स गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हैं, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजत, मेघा मस्कीन और साथ में हैं चैतन्य मस्कीन। आप हैं अरविंद कुमार, गुड़े कुमारी, भाव्य कुमारी, निवेश कुमार, नीति कुमारी, लिख रहे हैं बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से, और गांव बांडी वाला फाजिलका पंजाब से हैं ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, साथ में हैं रजत और बेबी गर्मा बगड़िया। शाहजीनगर देगलूर से, नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुनैना भाकरे सुकन्या और सविता भाकरे। ये हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरबाल, कमला रानी, गीतिका खोरबाल और भानु प्रकाश। आप हैं गिरगांव महाराष्ट्र से, निदानंद नादरे, मारुतराव पांचाल, डॉक्टर अब्दुद

ये हैं अभिजुत कुमार दीक्षित, मडियात बरेली सिटी से, और आप हैं एमएलबी रोड कॉलेज से सुरेश खुराना, बप्पी किरण खुराना, लव्या आरव खुराना और एस के पप्पी, फैसल इमाम हैं, मोहम्मद अफजल हैं, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण हमें लिख रहे हैं, इन्होंने अपना पता नहीं लिखा है, और आप हैं सादो शहर से, राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ जी साथ में हैं, आप हैं साथी हमारे, कृष्णा पार दिल्ली से सुखविंदर सिंह चौड़ा, सीटी दीवाना, और ये हैं ग्राम हिंगड़ी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती राजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ हमें ये कमेंट कर रहे हैं, और आप हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा और स्वीटी छावड़ा, आप हैं बीजनबराबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव और यूनुस खान, सोफिया खान, गांव फरासी जिला हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी, ग्राम वीरपुर पोस्ट बिलसड़ तहसील अलीगंज जिला एटा से हैं मिस्त्री विपिन कुमार शाक्य, सपना शाक्य, रविंद शाक्य, राजेश शाक्य, रमेश चंद्र शाक्य, राज मिस्त्री रमेश चंद्र शाक्य, राजीव जी हैं, प्रदीप शाक्य, रंजीत सिद्धार्थ कुमारी श्वेता शाक्य हैं, कुमारी संगमित्रा शाक्य हैं, प्रज्ञा शाक्य, प्रतिज्ञा शाक्य इनके माता पिता, आप हैं उन्हेल जिला उज्जैन एमपी से हमें लिख रहे हैं भीरूलाल बागतरिया, धाकड़, भोला बागतरिया, प्रवीण बागतरिया, रियांश और प्रतीक बागतरिया, कोहका भिलाई से हैं उत्तम सिंह जंगेल, मोर जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल, धमधमा ग्राम सुरकला से हैं अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल, आप हैं दुरा कॉलोनी हांसी से राजीव मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर यूपी से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, आप बहेड़ी से हैं अंजुम भाई, खालदा बेगम, ये हैं कुंडलेश्वर वार्ड खांडवा से योगेश गुजराती और अभय गुजराती, आप हैं गांव गढ़ी कोठा जिला पंचकुला हरियाणा से सरजुल अंसारी, नसीबन बेगम, सानिया अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन, अक्सा अंसारी, आयशा अंसारी और उमर अंसारी साथ में हैं, समीना अंसारी, ज्योतिनगर नवाखा राजस्थान से हैं पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का, जलालाबाद बेस से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया निशानी और निमित्त आहूजा का ये कमेंट मिला है हमें और आप हमें लिख रहे हैं साथी हमारे, तो सुनते हैं पहले ये गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम आपकी पसंद में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। अब सुनवाने जा रहे हैं आपको फिल्म का नाम है साजन। इसे गाया है एसपी बालासुब्रमण्यम ने, संगीत है नदीप श्रवण का और बोल है फैज अनवर के। पसंद आप सभी की। आप हैं जिला जालना मराठवाड़ा से हैं सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीज मसरत, सैयद नोयान और सैयद निजामुद्दीन। दोस्ती जोड़ा अष्टी से हैं दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते। आप हैं आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से हैं पवन गौड़, सुयश गौड़, आशीष गौड़, तन्मय और अपूर्वा। आप ये पसंद भेज रहे हैं अपनी हमें मोहल्ला मीरा सराय बदायूं से रवि मौर्य, अनीता मौर्य, मोहित, सोनू, प्रीति, राखी, शिवानी, अंजलि, अंशिका, डॉली मौर्य, नीलू, राधिका, डब्बू, माही, लता प्रसाद और साथ में गुलशन मौर्य, इनकी पूरा परिवार ये भेज रहा है। और आप हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग क्लियर तनुजा देवांगन और शांत में हैं ईशांत देवांगन, लिख रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। ये पसंद मिली है हमें गंजुंडवारा से मोहम्मद कली मंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी और मोहम्मद उस्मान अंसारी की। पुराना तालाब डुमराव से बलीउल्ला अंसारी, उस्मान अंसारी और शबनम बानो। जेल रोड बक्सर से हैं राज एच डी अंसारी, साथ में हैं फातिमा नाज और दिल्ली से हैं सोनम और डॉक्टर अदीबा। ये हैं ग्राम हिंगड़ी रोड जिला रतनमाल एम पी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजू बाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। राजधानी रायपुर से हैं नीलू मेघ नीलो, डॉक्टर वंदना कुमार और विट्टू कुमार। ये है धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निशा सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। खोजा उत्तर प्रदेश से लिखने वाले साथी हमारे हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। आप हैं चर डोगरी पपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, इंद्राणी साहू, माया साहू। और आप हैं कदमा जमशेदपुर से चिन्मय महतो, रेखा महतो और शिवांश मंडल। पतरोड़ा से हैं मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकु जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल। आप हैं रावर करनाल से ज्ञान कुमार शर्मा, सोमनाथ कालिया। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से हैं जयराम खोरबाल, सचिन खोरबाल, अमन खोरबाल, दीपांशु खोरबाल और पूरा खोरबाल परिवार। गांव भोजपुर तगर सहारनपुर से हैं मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राणा प्रधान, राहत अली और वकील अहमद। मेरठ से हैं दिग्दर्शन।

और कविता गौड़। आप हैं बाबा कुटीर रैगड़ से हैं शिव कुमार चौहान, सुकंद चौहान, रितेश कुमार, रशोई चौहान और उत्कर्ष चौहान। ये हैं गांव नंद कुम, ये हैं साथी हमारे। इनका पता है ग्राम चौरंदा बार नवापारा अभ्यारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले साथी हमारे हैं नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। और ये हम तक पसंद पहुंची है गली शिकलापुर बरेली, मौर्य मंदिर रतन से हैं रतन लाल मौर्य, मुकेश मौर्य, प्रिंस मौर्य, प्रांशी मौर्य, पुष्पा मौर्य, गौरव चंद्र प्रकाश मौर्य, पूरा मौर्य परिवार ये अपनी पसंद भेज रहा है। आप हैं कटरा चांद खां पुराना शहर बरेली से। लिखने वाले साथी हैं मानवी मौर्य, दृष्टि मौर्य, किरण मौर्य और जमुना प्रसाद मौर्य। आप हैं पंचकूला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवाना, लव दीवाना, राधे भाविक ढींगरा, दिल से शुक्रिया ये कर रहे हैं दादा, धन्यवाद आपका भी हमें कमेंट करने के लिए। आप हैं मौलागढ़ ने बस्ती भोजपुर जिला बरेली से है तरन अंसारी, तरन अंसारी भाई, अजरुद्दीन मोहम्मद हसन अंसारी। और ये हैं राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना ताई गोडाने, हीरामन गोडशेंडे, प्रणयशित प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने। ग्राम लसूडिया पता है इनका है, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, एमपी, गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। ग्राम पोस्ट है गौना कुसमार थाना सौजना तहसील मेहरौनी से हैं, जिला है ललितपुर, झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, श्रीमती देवी नामदेव, रान देवी नामदेव, ब्रजेश कुमारी, अखिलेश कुमार, लखन लाल चौहाना और आकाश जी हैं रानी परी, सुरभि पायल और पूरा नामदेव परिवार। धमतरी से हैं रामचंद्र मखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता मखीजा, बेबी स्वाति मखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा और पूजा हैं छुटकी है शरद कुमार डोडवानी, पूरा मुखीजा परिवार हमें ये अपनी पसंद भेज रहा है, धन्यवाद आप सभी का। आप हैं आलखना मंदिर के सामने से हैं बरेली से भाई पिछला गंगवार जी हैं, गुड्डी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानंद देव, इला देवी हैं, बर्फा देवी, सुनील यादव, संजय अग्रवाल, अश्विनी कुमार मौर्य, मास्टर विनोद दीक्षित और राज। साथ में हैं महावीर कश्यप, रमेश चंद सैनी, रोबिन भाई कास और ये सब पूरा दोस्तों की मित्र मंडली है। तो सुनते हैं ये गीत।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। आकाशवाणी बरेली हरदम आपके साथ। और अब सुनवाने जा रहे हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत। इसे गाया है किशोर कुमार ने, बोल है नीर के संगीत है SD वर्मन साहब का, और पसंद आप सभी की है। आप हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। ये हैं हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास जितेंद्र ऋषि और राहुल। गाड़ी खाना चाईवासा से हैं जीवन विश्वकर्मा और मंजू विश्वकर्मा। लाल कुर्ती लुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा और युवान और RK राजा। चमनपुरा उदयपुर से हैं नजीब खान, साहिबा खानम, जब्बार मोहम्मद और फरीदा बानो। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर से हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। ये हैं गांव खोकरा वाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और सगुन बारासा। कोटवा, नारायणपुर, बापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवाता जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। भोपाल राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार। आप हैं मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन शाह, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक, लोबना और यश मंसूरी। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहरते, अंजलि करवा, बाला साहेब कारवा, राम निवास अग्रवाल, धनंजय कुल्टे और PV कुल्थे। आप हैं

प्रियांश आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और पृथ्व सिंह। माल्यान साधना मेरठ से हैं, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और जीवीएम जैन। बडिंग खेड़ा से पंजाब से हैं मिंटू टोमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। आप हैं जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बाय हिमांश। आप हैं अशोकपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। ग्राम ढकिया केसरपुर बास खेड़ा से, जिला पीलीभीत यूपी से ए के राजपूत, अल कुमार राजपूत, कैलाश राजपूत, पप्पू भाई, मदन लाल, सत्यपाल वर्मा, भगवान दास राजपूत, रवि कुमार, श्रीपाल यादव, मनोज कुमार सक्सेना और छोटी सी गुड़िया चंचल कुमारी। ग्राम पारवाला भितरई, जिला बदायूं से हैं सुपाली सिंह राजपूत, पाल सिंह राजपूत, शिवम कुमार राजपूत, लेखराज वर्मा, रिंकू वर्मा, और साथ में हैं रानी वर्मा और निर्मल वर्मा। आप हैं ग्राम धुरा बांदा भाटापारा से हैं प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू और युवराज साहू। मौर्य बस्ती सुखरा से गोपाल, रामगोपाल मौर्य, सुनीता मौर्य, कृष्णा पायल और मानसी मौर्य। और ये हैं हॉल नाले के पास से सत्यप्रकाश प्रजापति और मन्नू खान। आप हैं सिद्धार्थ नगर दरियापुर भाभी से मीनानी एले, नवदीप एले, विश्वदीप एले और अशोक के साथ में हैं पूरा परिवार इनका। और आप हमें पसंद भेज रहे हैं अपनी श्री काशी विश्वनाथ धाम से वाराणसी से आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनीता, विनायक सिंह, मोहनी, मोहित सिंह, प्यारी कुकुरानी हैं। और ग्राम पंचायत बटना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद अमित वर्मा, रेखा पात कश्यप। और ये हैं अंडार नांद घाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी वर्मा, भूपेश वर्मा और दीपेश वर्मा। गांव जाखोज से हैं शमूदल खड्डक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खड्डक और सभी साथी इनके। पीपरपाला पालचवा मुंगेली छत्तीसगढ़ से हैं उत्तर दिवाकर, परमेश्वरी, भानुप्रिया, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर। जलालपुरा जिला सहारनपुर से उत्तर प्रदेश से हैं श्रवण का, ये साथी माफ कीजिए, मुनेश देवी प्रजापति, लविश, आर्यन, शिवम और श्रवण कुमार प्रजापति। तिगड़ी कश्मा सीकर से हैं शाहरुख खान, हाशिम, अरहम बाबू, किशबाबू नूर और सभी साथी इनके। ये हैं कुलस्वामिनी रेडियो क्लब से श्रीरामपुर भोकर से हैं महाराष्ट्र से हरिभाव विडभे, अनिकेतन सोनवड़े, शिवांगी श्रावण, सौ अंता विडवे। आप हैं सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। और गांव है नंगखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से हैं बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश और राहुल शर्मा। मलोड पंजाब से हैं भाई राश शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, जौरव शर्मा, शना शर्मा और मैंडी शर्मा। सनावत से शेख मुसा मोहिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुडाना। ये हैं ग्राम पंचायत बागन तहसील फरीदपुर से पानी टंकी के पास से हैं मास्टर अफीज सुनील बाबू, शिवम सिंह, सर्वेश और अवमीत, भगवान देई, स्वाति सिंह, तान्य और सभी मित्रगण के। ये हैं राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजकुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। मऊ से ही हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीयूष स्वर्णकार। नेवासा महाराष्ट्र से हैं इशारा कुटिल, नंदा शंकर, रामदास शंकर, जुबेदा शेख, कोमल पटोले, स्वाति गोरे, अमोद शकर, आदर्श प्रभात, आदर्श आदेश जी और चांगदेव भैया हैं नंदा के साथी हैं, गौरव कवाड़े, सुशांत रोडे। कंवर कॉलोनी बड़वाहा से हैं, जिला खरगोन से एमपी से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली। और ये हैं इटर रोड इंडवारा से मुशीर अहमद कुरैशी और हसीन अहमद कुरैशी। ये हैं सलूजा, आप लिख रहे हैं हमें प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा और प्रथम सलूजा, जनकपुरी नई दिल्ली से हमें लिख रहे हैं। और आप हैं भाटापारा से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरविंदर सिंह चावला, वाणी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, बेबी जोशी और अंशिका जोशी। कुमार अंकिता जोशी हैं, अनूप कुमार हैं, अनूपपुर एमपी से हैं श्रीमती जयवंती केवल जी, खंडवा एमपी से हैं अब्दुल गफ्फार डावर साहब। तो आप सभी के लिए ये गीत सुनवाने जा रहे हैं और साथ में और कुछ नाम शामिल कर रहे हैं। आप हैं साथी हमारे

निकट बिजली घर कस्बा बेगन से हैं भाई कलू मिस्त्री मोहम्मद सुनई, मोहम्मद फ़हीम, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नसीम, अनाबिया फ़ातिमा, बाबर अजीम और हमज़ा। ये हैं आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, यशपाल दिवाकर, ओमेंद पुरी गोस्वामी, मुकेश गिरी, राजीव पुरी गोस्वामी, रामप्रक सवरिया से हैं, मीरगंज से राम कुमार वर्मा, भगवान दास, रविंद्र वर्मा, तेज प्रकाश वर्मा, सोमपाल वर्मा, शशि कुमार वर्मा, साथ में हैं रथुलाल और ननकी सिंह वर्मा, साथ में हैं विवेक और हिमांशी वर्मा। तो सुनते हैं ये गीत।

आप सुनवाने जा रहे हैं आपको, फिल्म का नाम है कब तक चुप रहे हैं बोल हैं, समीर के संगीत है, बप्पी लहरी का उसे गाया है मोहम्मद अजीज ने, पसंद आप सभी के आप हैं। रामपुर रोड कलछावनी से प्रदीप कुमार, पाल नमन, पिंकी रिंकी और प्रिया हैं, अलका हैं, मुस्कान हैं, गरीब भाई श्री राम राठौर जी हैं और परिवार के सभी लोग हैं। आप हैं नई बस्ती दोबारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजुक महास

में हैं तौफीस हाशमी, तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। गुरमीत सिंह मीता हैं साउथ दिल्ली से, और ये हैं साथी ग्राम मझुआ गंगापुर भोजी बरेली से हैं हसमुख जी, हसमान समा सिनाया, शानूर, पलक नूर, ताज, मोहम्मद अन्ना, अवान नूर और गुप्ता जी। ये हैं मणियाहू जौनपुर से हैं इरशाद हसन अंसारी, कामरान इरशाद, अरहान अरशाद, नवेद अरशाद और साथ में अजरा तबस्सुम। रायपुर नई जिला बनारस से हैं मास्टर माफ कीजिए अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफिया परवीन। और ये राजकोट गुजरात से रवि रश्मि भरत कुमार आप हैं। गंगानगर राजस्थान से सरबजीत सिंह जोशन, सरबजीत सिंह कौर जोशन और गुरमन्नत। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हैं आदर्श पाल सिंह जोशन और वैंकूवर कनाडा से रोबिन सिंह जोशन। आप हैं जी के परमार गुजरात का तीर्थ नगर से हैं। और आप हैं साथी हमारे योगेश सारवा, साथ में अंजलि रोशनी शारवा, योगेश शारवा, आशा शारवा और नीरज नीलेश। मालवा रेडियो संघ से हैं गुलबालोत तहसील आलोट जिला रतनमाल एमपी से हैं कुंवर कृपाल सिंह, विक्रम सिंह, नरेंद्र सिंह, समस्त परिवार है इनका। और आप हमें पसंद भेज रहे हैं ये हैं साथी हमारे रणधीर गुप्ता और ओखला संगम बिहार से हैं साथी इनके बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदर गुप्ता। ये हैं नथाना पंजाब से हरिशिंदर छिंदा, जसवी जस्सी और सीता और गीता आप हमें लिख रहे हैं। संबलपुर कांकेर से फागू राम यादव, ज्योति यादव और यशस्वी यादव। ये हैं दिलावर खान, हसीना बानो, अलजा नायाब और लड्डू। श्रोता हैं रघुवीर नगर से। और आप हैं धर्मंतरी नगर जलपुर एमपी से अशोक सिंह और बिदा सिंह है, पूरा परिवार है। जिला अम्बागढ़ चौकी से हैं रिजवान खान, आयशा सबिया और अनस, साथ में है रेहान। और ये हैं दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से वसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुषी गुप्ता, नन्हे मुन्ने अंबिका बेबी और अभय कुमार सनातनी, साथ में हैं शिवानी, प्रियंका, मुन्नी देवी। ये हैं यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, कैलेश, शैलेश भाई, प्रतीक्षा सप्रिल और रक्षिता लोखंडे। आप हैं बनवाई लाल कुशभा लिख रहे हैं चरौरा जिला फैजाबाद उत्तर प्रदेश, साथ में है मजलतार श्राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुशवाहा और साथ में है रामानंद कुशवाहा और सभी साथी इनके। ये हमें पत्र मिला है नागचू रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार खुशन नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटोरे। बाटापारा से हैं सोन जोशी और पायल जोशी। ये हैं सलार पहलगांव से कश्मीर से परजादा मिराजुद्दीन और आप हैं महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, प्रगेश संगई, प्रत्येक संगई और पूरा संगई परिवार। और मामूलबाड़ी महाराष्ट्र से हैं सोपान तावडे, बसंतराव भोजने, पी एस नोहानकर, तुषार करांगले। ग्राम चारभाड़ा जिला राजनांदगांव से हैं नरेंद्र मिश्राम, मधु मिश्राम और सत्यार्थ और ईवी। और ये हैं बेरडी राणा जी लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से, जय लाम से, हर्षता लाम से, ये हमें पसंद भेज रहे हैं अपनी। आप हैं नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, प्रशांत, प्रियम और भामिका, साथ में हैं बाणी थांदी। लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां और सभी परिवार के लोग। और जिला खरगोन सनावद एमपी से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आशी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। आप हैं पिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, मयंक भाई और साथ में रजत भाटिया लग रहे हैं हमें जय हरियाणा से। और ये हैं उदयपुर राजस्थान से बाबू भाई, भारती देवी, रमेश नचानी, विनीत नचानी और मिथिल नचानी। और दत्तरी भाटापारा से हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नखला वर्मा। और ये हैं ग्राम करली से पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लाल मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मजिद अंसारी, अबार भाई हैं अल्ताफ हुसैन अंसारी, आशिक हुसैन और मुन्ना भाई।
नए मजदीक अली से हैं इंतजार भाई, बेडी हिबजा, नतु चाचा, अख्तर खंसारी और नन्हे भाई।

शाकिर भाई जाहिर अंसारी। आप हैं पीतमपुरा न्यू दिल्ली से विवेक कुमार गौड़, स्वाति गौड़, रानी गौड़ और उमेश गौड़, पूरा गौड़ परिवार हमें ये पसंद भेज रहा है अपनी। और आप हैं राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमता हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। कटरा चंदखां से हैं, मोरबंदर के पास से अनुखलाल मौर्य, सुंदरदेवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, बेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही, स्वाति मौर्य। आप हैं गणेशबाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुताश और सारिका तुषार, चेतन तुषार और सभी साथी हमें पसंद भेज रहे हैं। आप हैं फाइल का पंजाब से सुभाष गोदारा, बेमला गोदारा और इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। और आप हैं गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा, अलका मिड्डा। शाही मार्केट से हैं जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, अराफा चौधरी और आदिब चौधरी, साथ में कादिर चौधरी। रानी गंज बंगाल से रवि और इंदर। कस्बा कलोडिया से हैं रावण से प्रेमपाल, राजेंद्र भाई, धर्मवीर, धचिन, अनुज गंगवार, अनुमल गंगवार, कमलेश गंगवार, तुलाराम, अंकुश मौर्य, राजू कारीगर, चंद्रपाल कारीगर, उल्पस्त शर्मा, बबलू भाई, वेदपाल, संजीव और पूरा परिवार उनका हमें लिख रहा है। ये हैं पलेरा टिकमगढ़ एमपी से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। और आप हमें लिख रहे हैं ये पसंद अपनी। एयरपोर्ट के पास से हैं इंदौर से नारायण भाव खड़ से, ललिता अशरानी खंड से, संजना परी खड़ से, गणेश खड़ से, वैष्णवी, कार्तिक। और ये हैं पसंद हैं सिंह की, कहाँ से भेज रहे हैं हमें, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, पता है लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। और ये हैं विश्वविद्यालय सागर एमपी से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी गौहर, साथ में है जयपाल यादव। आप हैं पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रिश्ता खुराना, केशु खुराना और तुलसी मस्कीन। डाबकी रोड केला से सुजला देवी मधुरकर, चंद्रनाथ मधुरकर, कुमार गौरव मधुरकर। और ये है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी डुंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। आप हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, जागेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, राधना, रोनी यादव, चंद्रेश गोहर, सुनील पाठक। और ये हैं रोज जनकपुर से, सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोज डिकेस्टो, पल डिकेस्टो और बिलिस्ट डिकेस्टो। और आप लिख रहे हैं गुजरात धाम गांधीनगर से जी के परमार। ये हैं छिंदवाड़ा भेड़ी से नाना जी लाम से, मीरा लाम से, लेजत लाम से, जय लाम से, हर्षता लाम से और सभी साथी इनके। और आप हैं छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, इनका नाम पढ़ चुके हैं, कृपया अगर आप दोबारा कमेंट ना करें। ये हैं पीएस यादव अजन और ट्विटर पर सोली बताइयों से। आप हैं ये बिजनौर से नदीम बाकी, अदीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी और सभी साथी इनके। आप हैं इंदौर से कुमारी वंदना मराठा, दीपक चौधरी, स्वाति प्रज्ञा चौधरी, रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी और सभी साथी आपके। ये हैं उमेश कुमार गौड़, रानी गौड़, बुलंदशहर से हमें लिख रहे हैं। और आप हैं एमपी से विक्रम मालवीय और रचना मालवीय, कमलाबाई वनदेवी, आकाश माहेश्वरी, विनायक भाई। और ये साथी हमें लिख रहे हैं आप लोग दोबारा कमेंट मत भेजिए कृपया करके। तो सुनवाते हैं कार्यक्रम की ये अंतिम प्रस्तुति।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं सबरंग कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। आकाशवाणी बरेली हरदम आपके साथ। तो वही सुनते हैं ये गजल, स्वर है अलका याग्निक और हरिहरन का।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं सबरंग कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। आकाशवाणी बरेली हरदम आपके साथ। आइए सुनवाते हैं आपको ये गजल। स्वर है जगजीत सिंह और साथियों का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सब रंग आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, और अब आपको जोड़ रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। सुनवाते हैं आपको FM रेनबो कार्यक्रम।

0: आप कहेंगे आयुषी प्यारा सा गाना तो सुना दो, तो हम वो भी सुना देते हैं। ऐसी क्या बात है।
1: जनगणना 2027 में मकान एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: अब आप कहेंगे आयुषी गाना कह के कमर्शियल सुना दिया, लेकिन अब आपके लिए वाकई में आपका प्यारा सा गाना।

0: 11:34 और आपके साथ हूँ मैं आयुषी। संदेश आपके गीत हमारे सुन रहे हैं आप और ये सिलसिले बड़े प्यारे से हैं। और मैं तो हमेशा कहती हूँ भाई, इतने प्यारे प्यारे संदेश मिलते हैं और हर कोई हर एंगल से सोच रहा होता है और देश के इतने प्रांतों से हमारे पास फोन आते हैं, मेल आते हैं और सबके अलग अलग नजरिए। तो मुझे लगता है कि अगर वाकई में डायरी में ये नोट करते रहे ना तो हम सबकी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। देखते हमारे साथ लाइन पर कौन जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, किससे बात हो रही है?
1: जी मैं रजनी जी बोल रही हूँ।
0: रजनी, बड़ा प्यारा नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जी मैं भिंड जिले से बोल रही हूँ और आपका कार्यक्रम भी सुनती हूँ जो रजनी गंधा आता है रात को 10 बजे से, मेरे नाम से ही आता है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
1: 10 बजे से 12 बजे

0: नाम से ही आता है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
0: 10 बजे से 12 बजे तक पूरा।
1: अरे वाह, क्या बात है। तो पुराने गाने आपको बहुत अच्छे लगते हैं?
0: मुझे तो पुराने गाने अच्छे लगते हैं, और मैं आपके लिए गुजारिश करना चाहती हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत पुराने गाने आप दिन में भी बजा दिया करिए बीच बीच में।
1: नहीं, हम कोशिश तो करते हैं कि हर एरा के गाने बजाते रहें, तो इससे थोड़ी सी वैरायटी बनी रहती है ना। ठीक है, पर बिल्कुल आपकी बात हमने सुन ली है और कोशिश करेंगे।
0: हर प्रकार के श्रोता सुनते हैं, केवल नई जनरेशन
1: नहीं सुनते हैं, हर प्रकार के श्रोता सुनते हैं। हाँ जी, तो ये बताइए रजनी, संदेश क्या लाएं आप?
0: मैं संदेश ये देना चाहती हूँ कि जैसे जनरल डब्बे में आप सफर करते हैं, तो ये कई लोग मोबाइल चलाते रहते हैं इतना तेज, मतलब हमें सोना है पर वो सोने नहीं देते, तीन हर तरफ से ऊपर भी चल रहा है, ऊपर की सीटें भी मुझे चलाओ, मोबाइल नीचे भी चलाते हैं, हमें सोने में इतना डिस्टर्ब होता है, और वो चलाने वाले ये नहीं सोचते हैं कि दूसरे को क्या हो रहा है, दूसरे पे क्या बीत रही है।
1: ये बात तो आपने सही कही, बिल्कुल।
0: मान लो कभी हमारा सर दर्द दे रहा हो या किसी का तबीयत सही नहीं है, तो चलाने वाले को ये सोचना चाहिए,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: थोड़ा अपने आवाज फॉलो कर ले।
1: ठीक, सही कह रही हैं आप, इसी को सिविक सेंस कहते हैं, इसी बारे में हम बात भी कर रहे थे और आपने भी कहकर बिल्कुल ये बात पुख्ता कर दी।
0: हाँ, भी कर सकते हैं यार, फोन लगाकर भी सुन सकते हैं आप,
1: बिल्कुल,
0: तुमसे तो डिस्टर्ब नहीं होगा।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, ये मैसेज दिया।
0: तो अभी आपके फोन करें उसमें लगता नहीं है, हेलो एफएम में वो फोन लगाती तो फोन लगता नहीं है, संदेश वाले में तो लग गया,
1: पर देखिए अब लग गया तो फिर तो शिकायतें खत्म ना, बस यही तो बात है। चलिए, थैंक यू रजनी, आपने कॉल किया,
0: आपसे बात करके
1: बिल्कुल, मुझे भी थैंक यू सो मच। तो देखिए हमारे प्यारे प्यारे श्रोता, हमें मध्य प्रदेश से ज्वाइन कर लिया इन्होंने और इतना प्यारा संदेश दिया, तो आपसे मैं करूंगी दोबारा से गुजारिश कि नॉइस पॉल्यूशन ना बढ़ाएं, और कहीं भी बैठे हों आप, एक बंद कमरे में, खुली जगह पर, कहीं भी आप कोशिश करें कि अपने वॉल्यूम को अपने तक सीमित रखें और दूसरे को बिल्कुल परेशान नहीं करें। और मुझे मालूम है कि आप ये सब जानबूझकर नहीं करते, पर जब हम किसी से, किसी का थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स में वो पहुंच जाता है और लौट कर हमारे पास डबल क्वांटिटी में वो प्यार और वो ख्याल रखने वाले लोग आते हैं हमारे पास। देखते हैं मोहम्मद आसिफ ने क्या लिखा है। मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं और कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, और कह रहे हैं कि संदेश कोई नहीं है आज, हम संदेश सुनेंगे देंगे नहीं। चलिए ठीक है, आज आपने संदेश देने से छुट्टी ले ली, ठीक है कोई बात नहीं। और अब देखते हैं वकील अहमद जी ने क्या लिखा है। कह रहे आवाज अच्छी लग रही है और संदेश है कि गर्मी बहुत हो रही है, कहीं जाना हो तो सुबह जल्दी जाएं, धूप बहुत तेज हो रही है। वकील अहमद मंसूरी कटका हथूरी, जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, पिंकी, रिंकी, महक अंसारी, गुल्लभ, शाह सिद्दीकी, एमन नवाब इस समय आम के बाग में है। अरे ये कह के तो आपने ललचा दिया वकील अहमद जी, अब तो आम जाकर खाना पड़ेगा मुझे भी आज, नहीं तो मैंगो शेक पीना पड़ेगा। चलिए आप लोग एंजॉय करिए, मुझे लगता है कहीं कहीं मौसम भी अच्छा हो रहा है, तो अगर आपके एरिया में भी मौसम अच्छा हो रहा है, और मेरी तरह मत करिएगा कि जरा सी गर्मी देखी ठंडा पानी पी लिया तो मेरी तरह आपका गला बैठेगा, तो थोड़ी सी सावधानी बरतिए और मौसम का मजा लेते रहिए। भाई राज यदुवंशी हथरौना अमेठी से क्या लिख रहे हैं कि पानी की बचत करें, बेवजह पानी फेंके नहीं, और पक्षियों के लिए छत पे पानी जरूर रखें, हम रखे हैं जैसे, और यहाँ पानी हम, और ये पानी हम भी यूज करते हैं, और इन्होंने अपने छत की फोटो भेजी है जहां पर इन्होंने एक टब में पानी भर के रखा है, बहुत प्यारी बात है, थैंक यू सो मच, आपने ये मैसेज दिया हमें। और जितने भी बेजुबान जानवर है हमारे इर्द गिर्द, जो पक्षी हैं, जो पशु हैं, उनको अगर आप पानी पिलाते हैं तो इससे अच्छी इस गर्मी में कोई बात नहीं हो सकती। अब मैंने बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें कर ली है, तो भाई प्यारा सा सॉन्ग सुनाने में मैं बिल्कुल कंजूसी नहीं करूंगी, आपके रेडियो सेट्स पर फटाफट

0: संदेश आपके गीत हमारे सुन रहे हैं आप आयुषी के साथ 100.7 FM पर। और देखते हैं भाई, जब हम गीत सुना रहे हैं तो संदेश की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, और ये जिम्मेदारी निभाने के लिए हमारे साथ देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, किससे बात हो रही है?
1: मेरा नाम है
0: रोशनी। रोशनी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हेलो,
1: बात कर रही।
0: हाँ, आपकी आवाज कट गई थी, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैम, मैं उन्नाव की रहने वाली हूँ। हाँ, चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, कैसा है चंडीगढ़ का मौसम?
1: यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, धूप खिली हुई है।
0: चलिए बढ़िया। ये बताइए, क्या संदेश लेकर आई हैं आप हमारे श्रोताओं के लिए?
1: मैं संदेश ये लेके आई हूँ, जो लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट होते हैं, तो वो लोग कूड़ा कचरा इधर उधर खा पी के डाल देते हैं, तो उनके लिए ये है कि इधर उधर न डाल के वो अपने साथ अपने पास रख ले, और जहाँ डस्टबिन दिखे वहीं पर रख दिया किया थोड़ा।
0: नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से पूरा इत्तेफाक रखती हूँ।
1: और मैम, दूसरा संदेश भी मेरा एक ये है, जिन लोगों को जाना होता है ट्रेन से, तो वो समय से पहले ही पहुंच जाए, क्योंकि लेट होने पर ट्रेन नहीं रुकेगी, और आप ही रुक जाएंगे, फिर आपकी ही परेशानी होगी आपसे।
0: तो मुझे लगता है कि ये जो लेट लतीफी है, ये तो हर जगह काम आती है, सिर्फ ट्रेन में नहीं। आप ऑफिस लेट पहुंचते हैं, अपनी क्लास में लेट पहुंचते हैं, अपने बर्थडे पार्टी में भी लेट पहुंचते हैं, और केक खत्म हो जाता है। चलिए, थैंक यू रोशनी, आपने कॉल किया।
1: मैम, मैं सुबह से सुन रही हूँ, गुड मॉर्निंग लखनऊ से। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, गाने सुपर हिट बजाए आपने, और कई दिनों बाद आए, और कल मेरी बबीता जी से बात हो रही थी, और आपका जिक्र हो रहा था कि मैम काफी दिनों से आई नहीं है। वैसे याद सुना तो हम लोग बहुत खुश हो गए।
0: थैंक यू, सब गर्मी की छुट्टी मना रहे थे ना, मैंने भी 2 दिन मना ली। चलिए, थैंक यू।
1: नाम ले लू,
0: बिल्कुल
1: बबीता राव जी सुन रहे हैं यहाँ पे गोसाईगंज लखनऊ से, और हमारी गुलक्ता सिद्दीकी दीदी सुन रही है यहाँ पे संडीला से, और नीलू शर्मा दीदी रूपुर चंदेला।

0: और समान अंसारी, मोहक अंसारी, साजिया अंसारी, ये लोग जब कॉल करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और समाधि जब जब भी कॉल करते हैं और अपने शायरी के अंदाज में आते हैं तो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू रोशनी, ओके बाय। तो 11:45 का समय है और मुझे लगता है कि एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले ले और मैं कुछ आपके मेल्स पढ़ दूं, फिर सुनेंगे प्यारा सा गाना।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना ठेड़िए मारा, नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं

प्रशंसा और आलोचना दोनों स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल को उगने के लिए धूप और बारिश दोनों की जरूरत होती है। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात है। इससे बैलेंस बना रहता है, इसी को तो प्रकृति का संतुलन भी कहते हैं। और कह रहे हैं आप कैसे हो, हम खुश हैं। और कह रहे हैं खुश रहे, मस्त रहे, सबको खुश करते रहे। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा मेल लिखा। देखिए श्यामू चौहान जी क्या कह रहे हैं, इतना बड़ा सा मेल लिखा है, लिखा क्या है देखे। सुबह की चाय सिर्फ एक आदत नहीं होती, ये वो छोटा सा सुकून होता है जो इंसान को कुछ देर के लिए दुनिया की भागदौड़ से दूर ले जाता है, कभी खामोशी के साथ, कभी बारिश की आवाज के साथ, और कभी किसी अपनों की यादों के साथ। असल में चाय का स्वाद चीनी या अदरक से नहीं, बल्कि उस वक्त के एहसास से बनता है जिससे इंसान पी रहा होता है। और हमारी सुबह की चाय थोड़ी दुआओं जैसी होती है, धीरे धीरे दिल को सुकून देती हुई। थैंक यू। और गांव बीर किठाई दरियाबाद मोहब्बतों के शहर बाराबंकी से, और नाम लिए हैं श्यामू चौहान, राजकरण, हरिओम, सुनील, आकाश, संदीप और सभी दोस्त, बहुत सारे दोस्त, क्या बात है। ओके, तो एक और मेल ले लेती हूँ, रहा नहीं जा रहा। भैया मोनू सेठ जी का, डिजिटल पेमेंट और साइबर ठगों के बीच एक निरंतर युद्ध जारी है। जहां तकनीक हमें सुविधा दे रही है, वहीं ठग नए नए तरीकों से लोगों को शिकार बना रहे हैं। डिजिटल लेन देन न केवल समय की बचत करता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाता है। और अगर हम तकनीकी रूप से जागरूक रहें और अपनी बैंकिंग जानकारी जैसे OTP या पिन किसी से साझा ना करें, तो डिजिटल भुगतान वित्तीय आजादी का सबसे सशक्त माध्यम बन सकता है। बिल्कुल भैया मोनू सेठ, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा मेल लिखा है। ये डिजिटल भाई जानकारी होना तो बहुत ही जरूरी है। देखिए भाई वारिस अली खान जी का भी मेल ले लेते हैं। कह रहे हैं आवाज की दुनिया के प्यारे से दोस्त आयुषी को खान परिवार का प्यार भरा सलाम। अच्छा कुछ अर्ज भी किया है, कह रहे रिश्तों की डोर मजबूत रहे, नफरत का पेच ना फंसे। और संदेश दिया है, कंफर्ट जोन सबसे बड़ा जाल है, ये हमें धीरे धीरे बेबस बना देता है। जिंदगी में उड़ान चाहिए तो चुनौतियों का सामना करो, क्योंकि वही तुम्हारी असली ताकत है। एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से हमें इतना प्यारा सा मेल लिखा, थैंक यू सो मच। और भी मेल्स पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम अपने हाथ में है, पर एक प्यारा सा गाना तो सुन ले, वरना आप कहेंगे आयुषी क्या किया, गाने ही नहीं सुनाए।

0: 11:52 और आप सुन रहे संदेश आपके गीत हमारे आयुषी के साथ, और देखते हैं गुलफ़ा सिद्दीकी जी ने क्या लिखा है। कह रही है संडीला से, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, सुन रही है। संदेश ये है कि किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए और हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम कैसे हैं, क्योंकि जलता वही है जो खुद कुछ कर नहीं सकता, तो वो दूसरों को देखकर जलता रहता है। प्लीज ऐसा मत करो भाई, प्लीज ऐसा मत करो। गुलफ़ा का दिल नहीं दुखाना है किसी को, और किसी का भी दिल नहीं दुखाना है। देखिए राजेश यदुवंशी हथरौना अमेठी से हमने आपका मेल पढ़ लिया, हमने आपका मेल पढ़ लिया, तो आप भी निश्चिंत हो जाइए। आचे सेठ क्या कह रही हैं, ध्वनि प्रदूषण का बोलबाला चल रहा है, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से भी इत्तेफाक रखती हूँ। और चलिए गुलफ़ा सिद्दीकी ने मुझे ढेर सारे आम की फोटो भेजी और लिखा है आप भी खाओ आम, थैंक यू सो मच। सैफ अंसारी क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं मैम हाउ आर यू, मेरा हम सिस्टर्स हसबा अंसारी उमरा अंसारी श्रीनगर लखीमपुर से मेल कर रहे हैं। आप तो बड़े ही मस्त, मेरा मतलब झका सॉन्ग प्ले कर रही है, क्या बात है। हम सब कढ़ाई कर रहे हैं और FM सुन रहे हैं, और हमारी फूफी गोला गोकरनाथ से साजिदा अंसारी आपका प्रोग्राम सुन रही है, थैंक यू सो मच। सुनते रहिए, अच्छा लगता है आप सुनते हैं और हमें बताते हैं तो। और प्रमोद यादव जी को भी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, संदेश कुछ नहीं दिया, ये भी नहीं बताया कहाँ से लिखा, पर चलिए आपकी भावना हम तक पहुंच गई। संदीप मक्कड़ जी ने कहाँ से लिखा है, ज्योति मक्कड़ जी का भी नाम लिया है, मन्नत मक्कड़ का भी नाम लिया है, भरत मक्कड़, कमल साहनी पिंगावाला चौक गोराया जलंधर से, और फरमाइश किए, लेकिन इस बार तो हमें आपसे संदेश चाहिए थे, फरमाइश कार्यक्रम में फरमाइश कहिएगा, लेकिन अगली बार इस कार्यक्रम में अगर आप अपने संदेश देकर हमें बताएंगे तो हमें आपका मन पढ़ना अच्छा लगेगा। भैया मोनू सेठ ने क्या लिखा है, कह रहे दूसरों के हित के लिए हमेशा काम करना चाहिए, क्योंकि सेवा ही परम कल्याणकारी धर्म है और जरूरतमंदों की मदद करना ही सफल बनाता है जीवन को, थैंक यू। और संदीप पाकड़ जी ने बहुत सारे मेल कर रहे हैं, पर संदीप पाकड़ जी हमने तो आपके मेल्स पढ़ लिए ना। खैर अब इसी के साथ 11:55 हो गया है और अब घड़ी कह रही है आयुषी दिल पे पत्थर रख के अब आपको करना पड़ेगा टाटा बाय बाय संदेश आपके गीत हमारे से, क्योंकि म्यूजिकल सफर जो होता है ना वो रुकना नहीं चाहिए। इन्फॉर्मेशन एंटरटेनमेंट वाला ये जो हमारा सफर है, इन्फोटेनमेंट जिसे कहते हैं, ये चलता रहता है। हर इसके अलग अलग रंग है, अलग अलग रूप है, अलग अलग फ्लेवर्स है, और पर मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगी, बस एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक सुनेंगे और उसके बाद एक प्यारा सा गाना सुनेंगे और फिर आप मुझे इजाजत दे दीजिएगा, थैंक यू सो मच।
1: गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी, देश के विकास में सहभागी बने।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: पत्थर है वो मुझे रोक टोक

अनारक्षित ट्रेनें चला रहा है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के साथ सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कब्रिस्तान, कुवैत और ओमान में अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,80,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ने पर सहमति व्यक्त की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। ऐसे में ओपेक प्लस का यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

12:04 का वक्त, शालिनी आपके साथ प्रोग्राम शत्रुपा में। और आपको पता है आज बड़े ही गर्व का विषय है। क्या? आज हमारा आकाशवाणी अपने पूरे 9 वर्ष पूरे कर रहा है। जी हाँ, चाहे सूचना की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे मनोरंजन की बात हो, हर चीज में हम आपके साथ रहे हैं। और ये 90 साल का जो सफर है, यूं ही नहीं बीता है ना। तो आज शालिनी आपके साथ रहेगी, तरह तरह गाने भी के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ, मनोरंजन के साथ। लेकिन आपसे भी हम इस सफर की बातें जरूर जानेंगे। उसके लिए आप रेडी रहिएगा, मेल करते रहिएगा fmakashwani@gmail.com पे। और बात करते हैं आज के प्रोग्राम की शत्रुपा। 4:55 का वक्त, शालिनी आपके साथ प्रोग्राम शत्रुपा में। और आपको पता है आज बड़े ही गर्व का विषय है। क्या? आज हमारा आकाशवाणी अपने पूरे 9 वर्ष पूरे कर रहा है। जी हाँ, चाहे सूचना की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे मनोरंजन की बात हो, हर चीज में हम आपके साथ रहे हैं। और ये 90 साल का जो सफर है, यूं ही नहीं बीता है ना। तो आज शालिनी आपके साथ रहेगी, तरह तरह गाने भी के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ, मनोरंजन के साथ। लेकिन आपसे भी हम इस सफर की बातें जरूर जानेंगे। उसके लिए आप रेडी रहिएगा, मेल करते रहिएगा fmakashwani@gmail.com पे। और बात करते हैं आज के प्रोग्राम की शत्रुपा। आज है मंडे, यानी कि सोमवार, जिसमें हम करते हैं हेल्थ की बात। तो आज है 8 जून, और 8 जून आपने अगर सुबह हमारा GML भी सुना होगा तो भी आपको पता चला होगा, और वैसे अगर आप जानकारी रखते हैं तो भी पता होगा, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। जी हाँ, ये जो शब्द है ब्रेन ट्यूमर का, सभी के सुनते कहते हैं ना कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम डर जाते हैं कि अब क्या होगा। ये ऐसी बीमारी, शायद ही कोई समझता है कि इसका इलाज है या इससे बच पाना संभव है। बहुत तरह तरह के होते हैं सवाल हमारे मन के अंदर, तो बस इन्हीं सवालों के उत्तर लेकर शालिनी आज हाजिर है आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर। और हमारे साथ एक्सपर्ट रहेंगे, कौन, क्या, कैसे, ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन इस प्यारे से गाने के बाद।

0: को 12:12:22 का वक्त, शालिनी आपके साथ है लेकर आज हेल्थ की बात वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के साथ। जी हाँ, हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अंकुर बजाज, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से। मैं सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और इतने खास विषय पर आप हमारे साथ हैं, इसके लिए थैंक यू।
1: सबसे पहले धन्यवाद शालिनी जी और पूरा एफएम रेनबो का, जिसने आज मुझे यहाँ बुलाया और ये अवसर दिया कि मैं वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, जो कि 8 जून को हर साल मनाया जाता है, इसके बारे में बता सकूं। मैं डॉक्टर अंकुर बजाज, प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पे कार्यरत हूँ।
0: सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये जो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है, ये क्यों मनाया जाता है और इसको मनाने के पीछे का एम क्या है, उद्देश्य क्या है?
1: मैं बोलूंगा आपको कि हर साल वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता बढ़ाया, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर के बारे में आज बहुत सी गलत फहमियां हैं। बहुत से लोग लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं और देर से डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। हर दिन हम लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं, ब्रेन ट्यूमर को जल्दी पता लगाना ही सबसे

0: बड़ा उसका निवारण कर सकता है, ट्रीटमेंट कर सकता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ अवेयरनेस इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट, जागरूकता ही बचाव का पहला कदम है।
1: और इसीलिए दोस्तों जो खास चीजें होती हैं उससे हम आपको मिलाते हैं और जागरूक कराते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और सर ये ब्रेन ट्यूमर होता क्या है सबसे पहले तो ये बताएं, और जैसे कि आम नागरिक हो या हम अपनी ही अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर होता है, क्या ये सही है इसके बारे में भी जरा बताएं।
0: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने शालिनी जी, क्योंकि ये एक मिथ है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जो लोगों के बीच में है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया, हाय अब तो मैं मर गया, ये तो कैंसर हो गया है मुझे।
1: जी, जी,
0: नहीं
1: जी।
0: हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं होता, मतलब बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूं कि हर चलता हुआ वाहन कार नहीं होती, तो ऐसे ही हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं होता, पर हर कैंसर ब्रेन ट्यूमर होता है। मतलब अगर हर वाहन की बात की, हर कार एक वाहन है पर हर वाहन कार नहीं होती। तो ये बात है कि ब्रेन ट्यूमर जो है वो दो तरीके से होता है, अगर मैं मोटा मोटा बोलूं, एक होता है बिनाइन, ऐसा जो धीरे धीरे करके बढ़ता है और बढ़ने के साथ साथ अगल बगल के एरिया को दबाता है, उनमें इन्वॉल्व नहीं होता है, उनके टिश्यू को इन्वॉल्व नहीं करता है, वो बिनाइन होता है जो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसे ट्यूमर का पूरा निकालना जाना संभव है, इलाज संभव है और ये क्योरेबल हो सकता है। दूसरी तरीके का होता है जो मेलिग्नेंट है, मेलिग्नेंट का मतलब बहुत तेजी से बढ़ता है, अगल बगल के टिश्यू जो कि अगल बगल के एरिया है उसे इन्वॉल्व कर देता है, ऐसे ट्यूमर ज्यादा खतरनाक है क्योंकि जल्दी से बढ़ जाते हैं, अगल बगल के एरिया को इन्वॉल्व कर लेते हैं।
1: सर ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती जो लक्षण है वो कौन कौन से होते हैं जिन्हें देखकर हम पहचान सके कि हाँ ये बीमारी हो रही है?
0: हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोगों को लक्षण के बारे में पता हो शालिनी जी। तो ऐसा है कि ब्रेन ट्यूमर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सर का दर्द, ऐसा दर्द जो बढ़ता जा रहा हो, जो पहले एक जगह अलग जगह होता था अब दूसरी जगह अलग जगह हो रहा हो, तो लगातार बढ़ता हुआ सर का दर्द ये एक लक्षण है। कोई भी दौरा आना किसी को भी ये एक लक्षण है। हाथ या पैर में कमजोरी आना और ये कमजोरी बढ़ते जाना ये एक लक्षण है। साथ में पर्सनैलिटी चेंज, व्यवहार में परिवर्तन आना ये भी एक लक्षण है
1: जी।
0: तो कृपया करके मैं बोलूंगा कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा हो जिसको लगातार सर में दर्द हो रहा हो और साथ में उल्टी आना जो खास करके सुबह के टाइम ज्यादा होती है और उस उल्टी के आने से थोड़ा सर का दर्द कम हो जाता है, वैसी उल्टियां भी एक ब्रेन ट्यूमर का लक्षण है। तो कृपया करके इसको नजरअंदाज ना करें और डॉक्टर की परामर्श जरूर लें ऐसे में।
1: और सर की बात से थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, आप डॉक्टर के पास जाएं लेकिन स्पेशलिस्ट के पास कुशल चिकित्सक की सलाह लेना बहुत जरूरी है। सर क्या ब्रेन ट्यूमर किसी भी उम्र में हो सकता है?
0: बिल्कुल, ये एक नवजात छोटा पैदा हुए बच्चे में भी हो सकता है और 100 साल के बुजुर्ग में भी हो सकता है। तो बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सब में ब्रेन ट्यूमर हो सकता है।
1: और इसका उपचार सबसे पहले तो ये कि सावधानी रखनी है, अगर जो लक्षण सर ने बताए हैं कि सर में अगर आपके तेज दर्द हो रहा है सुबह के समय और उल्टी हो रही है या आप एकदम आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है और कुशल चिकित्सक के पास जाना है। सर अब हम एक प्यारा सा गाना प्ले करने वाले हैं लेकिन उसके बाद आपसे और भी प्रश्नों के उत्तर चाहेंगे, जैसे कि समय पर जांच कौन सी कराएं, इलाज क्या जरूरी है और क्या ब्रेन ट्यूमर का इलाज संभव है, और अगर संभव है तो हमारे पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, इस तरह की होंगी बातें अभी डॉक्टर अंकुर बजाज सर के साथ जो कि प्रोफेसर है न्यूरो सर्जरी KGMU से। और अब प्यारा सा ट्रैक आप सबके लिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: दोस्तों 12:21 और 55 सेकंड का वक्त, प्रोग्राम शत्रुपा में शालिनी आपके साथ वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर स्पेशल बात हो रही है। डॉक्टर अंकुर बजाज हैं हमारे साथ, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से। और अभी हमने सर से जाना कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं और किस उम्र में हो सकता है, और अब जानने जा रहे हैं कि समय पर जांच और इलाज क्यों जरूरी है।
7: शालिनी जी, किसी भी चीज, कोई भी बीमारी हो, उसका समय से अगर जांच हो जाए, पता चल जाए, तो आप उसका इलाज सटीकता से कर सकते हैं। ऐसे ही ब्रेन ट्यूमर में भी है, कोई भी दिक्कत है और अगर इनिशियल स्टेज में पकड़ी जा सकती है तो इट कैन बी क्योरेबल, वो ठीक हो सकती है। ब्रेन का ट्यूमर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगल बगल के एरिया को अगर इन्वॉल्व कर लेता है तो अगल बगल का जो हमारा पावर है या उस एरिया की जो क्षमता है दिमाग में, दिमाग एक बहुत जबरदस्त ऑर्गन है। अगर मैं बोलूं कि मेरे हाथ हिलना है तो दिमाग का ये वाला पार्ट एक्टिव होता है और मेरा हाथ हिलता है। ओके, तो अगर ब्रेन ट्यूमर उस वाले पार्ट में है तो मैं चाह के भी अपना हाथ नहीं हिला पाऊंगा या हाथ हिलाने में कमजोरी आ जाएगी। तो अगर ये चीज पहले से ही पता चल जाए तो इसका सटीकता से इलाज हो सकता है और ये कमजोरी नहीं आ पाए, ये किया जा सकता है। तो इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा, कृपया किसी भी लक्षण को, किसी भी चीज को छोटा बड़ा नहीं समझे, तुरंत डॉक्टर परामर्श लें और डॉक्टर की सलाह से ही ट्रीटमेंट लें, क्योंकि कोई भी दिमाग का पार्ट, वंस गॉन इज ऑलवेज गॉन, दिमाग की नसें एक बार चली जाती है तो हमेशा के लिए चली जाती है, सिवाय बच्चों में जिसमें प्लास्टिसिटी बहुत बढ़िया होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसे आपने देखा था, एक बच्चे को मैंने ऑपरेट किया था, उसका आधा हिस्सा चला गया था, उसका हाथ पैर नहीं चल रहा था, एक बच्चे के सर में गोली लगी थी तब, पर क्योंकि बच्चों में न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत बढ़िया होती है, उसका निकाला गया, अब वो चलती हुई आती है, पर जैसे ही बड़े हो जाते हैं उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी का रोल बहुत कम हो जाता है।

0: तो कृपया करके किसी भी छोटे लक्षण या किसी भी छोटे सिम्टम को नजरअंदाज नहीं करें और तुरंत दिखाएं।
1: लेकिन हाँ, एक बात जरूरी है, घबराना नहीं है कि अगर छोटा सा लक्षण आपको है, माना कि अक्सर सर में दर्द रहता है, तो आप मान लें कि ये ब्रेन ट्यूमर है, ऐसा नहीं है। जहां आपने चिंता शुरू की, परेशानियां और बढ़ती जाएंगी, तो चिंता नहीं करना है, समय रहते डॉक्टर से मिलना है। सर, अब आप जिससे जानना चाहेंगे कि क्या ब्रेन ट्यूमर का इलाज संभव है, और है तो कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, ये हमारे लिसनर्स को बताइए।
0: बिल्कुल, ब्रेन ट्यूमर का इलाज संभव है और सटीकता से संभव है। आप जैसे आप यहाँ से कहीं भी जाते हो, आप नेविगेशन का उपयोग करते हो आजकल, जैसे आप देखो जीपीएस सिस्टम है, या पहले जमाने में रास्ते लोग याद करते थे, अब दिमाग में भी नेविगेशन आ गया है, जिसे हम नीरो नेविगेशन कहते हैं। हम नीरो नेविगेशन से ब्रेन ट्यूमर पता लगाते हैं किस एरिया में इन्वॉल्व है। हम एमआरआई की अलग अलग प्रक्रिया कराते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं फंक्शनल एमआरआई, इसके ट्रैक्स कहाँ पे हैं, कौन से एरिया की चीज कहाँ पे जा रही है, किस रास्ते से हमें नेविगेट करना है, मतलब किस रास्ते से हम ब्रेन ट्यूमर तक पहुंचे कि कम से कम क्षति दिमाग को पहुंचाते हुए हम पूरा का पूरा ब्रेन ट्यूमर निकालें। ये न्यूरो नेविगेशन, एडवांस एमआरआई फीचर्स, ये सब उपलब्ध है। इवन एंडोस्कोपी, न्यूरो एंडोस्कोपी उपलब्ध है। इवन जो बहुत ज्यादा ट्यूमर ब्लीड करते हैं, उसमें हम लोग पहले ही एम्बुलाइज कर सकते हैं। तो अब काफी एडवांसमेंट हो गया है साइंस में, और वैसे ही साइंस का एडवांसमेंट न्यूरोसर्जी की फील्ड में भी हुआ है, जिससे हम ऐसे ट्यूमर को जल्दी से, अच्छे से, बढ़िया से निकाल सकते हैं, ताकि मरीज को कम से कम क्षति हो।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी सर, और बाकी का तो क्या ही बता सकते हैं, लेकिन जो मेरे दिल में डर था ब्रेन ट्यूमर को लेकर, वो अब कहीं हद तक कम हो चुका है। लेकिन सर, जैसे ही ब्रेन ट्यूमर का पता चलता है, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो फैमिली पर्सन हो, सभी की जो मेंटल जो स्टेटस है ना, मानसिक जो स्थिति है ना, वो बहुत डगमगा जाती है। और कैसे आप तैयार करते हैं, और किया जा सकता है कैसे तैयार इस स्थिति में, कि उनकी मानसिक और भावात्मक जो इमोशनली टच है ना, उसको भी हम सुधारें, और कैसे तैयार करें कि हाँ ब्रेन ट्यूमर हो गया है तो इसका इलाज कैसे क्या किया जाए, इसके बारे में भी जरा बताएं।
0: हाँ शालिनी जी, परिवार को तैयार करना और मरीज को तैयार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी मरीज ऐसा सुनता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया है, तो उसे लगता है अब वो मरने वाला है, परिवार को लगता है कि अब उनका एक सदस्य जाने वाला है। तो कृपया करके ऐसे समय पे गूगल पे मत जाएं, डॉक्टर की बातें सुने, डॉक्टर से परामर्श लें, डॉक्टर से सलाह लें कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। घबराना स्वाभाविक है, किसी भी बीमारी का पता लगना स्वाभाविक है, पर ब्रेन स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ तभी आती है जब विपरीत परिस्थितियों में हम अच्छे डिसीजन लें। तो कृपया करके अपने दिमाग को संतुलित बनाए रखें, क्योंकि घबराने से ट्रीटमेंट नहीं होगा, ट्रीटमेंट तभी होगा जब अच्छे कदम उठाएंगे। तो अच्छे ट्रीटमेंट के लिए अच्छे कदम उठाना जरूरी है। तो विपरीत परिस्थितियां, जैसे इसमें घबराहट है, उसमें संयम बनाए रखें, डॉक्टर से परामर्श लें, और जल्दी जल्दी डॉक्टर की सलाह लें, ताकि इसमें सटीकता से इलाज हो सके।
1: बिल्कुल, देखा, कहा था ना, घबराना नहीं है। जैसे ही आप घबरा जाते हैं ना, तो घबराहट में बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, पता नहीं चलता है कि स्टेप टू स्टेप कैसे हमें क्या करना है। अच्छा सर, ये जो हमारे समुदाय में भी इस बीमारी को लेकर बहुत सारी गलत फहमियां फैली हुई हैं, और आप तो इससे अनजान नहीं होंगे, क्योंकि आप तो बहुत सारे पेशेंट देखते हैं, लोग आते हैं, अटेंडेंट आते होंगे आपके पास में, और तरह तरह की बातें आपसे करते होंगे, तो क्या वो कौन सी सबसे ज्यादा गलत फहमियां हैं जो हमारे समुदाय में फैली हुई हैं ब्रेन ट्यूमर को लेके?
0: ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी चीज है जो मैंने आपको पहले बताया शालिनी जी के, अब मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है, अब तो मैं मरने वाला हूँ।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
1: हाँ।
0: नहीं, ब्रेन ट्यूमर का इलाज संभव है। अब जरूरी नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर में आप मरेंगे या मरने वाले हैं, पर जितना आप ऐसे नकारात्मक सोच रखेंगे उतना हानि पहुंचेगी आपको, जितना पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे उतना आपका इलाज बढ़िया होगा, उतनी आप जल्दी स्वस्थ होंगे। तो एक तो ये मिथ है कि भैया ब्रेन ट्यूमर है तो मर जाएंगे। दूसरा मिथ है, मुझे सर दर्द हो रहा है अब मुझे ब्रेन ट्यूमर है। नहीं, हर सर दर्द ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। तो खास करके सर दर्द जो बहुत ज्यादा तीव्रता से बढ़ रहा हो, जो बार बार हो रहा हो, वह एक ब्रेन ट्यूमर का लक्षण है। तीसरी चीज, क्या मैं बहुत ज्यादा फोन यूज करती हूँ, क्या मुझे ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा? कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जिसमें बोला गया है कि कुछ मेनिंजियोमा है जो वाईफाई ब्रेन ट्यूमर से हो सकते हैं, पर इसका कोई बहुत सटीकता से वैज्ञानिक परिणाम नहीं है।

0: कि वाईफाई या मोबाइल से ब्रेन ट्यूमर है, कोई मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है अभी भी। तो ये इम्पोर्टेंट है मेरे हाथ से, ये मिथ है जो दूर होने चाहिए आज।
1: बहुत सारे मिथ आपने हमारे दिमाग से निकाल दिए हैं और कहीं हद तक तो हम समझ भी गए हैं कि ब्रेन ट्यूमर कोई बहुत डरावनी या भयानक बीमारी नहीं है। बस समय रहते और आपको अगर इसकी जानकारी है तो आप इस पर इससे जीत सकते हैं। और वही बात है ना, दिल की सुननी है तो ये प्यारा सा ट्रैक आप सभी के लिए आ रहा है। लेकिन अभी भी कई सारी चीज़ें हैं जो अभी डॉक्टर अंकुर बजाज जी से जाननी है, जैसे कि क्या मानसिक स्वास्थ्य, जो कि हम रोज़मर्रा में क्या सावधानी रखें इसके लिए, और महिलाओं की अगर हम बात करें तो उस पर भी अभी हम आएंगे। कई सारे प्रश्न हैं खासकर महिलाओं के लिए। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहें और सुनते रहें 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की शालिनी के साथ प्रोग्राम शत्रुपा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100

0: 107 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: दोस्तों 12:34 और 8 सेकंड हो चले हैं प्रोग्राम शत्रुपा में। है आज हमारे साथ डॉक्टर अंकुर बजाज, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से, और वो बात कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर की। तो सर, अब जानना चाहेंगे कि लोग अपने मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए रोजमर्रा में क्या सावधानी अपनाएं, कुछ खास चीजें जो आप हमारे लिसनर को बताना चाहेंगे।
2: ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हमारे शरीर को खाना है, वैसे दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स है। हमारा दिमाग जो है वो थॉट पे जीता है शाली
1: जी।
2: तो थॉट्स अच्छे होने चाहिए। अच्छे थॉट्स के लिए आपका वातावरण अच्छा होना चाहिए। आप सुबह हंसी करके उठें, खुशी मन से उठें, तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। उस तरीके का प्रॉपर नींद, व्यायाम, एक्सरसाइज करें जरूर, प्रॉपर नींद लें, और जो भी आपको चीज लगती है कि घबराहट पैदा करती है उसे दूर रखने की कोशिश करें। इसमें मैं कहता हूँ 10 ब्रीथिंग एफर्ट, जिसमें मैं कहता हूँ कि 10 सांसें, जब भी आपको परेशानी हो 10 गहरी गहरी सांसें लें और छोड़ें। आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य और आपका पॉजिटिव सोच आ जाएगी दिमाग में, आप नेगेटिव सोच को दूर रख पाएंगे ऐसे से। तो मैं फिर से इस FM रेनबो के कारण आपको बताना चाहूंगा, इस FM के कारण लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि 10 ब्रीथ्स, 10 गहरी गहरी सांस लेंगे जब भी आप दिक्कत में हो तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो कृपया करके इसको डेली हैबिट बनाएं, अच्छी सांस लें, पॉजिटिव थॉट्स लें।
1: बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं लगनी है। अच्छा सर, अब हम खास महिलाओं की बात करते हैं, क्या महिलाओं में ब्रेन ट्यूमर के लक्षण अलग तरह से दिखाई दे सकते हैं?
2: महिलाओं की बात करूं तो मैं सी बात बोलूंगा कि या महिलाओं में जो लक्षण है वो सामान्य है, पर वैसे ही होते सेम है सामान्य के लिए, पर हाँ। कुछ ट्यूमर हैं जो महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं। इसमें ऐसा एक मेनिंजियोमा ट्यूमर

0: ही नहीं लगनी है। अच्छा सर, अब हम खास महिलाओं की बात करते हैं, क्या महिलाओं में ब्रेन ट्यूमर के लक्षण अलग तरह से दिखाई दे सकते हैं?
1: महिलाओं की बात करूं तो मैं इस बात बोलूंगा कि या महिलाओं में जो लक्षण है वो सामान्य है, पर वैसे ही होते हैं, सेम है सामान्य के लिए। पर
0: हाँ
1: कुछ ट्यूमर हैं जो महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं। इसमें ऐसा एक मेनिनजियोमा ट्यूमर है जो सर में होता है या स्पाइन में होता है, जो महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा काफी ज्यादा होता है,
0: जी
1: यंग लेडीज में होता है। इसका भी ट्रीटमेंट संभव है क्योंकि ये हार्मोनल फीचर से होता है।
0: जी अच्छा, कौन से शुरुआती लक्षण होते हैं जिसे अक्सर हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं?
1: जो महिलाएं हैं, खास करके इतने दिन भर के कार्यक्रम में व्यस्त रहती हैं, हमारी महिलाएं परिवार देखती हैं, सब कुछ देखती हैं, पर अपने लिए थोड़ा सा उनके लिए ध्यान कम रखता है, अपनी हेल्थ के लिए जो
0: जी
1: नजरअंदाज करने का बोले महिलाओं में, तो वह मेरे अनुभव से यह है कि लगातार सरदर्द होना, बार बार चक्कर आना, नजर धुंधली होना, बहुत ज्यादा अपने हैबिट में चेंज लाना, पर्सनैलिटी चेंज लाना अगर आ जाए तो ये महिलाएं काफी अपने आप को नजरअंदाज करती हैं। तो कृपया करके महिलाओं को इन सब संकेतों के बारे में पता होना चाहिए, ऐसा कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।
0: बिल्कुल सही सर, जो ये बार बार सरदर्द की बात बता रहे हैं और जो ये ब्रेन ट्यूमर है, इन दोनों के बीच में हम अंतर कैसे समझेंगे? क्या चीज ऐसा दिखता है इसमें?
1: हर सरदर्द ब्रेन ट्यूमर का लक्षण नहीं है। सरदर्द बहुत सारे कारणों की वजह से होता है, पर अगर सरदर्द बहुत तेज हो रहा है और ये तेजी लगातार बढ़ती जा रही है, परसिस्टेंट हेडेक दैट इज
0: जी
1: इंक्रीजिंग इज अ साइन ऑफ सम एबनॉर्मेलिटीज इन द ब्रेन लीडिंग टू ब्रेन ट्यूमर मेनली। दूसरी चीज है उल्टी आना, खास करके सुबह उठ के उल्टी आना, बार बार उल्टी आना, पर्सनैलिटी का चेंज होना, आप जैसा बिहेव करते थे उसमें परिवर्तन आना, ये भी एक ब्रेन ट्यूमर का लक्षण है। भूलना, भूलने की शक्ति, ये भी एक ब्रेन ट्यूमर का लक्षण है। बार बार चक्कर आना, हाथ पैर में कमजोरी आना, ये सब ब्रेन ट्यूमर के लक्षण है।
0: तो दोस्तों, आप आसानी से अंतर समझ सकते हैं कि जो आपका सिर दर्द हो रहा है या बार बार सिर में दर्द हो रहा है, वो कब ब्रेन ट्यूमर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो बिल्कुल सही चीजें बताई सर ने कि कैसे आपकी ऐसा सर दर्द जो बिल्कुल अब सहा नहीं जा रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको कुशल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसा सर दर्द होने के बाद आपको उल्टी भी हो रही है तो भी आपको इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना है। दोस्तों, 12:38 और 30 सेकंड हो चले हैं और अब वक्त हो चला है प्यारे से गाने का, और अभी और भी प्रश्नों के उत्तर जानना बाकी हैं, जो कि डॉक्टर अंकुर बजाज है हमारे साथ, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से। लेकिन अभी एक प्यारा सा गाना।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: 12:23 हो चले हैं दोस्तों, और आप सभी लोग सुन रहे हैं कार्यक्रम शत्रुपा, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर की। और इसके लिए एक्सपर्ट हैं हमारे साथ डॉक्टर अंकुर बजाज, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से। बहुत सारी चीजें हम जान चुके हैं, ट्यूमर क्या है, कैसे होता है, क्या नजरअंदाज करें, क्या ना करें, समय पर कैसे जांच करें, इलाज कैसे संभव है, कैसे हम मानसिक और भावात्मक रूप से पेशेंट और परिवार को तैयार करें, समुदाय में क्या क्या गलत फहमियां फैली हुई हैं, और कैसे हम अपने मेंटल हेल्थ को रोजमर्रा में भी सही रखें। बहुत सारे सवालों के जवाब आ चुके हैं। और अब सर आपसे जानना चाहेंगे कि परिवार और काम की जिम्मेदारियों के बीच में महिला अपनी हेल्थ की जांच की को प्राथमिकता कैसे दे। मतलब आप ही ने कहा ना कि हमारी महिलाएं दिन भर के काम में लगी रहती हैं, तो उनके लिए भी जरा से बताएं।
1: मैं महिलाओं से कहना चाहूंगा कि वुमेन्स केयर फॉर एवरीवन एंड दे मस्ट लर्न टू केयर फॉर देमसेल्फ टू। कि हमारी महिलाएं पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं, पर उन्हें अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है कि परिवार के साथ साथ अपना भी स्वास्थ्य का ख्याल रखे, अपनी जांच ऐसा ना हो कि ना कराएं, अपनी जांच को भी प्राथमिकता दें और उसे भी कराएं। सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, इट इज असेंशियल।
0: दोस्तों इस बात को तो समझना ही पड़ेगा हमारी घर की महिलाओं को। सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं लेकिन खुद का स्किप हो जाता है, क्योंकि काम के चक्कर में ना कि टिफिन बनाया, सब ऑफिस गए, स्कूल गए बच्चे, और उसके बाद हम लंच की भी प्रिपरेशन करने लगते हैं, फिर नहाना धोना, कपड़े धोना, पूजा करना, तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन क्या आप इसी बीच में अपने लिए 15 से 20 मिनट का समय, हम कहते हैं उसको और भी कम कर दीजिए, कुछ ऐसा हल्का ब्रेकफास्ट पास ले लीजिए जो जल्दी से आप ले सकें, 10 मिनट का तो समय अपने लिए दे सकते हैं। अगर ये हम नहीं देते हैं, और कभी ऐसा होता है कि हम जब बीमार पड़ जाते हैं तब हमारा काम कौन करता है, अगर इस बात को ध्यान

0: ध्यान में रखेंगे तो सारे काम हम फटाफट करेंगे और अपना ध्यान रखते हुए। अच्छा सर, अगर किसी महिला को लंबे समय से सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं या नजर में बदलाव आ रहा है, तो उसे कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?
1: मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूंगा, मुझे एक महिला याद आती है। एक महिला थी जो अभी लगभग 1 साल पहले आई थी, जो बहुत लगभग 2 साल से उसे सर में दर्द हो रहा था और वो नज़रअंदाज एक कैल्पोल, पैरासीटामोल इस सब की दवाई लेके ठीक हो जाता था और वैसे ही चल रहा था। वो यंग 36 साल की फीमेल थी, परिवार में व्यस्त बिल्कुल। जब MRI हुआ तो उसमें ब्रेन ट्यूमर निकला। जब वो भागते हुए बिल्कुल पैनिक में आई, अब मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चों क्या होगा, मैंने कहा नहीं, इलाज संभव है। तो अभी 1 हफ्ता पहले OPD में आई थी, हमने उसका ट्रीटमेंट किया, इलाज किया, ऑपरेट किया, अब वो बिल्कुल स्वस्थ है, पहले से बढ़िया जिंदगी जी रही है। तो मैं यही कहूंगा महिलाओं को, कृपया करके आपका स्वास्थ्य आपकी प्राथमिकता है, परिवार के साथ साथ अपना स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। महिलाएं अब इतना देश में हर जगह आगे बढ़ रही हैं, तो हेल्थ के लिए भी जागरूकता उन्हें भी रहनी चाहिए और उन्हें हर चीज की जांच कराने के लिए कभी सोचना नहीं चाहिए, जस्ट जाके जांच करानी चाहिए। कहीं भी महिलाएं का स्वास्थ्य बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। धन्यवाद।
0: बहुत अच्छा सर संदेश और बहुत अच्छी सी जानकारी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए हमारे स्टूडियो में।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: सुनो ना।
4: हाँ।
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ,
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

तो 12:54 और 4 सेकंड हो चले हैं और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी प्रोग्राम शत्रुपा को करना होगा यहीं पर वाइंड अप। लेकिन चलते चलते इस प्रोग्राम से अपनी महिलाओं से खासकर एक निवेदन कह लीजिए, विनती कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए कि भाई अपनी हेल्थ का ध्यान आप जरूर रखें। जब भी आपको समय मिले अपने लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें। हाँ, आप बहुत जरूरी हैं अपने परिवार के लिए। क्या करें, कैसे करें, अपने लिए समय नहीं है, इन शब्दों को चेंज करें। जी हाँ, 24 आवर्स आप लगे रहते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, हम सोने वाले टाइम को भी इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि सोते समय भी आपका दिमाग अपने लिए नहीं चलता। क्या बाकी है, क्या कर डालें, कहाँ क्या रह गया, आप ना जाने कहाँ तक सैर कराते हैं। तो बस आप अपने लिए समय निकालेंगे क्योंकि आप सही हैं तो आपका परिवार सही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हमेशा प्रोग्राम शत्रुपा जरूर सुनना है क्योंकि वो आपके लिए लेकर आता है ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि नेक्स्ट प्रोग्राम नहीं सुनेंगे आप। ओटो पे तेरी बात में शालिनी रहेगी आपके साथ। क्या है उसमें खास, ये आपको उसी प्रोग्राम में पता चलेगा।

0: नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार के 12 वर्ष के विकास।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम में सुनवाने जा रहे हैं सबसे पहले ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और अमित कुमार ने। फिल्म का नाम है आखिर क्यों। अनुरोध है आप सभी का। आप हैं नरियावल से हाजी तुफैल अहमद,

नाजमा अंसारी, मस्तान कश्यप, बीना देवी, जोरा शर्मा और नाटू बदारद। और इसी गीत के लिए ये अनुरोध पत्र मिला है राम प्रसाद शर्मा, जशी देवी, वंदना मनोरमा देवी, अजय, फजुद्दीन भाई लिख रहे हैं छावनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली यूपी से। परी महल काजगंज से हैं आवाद खान, नवील खान, आफरा खान, इल्मा खान। और ये हैं दादी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। महादेव घाट अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर और मिथिलेश ठाकुर। साथ में हैं तारनी ठाकुर, सूरज, ज्योति और रियांश ठाकुर। और इसी गीत के लिए अनुरोध मिला है हमारे ये साथी हमें पत्र भेज रहे हैं विमल कुमार ठाकुर, श्रद्धा ठाकुर, शुभ, लव, गुनगुन ये लिख रहे हैं बक्सेना दादागंज से। साथ में अमर सिंह, नीलू और अमन। तो सुन पा रहे हैं आप सबको ये गीत।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: आप ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र, और आज 8 जून को आकाशवाणी अपनी गौरवशाली 90 वर्ष पूरे कर रहा है। आप तमाम श्रोताओं

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: आप ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र, और आज 8 जून को आकाशवाणी अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूरे कर रहा है। आप तमाम श्रोताओं

श्रोताओं, इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र। और बता दें आपको, आकाशवाणी आज अपने 90 गौरवशाली वर्ष पूरे कर रहा है। आप तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम सुनवाने जा रहे हैं आपको ये गीत। इस गीत के लिए हम तक अनुरोध पत्र पहुंचा है कनेरा मोहल्ला पटेला से बत्ता परिवार ही, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, डुमराव से बलीउल्ला अंसारी, बक्सर से राज एस टी अंसारी, दिल्ली से रेबलू अंसारी, जेल रोड बक्सर से रणित कुमार यादव, डुमराव से सुनील कुमार वर्मा और मुस्तफा वातिली से लालू बाग दीवाना, चंडीगढ़ से सतीश नेजा और बेमला नेजा, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी, मनगरा मंदिर बीडी कॉलोनी करगना से लिखने वाले हैं पंडिला सागर, बिनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश और बंटी, रुई भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, ममता चौधरी, ओमवती भारती,

खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। आप है प्राणतालाब डुमराव से, माफ कीजिए ये पत्र दोबारा शामिल कर रहे हैं, फिलहाल अब ये पत्र है, बरेली जंक्शन से हैं गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, विक्की भारद्वाज, पदम भारद्वाज, अमान खान, वीरेश सिंह चौहान, सोनी मिश्रा और प्रदीप पालना। मैं तो सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: श्रोताओं, ये फिल्म थी दिल तेरा आशिक। इसे गाया था कुमार सानू और अलका इर्क ने, और संगीत था नदीम शेवर साहब का। और साथियों, अब हम सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम बाग लगी, तो उसके लिए ये अनुरोध पत्र मिले हैं। आप हैं अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया आसमा, सालिया शेब खान। पोत्रा से हैं मुश्ताबा खान, राव भाई, शाहिन भाई। गांधी बाग कोला से हैं रमेश कटनकर और विशाल कटनकर। ये हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से भाई तिलराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। डॉक्टर मसरूर खान हैं, अमान अब्बासी, मुमताज, अनस, आवाद खान, विकास हसैना और मेघनाद पाली हमें लिख रहे हैं। नखाता रोड उसद बताइयों से। और ये हैं साथी हमारे कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, दिल्ली शहर मोरी गेट से। आप हैं भाटापारा से कपसद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और जयवंत कुमार। जग गांव लोहटड़ा, जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापति, श्रीमती मनोज देवी, मास्टर अर्जुन भारती, बटिया अंजलि, नितिन जगमोहन और सुधीर नूतन। तो सुनवाते हैं आपको ये गीत।
1: ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

ये फिल्म थी किल दिल, और इसे गाया था अरिजीत सिंह, निहारिका जोशी, देशपांडे, गुलजार और शंकर एहसान लाय ने। संगीत था शंकर एहसान लाय का। और अब सुनवाने जा रहे हैं आपको हमारे इन श्रोताओं की अनुरोध पर ये गीत। आप हैं नरगला यूपी से हैं, मोहम्मद अकरम अंसारी, जमील अहमद अंसारी, बरकत अली अंसारी, सुल्तान अहमद अंसारी, मोहम्मद हसन अंसारी और हमजा अंसारी। और ये हैं साथ ही सुधीर नूतन, जगमोहन प्रजापति, संदीप गुगलानी और सुनीता शर्मा हैं साथ। ये लिख रहे हैं मलोड करनाल से। और आप हैं जसपुर उत्तराखंड से, जैसा तो सिद्दीकी, नजर सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, सानी तबस्सुम, रुखसार और मोहम्मद आशिफ। और आप हैं साथ ही हमारे अंशु चुग, आशुतोष चुग, गोविंद चुग, टोनी चुग और गोविंद दीवान। आप हैं छीजगढ़ से इलियास भाई, नाजरा इदरीसी, नईम इदरीसी, नदीम इदरीसी और अक्षत बाबू। परीमहल कसगन से हैं आवाद खान, नवील खान, अरफा खान, इल्फा खान, आफरीन खान, जमीर खान और सभी के सुनने वाले। तो सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, ये फिल्म थी हम आपके दिल में रहते हैं, और इसे गाया था अर्चक और उदित नारायण ने, संगीत दिया था संजीव दर्शन ने। और अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत। उसके लिए अनुरोध पत्र ये हमें मिले हैं। आप हैं साथी हमारे गंगचुक रोपड़ पंजाब से, हैं मीका बिरक, बलविंदर बिरक, जतिक बिरक और हरदेव मीका। आप हैं दौलत बाग मुरादाबाद से, जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। ये हैं गैक्टा काशीपुर धर्मपुर बरेली से, फ़हीम खां, सिद्दीकी अली साबिया, राम प्रताप शर्मा। और दूरनगर से हैं ठाकुर मंडल से कठेरिया, फजुद्दीन भाई, अबरार अफजाल। और मोहल्ला हलवायान शेखपुर बिजनौर से हैं मोहम्मद बकाया फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीम परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, और साथ में हैं हिना कौशल और साजदा रानी। तो सुनवाते हैं आपको ये गीत।

श्रोताओं, ये फिल्म थी धुरंधर और इस गीत को गाया था, आवाज़ दी थी साथ ही सतेंद्र सरताज और जस्मी संदल ने। आप सुनवाते हैं आपको ये गीत। फिल्म का नाम है आशिक बनाया आपने, बोल हैं समीर के, संगीत है नदीम शाह हिमेश रेशमिया का, और इसे गाया है श्रेया घोषाल और हिमेश रेशमिया ने। अनुरोध है आप सभी का, आप हैं पीर बहोड़ा बरेली से आज़ाद खान, दिलशाद खान, मुस्तकीम तवस्सुम और महरुन निशा, ये हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल कमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश कौर और साथ में हैं शादाब खत्री। ये हैं कोटवा, नारायणपुर, बापट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। आप हैं रामप्रसाद शर्मा, फजुद्दीन, अजय शर्मा, मनोरमा देवी, वंदना, जयश्री देवी, रीता और साथ में विनोद लिख रहे हैं हमें होली चौक जिला बरेली से। तो सुनवाते हैं आपको ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनवाने जा रहे हैं आपको। फिल्म का नाम है हाँ मैंने भी प्यार किया और इसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। बोल हैं समीर।

संगीत है नदीम श्रवण का, और अनुरोध आप सभी का है। आप हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गौड़कर, श्रद्धा गौड़कर, प्रिंस कांच गौड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गौड़कर, प्रणीता गौड़कर, अर्जुन गौड़कर, और बहादुरपुर नागपुर से वैशाली शैलेंद्र गौड़कर, सुमित गौड़कर और ध्वन गौड़कर परी, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, अनिमा तिवारी, राजनांदगांव से याकूब, यूसुफ, इमरान और इरफान, इंदिरा विहार रायगढ़ से वसीम अकरम नूरजहां, लड्डू अकरम, बली अकरम नूरजहां और उल्ला अकरम नूरजहां, ये हैं साथी हमारे। अहम असलब सैफी, जैबुन शाह बेगम, अकरम सैफी, आबाद खान लिख रहे हैं बिलराव गेट कासगंज से, गुरु नानक नगर मलोड पंजाब से हैं राजीव सेतिया और रजनी सेतिया हैं, रजनी आरती सेतिया हैं, साथ में हैं सती तनीष सेतिया। आप हैं यादव मोहल्ला सनाबद एमपी से, दिलीप मालाकर, योगेश मालाकर, सुनीता मालाकर और मुस्कान मालाकर। प्रेम कमल वाष्णेय हैं सुशीला कमल वाष्णेय, प्रभात कमल वाष्णेय, अमरीश कमल वाष्णेय, सलोनी, सचिन, नीरू, कमल, देविका कमल वाष्णेय, कार्तिक कमल वाष्णेय, विजिचा कमल वाष्णेय और साथ में ऐश्वर्या कमल वाष्णेय। फूलबाग लछामनी बरेली से विश्वनाथ भारद्वाज, शिवदत्त भारद्वाज और ये साथी हमारे हैं विक्की भारद्वाज, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु, भावना, आदित्य, देवकी भारद्वाज, शिप्रा, नीलम और मुनिदेवी भारद्वाज, साथ में श्रीराम राठौर। आप हैं ग्रामा पोस्ट दौलतपुर से नरेश, मुस्कान, हिमांशु, सीतांशु और कमल अग्निहोत्री। आप लिख रहे हैं ककराकला पोस्ट, ककराकला है और भुता बरेली से हैं प्रेमपाल, सियाराम, राधेश्याम और ओमकार। ये पत्र हमें मिला है, ये साथी हमारे हैं प्रेम, राजबीर और इनके सभी परिवार के लोग लिख रहे हैं ग्राम मनकापुर तहसील फरीदपुर से। तो श्रोताओं सुनते हैं आप सभी के अनुरोध पर ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। समय मिलाइए दिन के पूरे 2 बजे हैं और इसी समय के साथ हम लेकर हाजिर होते हैं कव्वाली लोकगीतों और गजलों के सफर को, जिसका नाम हमने दिया है रस रंग। तो लीजिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस कव्वाली के साथ।

0: आप टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: संदेश से पहले आप नजान अजीज नजान की आवाज में कव्वाली सुन रहे थे, बाबू दुनिया मतलब की। और इसके बाद आपको सुनवाते हैं पंकज उदास की आवाज में ये गजल, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई।

राजा तुम खड़े देखो तमाशा, मैं कैसा इंसाफ करूंगी। वीणा की आवाज में अभी आप ये लोकगीत सुन रहे थे और इस समय आप कार्यक्रम सुन रहे हैं रस रंग। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत चंदन दास की ये गजल आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके दिल में क्या है बता दीजिए।

चंदन दास की आवाज में इस गजल के बाद अब अंतिम प्रस्तुति की ओर रुख कर लेते हैं। वत्सला शर्मा की आवाज में ये लोकगीत अब आप तक भेज रहे हैं, जो कि कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है। सासुर पनिया कैसे जाऊं, रसीले दो नैना।

इसी लोकगीत के साथ श्रोताओं कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर और आज का रसरंग कार्यक्रम अब यहीं तक समय मिला लीजिए। दिन के 2:30 हुए हैं। अब हम आगे के कार्यक्रमों के लिए आपको ले चलते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी के मुंबई केंद्र।

आज और कल फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और संगीत रवि का। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब अगला जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, ये बहुरानी फिल्म का गाना लता मंगेशकर ने गाया है, साहिल लुधियानवी ने लिखा है और संगीत तैयार किया श्री रामचंद्र ने।

0: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं,
0: क्या
1: जैसे
0: बात है।
1: मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया, ये गाना लता मंगेशकर ने गाया है। फिल्म का नाम अकेली मत जइयो।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं ये बंदिनी फिल्म का गाना, आवाज लता मंगेशकर की, गुलजार के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

अब आपको जो गीत हम सुनवाने जा रहे हैं ये सुमन कल्याणपुर की आवाज में है, बीडी मिश्रा ने लिखा है, एसएन त्रिपाठी का संगीत है और फिल्म का नाम बीन का जादू।

आइए अब सुना जाए ब्लफ मास्टर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना बेगाना फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सपन जगमोहन का संगीत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, कैप्टन शेरू। इस फिल्म का ये गाना सुमन कल्याणपुर ने गाया है, नक्श लायलपुरी के बोल और संगीत है एस मोहिंदर का। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मेरा यानी मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: बस वही जैसे आपने पूछा क्या हाल है तो हमेशा की तरह हम कहते हैं बहुत अच्छे हैं
1: और उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे। ये बताइए जरा कि जब आप कहीं समंदर के किनारे जाती हैं तो लहरों में खूब मौज मस्ती करती होंगी निश्चित रूप से।
2: बिल्कुल।
1: फिर वहां जाती हैं तो क्या छोड़कर आती हैं और क्या लेकर आती हैं?
2: देखिए हम जो हैं उस बात का ध्यान रखते हैं कि पहली बात तो हम अपनी सावधानी का ज्यादा ध्यान रखते हैं। छोड़ने की बात से पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितना लहरों के बीच में जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए, तो उस हिसाब से हम जाते हैं। और रेत जो होती है ममता जी वो अक्सर आप जहाँ पैर रखेंगे दूसरा पैर आगे बढ़ाएंगे तो वहां खिसकती है रेत। तो अगर आप भूल से भी किसी पत्थर पर खड़े हो जाते हैं और जब आप पैर नीचे रखेंगे तो आपका पैर बहुत अंदर तक जाएगा, तो ये सावधानी हमें
1: बिल्कुल
2: बताई थी।
1: ये कहा जाता है ना कि आग और पानी का कोई भरोसा नहीं होता है, तो खास तौर से समंदर का तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। और जो जैसे कि मुंबई तटीय इलाका है और यहाँ पर बीच है और नियमित रूप से लोग आते जाते हैं तो यहाँ का मालूम है यहाँ के निवासियों को, और इतना गहरा भी नहीं है समंदर यहाँ का। लेकिन बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर महासागर की गहराई ज्यादा है और जो बहुत इंटीरियर बीच है वहां जब आप जाते हैं तो इन सब बातों का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप बहुत अंदर तक पानी में ना जाएं और कहीं पर रेत धसकती है। और कुछ ऐसे जगह खास तौर से रायगढ़ में एक जगह है दापोली जहां पर हमने देखा, हमने खुद देखा है कि वहां पर पैर रखिए तो आप एक जरा सा कुछ सेकंड के लिए खड़े होंगे तो आपके पैर मतलब घुटने तक रेत चली जाती है इतना तक। और कई बार गाड़ियां वहां पार्क की जाती हैं, गाड़ियां फंस जाती हैं और ये बाकायदा इंसिडेंट होते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि आप कहाँ जहाँ जा रहे हैं पहले वहाँ के बारे में सावधानी और नियमावली पढ़ लें उस जगह के बारे में, उस समंदर के बारे में। और एक बात और है जो आप भी जानती होंगी कि वहाँ पर ढेर सारा कचरा छोड़कर ना आए, बताइए आप क्या कहेंगी?
2: क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग घर से या तो खाने के लिए कुछ चीजें ले जाते हैं या वहाँ से परचेज करके खाते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लगी रहती है तो उसमें जो पॉलिथीन चीज जैसी चीज होती है या आपने दोने में कोई चीज खाई है तो वो सब वहीं पे छोड़ के चले आते हैं, तो वो वापस समुद्र में जाते हैं जो उसको दूषित कर देता है पानी
1: और आपको वापस देता भी है,
2: वापस पलट के वो लहरों के थ्रू वापस आता भी है।
1: तो ये कहने का मतलब है कि आप मुझे जो दोगे मैं वही वापस करूंगा। मतलब समंदर ये एक तरह से मूक भाषा में ये कहता है,
2: संदेश देता
1: तो है। ये मत करिए, जब आपको मालूम है कि आपने पैर डाला पानी में और एक पॉलीथिन फंस गया और एक कचरा कागज का टुकड़ा या कुछ भी आ गया तो बहुत बुरा सा लगता है ना, आपको डर भी लगता है कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं आ गया, मछली तो नहीं आ गई।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि जैसा हम करेंगे जैसा वो उसके साथ करेंगे वो भी वापस जवाब देता है, तो हमें इन सब की खूबसूरती को अगर देखने जाना है तो आप देखिए खाइए पीजिए, लेकिन आप उस कचरे को या तो आप अपने साथ किसी पॉलिथीन में पैकेट में झोले में रख के ले आइए अपने घर में आसपास जो आपका कचरा दान उसमें डालिए, या वहां पर भी रहते हैं कचरे के डिब्बे तो आप उसमें डालिए, वहां समुद्र के वातावरण को उसके किनारे को उसकी सुंदरता को नष्ट नहीं करिए इसका ध्यान।
1: और बारिश के मौसम में समंदर के हर बीच पर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मुंबई में भी खास तौर से एक बीच है अक्सा बीच जो कहा जाता है, वो थोड़ा सा गहरा है तो वहां पर हर साल बारिश में दुर्घटनाएं घटित होती हैं और ये कहा जाता है। और उस वहां पर जो युवाओं का झुंड है अक्सर जाता है
2: जी।
1: और हर साल कुछ न कुछ हादसे होते हैं, तो प्लीज अपनी जिंदगी का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें कि कितनी अनमोल है जिंदगी। और आज विश्व सागर दिवस पर ये जो बातें हम चर्चा कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हमारे श्रोताओं के कुछ अनुभव होंगे, खट्टे मीठे अनुभव साझा करें बजाय ये लिखने की हमने बहुत सारी बातें तो साझा कर दी है और कोई एक तरह की टिप्पणी हमारे श्रोता लिख रहे हैं, तो उसकी बजाय अपने अनुभव साझा करें, हम आप तक पहुंचाएंगे। अब क्या करें हम?
2: अब गीत सुना दीजिए।
1: चलिए सुनते हैं गाना।

0: तो ममता जी, हम पहले विषय बता देते हैं कि हम बात करेंगे व्यंजन में मथुरा की दाल और आलू की कचौड़ी जो वहां पे प्रसिद्ध है उसके बारे में, और एक विषय हमारा है तपाक से बोलने की आदत। तो हमारे साथी इस पर लिखकर भेज चुके हैं, और जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेद भारती के पेज से वो भी लिखकर भेजे। और धरती की धड़कन है महासागर, विश्व महासागर दिवस पर
1: वो हमने बताई
0: दिया है। और कथा सुधा में हम आभूषण का भाग दो सुनेंगे।
1: और तपाक से बोलने की जो आदत है, कई बार लोग तपाक से बोलने के चक्कर में गलत बोल जाते हैं, तो जरा सोच समझ के बोलिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। तो जब बोले तो सोच समझ के। फिलहाल ये गाना सुने।

0: आइए सुनते हैं कथा सुधा कहानी आभूषण इसका भाग दो।
1: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी।

0: कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना,
2: शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे, पर यूरोप से लौटने पर उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से, या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। वो पहले कलकत्ते गया। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। विमल उन गिनती के 2-4 मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। कुंवर सुरेश सिंह की नव वधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी। पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
1: आइए सुनते हैं इस कहानी की दूसरी कड़ी।
2: मंगला को केवल अपनी रूपहीनता का ही रोना न था, शीतला का अनुपम रूप लालित्य भी उसकी कामनाओं का बाधक था, बल्कि ये उसकी आशा लताओं पर पड़ने वाला तुषार था। मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी, चाहे वो कितना ही वेश बदल कर आवे। सुरेश इसी मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे, उसे बलात् निकाल देना चाहते थे, किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार नहीं होता। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। वो एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी, जिसने एक ही धावे में समस्त हृदय राज्य को जीत लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है,

एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है, पर उसके मन का ये खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। वो मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र थी। वो अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा। यदि वो सुंदर नहीं है तो उसका क्या दोष, पर उनका ये सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता था। वो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन के बदलते हुए भावों को देखते थे, पर एक पक्षाघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते हुए देखकर भी रोकने का कोई उपाय न कर सकते थे। परिणाम क्या होगा ये सोचने का उन्हें साहस ही न होता था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया।

0: एक दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी थी, पंखा झलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बगीचे में भी न जाता था। पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी, जो जहां था वहीं मुर्दा सा पड़ा था। आग से सेके हुए मृदंग की भांति लोगों के स्वर कर्कश हो गए थे। साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे, जैसे साधारण संघर्षण से वन के वृक्ष जल उठते हैं। सुरेश सिंह कभी चार कदम टहलते फिर हांफकर बैठ जाते थे। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज सुनाई दी।
1: पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
2: क्या बात है,
1: मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली।
0: चौंके, फिर क्रोध आया। मधुर गान कानों को अप्रिय जान पड़ा।
3: ये क्या बेवक्त की शहनाई है, यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सूची है।
1: रूप सुहाना लगता,
3: मंगला ने बुलाया होगा और क्या। लोग नाहक ही कहते हैं कि स्त्रियों का जीवन का आधार प्रेम है, उनके जीवन का आधार वही भोजन, निद्रा, राग रंग, आमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है। घंटे भर तो सुन चुका, ये गीत कभी बंद होगा भी या नहीं। साहब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं।
0: अंत को न रहा गया, जनान खाने में आकर बोले,
3: ये तुम लोगों ने क्या कांव-कांव मचा रखी है, हाँ? ये गाने बजाने का कौन सा समय है, बाहर बैठना मुश्किल हो गया।
0: सन्नाटा छा गया, जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सिर झुका लिए और सिमट गईं। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई, पति को बुलाया और आहिस्ते से बोली,
4: अरे क्या बात है, इतना क्यों बिगड़ रहे हो आखिर।
3: मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता।
4: तुम्हें सुनाता ही कौन है, क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है।
3: फजूल की मचमच,
4: तुमसे मतलब।
3: मैं अपने घर में ये कोलाहल न मचने दूंगा।
4: तो मेरा घर कहीं और है।
3: इन सबसे कह दो फिर किसी वक्त आए।
4: हाँ हाँ, इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता है ना।
3: ओहो हाँ हाँ हाँ, इसीलिए।
4: तुम क्या सदा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे। तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसी ठट्ठे की आवाज अंदर सुनाई देती है। मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरे कामों में दखल अंदाजी क्यों करते हो भला।
3: इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूँ।
4: स्वामी हूँ, स्वामी हूँ, तुम बाहर के स्वामी हो, यहाँ इस घर में मेरा अधिकार है।
3: क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो, मुझे चिढ़ाने से क्या मिलेगा तुम्हें, हाँ?
4: अच्छी बात है, जब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं तो मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अब तक भ्रम में थी, आज तुमने वो भ्रम मेरा

0: मिटा दिया। मेरा इस घर पर अधिकार कभी था ही नहीं। जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं हो सकता।
1: अरे सुनो, बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो? मेरा यह मतलब नहीं था। कुछ का कुछ समझ गई तुम तो।
0: मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भावों को छिपा लेते हैं।
2: सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही ये और भी जलीकटी सुनाएगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चले आए।

प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंसू पोंछ रही हैं। कई नौकर आसपास खड़े हैं। सभी की आंखें सजल और मुख उदास है, मानो बहु विदा हो रही है। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। ये मेरा अपमान कर रही है, मेरा सिर नीचा कर रही है। जहां चाहे जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। यूं बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का अर्थ ये है कि मैं इसका कोई नहीं, फिर मैं इसे रोकने वाला कौन। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई, उनकी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं ताका।

0: मंगला पांव पैदल चली जा रही थी। एक बड़े तालुकेदार की औरत के लिए ये मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थीं। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
1: मंगला बहन, जरा अंदर आकर दम ले लो। ये क्या हुआ?
2: शीतला बहन, जो भाग्य में लिखा था वही हुआ, और क्या।
1: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
2: मुंह से कुछ न कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती ना।
1: अरे तो क्या अब यहां तक नौबत आ गई है?
2: चाहती तो अब भी वहीं पड़ी रहती, उसी घर में जीवन कट जाता। पर जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं।
1: तुम्हारा मैका कहां है?
2: मैं के कौन मुंह लेकर जाऊंगी मैं भला?
1: अरे तो तब कहां जाओगी?
2: ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के दरबार में पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। शायद पहले जन्म की पिशाचिनियां ही बदसूरत औरतें होती हैं। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
0: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। सोचा,
1: इसे क्या खिलाऊंगी, आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं।
0: मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही,
1: मैं कैसी अभागिन हूं जिस प्रेम को ना पाकर ये बेचारी जीवन को त्याग रही है। उसी प्रेम को मैंने पांव से ठुकरा दिया। इसे जेवर की क्या कमी थी? क्या ये सारे जड़ाऊ

0: देवर इसे सुखी रख सके, इसने उन्हें पांव से ठुकरा दिया। उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। हाँ, ना जाने वो कहाँ है, किस दशा में है।
1: अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।

मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण की दूसरी कड़ी आपने सुनी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आगे कहाँ पहुँचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: और हम बात करने वाले हैं धरती की धड़कन है महासागर, क्योंकि आज है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है और महासागर वातावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूर्य की ऊष्मा को अपने भीतर समाहित कर तापमान को नियंत्रित करते हैं। यदि महासागर ना हो तो धरती पर कहीं अत्यधिक गर्मी और कहीं असहनीय ठंड हो जाती है। वर्षा चक्र भी महासागरों के कारण ही संभव है और समुद्र से उठती जल वाष्प बादलों का रूप लेकर खेतों, जंगलों और नदियों को जीवन देती है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। महासागर जैव विविधता का अनमोल खजाना है। लाखों तरह के जीव जंतु वनस्पतियां समुद्र में निवास करती हैं और छोटी मछलियों से लेकर विशाल वेल तक हर जीव समुद्री जीवन की अद्भुत दुनिया का हिस्सा है। करोड़ों लोगों की आजीविका भी महासागरों पर निर्भर होती है। कितने सारे लोग मछली पकड़ने जाते हैं, पूरी आजीविका उन पर टिकी होती है। आप तो यहीं मुंबई जहां विविध भारती का स्टूडियो स्थित है, यहां के तमाम बीच पर जाइए तो मछलियां सूखती रहती हैं, तो ये उनकी आजीविका का स्रोत है। और जरा उनके बारे में सोचिए कि जो मछुआरे कई कई दिन तक मछली पकड़ने के लिए अपनी छोटी सी नैया लेकर चले जाते हैं बहुत दूर तक, और कई बार तूफान आ जाता है तो उन तूफानों से लड़ते हैं। तो जब हम समंदर में सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं तो ये इन बातों का भी ख्याल रखें कि हम जब सागर हमें इतना कुछ दे रहा है तो हम भी सागर के लिए कुछ कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, कि उसकी सुरक्षा साफ सफाई का ख्याल रख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और मछली तो वहां पर मिलती ही मिलती है, मछली पालन भी किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बहुत ही बहुमूल्य रत्न भी समुद्र से महासागरों से पाए जाते हैं।
0: तेल मिलता है जिससे जो बहुत बड़ा स्रोत है हम सब
1: ईंधन का साधन है, और व्यापार और पर्यटन और परिवहन जैसे अनेक कार्य समुद्रों के कारण ही चलते हैं। और इसका जो इतना महत्व होने के बावजूद भी ममता जी आज महासागर संकट में है। प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बनता जा रहा है। यदि हम समय रहते नहीं जाग गए तो इसका प्रभाव पूरी मानव सभ्यता पर नजर आएगा।
0: बिल्कुल। हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि समंदर, नदियों और तालाब में गजब का आकर्षण छिपा है। ये सब प्रकृति के महत्वपूर्ण उपादान है। रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, समुद्र में ही नहीं नदियों, तालाब और जहां जहां पानी है वहां उठती है फेनिल हिलोरें, और मन की आंतरिक सतह में एक मीठा झरना गुनगुनाने लगता है। क्या बात है, रात चांदनी की जब बात कही तो चांदनी रात में समंदर के किनारे बैठना, समंदर के किनारे सैर करना बहुत सुहाता है। हालांकि रात में समंदर का शोर डराता भी है मन को, लेकिन सुखद भी लगता है।
1: ऐसा लगता है कि वो जब उसके किनारे आप टहल रहे होंगे तो लगेगा लहरें आपको पीछे से घेर लेती हैं, ऐसा लगता है वो दृश्य।
0: इसी तरह की बात हमारी एक और सखी लिख रही है कि आसमानी रंग को अपने तन पर समेटे हुए सुंदरता को बिखेरता हुआ नजर आता है जो मनमोहिनी का काम करता है। उसकी अपार सुंदरता बरबस ये आकर्षित करती है। दूध सी आती शुभ्र उर्मी जब पैरों से टकराती है तो ऐसा लगता है किसी ने पांव में पायल बांध दी, और नूपुर बज उठते हैं, उससे निकलता संगीत मन को गहराई तक छू जाता है। क्या बात है भाई, आज तो हमारी सखियां बड़ी ललित भाषा में ये बातें लिख रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शुक्रिया अदा करते हैं
1: जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि महासागर धरती की धड़कन की तरह है जो पूरी पृथ्वी के जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। विशाल और गहरे महासागर न केवल प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि जलवायु को नियंत्रित करने, वर्षा लाने और असंख्य जीवों को जीवन देने का कार्य भी करते हैं। समुद्र की लहरों की मधुर आवाज मन को शांति देती है और हमें प्रकृति की अपार शक्ति का एहसास कराती है। धरती पर जीवन का आधार माने जाने वाले महासागर मानव, पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए अनमोल धरोहर हैं। इसलिए हमें महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी महिमा के महत्व को समझ सके।
0: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और मंजरी जी, आपने समुद्र एक संदेश भी देता है, उस संदेश को कभी सुना है? जब हम बहुत ध्यान से समंदर की लहरों को उठती गिरते देखे तो एक संदेश होता है। हम सब ये महसूस करते हैं कि एक बार उठना और गिरना ये इंसान की भी फितरत होती है। तो जब बहुत ऊंचाई पर जाएं तो कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। कुछ इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता भी लिख रहे हैं, हमारे सखा है ये। इन्होंने लिखा है कि समुद्र की धड़कनों से उसकी अनंत गहराई मनुष्य को जीना सिखाती है। इतनी ऊंची लहरें मन को सुकून तो देती हैं, ये कहती हैं कि जरूरत से ज्यादा, सीमा से ज्यादा ऊंचा उठना भी एक दिन वापस आना बताती है। बहुत सी चीजें हमें देती हैं, लेकिन हम सब जाएं

0: तो वहाँ स्वच्छता साफ सफाई जरूर रखें। ये एक बात है कि ये कहा जाता है कि जब हम बहुत ऊंचाई तक ये उड़ते हैं लोग, मतलब ऊंचे ख्वाब देखते
1: ऊंचे
0: हैं
1: ख्वाब देखते
0: और
1: हैं।
0: ये अपनी अपनी जड़ों को, जमीन को भूल जाते हैं, तब ये बात हम कहते हैं कि ज्यादा मत उड़ो, जब गिरोगे तो चोट ज्यादा लगेगी, है ना।
1: बिल्कुल, जब आप ये
0: तो
1: बात कह रही थी ममता जी,
0: हाँ
1: तो मेरी जो सोच थी वो चली गई थी।

0: जो सोच थी वो चली गई थी आपके ऊपर कि आप जो साहित्य लिखती हैं, साहित्य की दृष्टि, आपकी जो कलम चलती है, तो उस नजरिए से आपने बहुत बड़ी बात कही थी इसमें कि लहरें ऊपर भी उठाती हैं और नीचे भी गिराती
1: शुक्रिया
0: हैं।
1: मंजरी जी।
0: जी
1: लेकिन ये जब हम किसी भी जगह जाते हैं
0: जी
1: तो बजाय सिर्फ मौज मस्ती के गाना बजाना और खाना पीना करने के बजाय, हम प्रकृति के उन नजारों को ध्यान से देखें, अपनी आंखों से देखें, उसे महसूस करें,
0: जी
1: आत्मसात करें, तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो हम ही से जुड़ी हुई हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। इस तरह हमारे एक साथी भी लिखते हैं कि महासागर प्रकृति के अनमोल देन है, वे केवल पानी का विशाल विस्तार नहीं बल्कि धरती पर जीवन को बनाए रखने वाली शक्ति है। उनकी अथाह गहराई में असंख्य जीवों का संसार बसता है और उनकी लहरें प्रकृति के निरंतर प्रवाह का संदेश देती है। महासागर हमारे मौसम को संतुलित रखते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, मानव जीवन के लिए अनेक संसाधन प्रदान करते हैं। इनकी स्वच्छता और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। यदि महासागर स्वस्थ रहेंगे तो धरती भी स्वस्थ और जीवन से भरपूर रहेगी, और इनको स्वस्थ रखने में हम सभी को ही अपना योगदान देना चाहिए।
1: उफ, इतनी सारी टिप्पणियां हैं मंजरी जी, क्या
0: बहुत सारी
1: कहें।
0: है।
1: लेकिन हम बहुत लंबी लंबी टिप्पणियां हैं तो शॉर्ट में पढ़ देते हैं। दो टिप्पणी एक साथ। महासागर को, एक सखा है हमारे लिख रहे हैं, महासागर को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और दिल की धड़कन, जो इस ग्रह के मौसम, जलवायु और जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी के गर्भ में एक रहस्यमय धड़कन हर 26 सेकंड में सूक्ष्म कंपन का स्रोत अटलांटिक महासागर की लहरों को ही माना जाता है। महासागर एक विशाल कार्बन सिंक है जो हमारे वायुमंडल से करीब 25% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशेषित कर लेता है। और एक हमारे श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है कि विविध भारती के सभी को नमस्कार। और एक श्रोता ने लिखा है कि महासागर न केवल पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करता है, बल्कि ये हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है, हमारे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है और ग्रह के जलचक्र को बनाए रखता है। महासागर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन के लिए आवश्यक है। ये एक जीवन रेखा है।
0: और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि अक्सर ये बात कही या सुनी जाती है कि दिल सागर जैसा विशाल रखिए। सागर जो हमें अपार सहनशीलता या विशाल दृष्टिकोण और निस्वार्थ प्रेम सिखाता है। इस धरती की हर गंदगी अपने में समाकर खुद खारा यानी नमकीन बन जाता है। बदले में कड़ी धूप और गर्मी सहन करते हुए जल से बादल बनाकर बरसात द्वारा हमें मीठा पानी देता है, मतलब खुद जहर पीकर हमें अमृत देता है। जैसे मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसी का जीना है जो
1: क्या
0: औरों को
1: बात है।
0: जीवन
1: अब
0: देता है।
1: देखते हैं कि आनंद बख्शी साहब ने इस गाने में समंदर के बारे में क्या लिखा है। लता मंगेशकर ने स्वर दिया है और सचिन देवबर्मन ने संगीत दिया। फिल्म बारूद।

0: बारूद फिल्म का ये गाना था और समंदर के लिए आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था।
1: देखिए ना कुछ कहने वाले
0: अरे
1: हैं,
0: आपने मुझे बोले ही नहीं थे, काट दिया।
1: देखो यही तो बात होती है ना कि क्या हम
0: तपाक से,
1: तपाक से
0: मतलब ये तपाक से बोलना हुआ,
1: तपाक से बोलना हुआ
0: लेकिन कई बार जरूरी बात रह जाती है ना तपाक से बोलने पर।
1: बिल्कुल सही बात है, तपाक से इसीलिए कई बार जब ऐसा बोला ना कि तपाक से बोल दिया तो उसका अंजाम भी बहुत गलत हो जाता है।
0: नहीं कई बार सही भी तो हो जाता है,
1: कई बार सही हो जाता है।
0: जैसे अभी हम तो तपाक से बोलने की बात पर हमें बतियाना था तो आपने तो सही किया लेकिन आप घबरा गई,
1: हमें लगा कहीं तपाक से बोले तो कहीं वो गलत ना असर पड़ जाए। तो ऐसा कई बार हो भी जाता है कि हम ना चाहते हुए भी बोल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ममता जी, हाँ। कि मतलब वो
0: अच्छी बात बोल देते हैं, कोई जानकारी होती है और वो तपाक से बोल देते हैं कि ये नहीं ये ऐसा था।
1: बिल्कुल, और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना सोचे समझे, बस चार लोग खड़े हैं और वो लोग बात कर रहे हैं, मालूम पड़ा आपने बिना सोचे समझे कि उनकी बात का क्या है मतलब है, कहाँ हमें बोलना नहीं चाहिए कहाँ बोलना है, वो तपाक से बोल देते। फिर उसका असर जो तीन सुन रहे होते, चार के बीच में आपने चौथे आपने बोल दिया, जो तीन सुन रहे हैं तो उनको बड़ा लगता है अरे ये क्या बात कर दी इसने, मतलब किसी का आप कटाक्ष भी कर देते हैं तपाक से बोलने वाले। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं तो इसका नुकसान भी होता है, लोग गलत समझ सकते हैं, कभी कभी सीधी बात सामने वालों को कठोर या बहुत ही अपमानजनक लग सकती है, और कभी कभी रिश्तों में तनाव भी आ जाता है और हर व्यक्ति जो है वो सच सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता है ममता जी, और बिना सोच समझ कर कही गई बात रिश्तों में दूरी भी ला सकती है।
0: लेकिन हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि मुझे तो तपाक से बोलने की आदत है और मुझे पता है कि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन क्या करूं जब कोई गलत करता है तो अपने को मैं रोक नहीं पाती, अपने बातों से चतुर बनने की कोशिश करता है कोई तो मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाता है, मैं बोल देती हूँ भाई कोई गलत बात कह रहा है तो आपको बोलना ही चाहिए तपाक से।
1: बिल्कुल,
0: तो सामने वाले की गलती भी उजागर हो जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि बड़ों ने कहा है, कुछ कहावत भी है कि कुछ भी बोलो तो पहले सोच समझ के फिर बोलो, तपाक से कुछ भी बोल जाने से हमारे मुंह से गलत निकल सकता है, किसी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, किसी को दुख पहुंच सकता है, किसी का हम अपमान कर जाएंगे, सारी हानि हमें ही होगी, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो, तपाक से मत बोलो।
1: और हमारे साथी लिखते हैं कि तपाक से बोले शब्द तीर बन जाते हैं जो दिलों को बर्बाद करते हैं, जबकि सोच समझ कर बोले शब्द मोती होते हैं जो कभी चुपते नहीं बल्कि सजे हार बनकर रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं। और इसी तरह हमारे साथी और लिखते हैं कि अत्यधिक उत्तेजना व अहंकार में सामने वाले को तपाक से ऐसा कोई आप शब्द कटु शब्द ना बोले जिससे संबंधों रिश्तों में मतभेद कड़वाहट हो जाए, पहले तोले फिर बोले, नम्रता ममता भरे भाव मधुर बोले सभी जन से जिससे प्यार

0: स्नेह बढ़ता है, इन्होंने ये बात लिख करके
1: और हमारी एक सखी है, इन्होंने कहा है कि कुछ कह देना अक्सर बातचीत में गलतफहमी, विवाद या सामने वाले को ठेस पहुंचाने का कारण बनता है, इसलिए इसे आमतौर पर एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती। बिना सोचे बोले गए शब्दों में अक्सर सही संदर्भ की कमी होती है, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है।
0: और हमारे एक साथी देखिए और भी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत हमारे व्यक्ति की विशेषता होती है। जहां लोग दिल की बात बिना लाग लपेट के कह देते हैं, वहीं तपाक से बिना सोचे समझे बोली गई बात जिसमें उतावलापन, रूखापन या दूसरों की बात काटने का उद्देश्य हो, मित्रों, आपसी रिश्तों और कार्यस्थल पर मुश्किलें भी पैदा कर सकती है, लेकिन शिष्टता, संयम और सम्मान के साथ तपाक से बोली गई बात आपको सम्मान के साथ आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाती है।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि जल्दबाजी, अत्यधिक उत्साह या चिंता शामिल है तपाक से बोलने में, इसे एक बातूनी या वाचाल स्वभाव कहा जाता है। इस आदत को सुधारने और कम बोलने की आदत डालने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। सुनने की आदत डालें, दूसरों की बात को ध्यान से सुने और बीच में न काटें। आज तो मंजरी जी ने हमें काटा बीच से, कहा कि तपाक से बोलने के लिए, तो भाई मैं मान गई, चुप हो गई और मैंने कहा कि हाँ क्या कहना चाहती हैं। तो कई बार पते की बात कहने के लिए भी काट दिया जाता है, तो अच्छी बात है कि अगर हम घड़ी की ओर देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी बातें करनी है, तो इसलिए एक दूसरे को काटकर अगर बोलते हैं तो वो अपनी जगह पर सही है।
0: बिल्कुल।
1: तो इनका कहना भी सही कि कुछ कहने से पहले 3-5 सेकंड का समय लें, सोच लें और उसके बाद मन को शांत करके बोलें और चिंता में और गुस्से में ना बोलें। और भी बहुत लंबी सी टिप्पणी इन्होंने लिखी है।
0: देखिए, एक बड़ा मजेदार सा संदेश मिला है मुझे, ममता जी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत कुछ मर्दों में होती है, लेकिन प्राय महिलाओं में ये आदत होती है, अच्छी तरह एक ऑटोमेटिक मशीन जैसी होती है, इन्होंने लिखा है। पड़ोसी का पति
1: विश्लेषण किया है इन्होंने।
0: देखिए ना, पड़ोसी की पति से लड़ती पड़ोसन के तपाक से बोलने की आदत को ताज्जुब करता हूँ। कभी कभी हमारी भी ऐसी करती है, अब नहीं तो कहकर सर मैं उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचाऊं।
1: अच्छा, वैसे झगड़े के वक्त तो शब्द अपने आप फूटते हैं ना, फटाफट फटाफट
0: तपाक से
1: ऐसे नॉर्मल बातचीत में कई बार लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन झगड़े के वक्त जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं, देखा है कि वो भी बहुत तेजी से और फास्ट बोलने लगते हैं।
0: सही बात
1: तो
0: है।
1: ये क्या वजह है, हमें लगता है कि
0: बड़े बैठे होते हैं इसलिए बोल जाते होंगे।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि तपाक से बोलने या बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत अक्सर बातचीत में खटास डाल देती है। और भी कुछ कहना चाहती है?
0: नहीं, अब गीत सुन लेते हैं।
1: सुनते हैं।

0: आज नहीं तो कल कह लेंगे, लेकिन आप हम
1: हमें
0: कल
1: आज ही कहना पड़ेगा
0: तुरंत कहना पड़ेगा और तपाक से, तो तपाक से बताइए कौन सी रेसिपी तैयार की गई है आज।
1: बस हम तैयार करने वाले हैं मथुरा की आलू की खस्ता कचौड़ी, जिसे आलू की सब्जी के साथ भी खाते हैं और चटनी के साथ भी
0: तो
1: खाते
0: ये
1: हैं।
0: रेसिपी सिर्फ बता रहे हैं, बनाया भी है कभी, बनाती भी है?
1: नहीं, वैसे तो देखिए आलू की कचौड़ी और दाल की कचौड़ी तो सब घर में बनती है, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ की इसमें क्या खास बात है।
0: अरे आपने समझा ही नहीं, बनाने से मतलब है कि बना के खिलाया जाता है ना,
1: अभी तो
0: सिर्फ बनाया नहीं जाता है।
1: जी वो तो मैं जानती हूँ, आपके इशारे, आपकी आंखों की जो चमक थी वो मैं समझ गई थी।
0: तो कौन सा व्यंजन आप बना रही
1: हैं? आलू की खस्ता कचौड़ी बताते हैं। इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 4 बड़े चम्मच तेल या घी मोयन के लिए लेना है, 1/2 छोटा चम्मच नमक, गुनगुना पानी, आलू की ब्रावन के लिए आपको लेना है 2 या 4 उबले आलू लीजिए और हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा लीजिए, साबुत धनिया लीजिएगा उसको दरदरा कर लीजिए, और 1/2 छोटा चम्मच हींग लेना है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच अमचूर और नमक स्वाद के अनुसार, और 4 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया लेना है, तलने के लिए तेल भी आपको अलग से रखना है। और इसको बनाना है कि सबसे पहले मैदे में नमक मोयन डालकर अच्छी तरह इसको मिला लीजिए, और जब आपके हाथ से दबने लगे तो समझ लीजिए कि मोयन आपका रेडी सही लगा इसमें, और पानी डालकर थोड़ा सा इसको गूंथ लीजिए नरम नरम, और करीब 20 मिनट के लिए आप रखिए। और आप एक कढ़ाई में तेल गरम करिए, उसमें हींग सौंफ धनिया डालिए, हरी मिर्च डालिए और उबले आलू हाथ से तोड़कर डालें, सारे मसाले नमक डाल करके आप मिला लें अच्छे से, हरी धनिया भी आप इसमें डाल दीजिए, और मिश्रण सूखा और मसालेदार जब हो जाएगा तब आप उसको किनारे रख लें। अब कचौड़ी की जो आटा साना है उससे लोइयां बनाइए, उसमें आलू का भ्रावन भरिए और इसको आप हल्के से हाथ से दबाकर बेल लें, या फिर आप हथेली से दबाएं या बेलन से बेलें, और इसको आप सुनहरा धीमी आंच पर आप इसको तल लें, तो ये आपकी आलू की खस्ता कचौड़ियां तैयार हो जाएगी।
0: तो जब भी बनाना हो तो बना सकते हैं, और मंजरी जी बना के लाएंगी तो हमें जरूर खिलाएंगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और अब तो हमने माइक्रोफोन पर कह दिया है ये बात,
1: बिल्कुल ये ताली भी नहीं जाएगी।
0: अब दाल की खस्ता कचौड़ी कैसे बनाएं ये भी आप जरा सुन लीजिए हमारे सारे श्रोताओं के साथ। दाल की खस्ता कचौड़ी के लिए भरावन के लिए पहले तो सामग्री बता दें, 1/2 कप धुली उड़द की दाल 4-5 घंटे भिगोई हो जो, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा कुटा हुआ और 1/4 छोटा चम्मच हींग, या हींग तो चुटकी भर अंदाजे से डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला 1 छोटे चम्मच से मतलब चुटकी भर, और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार 2 बड़े चम्मच तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब भरावन कैसे बनाएं, भीगी उड़द की दाल का पानी निकालकर दरदरा पीस लें, कढ़ाई में तेल गरम करें, हींग सौंफ और धनिया इसमें डालें, अब दाल मध्यम आंच पर भून लें, सारे मसाले नमक डालें, मिश्रण सूखा और खुशबूदार होने तक पकाएं, ठंडा होने दें। अब कचौड़ी बेलें, आटे की छोटी लोई बनाकर बीच में दाल की भरावन भरें और धीमी आंच पर तेल में तलें, इसको आलू की पतली सब्जी और चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ भी खा सकते हैं
1: जी।
0: और अब ये गाना सुनें।

0: कहीं दिन कहीं रात फिल्म का गाना था, महेंद्र कपूर की आवाज थी। और अब घड़ी की ओर जरा देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत, आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 एफएम पर। शाम के 4 बजे हैं और अब आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर हमारा विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने सुनते हैं। जानते हैं कि आज कौन है हमारे आकाशवाणी के दीवाने।
1: मैं सुरेश मिश्रा मणिनाथ बरेली से बोल रहा हूँ। बड़े खुशी की बात है कि आकाशवाणी परिवार को, आकाशवाणी प्रसारण को 90 वर्ष पूर्ण हो गए। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आकाशवाणी एक ऐसा प्रसारण का सशक्त माध्यम है जिसको हम बचपन से सुनते चले आए हैं। संचार क्रांति के दौर में आकाशवाणी का स्थान अपनी जगह अलग है और किसी समय में सबसे महत्वपूर्ण प्रसारण का माध्यम आकाशवाणी हुआ करती थी। इवन क्रिकेट जैसा लोकप्रिय

0: खेल की कमेंट्री भी हम आकाशवाणी से ही सुनते थे। बदले हुए परिवेश में संचार क्रांति है, सूचना के बहुत तंत्र हैं, मनोरंजन के बहुत साधन हैं, परंतु आकाशवाणी भी अपनी ऐसी निरंतरता बनाए हुए है जो कि आज भी हमारी दिनचर्या आकाशवाणी से ही शुरू होती है। आकाशवाणी अगर रेडियो घर में ना बोले, मतलब आज तो मोबाइल फोन से बोलता है, ब्लूटूथ से बोलता है, स्पीकर में वो लगा लेते हैं, लेकिन किसी समय में फिलिप्स फ्लेटा हमारे घर में रेडियो हुआ करता था, ट्रांजिस्टर जिसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग आकाशवाणी के प्रसारण सुनते थे, जिसमें बहुत अच्छे कार्यक्रम सुनने को मिलते थे। कुछ कुछ ऐसे कार्यक्रम थे कि जिनको तो सुनना ही सुनना था। अगर क्रिकेट की कमेंट्री आ रही है, बचपन का याद है, आज मेरी आयु लगभग 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, लेकिन क्रिकेट की कमेंट्री का वो दौर याद है जब टेलीविजन नहीं था, तब देखते थे कि एक रेडियो बोल रहा है तो चार लोग कान लगाए बैठे हैं, सुन रहे हैं बड़ा गौर से, छक्का लगता है तब खुशी हो रही है, कैच पकड़ते हैं तब खुशी हो रही है। ये सब रेडियो पे कानों से सुनते हुए, झुंड के झुंड बना के देखते हुए देखा है। ऐसे में आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, आकाशवाणी परिवार को बधाई, आकाशवाणी के कर्मचारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आकाशवाणी के अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: तो हमारे आज के आकाशवाणी के दीवाने थे सुरेश मिश्रा, जो कि मणिनाथ से थे, और आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। देश की बगिया का सबसे महकता पुष्प हिंदी, जल ही जीवन है, इसका संरक्षण करें, इसे व्यर्थ ना बहाएं, हमेशा याद रखें जल का कोई विकल्प नहीं।

0: और अब श्रोताओं, समय हो चला है जब हम लेकर हाजिर होते हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। शुभ 4 FM आकाशवाणी बरेली आपने ट्यून किया है और समय हो गया है, हम भी लेकर हाजिर हो गए हैं उस कार्यक्रम को जिसका इंतजार आप संभवतः सुबह से ही करते हैं और हम भी करते हैं कि कब वो समय हो जब हम आपसे रूबरू हूँ। तो लीजिए, वो समय आ गया है, 4:05 हो गए हैं और कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हुए हैं आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आपको बताते चलें कि इस कार्यक्रम के लिए हम आपकी फोन कॉल्स को दिन में 2:30 पर रिकॉर्ड करते हैं, जिसके लिए फोन नंबर है 0581251700। वहीं फेसबुक के माध्यम से भी आज के प्रश्न को लेकर आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि जिन श्रोताओं की फोन कॉल्स आज के कार्यक्रम में शामिल हो गई है, वे कृपया 1 सप्ताह के अंतराल से हमें दोबारा कॉल करें। और श्रोताओं, अब देखते हैं कि पहले कौन से श्रोता हमारे हैं जिनका फोन कॉल शामिल हुआ है। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोरड़िया, तहसील नवाबगंज, जनपद बरेली से बोल रहे हैं मैम जी।
0: राजेंद्र गंगवार जी नवाबगंज बरेली से जुड़े हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए
1: मैम जी,
0: आकाशवाणी के 90 वर्षों की यादों को आप किस तरह संजो रहे हैं?
1: मैम जी, हम तो कम से कम 1999 की लपेट से आकाशवाणी को बहुत ही अच्छे से सपनों में सजो कर चलते चले आ रहे हैं और आगे भी सुनते चले आएंगे। बड़ा अच्छा लगता है हमें आकाशवाणी बरेली सुनना मैम जी।
0: तो अब 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं आकाशवाणी को, तो उसकी कैसी कोई खास याद के रूप में किस तरह से उसको यादगार बनाना चाहते हैं?
1: हम मैम जी यही यादगार बनाना चाहते हैं कि हमारी आकाशवाणी बरेली 2

0: प्रोग्राम से वैसे ही बढ़ते रहे और अच्छा प्रोग्राम देते रहे तो हर श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा मैम जी, और आपको भी, आप भी बड़े मेहनत से करते हो प्रोग्राम तो अच्छा लगता है मैम जी।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए आज गीत कौन सा सुनेंगे?
0: हाँ तो आज विषय है आकाशवाणी को आप कैसे सजो कर रखते हैं, तो इसी के ऊपर है कि मन का रेडियो बजने दे जरा, यही सॉन्ग सुना दीजिएगा मैम जी। इसमें दो साथियों का नाम ले सकते हैं?
1: बिल्कुल जरूर लीजिए।
0: हाँ क्योंकि ये आकाशवाणी है जो आकाशवाणी के द्वारा हमें बड़े बड़े अच्छे प्यारे मित्र मिले और आरजे भी मिले जो इतनी प्यारी बातें होती हैं और इतने प्यारे प्रोग्राम देते हैं और लगते हैं सुनते चले आ रहे हैं तो अच्छा लगता है मैम जी। जैसे हमारे भगवान सिंह परमार जी हैं, शारुनूर अंसारी जी हैं,
1: बिल्कुल
0: शर्मा जी हैं, गंगाधर सावंकर जी हैं, सोनू जी हैं, साथ में आपको भी
1: बिल्कुल अपने साथियों के साथ सुनिए।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मन का रेडियो बजने दे जरा, और जब रेडियो बजता है ना तभी लगता है बस बजने ही दिया जाए और उसको सुनते सुनते घर के सारे काम कर लिए जाए, है ना। ऐसे ही गीत संगीत का समा बंधा हुआ है हमारे आज के इस कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। और कौन से हमारे श्रोता हैं जानते हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: जी हम मेवाराम बोल रहे हैं, ग्राम ककरा कला से।
1: ग्राम ककरा कला बरेली से मेवाराम जी हमसे जुड़े हुए हैं। बताइए जरा कि आकाशवाणी के 90 वर्षों की यादों को आप किस तरह संजो रहे हैं, उसको किस तरह इकट्ठा कर रहे हैं 90 वर्षों की यादों को।
2: सबसे पहले आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने की हार्दिक शुभकामना। और
1: जी
2: हम तो आकाशवाणी में जब हम फोन कॉल हमारी रिकॉर्ड होती है आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और हेलो किसान है और हेलो बरेली है, जब मेरी इसमें कॉल शामिल होती है तो मैं ये रिकॉर्ड बना लेता हूँ।
1: अच्छा, एक जगह मेंशन कर लेते हैं किसी रजिस्टर में, कुछ रजिस्टर बना रखा होगा आपने जहाँ आप ये डेट समय सब लिख के रखते हैं ना।
2: जी रजिस्टर में भी नोट कर लेते हैं, और ये चिप है उसमें हम अपना प्रोग्राम पूरा जो हमारी कॉल आती है उसमें पूरी डाउनलोड कर लेते हैं।
1: अच्छा, और फिर जब मन किया तब अपनी पुरानी जो है यादें ताजा कर ली, जो आपकी रेडियो से जुड़ी हुई यादें हैं आकाशवाणी के साथ, है ना।
2: जी,
1: उन्हें सुनकर बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी यादें आपने संजोई हैं आकाशवाणी से जुड़कर उसके 90 वर्षों तक की यादें। तो आज गीत कौन सा सुनेंगे मेवाराम जी?
2: जी गीत के बोला तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा।
1: बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: तो श्रोताओं, आप इस समय सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से आपकी बात आकाशवाणी के साथ। हमारी और कौन सी श्रोता फोन लाइन पर हैं जानते हैं। हेलो,
3: मैं कुमारी प्रियदर्शनी रानी बोल रही हूँ, दृष्टिबाधित
2: जी,
3: बरेली रामपुर गार्डन।
2: प्रियदर्शनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रामपुर गार्डन बरेली से। तो प्रियदर्शनी जी, बताइए कि 90 वर्षों की यादों को जो आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं, आपने उनको किस रूप में सजोया है, किस रूप में याद रखती हैं आप उन्हें?
3: ये 90 साल पूरे होने पर सर्वप्रथम मैं पूरे आकाशवाणी परिवार को शुभकामनाएं देना चाहूंगी, बधाई देना चाहूंगी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको भी बधाई
3: जी। और आकाशवाणी तो मेरा जन्म से ही मेरा साथी रहा है, क्योंकि मेरा तो जन्म ही रेडियो के संग हुआ है। मेरे ननिहाल से एक रेडियो आया था, पहले रेडियो बहुत बड़े साइज के हुआ करते थे, कपड़े के पर्दे वाले।
2: अच्छा,
3: तो मेरे नाना जी ने मेरी मदर की मैरिज में रेडियो दिया था, बहुत बड़े साइज का था, कपड़े के पर्दे का। तो जब से जन्म हुआ, वो मेरे एक भाई भी ब्लाइंड है, तो वो भी रेडियो ही सुनते थे शुरू से ही, और मैं भी ब्लाइंड हूँ, तो शुरू से ही जन्म से ही मैं तो रेडियो सुन रही हूँ। लगभग 50 साल हो गए मुझे रेडियो सुनते।
2: अच्छा, आपके
3: काल हो या युद्ध काल, रेडियो ही हमेशा हमारा साथी रहा है, और मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान वर्धन, न्यूज, विश्वसनीय न्यूज समाचार प्राप्त होते हैं इससे। ये समाचार आकाशवाणी देता है, उतने विश्वसनीय समाचार हमें विभिन्न चैनलों से नहीं मिल सकते
2: जी,
3: या नेट पे नहीं मिल सकते। कई बार नेट पे फर्जी न्यूजें भी आ जाती हैं, लेकिन आकाशवाणी पे कभी भी ऐसी न्यूज नहीं आती है जिससे हम मिसगाइड हो जाएं।
2: बिल्कुल, पूर्णतः विश्वसनीय है। अच्छा, कोई ऐसा वो पहला कार्यक्रम जो अब शायद ना आता हो और उस दौर में आप सुनती हो, उस कार्यक्रम का नाम पता है आपको?
3: जी, जब ये आकाशवाणी केंद्र शुरू में खुला ही खुला था, तब शाम के ही प्रोग्राम हुआ करते थे, और समय नहीं होती थी सुबह दोपहर की।
2: अच्छा,
3: तो उस टाइम एक प्रोग्राम आता था आठ शाम, तो उसमें गाने बजते थे पुराने दौर के, अच्छे बढ़िया गाने होते थे, वो आज भी याद आते हैं।

0: बच्चों का प्रोग्राम अंकुर भी उस टाइम हुआ करता था, तो उस टाइम नया नया एक केंद्र खुला था, अब भी होता है अंकुर,
1: अब भी होता है। हाँ।
0: तो उस टाइम बच्चे नहीं आते थे, लेकिन राजेश गौड़ जी प्रोग्राम करते थे, लेकिन बिना बच्चों के भी प्रोग्राम इतना बढ़िया आज जाता था आपके यहाँ से, कि ऐसा अनुभव ही नहीं होता था कि बिना बच्चों के ये प्रोग्राम हो रहा है। और राजेश गौड़ जी के प्रोग्राम बहुत ही अच्छे जाया करते थे।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इतनी पुरानी श्रोता हमसे जुड़ी हैं और हमारे कार्यक्रमों को इतने जुझारू तरीके से, इतने अच्छे तरीके से सुनती हैं। तो आज गीत कौन सा सुनेंगी?
0: गीत नया दौर का, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बटाना साथी रे, सुनना चाहूंगी।
1: ठीक है, हम आपको आपके पसंद का गीत सुनवाते हैं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: तो श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्षों की यादों को आप किस तरह से संजोए हुए हैं, यही हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है। और इस विषय को लेकर आप फेसबुक पर भी अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। फिलहाल फोन लाइन पर जो श्रोता है वो आज के विषय को लेकर क्या

0: कहते हैं, जानते हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार मैम, मैं सद्दाम अली बात कर रहा हूँ, ग्राम सितर चंपतपुर, तहसील नौला, जिला बरेली से।
0: बिल्कुल सद्दाम अली, हमारा भी आपको प्यार भरा नमस्कार। बताइए, 90 वर्षों की यादों को आप किस तरह से सजोए हुए हैं?
1: मैम मैं पहले तो सबसे पहले आकाशवाणी के सभी जितने भी लिसनर्स हैं, जितने श्रोता हैं, सभी के लिए हार्दिक शुभकामना देना चाहूंगा आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर।
0: बिल्कुल
1: और मैं ये कहना चाहूंगा मैम,
0: जी,
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मुझे बहुत बड़ा गर्व है। इससे जो है आकाशवाणी द्वारा हमें बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी मिलती थी, चाहे वो चाहे कृषि विशेषज्ञ हो, चाहे वो किसी डॉक्टर की सलाह द्वारा किसी के लिए जानकारी देना हो,
0: जी
1: ऐसे कई कार्यक्रम है जो आकाशवाणी के बहुत ही अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल, तो फिर यही आपकी यादें हैं, यादों को संजोया है या कुछ और अलग, कुछ और हटके यादें हैं आकाशवाणी से जुड़ी हुई आपकी?
1: यादें हैं और मुझे लगभग 15 साल लगातार आकाशवाणी से जुड़े हुए हो गई हैं,
0: जी,
1: और मेरे जीवन में जो भी कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र ने प्रस्तुत किए हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल, तो आज गीत कौन सा सुनेंगे?
1: मैम फिल्म का नाम है इंसानियत के दुश्मन और गीत के बोल हैं, ना गरीब से होगा ना अमीर से होगा प्यार जब।

0: हेलो
1: हेलो जी,
0: जी, नाम बताएं, कौन है, कहाँ से हैं?
1: मैं नीतू बोल रही हूँ, शाहजहांपुर से।
0: नीति शाहजहांपुर से बोल रही हैं, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नीति, बताइए, आकाशवाणी के 90 वर्षों की यादों को आपने कैसे संजोया है?
1: मैंने तो देखो, मैं एफएम सुनती नहीं थी, और मैं एफएम सुनती थी, फिर सुनने लगी। जैसे फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि इसमें कॉल भी लगाया जाता है, तो उसने मुझे नंबर दिया, मैंने उस पे अब ट्राई किया, तो मेरी पहली कॉल लगी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये मेरी पहली याद है। जैसे पहले श्रोताओं की कॉल लगती थी तो मेरा भी मन होता था कि मेरी भी कॉल लगे, और आज मेरी भी लगी है, तो मेरी यही याद संजो कर रखी मैंने।
0: बिल्कुल, तो ये तो सबसे पहली याद आपकी यही हो गई, और इसी को आप संजो कर रखेंगी कि आपका सबसे पहली बार कार्यक्रम में फोन लगा है। तो आज
1: जी जी
0: कार्यक्रम में फोन आपका पहली बार शामिल हुआ है, अब तो आप हमारे कार्यक्रम सुनेंगी ही ना?
1: जी मैं सुनूंगी
0: बिल्कुल, यूं ही सुनते रहिएगा और मैं फोन कॉल भी करते रहिए। आज बताइए,
1: जी
0: आज
1: जी
0: गीत कौन सा सुनेंगी कार्यक्रम में?
1: मैं सुनना चाहूंगी प्यार क्या तो डरना क्या मूवी का, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है।
0: बिल्कुल, हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो श्रोताओं, आकाशवाणी बरेली से आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आपकी बात आकाशवाणी के साथ। देखते हैं हमारे और कौन से श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं। आज का हमारा विषय है कि आकाशवाणी के 90 वर्षों की यादों को आपने कैसे संजोया है, जानते हैं अपने इन श्रोता से। हेलो
1: हेलो, नमस्कार। मैं
0: नमस्कार
1: अगला बढ़ाएं।

0: हेलो नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
0: अकेला बदायूं दातागंज से मोहम्मद आशिक बात कर रहे हैं।
1: मोहम्मद आशिक बदायूं दातागंज से हमारे साथ हैं। बताइए कि आपने 90 वर्षों की आकाशवाणी की यादों को कैसे संजोया है?
0: हमने 90 वर्ष आकाशवाणी के यादों को, मैम एक बार हमने एक कार्यक्रम आकाशवाणी से जुड़ा हुआ सुना था डॉक्टरों से, तो उसमें हमने बीमारी से जूझ रहे थे
1: जी,
0: तो उस बीमारी से हमने, उन्होंने डॉक्टर ने जो हमें उपाय बताए बचने के उस बीमारी से, तो हमने क्या कहते हैं उस बीमारी से बचने के वो उपाय करे और हम बच गए, इसीलिए हम आकाशवाणी को हम बहुत याद करते हैं और उसी दिन से हम आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं और बहुत याद करते हैं आकाशवाणी।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। संभवतया वह कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन रहा होगा, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा कार्यक्रम, और उससे आपने ये लाभ उठाया, ये बहुत अच्छी बात है। और जब ही से एक अच्छी याद आपके लिए आकाशवाणी की मिल गई है ना?
0: जी जी।
1: तो आज कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनेंगे?
0: वो वाला भी सुनेंगे, सही आ रहा, तू तो बदला नहीं।
1: बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

और अब श्रोताओं, फोन कॉल्स के बाद रुख कर लेते हैं फेसबुक की तरफ, क्योंकि बहुत से श्रोताओं के कमेंट्स हमें फेसबुक पर भी मिल चुके हैं आज के विषय को लेकर। तो सबसे पहले आप हैं राम कुमार रेवार, सादुल शहर राजस्थान से हैं, इनके साथ हैं चंद्रकला रेवार। क्या लिखते हैं ये, 90 साल बेमिसाल, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, 1978 से लेकर आज तक निरंतर इस प्रोग्राम को सुनते आ रहे हैं। आकाशवाणी की आवाज हमारे घर और दुकान पर हमेशा गूंजती रहती है। अपनी मधुर वाणी के साथ हम हमेशा आकाशवाणी के साथ जुड़े रहते हैं। हमारे घर पर हमेशा से ही रेडियो सुनने का शौक रहा है। पहले हमारे पिताजी रेडियो सुना करते थे, उसके बाद बड़े भाई रेडियो सुनते थे और 1978 में मेरे बड़े भाई ने मुझे रेडियो ला कर दिया, जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। उसे सुनते सुनते कैसे समय गुजर गया पता ही नहीं चला। रेडियो ने बहुत कुछ दिया है, गीत संगीत समाचार नाटक रूपक और सटीक विश्वसनीय समाचार। रेडियो हमारी रूह की खुराक है, हर पल हमारे कानों में रेडियो की मधुर वाणी गूंजती रहती है। समय के साथ बहुत परिवर्तन हुआ, एक समय था जब बड़ा सा रेडियो हमारे घर पर हुआ करता था और धीरे धीरे ट्रांजिस्टर आ गए, उसके बाद अब मोबाइल है, पर दुनिया भर के रेडियो स्टेशन हम मोबाइल पर सुनते हैं, लेकिन आकाशवाणी से बढ़िया कोई प्रसारण नहीं सुनने को मिलता। अब हम मोबाइल ऐप के द्वारा देश के हर कोने से आकाशवाणी को सुन सकते हैं। इनमें से हमारा एक बहुत ही प्रिय आकाशवाणी चैनल है आकाशवाणी बरेली। बरेली को जब से हम सुनने लगे हैं तो बरेली के आकाशवाणी को अपना ही आकाशवाणी बना लिया है। प्रत्येक प्रोग्राम बहुत शिद्दत के साथ सुनते हैं और यहाँ से बेपनाह प्यार मोहब्बत और स्नेह मिलता है। पूरे आकाशवाणी परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी श्रोताओं को हार्दिक बधाई। आपको भी रेवार जी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आकाशवाणी है। भेरूलाल बाक्तरिया ढाकर उन्हें जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से लिखते हैं कि ये आकाशवाणी है। जब बचपन में बार बार यही वाक्य सुनता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि थोड़ी थोड़ी देर में एक ही बात ये क्यों बोलते हैं, इनको और कुछ नहीं आता जो ये आकाशवाणी आकाशवाणी बोलते हैं। जब थोड़े बड़े हुए तब पता चला कि हर बार और हर स्टेशन से आकाशवाणी बार बार क्यों बोलते हैं। तब मुझे बचपन में ये बात पता नहीं थी कि यही एक शब्द आकाशवाणी मेरी रग रग में बस जाएगा और एक दिन भी मैं आकाशवाणी के बिना नहीं रह पाऊंगा। बचपन में रेडियो गोदी में लेकर खेलता था और जब से आकाशवाणी से जुड़े हैं, जब से मेरा प्रिय साथी रेडियो का ही साथ रहा। खेती का हर काम करते रेडियो एक हाथ पे रहता है और जेब में रेडियो रहता है। बहुत अच्छे विचार हैं आपके बीएल धाकर जी। और आप रवि कुमार राहुल कहाँ से हैं, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से हैं आप। हैं आप लिखते हैं आकाशवाणी एक तरह से हमारा परिवार है, बचपन से उसमें जब हमने होश संभाला है तब से, यानी कि 45 वर्षों से रेडियो मेरा साथी रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिला है आकाशवाणी से, आज हम एक दिन भी रेडियो के बिना नहीं रह सकते। न्यूज़ और AIR के माध्यम से हम कहीं भी कोई सा भी रेडियो स्टेशन सुन सकते हैं, वह भी बिल्कुल साफ आवाज में। पहले एरियल लगाकर रेडियो सुनते थे, फिर भी साफ आवाज नहीं आती थी जब जेब में ही रेडियो रहता था, और अब दूरियां बिल्कुल नजदीकियां बन गई हैं। आगे इन्होंने लिखा है, रेडियो के साथ उठता हूँ, इसी के साथ सोता हूँ, जब सुनता हूँ नाम अपना तो बहुत खुश होता हूँ, कभी फरमाइश पूरी ना हो तो मायूसी में आपा खो देता हूँ, मेरा नाता ही कुछ ऐसा है रेडियो से। जी हाँ जनाब, मैं रेडियो श्रोता हूँ। बहुत सुंदर पंक्तियाँ, प्रश्न को लेकर भी आपकी शब्दावली

बहुत अच्छी है और पंक्तियों का तो जवाब ही नहीं। इसके बाद आप हैं तिगड़ी कसवा शीशगढ़ से शाहरुख खान, हाशिम खान, अरहम बाबू और किश्वानूर। मेरे पास में जब रेडियो था तो मैं रेडियो के साथ मैं सुनता था आकाशवाणी को, तरह तरह की आकाशवाणी को सुनता था, जहाँ से तरह तरह की जानकारियाँ मिलती हैं, मनोरंजन भी होता है, दूसरों को सुनते हैं फिर अपनी पसंद के गीत भी सुन पाते हैं। आज मोबाइल ऐप के जरिए सुन पा रहे हैं। काफ़ी कुछ बदल गया है भागदौड़ की जिंदगी में। 12 से 14 साल से सुनता आ रहा हूँ आकाशवाणी को मैं। बहुत सुंदर। और आप हैं विष्णु, आप विष्णु मिस्कीन, रितिका मिस्कीन, वाणी आरब, चंद्रकल, काशीनाथ, गणेश, सोनी, आरोही और प्रियांशी, आप दयानंद कॉलेज भवानी सेठ सोलापुर महाराष्ट्र से हैं। आप लिखते हैं, आकाशवाणी के 90 वर्षों की यादों को संजोना मेरे लिए केवल पुराने कार्यक्रमों को याद करना नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक धरोहर को सहेजना है। मैं आकाशवाणी के पुराने कार्यक्रमों, नाटकों, समाचार बुलेटिन, कवि सम्मेलनों, विविध भारती के सदाबहार गीतों, महान उद्घोषकों की आवाजों को सुनकर उन सुनहरे पलों को याद करता हूँ। आकाशवाणी ने पीढ़ियों को ज्ञान, मनोरंजन और जागरूकता प्रदान की है। इसकी 90 वर्षों की यात्रा में देश के महत्वपूर्ण घटनाक्रम, स्वतंत्रता के बाद का विकास, साहित्य, संगीत और लोक संस्कृति की अमूल्य झलकियां सुरक्षित हैं। इन यादों को संजोने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने अनुभवों को नई पीढ़ी के साथ साझा करें, पुराने रेडियो प्रसारणों को सुनें और रेडियो से जुड़े संस्मरणों को लिखकर संरक्षित करें। मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं, बल्कि भावनाओं, यादों और भारतीय संस्कृति का जीवंत इतिहास है। इसकी मधुर ध्वनि आज भी मन में वही अपनापन और विश्वास जगाती है जो दशकों पहले श्रोताओं के दिलों में बस गया था। आकाशवाणी के 90 वर्ष वास्तव में भारत की आवाज के 90 गौरवशाली वर्ष हैं।

0: तो आप हैं शालू शर्मा, कहाँ से हैं?
1: विनेश कुमार श्रीवास्तव बैंक सेंटर चनहटी के पास बरेली से हैं।
0: और आप लिखते हैं, नव वर्ष की स्वर्णिम यात्रा के सफर में आकाशवाणी बरेली का शिक्षा, सूचना और मनोरंजन का बहुत अच्छा योगदान रहा है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और अब तो इस डिजिटल युग में किसी भी आकाशवाणी चैनल को हम कहीं भी सुन सकते हैं। 1993 से अब तक हमारे अपने करीबी आकाशवाणी के बरेली को बहुत कुछ हमने उसे सीखा है और सीख भी रहे हैं। धन्यवाद बरेली आकाशवाणी, आपका भी बहुत धन्यवाद, हमारे इतने अच्छे श्रोता हमारे साथ हैं। प्रवीण चौहान जी लिखते हैं, एक छोटे से पॉकेट में FM से सन 2003 से सुनना शुरू किया। उस समय केवल दो स्थानीय स्टेशन ही सुन पाते थे, लेकिन आज स्ट्रीमिंग के जमाने में विश्व प्रसिद्ध न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से कई चैनल सुनने को मिल रहे हैं। आज इंटरनेट पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म होने के बावजूद समाचारों के लिए मेरा सबसे भरोसेमंद माध्यम आकाशवाणी है, क्योंकि इससे प्रसारित होने वाले समाचार प्रामाणिक होते हैं। आकाशवाणी हमेशा मनोरंजक गीत के साथ महत्वपूर्ण जानकारियां भी देता है। कृष्णपाल सिंह चौहान चौखड़ा धम कॉलोनी सनाबद खरगोन मध्य प्रदेश से हैं। आप लिखते हैं, सुबह से प्यारी सिग्नेचर ट्यून सुनकर मन में अत्यंत खुशी होती है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये वाक्य को आज सच साबित किया गया है। आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, बल्कि हम भारतीयों के कान और मन की आवाज है। पिछले 9 दशकों में इसने हर घर तक विश्वास, सूचना और संस्कृति का संदेश पहुंचाया है। आइए इस ऐतिहासिक अवसर पर हम आकाशवाणी के इस योगदान को याद करें, जिसने देश को जोड़ने और समाज को जागरूक बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। आपको आकाशवाणी के सफल 90 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और ये हैं वारिस अली खान संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। आवाज की दुनिया ने दुनिया के प्यारे दोस्त को खान परिवार का प्यार भरा नमस्कार। आपको भी, मेरे पिताजी रेडियो के बहुत शौकीन थे, वह आकाशवाणी लखनऊ और विविध भारती सुना करते थे। उनको देखा देखी मैं भी आकाशवाणी सुनने लगा। मैं क्रिकेट मैच की कमेंट्री बहुत सुनता था, रात में सिरहाने रेडियो रखकर गाने सुनता था, सुनते सुनते सो जाता था और मेरी माँ रेडियो बंद करती थी। तब से आज तक ये सिलसिला कायम है। मैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। देखा, हमारे इतने सारे श्रोताओं के इतने अच्छे अच्छे विचार, ऐसा लगता है कि और भी विचारों को शामिल कर लें और यूं ही रूबरू होते रहें अपने श्रोताओं से। फिलहाल चलते चलते सुन लेते हैं ये गीत।
2: पर्दा हटा दो

0: माँ को भी समझा दो, बस इतना बता दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने।
1: दोस्तों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फेसबुक पर कुछ कमेंट्स हमें ऐसे भी मिले जिसमें श्रोताओं ने सिर्फ अपने नाम और एड्रेस ही हमें लिखे थे, और ऐसे कमेंट्स को हम शामिल नहीं कर सकते। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि प्रश्न को लेकर जो आपकी राय हो उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, तभी वह कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं।
0: जहां मिले दो जवान
1: और चलते चलते अब आपसे गुजारिश करेंगे कि जिन श्रोताओं की फोन कॉल्स आज के कार्यक्रम में शामिल हुई है, वे कृपया एक सप्ताह के अंतराल से हमें दोबारा कॉल करें, ताकि अन्य श्रोताओं को भी अवसर मिल सके। और अब देखिए घड़ी का इशारा, बिल्कुल समय नहीं है, लेकिन चलते चलते आपकी प्रतिक्रियाओं का रहेगा इंतजार। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं ईमेल के जरिए भी, नोट कीजिए आपका पत्र मिला @bareilly@gmail.com। वहीं पत्रों के माध्यम से नोट कीजिए अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए कार्यक्रम का पता। कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्रीय निरीक्षक आकाशवाणी बरेली। बरेली का पिन नंबर है 243001। और अब देखिए पूरे 5 बज गए हैं, अब हमें कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओ, शाम के 5 बजे हैं और अब आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से आज के शेष और कल की सभा में प्रसारित व रिले होने वाले कार्यक्रमों की। अब से कुछ देर में 5:30 पर होगा नारी संसार, जिसमें आज चर्चा का विषय रहेगा घर को बनाए प्लास्टिक मुक्त। साथ ही अंशी ठाकुर से की गई भेंटवार्ता आपको सुनवाएंगे, होंगे कुछ किचन टिप्स, हेल्थ टिप्स। समय याद रखिएगा 5:30 का। युवाणी में शाम 6 बजे होगा आज का सवाल और बहुत कुछ खास धूम धड़ाका। ग्राम जगत में चर्चा का विषय रहेगा शिक्षा का महत्व, वहीं श्री हिफाजत अली से की गई वार्ता आप सुन सकेंगे। विषय रहेगा मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण। समय याद रखिएगा 6:30 का। 7 बजे होगा अक्षय वट और 7:31 पर आपके ढेर सारे पत्रों के साथ लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम अनुरोध गीत। कल सुबह 8:15 से आप सुन सकेंगे नमस्ते बरेली कार्यक्रम। वहीं 10 बजे सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद हम लेकर आएंगे। झुमका गिरारे इस क्षेत्र संकलित कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे कल 11:15 पर। झुमका गिरारे जो कि क्षेत्र संकलित कार्यक्रम है, समय याद रखिएगा सुबह 11:15।

पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीत आप सुन सकेंगे अनुरोध गीत कार्यक्रम में दिन में 1 बजे। 4 बजे का समय रहेगा आपके बाद आकाशवाणी के साथ का। कल 5:30 पर नारी संसार में चर्चा की जाएगी बड़े बूढ़ों से है घर की असली रौनक। माला सैनी से की गई भेंटवार्ता आप सुन सकते हैं। विषय रहेगा टीकाकरण महत्व एवं आवश्यकता। 6 बजे युववाणी में होगा बहुत कुछ खास और आज का सवाल। किसानवाणी में 6:30 पर आज की बात का विषय रहेगा कृषि रसायनों का संतुलित प्रयोग। होगा हेलो किसान, बाजार भाव, मौसम और कृषि समाचार। 7 बजे ग्राम जगत में चर्चा की जाएगी भोजन में रखें पौष्टिकता का ध्यान। 7:31 पर आपके स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम को लेकर आएंगे जिसका नाम है रेडियो हेल्पलाइन। तो श्रोताओं, ये तो थी संक्षिप्त रूपरेखा आज के शेष और कल की सभा के कार्यक्रमों की। और आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली।

0: आवाज़ की दुनिया के मेरे प्यारे साथियों, आपको बागपत के संजय ढींगा का यानी मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो से हमारा बचपन से नाता रहा है, जिस आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से आज आपके समक्ष हूँ वो है आकाशवाणी बरेली। इस केंद्र से मेरा ये सफ़र जब से जुड़ा तो हमेशा जिंदगी भर का रिश्ता बन गया है। यहाँ से प्रसारित आपकी पसंद युववाणी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ, हेलो बरेली, मन भावन, लक्की थ्री और नारी संसार जीवन के अभिन्न अंग हैं। साथियों, इनके बिना पूरक नहीं है हम श्रोता। जन जन की वाणी आकाशवाणी, जय हिंद जय भारत।
1: आकाशवाणी के दीवाने संजय ढींगिया को आप सुन रहे थे बागपत से। समय मिलाइए, शाम के 5:05 और 12 सेकंड हुए हैं।

और अब समय हो चला है भजन संध्या का। कार्यक्रम में पहली प्रस्तुति अनुराधा पौडवाल की आवाज में है, अब तो आओ धनुष के धारी।

बैल की सवारी करे, डमरू बजाए, जग के ताप हरे, सुख बरसाए। इस भजन को आप सुन रहे थे हरिओम शरण की आवाज़ में, और अब अगले भजन में आवाज़ है उदित नारायण की। सुबह जब पलके खोले, मन नमः शिवाय बोले, मैं दुनिया से क्यों डरूं, मेरे रक्षक हैं शिव भोले।

अभी आप सुन रहे थे भजन संध्या। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। समय मिला ये शाम के 5:30 और 32 सेकंड हुए हैं। और अब प्रियंका जी लेकर हाजिर हो गई हैं कार्यक्रम नारी संसार। तो लीजिए इनके साथ सुनते हैं नारी संसार।

गुड इवनिंग, नमस्कार। शुरू हो चुका है हमारी सखियों का मन पसंद कार्यक्रम नारी संसार, आपकी दोस्त प्रियंका के साथ 100.4 FM आकाशवाणी बरेली पर। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सखियों, गर्मी का मौसम है, आप समय से पानी पीते रहें, चाहे प्यास ना लगे फिर भी पानी अवश्य पिएं, जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो। पानी की कमी से हमें डिहाइड्रेशन की समस्या होने लगती है, इसलिए आप शरबत, नींबू पानी, ORS का घोल और दही, छाछ, गन्ने का रस पीते रहें, जिससे हम पानी की कमी होने से खुद को बचा सकते हैं। सखियों, आज है 8 जून, आज मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। सखियों, महासागरों में पेड़ पौधों, कई प्रजाति के जानवर और अहम ऑर्गेनिज्म का भंडार है। वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक ये धरती के तापमान को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। महासागरों की जीवन में महत्ता को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल लॉ ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाता है। सखियों, यह दिवस मनाने का मकसद यह भी है कि हम ये

सकें कि महासागर हमारे लिए कितने अहम हैं। महासागरों में हमें कई तरह की दवाइयाँ मिलती हैं, जिसमें लाइफ सेविंग से लेकर कैंसर तक की दवाइयाँ शामिल हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम महासागर के अस्तित्व को बनाए रखने और इनके संरक्षण में अपना योगदान दें। सखियों, सागर हो या फिर महासागर, इनकी लहरों को देखना, सागर के किनारे टहलना कौन नहीं चाहता। जब भी लाइफ में टाइम मिले तो आप घूमने अवश्य जाइए।

सखियों आइए सुनते हैं भेंट वार्ता। विषय है कॉलेज इवेंट्स और उसकी तैयारियां। वार्ताकार हैं अंशी ठाकुर और इनसे बात की है।

0: अनुप्रीता सिंह ने, आइए सुनते हैं।
1: नारी संसार कार्यक्रम में हम हमेशा लेकर आते हैं एक ऐसी प्रतिभा को जो आगे से आगे बढ़कर कुछ ना कुछ करती है। आज हम लेकर आए हैं अंशी जी को, जो कि कम्युनिकेशन एंड इवेंट लीडर हैं। और तो फिर सखियों, जानते हैं हम इनसे कि क्या होता है कम्युनिकेशन, और जैसे कि ये इवेंट लीडर हैं, इवेंट मैनेजर हैं, तो क्या करती हैं ऐसा ये। नमस्ते अंशी जी।
2: नमस्ते अनु जी। सबसे पहले तो थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। जैसा कि आपने पूछा कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है हम अपनी बात दूसरे तक कैसे पहुंचाएं, हम अपनी बात दूसरे को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन में मैं देखती हूँ पूरा सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, अपनी बात हम सोशल मीडिया के थ्रू

0: तो क्या करती हैं ऐसा ये? नमस्ते अंशी जी।
1: नमस्ते अनु जी। सबसे पहले तो थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। जैसा कि आपने पूछा कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है हम अपनी बात दूसरे तक कैसे पहुँचाएं, हम
0: जी
1: अपनी बात दूसरे को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन में मैं देखती हूँ पूरा सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, अपनी बात हम सोशल मीडिया के थ्रू
0: जी
1: लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म से या फेसबुक के प्लेटफॉर्म से या यूट्यूब से या लिंक्डइन से
0: जी
1: प्रोफेशनल लोगों तक, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो वो हम कैसे मैनेज करते हैं, मेरा वो पार्ट है। एंड दूसरा मैं देखती हूँ इवेंट्स।
0: जी
1: तो इवेंट्स जैसे हम इवेंट्स कैसे कॉलेज में ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारे सपोज नए स्टूडेंट्स आते हैं तो हम उनके लिए इवेंट्स करते हैं, जैसे फ्रेशर्स पार्टी हो गई, फेयरवेल पार्टी हो गई, तो उसमें हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी बुलाते हैं
0: जी
1: फॉर स्टूडेंट्स। और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हम इंटरनल लेवल पे करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। सपोज इंजीनियरिंग के लिए हमने कोई इवेंट किया है, उनके इंटरनल कुछ इवेंट्स हैं, कोई वर्कशॉप्स हैं, कोई एआई से रिलेटेड सेमिनार करना है,
0: जी
1: तो उसके लिए हम बाहर से अच्छी फैकल्टीज बुलाते हैं, दूसरे अच्छे कॉलेजेस की नॉन, तो हम ऐसे इवेंट्स करवाते हैं कॉलेजेस में।
0: बिल्कुल, जैसे कि आप बता रही हैं कि इवेंट्स में आप समय समय पर बच्चों को कुछ ऐसी चीजें, स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा देना चाहती हैं जिससे बच्चे कुछ सीखें, है ना? तो जो इवेंट आप करती हैं, ये कैसे डिसाइड करती हैं कि अब हमें कौन सी फैकल्टी के लिए किस टाइप का इवेंट रखना चाहिए?
1: देखिए जो सेंट्रल लेवल इवेंट्स होते हैं वो तो हमारे फिक्स होते हैं, जैसे फेयरवेल पार्टी हो गई या फ्रेशर्स पार्टी हो गई या स्टार नाइट हो गई।
0: अच्छा अंशी जी, बात आई है फेयरवेल पार्टी हो या फ्रेशर पार्टी हो, इसमें क्या डिफरेंट करती हैं कि फ्रेशर पार्टी है अगर स्टूडेंट्स की तो समथिंग डिफरेंट?
1: फ्रेशर्स पार्टी होती है तो उसमें नए स्टूडेंट्स आते हैं, वो
0: जी
1: स्कूल से जस्ट पास आउट होके आते हैं, 12th पास होते हैं, उनमें एक नई एनर्जी होती है, एक नया एंथुजियाज्म होता है, तो हम उसके लिए उनके लिए फैशन शो करवाते हैं। बाहर से हम ग्रूमिंग के लिए टीचर्स को भी बुलाते हैं जो उन पे पूरे 1 month काम करते हैं
0: जी
1: और उन्हें ग्रूम करते हैं, फिर हम वो पार्टी करते हैं जिसमें हम उनके लिए लंच भी रखते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस रखते हैं डांस
0: जी
1: का, जिसमें वो अपने टैलेंट भी दिखाते हैं हमें।
0: या मैं वही पूछना चाहती हूँ कि जो फ्रेशर पार्टी है उसमें आप जो इवेंट करते
1: हाँ
0: हैं ऑर्गेनाइज, तो उसमें कुछ ऐसा भी करते होंगे कि आपके पास जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं आपके यहाँ, जो न्यू फैकल्टी है, वो कुछ ऐसा करती होगी कि आपको पता चले कि उन स्टूडेंट्स में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम है,
1: एग्जैक्टली
0: कुछ
1: यस
0: एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं, टैलेंट
1: यस।
0: है, तो उसको कैसे निकालते हैं आप लोग?
1: उसके लिए हम स्टूडेंट्स के ऑडिशंस रखते हैं।
0: जी
1: सबसे पहले हम एक फॉर्म बनाते हैं, हम गूगल फॉर्म बनाते हैं जिसमें हम वो स्टूडेंट्स ग्रुप्स में सर्कुलेट करवाते हैं, तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं ऑडिशन देने के लिए हम उनको ऑडिशन लेते हैं। एक पूरा हम टीम बिठाते हैं जो
0: बिल्कुल
1: उस चीज़ में अच्छा है, जिस जिस फील्ड में, तो हम उन्हें बिठाते हैं और वो लोग ऑडिशंस लेते हैं एंड उसमें से हम कुछ स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर हम उनकी ग्रूमिंग करवाते हैं। अप्रोक्स 30 स्टूडेंट्स, गर्ल्स
0: ओके
1: एंड
0: ओके
1: बॉयज मिक्स करके, एंड उसके बाद हम उनमें से ऑडिशंस के टाइम उनसे बोलते हैं वो अपना टैलेंट दिखाएं, जैसे एक टैलेंट राउंड होता है तो उसमें वो अपना टैलेंट दिखाते हैं और बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स आते हैं, कई जो मिमिक्री भी करते हैं, सिंगिंग, डांस एंड बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं। रही बात फेयरवेल पार्टी की, फेयरवेल पार्टी ज्यादा इस बारे में है कि स्टूडेंट्स जा रहे हैं, एंड है, तो उसमें बेसिकली हम लोग रखते हैं जिसमें स्टूडेंट्स बस सिर्फ इंजॉय कर पाए, वो अपना आखिरी दिन इंजॉय करें। उसमें हम यूजली डीजे बुलाते हैं जिसमें वो अच्छे से डांस कर सकें, अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर्स क्लिक कर सकें, फोटो बूथ बनवाते हैं। इस तरह से दोनों को हम मैनेज
0: मैनेज
1: करते
0: करते हैं
1: हैं।
0: एंड डिफरेंट तो है बात है। यहाँ पे हम जब इवेंट की कर रहे हैं तो जब पर ईयर का अगर मैं देखूं रेशियो, तो आप अपने यहाँ कितने इवेंट पर ईयर कर लेते हैं? मतलब आपका जो 1 साल गया है उसमें लगभग कितने इवेंट, जैसे आपने बताया कि इवेंट भी कई तरीके के होते हैं, सेंट्रल भी होते हैं, लोकल भी होते हैं, तो कितने इवेंट आप लोग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं?
1: इवेंट्स की बात कहूँ मैं, अगर आप इंटरनल कहेंगे तो मैं बोलूँगी हर वीक में एटलीस्ट एवरी सेकेंड डे कोई इंटरनल किसी डिपार्टमेंट का इवेंट होता है, और वो इवेंट जरूरी नहीं है लाइक कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वाला इवेंट हो, वो यूजली जैसे कोई वर्क

0: वर्कशॉप भी करानी है जिसमें हमने एक्सटर्नल फैकल्टी बुलाई है, जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं अब AI है, राइट, पाइथन, जावा, जिसकी भी उस पे, ये जैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो गई, आजकल सिमुलेशन पे वर्कशॉप चल रही हैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की,
1: जी
0: तो हम वो करवाते हैं। तो अगर आप सेंट्रल लेवल के इवेंट्स की बात करो तो एटलीस्ट हम ईयरली 20 इवेंट्स तो हम सेंट्रल लेवल पे कर ही लेते हैं। एंड आप इंटरनल इवेंट्स की बात करोगे डिपार्टमेंट वाले, तो वो तो हर वीक हर दूसरे दिन ही होते
1: चलते ही
0: हैं,
1: रहते हैं।
0: चलते ही
1: अच्छा,
0: रहते
1: ये जो
0: हैं।
1: आप डिपार्टमेंट वाले इवेंट की बात कर रहे हो, इसमें कुछ ऐसा होता है कि आप लोग देखते हो कि जो डिपार्टमेंट है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो वीक हो रहे हैं, या कुछ ऐसा कि उनको समझ नहीं आ रहा है, या आपको लगता है कि स्टूडेंट्स की जो मतलब जो स्ट्रांगनेस है पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, वो जिस फील्ड के भी हैं, वो थोड़ी सी वीक हो रही है, तो आप लोग तब इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं या कभी भी अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर देते हैं कि अभी हमें इवेंट करना ही
0: हाँ,
1: करना है?
0: इस बारे में हम लोग फैकल्टी से डिस्कस करते हैं बिकॉज
1: जी
0: वो अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा बेहतर जानते हैं। सो देखिए, जो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उस पे हम वेट नहीं करते हैं कि कोई
1: जी
0: स्टूडेंट वीक है हम तब करवाएं, वो हम यूजली करवाते ही हैं इन
1: जी
0: एडवांस, जो जो ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वो सीख सकें। जैसे अभी लिंक्डइन लर्निंग के हम सर्टिफिकेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ऑलरेडी दिलवा रहे हैं, एक नैसकॉम है उसके हम फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवा रहे हैं स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को। एंड यस, अगर कोई वीक है बच्चे तो वो फैकल्टी से हम डिस्कस करते हैं कि उनको अगर नीड लग रही है तो हम उनसे बात करके वो इवेंट्स करवा देते हैं
1: बिल्कुल, मैं
0: ऑर्गेनाइज।
1: यही पूछना चाह रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि हर जगह का ही है अंशी जी, कुछ स्टूडेंट्स नेचुरली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं हर चीज में, पढ़ाई लिखाई हो या स्पोर्ट्स में हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स थोड़े से उनसे लोअर रहते हैं।
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: ऐसे में जब आप लोग इवेंट ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं तो जो स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं क्लासरूम में या अपनी फैकल्टी द्वारा, तो मुझे लगता है कि शायद इवेंट के थ्रू वो ज्यादा अच्छे से उस चीज को कैच कर पाते
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: होंगे।
0: बिल्कुल, जब भी कोई एक्सटर्नल फैकल्टी आती है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है उन्हें समझने में कि ये क्या, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उनके लिए ये कराया जा रहा है,
1: जी
0: सबसे पहली बात कि उन पर ध्यान दिया जा रहा है, तो उस चीज को भी समझते हैं और उन्हें लगता है दे आर टेकन केयर ऑफ, तो इसलिए वो और इंटरेस्ट लेते हैं, समझते हैं एंड वो बहुत क्वेश्चंस भी पूछते हैं।
1: बिल्कुल
0: और जरूरी नहीं है फैकल्टी मतलब अगर अवेलेबल नहीं है ऑफलाइन आने के लिए कॉलेज में, तो हम वर्चुअली भी करवाते हैं जूम पर।
1: ओके ओके ओके ओके। अच्छा अंशी जी, अब बात करती हूँ मैं आपसे थोड़ा सा आपके विषय में। जैसे आपका जो मेन सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन एंड इवेंट लीडर हैं आप,
0: जी
1: तो कम्युनिकेशन एक थोड़ा सा अलग लाइन है, ठीक है ना, और इवेंट लीडर जैसे कि अभी आपने बताया कि आपको इवेंट ऑर्गेनाइज कराने होते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट है।
0: जी
1: ये जो दोनों काम हैं ये एक साथ आप मैनेज कैसे करते हैं?
0: ये अच्छा क्वेश्चन है।
1: जी
0: मैनेज करने में ये है कि मेरे पास एक बहुत अच्छी टीम है मेरे साथ, तो जो डिजिटल में भी मेरे पास है कम्युनिकेशन के लिए एंड इवेंट्स की भी एक टीम है, तो
1: जी
0: हम मिल के उसे किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल, ऑब्वियसली टीम वर्क है हर
1: जी
0: चीज, बिकॉज मैं लीडर हूं तो ऑब्वियसली मेरी एक टीम है, तो ये पूरा मेरा अकेले काम नहीं है, पूरा एक टीम वर्क है, तो एक अच्छी टीम है जो सारा हेल्प करती
1: लेकिन
0: है।
1: उस टीम को भी आपको ही मैनेज करना होता
0: हाँ, वो तो डेफिनेटली है कि
1: है
0: आपको
1: ना?
0: हर चीज देखनी है, फ्रॉम इवेंट में अगर छोटे से छोटा कुछ आ रहा है उससे लेके इवेंट वाले दिन तक
1: जी
0: फाइनल खत्म होने तक सब कुछ आपको देखना है, वो मैनेज करना ही है। एंड वो बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ एक अच्छी टीम होती है। एंड ऐसे ही डिजिटल में हम एज अ टीम वर्क काम करते हैं, बट हाँ मैं डिसाइड करती हूँ कि कौन क्या काम करेगा।
1: अच्छा, तो बेसिकली आपकी जो वर्किंग है, आपका जो काम रहता है वो क्या है?
0: हर दिन हम देखते हैं कि आजकल एडमिशन्स टाइम चल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हम कैसे अपने लाइक पेज को और बेटर कर सकते हैं, हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कैसे बेटर कर सकते हैं, तो हम डेली आके थोड़ा रिसर्च करते हैं।
1: जी
0: पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सब कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, बाकी कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, है ना, हम भी अपने पेज को डेली आके, जैसे हमारा कुछ इवेंट हुआ है सपोज, अच्छा
1: जी जी
0: हमारे आजकल बीटेक के बच्चों ने एक ऐप बनाई है ट्रैकिंग के ऊपर, तो हम हमारे पास जो न्यू न्यूज आती है हम उसे भी अपने सोशल मीडिया पेज पर आके उसके जैसे क्रिएटिव्स बनवाते हैं या रील्स बनवाते हैं एंड हम उन्हें फिर पोस्ट करते हैं, हम उसे सोशल मीडिया पे फ्लोट करते हैं एंड डेली आके तो बेसिकली हम यही देखते हैं कि हमारा खुद का इंटरनल क्या काम हुआ है जिसे हम अपने सोशल मीडिया पेज पर दिखा

0: सके। अंशी जी, बहुत अच्छा लग रहा है जान के कि आप दोनों कामों को एक साथ अच्छे से मैनेज कर पाती हैं। ठीक है, टीम के साथ करते हैं, लेकिन उस टीम को भी तो आप ही को मैनेज करना होता है।
1: जी बिल्कुल।
0: ये तो रही हमारे काम की बात, आप जो काम करती हैं जिससे रिलेटेड हैं ये उसकी बात रही। अब हम आप बात करते हैं कि आप शौक रखती हैं तो किस चीज में रखती हैं?
1: मेरा पर्सनल शौक तो मैं थिएटर भी करती हूँ।
0: जी, होता है ना, हर किसी का अपना एक हॉबी होती है कि भाई ये पढ़ाई लिखाई है, ये मेरा काम है, ये मेरी सर्विस है, बिजनेस है, लेकिन साथ ही साथ कुछ और एक्स्ट्रा होता है हर किसी में, तो वो एक्स्ट्रा टैलेंट आप अपना बताइए।
1: एक्स्ट्रा टैलेंट तो मैं थिएटर भी करती हूँ।
0: वेरी नाइस।
1: हाँ, साइड बाय साइड, सो वो मेरी हॉबी है। सो जब मुझे मौका मिलता है, बिकॉज थिएटर के लिए भी आपको पूरा टाइम देना होता है,
0: बिल्कुल,
1: तो हाँ जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं डेफिनेटली थिएटर जाती हूँ। और अगर मैं प्ले नहीं भी कर रही हूँ, टाइम नहीं भी है, तो बट यस, मैं थिएटर जाती हूँ, मैं देखती हूँ जो और दूसरे परफॉर्मेंसेज हो रहे हैं, प्लेज हो रहे हैं, मैं उनका पार्ट बनती हूँ किसी भी तरह से। सो या टीम को एनकरेज करने
0: मतलब
1: के लिए
0: कभी आप प्ले करते हैं तो कभी आप प्ले देखते
1: हैं। बिल्कुल बिल्कुल,
0: बहुत अच्छी बात है। अंशी जी, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, इतनी अच्छी बातें बताई, और इतने साधारण तरीके से इतनी ज्यादा जानकारी हमारी सखियों को दी, और साथ ही आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच अनु जी।

सखियों कौन नहीं चाहता है हमारा घर सुंदर और आकर्षक लगे, इसके लिए जरूरी है साफ सफाई के साथ घर को प्लास्टिक मुक्त बनाने की शुरुआत। छोटे छोटे कदमों से ही की जा सकती है, जैसे कि आप रसोई में प्लास्टिक के डिब्बों की जगह कांच, स्टील या चीनी मिट्टी के कंटेनर अपनाएं। फ्रिज में सामान रखने के लिए सिलिकॉन बैग, कांच के जार और पानी रखने के लिए स्टील या तांबे के बर्तन का प्रयोग करें। और जब भी दालें, मसाले या ड्राई फ्रूट्स खरीदें तो खुले में खरीदें और अपने डिब्बे साथ लेकर जाएं। कपड़े के बने थैले या कागज की बनी थैली का इस्तेमाल करें। डिस्पोजल प्लास्टिक की बोतलें खरीदने से बचें, हमेशा स्टील या तांबे की बोतल यूज करें। आप कंघा, कंघी, लकड़ी या बांस से बने हुए भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक का यूज करने से बचें। प्लास्टिक वाले स्क्रब्स की जगह नारियल के रेशे या लकड़ी वाले ब्रश चुनें। यदि आप घर को प्लास्टिक मुक्त बनाना चाहते हैं तो आप इन छोटी छोटी बातों को जरूर फॉलो कीजिए अपनी रोजमर्रा की लाइफ में।

सखियों, मुझे भी आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समय अब अनुमति नहीं दे रहा है कि हम आगे आपसे और बातें करें। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। अपनी दोस्त प्रियंका को दीजिए अनुमति। सखियों, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे नारी संसार। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। शाम के 6 बजे हैं और इसी समय के साथ माधुरी लोधी के साथ सुनते हैं युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का प्रोग्राम युवावाणी में। और आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो दोस्त माधुरी। दोस्तों, जैसा कि प्रोग्राम की शुरुआत में हम आप सबसे पहले यही जानते हैं कि आज क्या खास है, तो दोस्तों आज है एक ऐसा इम्पोर्टेंट दिवस जो कि हमारे आपके जीवन और इन्वायरमेंट से गहराई से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विश्व महासागर दिवस की। साथियों, यह दिवस महासागरों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और आइए अब जानते हैं कि इस दिवस की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, सन 1992 में रियो डी जेनेरियो में ग्लोबल फॉर्म में इसका प्रस्ताव रखा गया था। और फिर सन 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। तो ये थी बातें इस दिवस की शुरुआत की, और ओशियंस के बारे में और भी बातें आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए बढ़ते हैं संगीत की ओर और सुनते हैं धूम धड़ाका में ये प्यारा।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
4: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
5: दोस्तों ये है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम युवाणी अपनी रेडियो दोस्त माधुरी के साथ। जी हाँ दोस्तों, गीत से पहले हम आपसे बात कर रहे थे महासागरों के बारे में। दोस्तों महासागर जीव मंडल का एक अहम भाग है। इसके अलावा भोजन और मेडिसिंस का भी एक अच्छा सोर्स है ये, और ये पर्यावरण संतुलन में बहुत मदद करते हैं। दोस्तों ओशियंस पृथ्वी की सतह के लगभग 70% से अधिक हिस्से को कवर करते हैं और इसमें पेड़ पौधे और कई प्रजाति के जानवर पाए जाते हैं।

और इसके अलावा ये इकोनॉमी को बढ़ाने और रोजगार का भी एक अहम साधन है। और दोस्तों, विश्व महासागर दिवस भी हमें यही सीख और संदेश देता है कि हम आप ओशियंस के बारे में जानें और इसके संरक्षण में अपना योगदान दें। और इसको हम आप सिल्विया जी द्वारा लिखे गए इस क्वेट से समझ सकते हैं, नो वाटर नो लाइफ, नो ब्लू नो ग्रीन। और आइए सुनते हैं धूम धड़ाका में ये गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: और दोस्तों आइए अब बात करते हैं अरविंद कुमार पाठक जी से, जो कि कंप्यूटर प्रशिक्षक हैं। आपका नाम?
2: अरविंद कुमार पाठक
1: जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा ये बताइए, क्या करते हैं आप?
2: मैं एक कंप्यूटर टीचर हूं और कंप्यूटर सिखाता हूं, जो एक साल का है, जिसका ADCA नेम है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसको कराने के बाद कोई भी स्टूडेंट, सरकारी संस्था हो या गैर सरकारी हो, कोई अपना प्राइवेट वर्क हो या किसी ऑफिशियल वर्क में आसानी से वर्क कर सकता है।
1: जी, कंप्यूटर का हमारे जीवन में क्या महत्व है?
2: बहुत ही महत्व है मैम, इसके बिना तो जीवन ही अधूरा है। अगर हमारे एजुकेशन लाइफ में यदि कंप्यूटर हम सीखे हुए हैं, तो ये हमारे जीवन में चार चांद लगा देता है, टेक्निकल लाइन में भी और वैसे भी।
1: जी अच्छा ये बताइए कि कंप्यूटर फॉरेंसिक्स क्या होता है?
2: कंप्यूटर फॉरेंसिक्स अलग अलग क्षेत्रों में है, किसी भी कंपनी में इसका बहुत ज्यादा महत्व है।
1: जी क्या साइबर सुरक्षा में इसकी कोई मदद मिलती है? क्या रोल होता है इसका?
2: बिल्कुल, लाभ और हानि दोनों ही है। कंप्यूटर से हम सुरक्षा भी कर सकते हैं अपने किसी भी डाटा की, और जो हैकर्स होते हैं वो भी कंप्यूटर लाइन में हैकर बन जाते हैं, तो अपना उस तरीके से काम कर लेते हैं। लाभ भी है और हानि भी है, दोनों चीजें हैं।
1: जी अच्छा ये बताइए कि जो श्रोता हमारे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, वो किस प्रकार आ सकते हैं?
2: कोई भी विद्यार्थी अपने पास किसी संस्था में सीख सकते हैं, और सीखने के बाद किसी भी कंपनी में या गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है,
1: जी
2: आसानी से जॉब कर सकते हैं। हर जगह, हर शहर, हर गांव में भी 2-4 किलोमीटर पर कंप्यूटर संस्थान अवेलेबल हो जाएंगे।
1: अच्छा जी, अन्य ऐसी कोई बात जो आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहें तो कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं?
2: कंप्यूटर सीखें और सीखने के बाद अच्छी जॉब करें, यही हम कहना चाहेंगे।
1: जी कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और आकाशवाणी बरेली से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू मैम।

दोस्तों अब बारी है आज के सवाल की। हमने आपसे पूछा था कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर है लियोन, फ्रांस में। और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता हैं प्रवीण चौहान, राजेश वर्मा, धर्मेंद्र छीपा, हीरामणि वर्मा, विजय सुरलकर, जॉन डिकेस्ट्रो, धर्मवीर कश्यप, बबलेश पवार, गंगा सिंह रावत, संजय ढिंगिया और निसार सलमानी। तो ये था सवाल और जवाब, और आइए अब सुनते हैं धूम धड़ाका में इस गीत को।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: दोस्तों, अब धूम धड़ाका में चलते हैं फरमाइश की ओर और इस गीत को सुनना चाहा है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की इस आखिरी पेशकश को।

तो ये था युवाड़ी का आज का धूमधड़ाका का सफ़र, और आज के सफ़र में आपके साथ थी आपकी अपनी रेडियो दोस्त माधुरी। फिलहाल आज का ये सफ़र बस यहीं तक। अपनी रेडियो दोस्त माधुरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। समय मिलाइए शाम के 6:30 और 12 सेकंड हुए हैं। तो लीजिए हरद्वारी लाल के साथ सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी अपने भाइयों और बहनों को आपके भैया हरदोई लाल वर्मा की ओर से राम राम। कैसे हो भैया और कैसी चल रही है आपकी खेती बाड़ी? हम उम्मीद करते कि आप ठीक होंगे, लेकिन मौसम का ये उतार चढ़ाव है, ऐसे में हमारे किसान भाई अपना ध्यान रखें और साथ ही साथ उनके जो नन्हे मुन्ने बच्चा हैं, पशु हैं, उनका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मौसम करवट ले रहा है। कभी ठंड है तो कभी भीषण गर्मी है। ऐसे में हम अपने भाइयों से ये कहेंगे अधिक से अधिक पानी पिएं और जो हरी चीज़ें हैं उनको अवश्य खाएं, जैसे ककड़ी है और खरबूजा है, तरबूजा है, खीरा है, लौकी है। इन चीज़ों को हमारे भाई इस्तेमाल करेंगे तो उनको स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। पानी जम के पिए, अगर पानी की बॉडी में कमी हो जाती है तो तमाम रोग होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए बॉडी को पानी की प्रतिपूर्ति कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम गर्मी में जाते हैं तो हमारे जो शरीर से पसीना निकलता है तो इस वजह से पानी की शरीर में कमी हो जाती है। पानी की प्रतिपूर्ति इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं कि करते रहें, घर से बाहर निकलें तो पानी की बोतल साथ में ज़रूर ले जाएं, सर पर अंगोछा डाल के जाएं ताकि उनका जो सर है वो ढका रहे। खैर, ये तो बातचीत आपसे आपके स्वास्थ्य की और देखभाल की हो गई। आज हम कार्यक्रम में क्या क्या लेके आए हैं ये आपको बता दें। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा का महत्व, साथ ही साथ आपको सुनवाएंगे एक वार्ता, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण, इस विषय पे जानकारी देंगे हमारे साथी हिफाजत अली। साथ ही साथ आपको प्यारे प्यारे लोकगीत से कराएंगे मनोरंजन। अब हम आपको बता दें, जैसे

0: कि हमने चर्चा के बारे में बताया कि शिक्षा का महत्व, शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं ना, शिक्षा वह एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही ढाड़ेगा। शिक्षा मानव जीवन की आधारशिला है। ये न केवल ज्ञान और कौशल प्रदान करती है, बल्कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी और समाज में एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाती है। ये सफलता व्यक्तिगत विकास और आर्थिक नहीं है, ये एक स्तर की कुंजी है, व्यक्ति का विकास। शिक्षा हमें सही और गलत का फर्क भी सिखाती है, जिससे हमारा चरित्र और दृष्टिकोण मजबूत होता है। एक अच्छी शिक्षा बेहतर रोजगार के भी अवसर प्रदान कराती है, जिससे गरीबी दूर होती है और आर्थिक सुधार भी प्राप्त होता है। ये समाज में व्याप्त कुरूतियां हैं और भेदभाव हैं, तमाम तरह के पाखंडवाद हैं, लिंग भेदभाव है, जातिवाद है, उनको भी ये कम करती है और आगे बढ़ने का समान अवसर देती है। शिक्षा और जो शिक्षित व्यक्ति होता है, अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहता है, जिससे किसी के लिए भी उसे धोखा देना या उसका शोषण करना मुश्किल हो जाता है। शिक्षित नागरिकों से मिलकर ही एक अपराध मुक्त, शांतिपूर्ण और विकसित राष्ट्र का निर्माण होता है। तो इसलिए शिक्षा हमें हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है, और यही तो है किसान भाइयों, शिक्षा का महत्व। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक वार्ता, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण। इस विषय पर जानकारी दे रहे हिवाजत अली। साथियों, अब हमारे जो केंद्र सरकार ने और यूपी सरकार ने जो समान शिक्षा की दी है, समान शिक्षा, सभी को समान शिक्षा होना चाहिए, ना कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। और होता क्या है कि मजहब और
1: आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिसका टॉपिक है मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण। मदरसा क्या है? मदरसा अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विद्यालय या स्कूल। मदरसा आधुनिकीकरण योजना मूल रूप से केंद्र सरकार द्वारा 1993-94 से शुरू की गई थी। पारंपरिक मदरसों में आधुनिक विषय, जैसे मदरसे में एक इस्लामिक शिक्षा, धार्मिक ज्ञान और नैतिक मूल्य का मुख्य केंद्र रहा है, लेकिन बदलते समय के अनुसार इसमें अनेक विषय जैसे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर साइंस आदि का ज्ञान भी हासिल करना होता है। आज हम एक केवल दीनी तालीम ही नहीं, बल्कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत ही जरूरी हो गई है। मदरसा शिक्षा में आधुनिकीकरण का मतलब हमारी पुरानी और ऐतिहासिक शिक्षा प्रणाली को मिटाना नहीं है, बल्कि उसको आगे बढ़ावा देना है। इसका असल उद्देश्य हमारी दीनी तालीम के साथ साथ अन्य विषयों पर भी ज्ञान और हासिल करना है, जैसे गणित का ज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर साइंस और अन्य विषय। ज्ञान जरूरी होना इस समय बहुत ही जरूरी है। हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की कुरान और हदीस के साथ साथ कंप्यूटर की भी कोडिंग करना सीखना, विज्ञान में प्रयोग करना और अंग्रेजी में बात करना बहुत ही जरूरी हो गया है। जैसा कि आजकल बेरोजगारी बहुत बढ़ती चला जा रही है, इसमें मदरसों के ज्ञान के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आगे बढ़कर अपना एक कैरियर बनाना साइंस में, कंप्यूटर में बहुत ही जरूरी हो गया है, और इससे मदरसों के बच्चों को उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आज के तकनीकी युग में शिक्षा का आधुनिकीकरण भी जरूरी है। यदि हम अपने बच्चों को आधुनिक तकनीकों से लैस नहीं करेंगे तो वे रोजगार के अवसरों में बहुत पीछे रह जाएंगे और इससे बेरोजगार भी रह सकते हैं। तो वो रोजगार के अवसरों को ढूंढने के लिए पहले तो अपनी दुनियावी तालीम को हासिल करेंगे।

मदरसों की तालीम के अलावा डिजिटल लाइब्रेरी और तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के हम अपने छात्रों को एक उज्जवल भविष्य, सुरक्षित भविष्य दे सकें। आज ऐतिहासिक प्रणाली को मिटाना नहीं, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें अरबी भाषा, उर्दू भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, कंप्यूटर की लैंग्वेज और विज्ञान के साथ साथ इन सबको भी समझना बहुत जरूरी है।

अब हमारी सरकार ने समान शिक्षा का अधिकार और इसमें सभी बच्चों के लिए सभी विषयों का पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। तो हम समझते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दूसरी बात ये है साथियों श्रोताओं कि आज 90 वर्ष हमारी आकाशवाणी को हो रहे हैं। आकाशवाणी ने हमारे तमाम श्रोताओं को जनमानस को बहुत कुछ दिया है। आकाशवाणी मनोरंजन ज्ञानवर्धक जानकारियाँ ये आकाशवाणी के माध्यम से ही आप तक पहुँची और उसका हमारे भाई लाभ भी ले रहे हैं। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं संचालित हो रही हैं वो हम आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित करते हैं और उनका आप लाभ लेते हैं। जो आप जिस जानकारी से अनिभिज्ञ होते हैं उस जानकारी को आकाशवाणी के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। चाहे देश दुनिया की कोई घटना घटित हो आकाशवाणी के माध्यम से आप तक पहुंचती है, हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं तक पहुंचती है। ठीक इसी प्रकार से यदि समाज में तमाम तरह की कुरूतियाँ व्याप्त हो जाती हैं उनको दूर करने का हम भरसक प्रयास करते हैं, वो किससे करते हैं? आकाशवाणी से करते हैं। हमारे तमाम ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो विभिन्न विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, उनको सहारा होता है जो तमाम ज्ञानवर्धक कार्यक्रम चलते हैं वो अपनी पढ़ाई में आकाशवाणी का सहारा लेते हैं। भरपूर कोशिश करते हैं हम छात्र छात्राओं को और अपने श्रोताओं को विभिन्न प्रकार की जानकारियां दें, स्वास्थ्य से संबंधित, कानून से संबंधित, कृषि से संबंधित, मनोरंजन से संबंधित, आपका भरपूर आनंद हम कराते हैं। तो हमारी आकाशवाणी के 90 वर्ष आज होने पर तमाम श्रोताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्यारा सा गीत, लोकगीत। और क्योंकि बहुत सारी जानकारी चर्चा हो गई, हमारे भाई सोचते होंगे कि हरदौरी लाल वर्मा मनोरंजन नहीं करा रहे हैं, तो आइए सुनते हैं। इस के लिए सुनने की फरमाइश लिखकर भेजी है निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज बरेली से हमारे बहुत ही नियमित और पुराने श्रोता हैं कल्लू भाई मिस्त्री, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद दानिश, बाबर अजीम, अनाविया फातिमा, वाहिद हुसैन और साथ में हैं मास्टर मोमिन और आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, यशपाल दिवाकर, ओमेंद्र पुरी गोस्वामी, राजीव पुरी गोस्वामी और तमाम इनके साथी। छावनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास होली चौराहे बरेली से राम प्रसाद शर्मा, वंदना मनोरमा, अजय शर्मा, वंश काशिका शर्मा, राम प्रसाद शर्मा और समस्त शर्मा परिवार के लोग। ग्राम दूनी नगर जिला बदायूं से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, सत्येंद्र कुमार कठेरिया, गुड्डू विशाल, संगम वैभव, आदर्श आदित्य, अमित रेणु, कुमकुम निव्या सरता अंतिम। ग्राम रंपरा किसानान मजरा सिमरिया, तहसील मीरगंज बरेली से राम कुमार वर्मा, भगवान दास वर्मा, शशि कुमार वर्मा, छोटी सी विवेक और हिमांशी वर्मा, इनके साथ में हैं नत्थूलाल वर्मा, ननकी सिंह वर्मा और सोमपाल वर्मा। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखीलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और साथ में हैं स्वाति मौर्य। नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजवी निसार अंसारी, बेटी नुजत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, तस्लीम रजा और पप्पू भाई अंसारी। धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। जिला मुरादाबाद, ग्राम दूनेपुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी,
लक्ष्य सोनी।

टोनी, ऋतिक, बलवीर और इनके सभी साथी। आप हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहार, धनरी दतरंगी से भाटापारा, छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा और इनके साथी। चर डोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी माया साहू और इनके सभी साथी। सादुल शहर से राम कुमार रेवाड़। और आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहान, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। आप हैं स्वाति माझी का, महेश कुमार कोकरेजा, संध्या कोकरेजा, माही पूजा, छुटकी शरद कुमार डोवानी एवं पुरा माखीजा कुटुम्ब सहित आभार, इन्होंने आभार प्रकट किया है। सभी प्रोग्राम सुनते हैं। आप हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलकर, रतन माला सुलकर और इनके तमाम साथी। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यसफ अब्बासी, रशीद वारसी, सुहेल हसम हसन अब्बासी और इनका सभी परिवार। आप हैं सागर लखना दौल मध्य प्रदेश से लाला जी चौबे, लाली जी चौबे, रिमझिम चौबे, सक्षम चौबे। पश्चिम पूरी दिल्ली से उत्तम सिंह जुनेजा, भूपेंद्र जुनेजा, सीमा जुनेजा, अनमोल जुनेजा, साहिबा गुप्ता और इनके सभी साथी। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: अगले लोकगीत की फरमाइश लेकर भेजिए करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार, मस्तान बाबा और उनके तमाम साथी। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके सभी साथी। बहड़ी से अंजुम भाई, खालदा बेगम, कैक्सा, दानिश, आदिल, सफक। आप सभी लोगों ने सुनना चाहा ये प्यारा सा लोकगीत, तो आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399444

0: 313 पर संपर्क करें।
1: तो किसान भाइयों, आपने ये लोकगीत सुना, हमें उम्मीद है कि आपने जो दिन भर काम किया उसकी थकान उतर गई होगी, और वैसे भी जीवन बेकार है, प्रभु का गुणगान करते रहना चाहिए। काम में व्यस्त जरूर आप लोग रहते हैं, लेकिन शाम के लिए जब ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोग मंदिर पर इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, और मंगलवार शनिवार को भजन करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए प्रभु का नाम लेते रहिए, बिना प्रभु के नाम लिए हमारा जीवन बेकार है। खैर, अब समय नहीं आपसे और बातचीत करें, लेकिन आकाशवाणी के जो 90 वर्ष पूरे हुए हैं आज, उसकी मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आकाशवाणी ने आपके लिए रोचक ज्ञानवर्धक जो जानकारियाँ दी हैं, इसके लिए अब दीवार में लगी घड़ी बार बार इशारा कर रही है कि समय पूरा हो चला है। तो अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने भैया हरद्वारी लाल वर्मा को दीजिए अनुमति। भैया बहनों, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। शाम के 7 बजे हैं और हम लेकर हाजिर हुए हैं अक्षय वट। आज के हमारे भेंट वार्ता जिससे हुई है, आप हैं समन अफरोज, इनसे भेंट वार्ता की है क्षमा सक्सेना ने।
1: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी समर्पित है अपने श्रोताओं के प्रति और ये समर्पण दिखता है उनके कार्यक्रम से। आज उसी क्रम में से एक दिशा है अक्षयवट, यानी एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हमारे बुजुर्ग श्रोता अपनी बिताई हुई जिंदगी के कुछ अनुभव हमसे साझा करते हैं और उस दौर और आज के दौर में क्या समानता है, क्या विभिन्नता है, इस बारे में बात करते हैं। तो आज इसी क्रम में हमारे साथ हैं एक वरिष्ठ महिला। सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं उन्हीं से उनका परिचय। आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम समन अफरोज है। मैं किला संदल खां बजरिया में बरेली में रहती हूँ।
1: जैसा कि आपने बताया कि आप एक हाउस वाइफ हैं, तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके परिवार में कौन कौन है?
2: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, बहुएं हैं।
1: अच्छा।
2: और मेरे पोती पोता हैं।
1: अच्छा।
2: जी, सब मिलकर रहते हैं एक साथ।
1: अच्छा।
2: दो बहुएं आ चुकी हैं, एक दामाद आ चुका है।
1: अच्छा, यानी कि आपका
2: पूरा भरा परिवार है। जी
1: समन अफरोज जी, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी आकाशवाणी 90 वर्ष का सेलिब्रेशन कर रहा है। आकाशवाणी को 8 जून को 90 साल पूरे हो जाएंगे
2: जी।
1: तो आप आकाशवाणी के सफर को कैसे देखती हैं, क्योंकि आपने भी बहुत समय से रेडियो सुना होगा, आप भी रेडियो से जुड़ी होंगी, तो आप बताइए हमारे कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं को कि पहले के कार्यक्रमों में और आज के कार्यक्रमों में क्या अंतर है, क्या उससे बेहतर हुआ है, या आप पहले किस तरह से सुनती थी और आज कार्यक्रम सुनना या रेडियो सुनना कितना ईजी हो गया है?
2: जी, पहले भी हम लोग सुनते थे, क्योंकि पहले तो रेडियो पे आता था और उसी में हम लोग सुनते थे।
1: अच्छा,
2: ज्यादातर। और अब ये आसानी हो गई है कि मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लिया जाए तो उसमें आ जाता है रेडियो स्टेशन का सब प्रोग्राम। वो ज्यादा आसानी हो गई, नहीं पहले रेडियो पे सुना जाता था, कभी आवाज सही आ रही है, कभी नहीं आ रही है, कभी कुछ हो रहा है। लेकिन अब बहुत आसान हो गया, जब चाहे सुबह शाम कभी भी आप खोल सकते हैं मोबाइल को और उसमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और ज्यादा प्रोग्राम अब अच्छे होने लगे हैं और बहुत ज्यादा होने लगे हैं। पहले तो थोड़े प्रोग्राम आते थे और न्यूज वगैरह सब आती थी सब जगह की। वैसे भी उसका भी मजा अलग था, बहुत अच्छा मालूम होता था, सारी फैमिली बैठ के सुनती थी,
1: सारी फैमिली सुनती।
2: और अब तो ज्यादातर अपने अपने मोबाइल में सब अपने अपने सुनते रहते हैं। पहले एक जगह इकट्ठा होकर रेडियो खोला जाता था, ट्रांसिस्टर, और उसमें सब सुनते रहते
1: बहुत।

0: अच्छी बात कही आपने।
1: जी
0: पहले क्या होता था कि एक रेडियो होता था और सुनने वाले पूरे घर के लोग होते थे। आज समय ऐसा हो गया है कि लोग चाहे कितने भी हो उतने ही सबके पास रेडियो है। एक तरह से देखा जाए
1: जी
0: आप
1: एक
0: मोबाइल
1: तरह
0: पे
1: से
0: सुन रहे
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, कोई कोई चैनल
1: जी
0: सुन रहा है, कोई कोई चैनल सुन रहा है। तो समन अफरोज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने आकाशवाणी के इस सफर को देखा है, तो आपको क्या लगता है कि आकाशवाणी ने हमको क्या दिया है, रेडियो ने हमको क्या दिया है, आपको क्या क्या जानकारी मिली है, इस बारे में बताइए।
1: रेडियो से बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है, क्योंकि आजकल तो टीवी चल गए हैं, लेकिन रेडियो से बहुत जानकारी मिली है किसानों के बारे में, घर की महिलाओं के बारे में। जैसे गाने पहले आते थे, उनमें बहुत मजा था, गानों में बहुत अच्छा मालूम होता था, सब लोग इकट्ठा होकर सुनते थे, उसमें मजा ही और था। लेकिन अब भी हर चीज हर के पास मौजूद है, मोबाइल, तो इसीलिए ही बहुत आसानी हो गई है कि एक जगह पे बैठना नहीं पड़ता है। कहीं भी कोई रहे, कोई अपने बिस्तर पे है, कोई अपने घर में है, कोई स्टडी
0: जी
1: कर रहा है, जब चाहे कोई खबर या कोई प्रोग्राम देख सकता है, सुन सकता है।
0: बिल्कुल। समन अफरोज जी, आप ये बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है।
1: जी मेरे परिवार में मेरे पति हैं जो रिटायर हो चुके हैं,
0: जी
1: घर पर ही रहते हैं, और मेरे दो बेटों की शादियां हो गई हैं, तो दोनों बहुएं हैं मेरी।
0: अच्छा
1: जी
0: अच्छा
1: बड़ी बहू के एक बेटी है जिसका
0: जी
1: नाम
0: जी
1: उरूज है,
0: बहुत
1: वो
0: अच्छी
1: 12 साल
0: बात
1: की है,
0: है। अच्छा
1: और छोटी बहू के यहाँ जो अभिया हैं उनके यहाँ 5 साल का एक बेटा है, उसका नाम
0: अच्छा
1: अली मुर्तुजा है, और मेरी बेटी सानिया है, उसकी भी शादी हो चुकी है,
0: अच्छा
1: उसके हस्बैंड का नाम कामरान है, वो रायबरेली में रहती है। उनके दो बेटियां हैं, एक 5 साल की है और एक अभी 8-9 महीने की है।
0: अच्छा
1: जी
0: यानी आपका बड़ा परिवार है
1: जी
0: और
1: भरा
0: संयुक्त
1: पूरा
0: परिवार है।
1: परिवार है जी, सब साथ में रहते हैं, अच्छा मालूम होता है।
0: तो समन जी, आप ये बताइए, आपका इतना बड़ा परिवार है जैसा आपने बताया, तो आप इस अपने परिवार को कैसे संभालती हैं, कैसे मैनेज करती हैं सब चीजों को, कि सब लोग ही खुश रहे घर में, ऐसा ना हो कि कोई गुस्सा हो या कोई दुखी हो, तो आप इन सब चीजों को कैसे मैनेज करती हैं, सबको एक साथ लेकर कैसे चलती हैं।
1: प्यार मोहब्बत से रखना पड़ता है और हर एक का ख्याल रखना पड़ता है, किसी को कोई बात बुरी ना लगे। समझाना भी है तो प्यार
0: जी
1: से
0: जी जी
1: समझाओ, क्योंकि बहुत बुरा लग जाएगा अगर डांट के बात कर ली।
0: जी जी
1: वो भी बहुत अदब से, बहुत आदर के साथ रहे हुए भी बहुत अच्छी हैं आदत की, लेकिन अपने आप को, बड़ों को अपना व्यवहार बहुत सही रखना पड़ता है, किसी में भेदभाव नहीं करना पड़ता कि एक को ज्यादा कर दिया, एक को कम कर दिया, सबका ख्याल रखना पड़ता है। खाना पीना भी एक ही जगह पे है,
0: जी
1: दोनों बहुएं काम काज करती हैं, एक मेड रखी हुई है, जो वैसे खाने पीने होते वो सब मैं खुद बना लेती हूँ,
0: बहुत अच्छी बात है।
1: क्योंकि बहुओं को पुराने वाले खाने नहीं ज्यादा बनाना आते, तो वो मैं बनाती हूँ और सारा काम बहुएं कर लेती हैं। सब आपस में सम्मान से रहते हैं, एक दूसरे से खुशी से मिलजुल के, बहुत अच्छा मालूम होता है, परिवार का माहौल बहुत अच्छा है।
0: बहुत अच्छी बात है। आपने जैसे बताया कि आप आपकी बहुएं नहीं कर पाती हैं, जो कि पुरानी डिशेस होती हैं आजकल की लड़कियां नहीं बना पाती हैं, वो आप बना लेती हैं, और आपकी बहुएं भी अब आपसे सीख रही होंगी, आने वाले समय में वो भी बनाने लगेंगी।
1: जी
0: लेकिन यही तो होता है कि घर में जो कलह का कारण होता है वो यही होता है कि घर में सास है, चाहती है कि मेरी बहुएं ही सारा काम करें। ये आपकी समझदारी है, क्योंकि जब हमारे घर का बड़ा, हमारे घर के जो बड़े होते हैं, वो अगर समझदारी से काम लेते हैं, अपने घर को एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं, तो कोई कठिन काम नहीं है। जैसे लोग
1: जी
0: सोचते हैं कि संयुक्त परिवार में रहना बहुत टिपिकल है, आज कई बच्चों की मेंटेलिटी हो गई है कि वो ये सोचते हैं कि शायद साथ में रहना बहुत मुश्किल है,
1: जी
0: लेकिन
1: हाँ
0: ऐसा बिल्कुल नहीं है। साथ में रहने से तो बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि
1: जी
0: अगर आपको बहू से सुविधा मिल रही है तो बहू को आपसे सुविधा मिल रही है,
1: जी जी
0: बच्चों को अपने पिता से सुविधा मिल रही है, इसलिए संयुक्त परिवार तो बहुत अच्छा होता है और सबको मिलजुल कर ही रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने समन अफरोज जी, कि आप अपने परिवार को एक सूत्र में बांधी हुई है और सब लोग बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। आप ये बताइए कि परिवार में सबको एक साथ रखने का राज क्या है, क्या ऐसा आप, मतलब कोई तो आप में ऐसी क्वालिटी होगी जो कि आपने अपने परिवार को एक साथ बांधे रखा है।
1: जी सबसे ज्यादा यह है कि प्यार मोहब्बत से रहना, एक दूसरे का ख्याल करना, बहुओं को बेटियों की तरह समझना, यह
0: जी
1: नहीं कि वो आई हैं तो बस अब वही काम करेंगी, वही नौकरानी घर की है, उन्हीं की जिम्मेदारी है,
0: जी
1: जो भी है वो बता दिया, कोई अगर उनसे गलती हो गई तो उसको माफ कर दिया, कोई ये नहीं कि उनको डांट फटकार, कोई बदतमीजी के जबान कोई ऐसी इस्तेमाल नहीं की जाती है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सहूलियत से समझा दिया कि भाई ऐसे ऐसे ऐसा मत करना, ये चीज गलत है, तो वो मान भी लेती है, क्योंकि डांट फटकार है नहीं, तो उन्हें गुस्सा या जिद बहुओं को भी नहीं होता फिर, नहीं तो ऐसे तो जिद में हो जाती हैं कि हमें तो ये काम नहीं करना है।
0: सही बात
1: लेकिन बहुत प्यार से समझा दिया कि ये बात इस टाइम पे गलत थी, और घर के माहौल को देख के ही सब बहुएं समझ जाती हैं कि इस
0: समझ
1: घर का
0: जाती,
1: माहौल अच्छा है या खराब है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आपस में सब मिलके रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, तो बहुएं भी उसी तरह
0: क्योंकि
1: फिर।
0: आप अपने परिवार में आपस में डिफरेंस

0: करती हैं, क्योंकि आप बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं रखती,
1: जी
0: तभी तो
1: जी
0: बहुएं भी सास और माँ में कोई अंतर नहीं करती
1: जी
0: हैं।
1: बहुएं भी समझ गई कि माहौल घर का क्या है, किस
0: हाँ,
1: तरीके का व्यवहार रखना है।
0: अगर समझिए जैसे परिवार में बहुत सी बातें होती हैं, लोग कहते हैं चार बर्तन होते हैं तो खटकते ही हैं, तो अगर आपके परिवार में कभी कोई मतभेद हो जाए या कोई किसी बात पे नाराज हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करती हैं? मतलब कौन से ऐसे जतन करती हैं जिससे कि सब पूरे घर का माहौल फिर से वैसे ही हो जाए?
1: यही होता है, जो कोई नाराज अगर हो गया तो होती नहीं, और अगर हो भी जाए कोई बात बुरी लग गई तो उनको समझा दिया जाता है प्यार से, और जिसकी गलती होती है उसको भी मना कर दिया जाता है कि अब आइंदा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, और सबको मिलजुल के रहना चाहिए एक दूसरे के साथ। बड़ी बहू जो है वो उसको भी समझाया जाता है कि छोटों से प्यार से
0: प्यार से
1: रहो,
0: रहो।
1: और छोटी से भी कहा जाता है कि भाई बड़ी की इज्जत करो, जेठानी है तुम्हारी,
0: जी जी
1: जेठ
0: जी
1: है, तो वो बहुत अहमियत से और बहुत प्यार से समझाना पड़ता है, तो वो सब बातें सब मरहले हल हो जाते हैं।
0: तो समन जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप भी एक संयुक्त परिवार में ही रहती थी, जब आप शादी हो गई होंगी तो आपकी भी फैमिली बड़ी होगी,
1: जी
0: तो सब लोग ऐसे ही
1: हाँ ऐसे ही रहते
0: हंसी
1: थे,
0: खुशी
1: जी
0: रहते
1: हाँ
0: थे?
1: मेरे चचा चची साथ में रहते थे, मेरी
0: अच्छा
1: दादी
0: अच्छा
1: दादा रहते थे
0: अच्छा
1: जी, कभी कभी नानी वहां से आ जाती थी अपने इलाहाबाद से, तो हम लोग उसी माहौल में पले हैं, तो इसीलिए हम लोगों को आदत है पड़ी हुई, तो इसी तरह हम अपने घर वालों को भी इसी तरह रखते हैं
0: अच्छा बहुत
1: जी।
0: अच्छी बात है। समझ जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आजकल के घरों का माहौल हो गया है कि बच्चे अपने अपने रूम में बैठे हैं, अपने मोबाइल लेके बैठे हैं, माता पिता अपने अलग हैं, पहले समय में मुझे लगता है शायद ऐसा नहीं था, क्योंकि ये सुविधाएं नहीं थी। पहले
1: जी
0: अगर टीवी देखेगा,
1: तो
0: सारे लोग
1: सारी
0: टीवी देखे, सब
1: फैमिली
0: एक साथ ही
1: जी एक
0: देखेंगे,
1: साथ देखते
0: क्योंकि
1: थे।
0: टीवी सबके कमरे में अलग अलग, आज तो तब भी होने लगे हैं टीवी, मोबाइल में पहले तो सब लोग देख लेते हैं। पहले समय में क्या था कि एक टीवी लगा हुआ है ड्राइंग रूम में लग गया, या उसमें लॉबी में लगा हुआ है, पूरे घर के लोग खाना खा रहे हैं, साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई और तो मनोरंजन का साधन
1: जी
0: है नहीं,
1: जी
0: कि मोबाइल है आपके पास, तो सब लोग बैठ के। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? हमारी जो नई पीढ़ी है उससे को क्या कहना चाहेंगे कि सबको मिलकर खाने के समय पर या कुछ टाइम ऐसा घर में भी अपना स्पेंड करना चाहिए, सबको एक साथ बैठना चाहिए, साथ में अपनी अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, अपने सुख अपने दुख बहुत सी चीजें होती हैं, तो
1: जी
0: इस बारे में आप क्या कहेंगे?
1: इस बारे में तो यही कहना है कि हर घर वालों को चाहिए, बड़ों को, कि सबको समझाएं बच्चों को और अपने जितने जवान नस्ल है कि एक जगह बैठना चाहिए, कोई एक टाइम बना ले, चाहे नाश्ते पे या खाने के टाइम पे, ज्यादातर नाश्ते में तो जल्दी रहती है, ऑफिस भी जाना है, बच्चों को स्कूल भी जाना है, डिनर टाइम पे ज्यादातर ये सही रहता है कि एक साथ सब बैठते और खाना पीना होता है, उसमें सारी बातें शेयर हो जाती हैं, कोई मसला है वो भी हो
0: जी
1: जाता है,
0: जी
1: कोई ऑफिस की बातें हैं वो भी हो
0: वो भी हो
1: जाती
0: जाती
1: हैं,
0: है।
1: तो उससे बहुत सहूलियत होती है रात के खाने में बैठने से, एक जगह बैठ के सब हल कर सकते हैं अपनी बातें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से भी बोल सकते हैं, हंसी मजाक भी हो जाता है, तो ये सब बच्चों को चाहिए कि एक जगह खाने पे भी एक टेबल पे एक जगह होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग अपने अपने रूम में
0: अपने अपने
1: खा रहे
0: रूम में।
1: हैं या कोई मोबाइल देखने में देर लगा रहा है, कोई
0: जी
1: अलग खा
0: जी
1: रहा है कोई अलग, ये अलग थलग वाला माहौल नहीं होना चाहिए, बच्चों को सबको एक जगह खाने पीने के टाइम पे ही इकट्ठा हो जाना चाहिए, फिर अपने मोबाइल देखें या अपनी स्टडी करें
0: जी
1: या
0: जी
1: अपना कोई ऑफिस वर्क करें, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन खाने पे एक साथ
0: होना
1: सबको
0: चाहिए।
1: बैठना चाहिए।
0: तो अमन जी, ये तो बात हो रही है संस्कारों की, क्योंकि हम जैसे ही अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, बच्चे वैसे ही उसी के अनुरूप चलते हैं,
1: जी
0: क्योंकि अगर हमने बच्चों को शुरू से नहीं सिखाया कि दादी के साथ कैसा व्यवहार करना है, बाबा के साथ, या अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, तो आप बताइए कि बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के लिए कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए?
1: सबसे ज्यादा तो बच्चों को शुरू से सिखाना चाहिए कि बड़ों का अदब करें,
0: जी
1: लेकिन अगर हम अपने सास ससुर का या बड़ों का अदब करेंगे तो बच्चे वही
0: बिल्कुल
1: सीखेंगे,
0: बिल्कुल
1: अगर हम थोड़ी गलती करेंगे या कोई बदतमीजी करेंगे, बदलिहाजी करेंगे बड़ों के साथ, तो
0: जी
1: कितने ही बच्चों को समझाया जाए लेकिन माहौल उनका वही रहेगा, क्योंकि सोचेंगे हमारी मम्मी पापा इस तरीके से रहते तो हम भी उसी तरीके से रहें, तो पहले खुद अपने आप को सुधारना पड़ेगा, तब उसके बाद बच्चे सुधर पाएंगे,
0: बहुत अच्छी
1: तो
0: बात है।
1: बच्चे जो हैं वही सीखते हैं जो माँ बाप समझाते हैं, जो माँ बाप करते हैं उसी को देख के बच्चे सीखते हैं
0: बिल्कुल, जो माँ बाप
1: जी
0: सिखाते हैं बच्चे वो ही
1: जी
0: सीखते हैं,
1: बच्चे
0: क्योंकि
1: वही
0: आप
1: सीखते हैं
0: जैसा व्यवहार
1: जी
0: करेंगे वैसा ही आपको रिटर्न मिलता
1: जी
0: है।
1: रिटर्न मिलता है।
0: समझ जी, परिवार में खुशहाली बनाए रखने के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी होती हैं? हमारा परिवार खुशहाल रहे, खुश रहे, उसके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है?
1: सबसे ज्यादा तो परिवार में ये जरूरी होता है कि खुशहाली बनाए रखने के लिए प्यार और विश्वास होना चाहिए आपस में, एक दूसरे का साथ देना चाहिए और
0: बिल्कुल
1: एक दूसरे की बात सुनना चाहिए, सबकी देखभाल एक तरह से करना चाहिए, और घर में कोई खाना पीना को

0: कोई ऐसी चीज है तो उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि किसको क्या देना है किसको नहीं देना है।
1: जी
0: जब
1: जी
0: कोई चीज आती है घर में तो सब में शेयर करना, वही बच्चे भी फिर सीखते हैं कि शेयर करके हमें ये चीज देना है, खाना है एक दूसरे से। तो खुशहाली के लिए एक दूसरे का विश्वास, एक दूसरे का सहयोग बहुत जरूरी है।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने कि परिवार में भेदभाव नहीं करना चाहिए,
0: जी
1: क्योंकि घर का जो बड़ा है उसको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप आज भेदभाव करेंगे तो आने वाले समय में हमारे बच्चे भी हमारे साथ वो ही सीखेंगे, हमसे
0: जी
1: वैसा ही व्यवहार करेंगे। समन अफरोजी, आपके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव क्या है परिवार को लेकर, एक संयुक्त परिवार को लेकर? आप बताइए कि आपका क्या अनुभव है? आपने इतना लंबा जीवन बिताया है,
0: जी
1: आप खुद एक संयुक्त परिवार में शादी होकर आई थी, आज आपने खुद अपना एक संयुक्त परिवार बना रखा है, तो आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहती हैं, क्या अनुभव है आपका इस बारे में?
0: अनुभव तो यही है कि एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए और घर का माहौल अच्छा बना लेना चाहिए, कोई कमी घर में नहीं होना चाहिए, बहुओं और बेटियों में फर्क नहीं होना चाहिए, या अपने बेटों को गलत बातें नहीं बताना चाहिए कि भाई बहुओं के खिलाफ ऐसे काम करो ये करना है, या तुम्हें सख्ती बरतना है बहुओं पे।
1: जी जी जी
0: तो बेटों को सासें बहुत भड़का देती हैं कि जो बहुओं को फिर टार्चर करते हैं या गुस्सा करते हैं उनके ऊपर, तो ये सब ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। हमारे हिसाब से तो एक दूसरे से मिल के रहना है और एक दूसरे का आदर करना है, एक दूसरे पर विश्वास करना है, एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और पोती पोते को प्यार से रखना होता है, तभी वो दादी दादा को ज़्यादा अहमियत देते हैं, ज़्यादा खुशहाली से ज़िंदगी गुजरती है। बहुत चाहते हैं बच्चे भी
1: जी जी
0: कि ये हमारी दादी हैं ये दादा हैं, लेकिन बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करना पड़ता है, उनसे प्यार से रहना पड़ता है, बड़ों का आदर करना पड़ता है, तभी बच्चे सब चीज़ सीखते हैं। यही हमारे पोती पोता भी हमसे सीख रहे हैं, जैसे बच्चों ने सीखा वैसे हमारे पोती पोता भी सीख रहे हैं।
1: बहुत अच्छी बातें कही आपने समन अफरोजी। तभी तो कहा गया है बुजुर्ग घर की वह छाया है जिनके होने से परिवार को सुकून और दिशा मिलती है।
0: जी
1: जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है वहां सुख और समृद्धि अपने आप ही चलकर आ
0: जी जी
1: जाती है। समन अफरोजी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, हमारे कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे अक्षय वट, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार दिनांक 10 जून 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है डायलिसिस के बारे में भ्रांतियां और वास्तविकता। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे मंगलवार दिनांक 9 जून 2026 को सायं 4 बजे से, यानी कि कल सायं 4 बजे से। तो इस संबंध में यदि आपका कोई भी प्रश्न है श्रोताओं, तो हमें टेलीफोन नंबर 2517-2000 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम मोहन झा उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लें, विषय है डायलिसिस के बारे में भ्रांतियां और वास्तविकता। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, मंगलवार दिनांक 9 जून 2026 को सायं 4 बजे से। हमारा टेलीफोन नंबर है 2517-2000।

100.4 एफएम पर हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में होंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। शाम के 7:20 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बनें।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण रहा पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएगा ये केंद्र। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने चलाई 4 स्पेशल ट्रेनें। और लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो नाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
1: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों से प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 800,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ.

0: इंद्र सिंह ने आज लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र का शुभारम्भ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केन्द्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केन्द्र उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित होने से प्रदेश को काफी लाभ मिलेगा।
1: मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है, हम अन्नदाता किसान को होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली क्षति और खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा। यहाँ पे अब रीजनल सेंटर मेट्रोलॉजी का प्रारंभ होगा तो उसका एक बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होगा।
0: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12 सालों में मौसम विभाग ने इतने राडार और उपकरणों की स्थापना की है जितने पिछले 65 सालों में स्थापित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले सिर्फ 14 राडार थे, लेकिन अब इनकी संख्या 150 से अधिक हो गई है।
2: जितनी प्रगति गत 12 वर्षों में हुई है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इतनी उससे पहले के शायद 65 वर्षों में ना हो पाई। सन 2014 तक देश भर में केवल और केवल 17 वेदर रडार्स थे और कई एक ऐसे प्रदेश थे जम्मू कश्मीर पंजाब उत्तराखंड जहां एक भी रडार नहीं था। आज वो 17 रडार बढ़कर के 50 हो गए हैं और मिशन मौसम के तहत 50 और जुड़ने वाले हैं, यानी अगले 2 साल में हम 100 रडार तक पहुंचेंगे।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। ये परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में आज से 10 जून तक आयोजित की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: यूपी पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 परीक्षा दो पालियों में आज राज्य के 1183 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। केंद्रों पर परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए स्थायी मजिस्ट्रेट पर्यवेक्षक और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते समय किराए में 50% की छूट प्रदान की जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 10 जून तक गोरखपुर से लखनऊ के बीच 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
4: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर के पहाड़ी ब्लॉक के दुबेपुर बसारी ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत बने मिनी खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी शहरों जैसी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि गांवों की प्रतिभाएं निरख कर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
5: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसार

0: प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
2: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
0: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में मौसम शुष्क रहने, जबकि 10 जून से 14 जून तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण रहा पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएगा ये केंद्र। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने चलाई 4 स्पेशल ट्रेनें। और लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो नाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
6: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
6: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
7: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो,
5: कहाँ?
7: एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव।
8: RBI कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। और अब आपके ढेर सारे पत्रों के साथ शुरू करते हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम में पहला पत्र शामिल हुआ है पश्चिम थोक गंज ढुंडवारा से। मुनव्वर लल्ला, नसरीन मिर्जा, अरवाज खान, शहबाज खान, बादाम किशमिश, सूफिया महबूबा, फातिमा गजाला, फातिमा नरगिस बानो, कशिश बानो, रजिया। कस्बा शीशगढ़ से है गुड्डू इदरीसी और फरहान इदरीसी। शीतल रेडियो श्रोता संग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से आप हैं तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन समरराज, आर्यन वर्मा, आरुही इशिका वर्मा और अंजलि श्वेता वर्मा। ये पत्र रिंगनी छत्तीसगढ़ से है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। आप हैं मोहल्ला तलैया उल्ला जागीर से फजरुद्दीन अबरार अफजाल और रामप्रसाद शर्मा। पीर बहोड़ा बरेली से हैं आजाद खान, दिलशद, मुस्तकिम और तबस्सुम। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से हैं द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक और झावेंद्र कुमार वर्मा। ये पत्र शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से हैं नील कुमार, अंजुलता।

आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव का। अमरपुर पेंड्रा से हैं छत्तीसगढ़ से ही दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव। छावनी अशरफ खां होली चौक जिला बरेली से आप हैं राम प्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना, मनोरमा देवी, अजय शर्मा, ऋतिक, विनोद, कनिष्का, गौरी और इनके परिवार के सभी सदस्य। मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल वर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज। आप सभी की पसंद पर दर्द फिल्म से ये गीत उमा देवी की आवाज में।

अनुरोध गीत आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से। जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम और रुखसार मोहम्मद आशिफ। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनाबत मध्य प्रदेश से ये पत्र मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री का हमें मिला है। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से हैं कमरुल्लाह, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा, सालिया, शोएब खान, मुश्तावा खान, राउफ और शाहिद। गांधीबाग अकोला से हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। फाजिलका पंजाब से हैं भूषण खेड़ा, विशु विशाल, ट्विंसी, शालिनी, आरवी खेड़ा,

लाड़ीखेड़ा, जीवन सिंह, बूक और पूरा खेड़ा परिवार। बरेली जंक्शन से हैं गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक, बिक्की भारद्वाज, वीरेश सिंह, सोनू मिश्रा और अजय माथुर। परी महल कासगंज से हैं आबाद खान, नवील, आरफा खान, इल्मा खान। लक्षनपुर से हैं रामजी साहू, जीवन लाल, रजक, निमी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। दादरी गेट भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। कटरछान का पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं ताजमहल।

चक, निमी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। दादरी गेट भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल और कुणाल मेहरा। कटराचान का पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश रंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साविर रही, मेहराज जहां। दौलतबाग मुरादाबाद से हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। आप सभी की फरमाइश पर पुष्पा फिल्म से जावेद अली की आवाज में ये गीत।

अकरम और उल्लाह अकरम नूर जहां। राजनांद गांव से याकूब आसमा, यूसुफ इमरान और इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से हैं रेशमा तिवारी, सोनम और आदिवा तिवारी। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद बक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा, नसरीन, रोजी परवीन, बिट्टू, साजदा और हिना कौसर। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गुहाड़कर, श्रीमती सरिता गुहाड़कर, प्रिंस एकांश गुहाड़कर। बहादुरा नागपुर से हैं वैशाली शैलेश गुहाड़कर, श्वेता सुमित गुहाड़कर और ध्वनि गुहाड़कर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता, लाडला और टुक टुक गुहाड़कर। ककराला बदायूं से हैं मसरूर खान। कोटवा नारायणपुर बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय। दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कलाम गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति और नवनीत राय। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा। दिल्ली शहर मोरी गेट से ये पत्र कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार का हमें मिला है। लच्छनपुर से हैं रामजी साहू, जीवन लाल रजक। भोपका भाटापारा से भवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित और सुमित्रा साहू। अलीगंज रोड ग्राम मोहलिया से हसरत खां, हशमत खां, अजमत डालमिया, नसरीन और रईस बानो। आप सभी की पसंद पर चकोरी फिल्म से ये गीत सपना अवस्थी और साथियों की आवाजों में है। त्रिवेणी भवानी का इसमें संगीत है।

100.4 FM आकाशवाणी बरेली से आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत। बड़ा बॉम्बे सुपाई साई से हैं देवेंद्र तीती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेंद्र जी। इंदिरा बिहार रायगढ़ से हैं वसीम अकरम नूरजहां, डब्लू अकरम नूरजहां, वली

यह पत्र महाराष्ट्र हिंगोली से है, शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे और हनुमान बोडखे का। सरगुजा मैनपाट से है सोनिया थापा, सोनम रेशमा और आदिवा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से हैं परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा, उल्लाह आसमा बेलदार। इंदिरा बिहार रायगढ़ से हमें पत्र लिखते हैं वसीम अकरम नूरजहां, डब्लू अकरम नूरजहां और इनके सभी साथी। ये पत्र जसपुर उत्तराखंड से है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन, परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर का। मनकारा मंदिर बीडी कॉलोनी करगैना बरेली से है पन्नीलाल सागर, वेनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, ममता, ओमवती, खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम का ये गीत लज्जा फिल्म से है अलका याग्निक की आवाजों में, समीर की शब्द रचना है, अनु मलिक का संगीत है।

श्रोतो, कार्यक्रम के इसी गीत के साथ अब कार्यक्रम का समय जो है पूरी तरह से समाप्ति की ओर और आज के इस कार्यक्रम से अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। अब आगे के कार्यक्रमों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र।

0: आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लीजिए सुनिए आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष एक विशेष वार्तालाप। आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना।
1: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। भारत के जनसंचार इतिहास में आकाशवाणी का नाम अत्यंत ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वर्ष 1936 में अपनी औपचारिक स्थापना से लेकर आज तक के 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने न केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का दायित्व निभाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी की शुरुआत एक सीमित प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी, किंतु समय के साथ यह विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक हो गई है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी का परिचय कराना चाहूंगा। आप भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति हैं और आप आकाशवाणी की महानिदेशक भी रह चुकी हैं, और आप एक लंबे अरसे से मीडिया और पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
2: थैंक यू।
1: प्रोफेसर अशोक टंडन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। आप लंदन पीटीआई के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में निदेशक भी रह चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। नमस्कार। डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, आप जानी मानी लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता और रेडियो की प्राध्यापिका हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रदीप सरदाना जी, पत्रकारिता में आपको 50 वर्षों का एक लंबा अनुभव है और रेडियो टीवी से भी आप निरंतर जुड़े हुए हैं। फिल्म जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में उनको खुद को नहीं मालूम है, लेकिन आपको ज्यादा मालूम है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं इस विशेष वार्तालाप कार्यक्रम में। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है वार्तालाप, इसका संचालन करेंगे प्रदीप सरदाना जी, और अब मैं मंच और माइक आपके हवाले करता हूँ।
3: नमस्कार। यहाँ आए सभी महानुभावों सहित दूर दूर तक बैठे आकाशवाणी के उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूं जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज का दिन निश्चय ही एक ऐतिहासिक दिन है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होना एक बहुत बड़ी घटना है, और मुझे इस बात की खुशी यह भी है कि जहां आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो रहे ऑल इंडिया रेडियो को, और वहां मुझे इसके साथ काम करते हुए 45 बरस हो चुके हैं। यानी आकाशवाणी का जो एक सफर है, इसको आधे को मैंने खुद देखा है, जिया है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत पुराने दिनों को याद करता हूँ, जब मैं यहाँ पहली बार युवाणी में आया, पहला कार्यक्रम किया, हालांकि मुझे पत्रकारिता में आए हुए कुछ साल हो चुके थे, 1974 में आ गया था, और 1980 में मेरा पहली बार आकाशवाणी में कदम रखा, और जनवरी 1981 में मेरा पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कवि मैथिली शरण गुप्त ने शायद 1912 में भारत भारती में लिखा था कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शायद इसी बात को आकाशवाणी ने भी अपनाया कि मनोरंजन तो है, लेकिन उसमें उपदेश भी है, ज्ञान भी है। आप देखिए, सूचना का ऐसा सबसे बड़ा माध्यम जो इतने बरसों से चल रहा है, 90 साल से जब आकाशवाणी की बात कर रहे हैं, और अभी तक चलता आ रहा है, तो कितनी बड़ी बात है कि इतने माध्यम आ गए। आज मोबाइल हमारे मुट्ठी में है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीजें, आप कहीं कुछ देखिए।

0: कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, गाने कहीं भी सुन सकते हैं। आप देखिए, अगर ये आकाशवाणी नहीं होती, आप कल्पना कीजिए तो ये फिल्म संगीत है क्या इतना लोकप्रिय होता? कभी नहीं होता। हालांकि आकाशवाणी ने शुरू से इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि हमारे यहाँ जो गीत प्रसारित होंगे वो बिल्कुल अच्छे गीत होंगे। इस बात की ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई अश्लील गीत, त्रिवर्ती गीत नहीं आए। तो खैर, ऐसी बहुत सी और बातें हम करेंगे आगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे साथ प्रज्ञा पालीवाल जी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने एक बार बताया था कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले युववाणी से हुई थी। इनकी पहली कमाई भी उसी से हुई थी और मेरी पहली कमाई भी युववाणी से हुई थी। मुझे याद है शायद 25-30 रुपए पहली बार मिले थे जब मैंने युववाणी का पहला कार्यक्रम किया था, और इनको शायद 35 रुपए मिले थे जब इन्होंने किया था। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जिस आकाशवाणी से इन्होंने अपनी शुरुआत की, पहली कमाई की, पहला कार्यक्रम किया, उसी आकाशवाणी में ये महानिदेशक बनी। और मुझे याद है जब पिछली बार इनसे बात हुई थी यहाँ पर थी, तब इन्होंने कहा था कि हम 89 पूरे हो चुके और हम चाह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल मनाएंगे। हालांकि ये IIMC में चली गई चांसलर बनके, लेकिन इन्होंने कहा था, मुझे याद है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं। और मैं सबसे पहले यही चाहूंगा, प्रज्ञा जी आप बताएं, आपने दोनों दौर को जिया, एक कार्यक्रम प्रस्तुता के रूप में भी और उसके बाद और भी विभिन्न रूपों में भी, और फिर यहाँ के महानिदेशक के रूप में भी, तो आप आकाशवाणी के 90 साल के सफर को कैसे देखती हैं?
1: देखिए, 90 साल किसी भी संस्था के लिए बहुत प्रमुख होते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आकाशवाणी, उसकी जिम्मेदारी लगातार इतने वर्षों तक निभाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं कह सकती हूँ कि आकाशवाणी ने यह कार्य बखूबी किया है, चाहे जो सूचना, संचार, शिक्षा, इन तीनों ही अपने उद्देश्यों में, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आकाशवाणी ने शुरू से ही निभाए हैं। जैसे आपने फिल्म संगीत के बारे में बता ही दिया, लेकिन शिक्षित करना और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, उसमें हमारे यहाँ हर 3 कोस पे एक बोली बदल जाती है, और आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा चैनल है अभी भी और हमेशा से रहा है जिसके दूरस्थ गांव में भी वो सुना जाता है। तो ये जो लोगों को शिक्षित करने का काम किया है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सूचना देने का काम किया है, वो आकाशवाणी से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। हम लोगों को बहुत सारे ऐसी घटनाएं याद हैं, चाहे कोई साइक्लोन आए, आपके जो आधुनिक संचार के साधन है वो सब फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के माध्यम से यदि अभी सूचना देनी है, मछुआरों को देनी है, सुनामी का हम लोगों को सबको याद है, या जो उड़ीसा में इतने चक्रवात आते हैं अलग अलग देश के अलग हिस्सों में, उसमें हम लोगों ने देखा कि आकाशवाणी को ही एक क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। विश्वसनीयता यदि किसी भी चैनल की हम लोग आज देख लें तो वो आकाशवाणी की है। और क्यों ये अपने आप बना के रख पाए, अपना ये कारण, क्योंकि समय के साथ साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन किया है अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अलग अलग तरह से। पहले केवल आप ट्रांसमीटर्स के थ्रू सुनते थे, ट्रेडिशनल रेडियो सेट्स के द्वारा सुनते थे, धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग आया, अब ऐप पे है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो वहाँ आप आकाशवाणी अपने क्षेत्र का, मान लीजिए कोई बिहार का है तो वो बिहार में अपने क्षेत्र का समाचार या वहाँ क्या घटनाएं हो रही है या उस भाषा के गीत भी कहीं भी बैठ के, तो ये जो एक लोगों को जोड़ने का काम किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। और तकनीकी के साथ साथ बदलाव किया है, इसीलिए आज भी आकाशवाणी वही विद्यमान है लोगों के दिलों में जैसे पहले थी। और ऐसे संगठन में काम करने के लिए आना अपने आप में एक गौरव की बात है, जो मुझे लगता है। लेकिन हम लोग पर्सनल चीज को अलग रखते हुए बात करें कि हाँ, आकाशवाणी कैसे आगे बढ़ रहा है, तो अभी लेटेस्ट जो पॉडकास्ट विधायक शुरू किया है आकाशवाणी ने, एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रोल में होते हुए, एक सरकारी माध्यम होते हुए नई विधा को अपनाना, और आप देखिए आज वो विधा कितनी लोकप्रिय हो रही है, और आकाशवाणी की भी जो पॉडकास्ट है वो इतना लोकप्रिय हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, एग्रीकल्चर, भारत सरकार, राज्य सरकारों की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देना हो लोगों को, कैसे पहुंचेगी अलग अलग खेती के लिए कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के कार्यक्रम है, और बड़े पॉपुलर कार्यक्रम है अब चूंकि FM पे भी है, FM चैनल्स बहुत लोकप्रिय हैं, तो FM के जरिए लोग, चाहे आप घर में नहीं भी हो तो भी, आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप ये सब सुन सकते हो। इसी के क्रम में बोले सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया आकाशवाणी के हैंडल्स हैं, दे आर मच मोर पॉपुलर देन अदर TV चैनल्स, विजुअल माध्यम जो है उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हमारे आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनकी जो फॉलोअर्स है वो रीच है। और सबसे बड़ी बात, कोई क्यों आकाशवाणी सुने, यदि आपको विश्वसनीय समाचार सुनना है, आज भी हम लोग ध्यान करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। क्यों हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी से समाचार देने पड़ते थे? क्योंकि कोई भी यदि सुनना चाहेगा क्रेडिबल कि आज क्या हो रहा है, वो

0: आकाशवाणी से सुनता है, यदि
1: यस सर,
0: आकाशवाणी ने कह दिया तो वो सच है। इसलिए ये आकाशवाणी के जो अधिकारी हैं और जो काम करने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग दूसरों की तरह रेस में नहीं है आगे बढ़ने की, या नंबर ऑफ टीआरपी की रेस में नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और समय पे समाचार देना और सही समाचार देना। और जैसा आपने एंटरटेनमेंट का तो आपने स्वयं ही बताया कि यदि आकाशवाणी पे आ रहा है तो वो बहुत ही स्तरीय एंटरटेनमेंट होगा।
1: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आकाशवाणी टीआरपी की रेस में आगे नहीं भागता, लेकिन इतना भरोसेमंद है और आज भी इतना विकास की गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि आप देखिए, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सिर्फ 6 केंद्र थे हमारे यहाँ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली। आज हमारे यहाँ 600 के लगभग प्रसारण केंद्र है और 250 से अधिक स्टूडियो वाले केंद्र है जहाँ पूरे कार्यक्रम बनते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अशोक टंडन जी से, हमारे पुराने और आज के बहुत ही दिग्गज पत्रकार, और मुझे खुशी है कि मैं भी इनके साथ, जब ये पीटीआई के दिनों में थे तब भी मुलाकात होती रहती थी, माखनलाल चतुर्वेदी के नोएडा संस्थान में पढ़ा है अभी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ जहां ये जनसंचार के माध्यम है उससे जुड़े रहे और साथ ही सरकार से भी जुड़े रहे। मुझे याद है ये जो कम्युनिटी रेडियो की स्थापना है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उसकी नीति बनाई थी, तभी वो शुरुआत हुई थी और बाद में वो आडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो टंडन साहब, आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि आप भी इतने वर्षों से ये कार्यक्रम करते रहे और संचार के माध्यम से जुड़े रहे, आप संचार के जो अन्य माध्यम है और जो आकाशवाणी है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं?
2: मैं उस पीढ़ी का हूँ जिस समय मिडिल क्लास के घरों में रेडियो नहीं होता था, ट्रांजिस्टर तो आए ही नहीं थे। तो उस समय मैं अपने अगर बचपन के दिनों की बात करूं तो हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, घर में रेडियो का तो मैंने कहा सवाल ही नहीं था, तो स्कूल से हम भागकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए मार्केट की पान की दुकान पर जाया करते थे क्योंकि वहां रेडियो होता था। तो पहला जो आकाशवाणी के साथ संबंध जुड़ा वो जुड़ा क्रिकेट की कमेंट्री के माध्यम से, और इतने धुरंधर क्रिकेटर्स क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले थे जो हाउस होल्ड नेम बन गए थे, जिसमें अगर मैं नाम लूं तो सुशील दोषी, मेलविल डिमेलो, जसदेव सिंह, ये वो नाम थे जिनको बच्चा बच्चा जानता था क्योंकि उनकी कमेंट्री ऐसी होती थी। तो ये पहला प्रभाव मेरे पर तो आकाशवाणी का जो पड़ा वो तो पड़ा कमेंट्री से। दूसरा, विविध भारती के साथ साथ जिस तरह के भोले बिसरे गीत, संगीत सरिता, चित्रलोक और फौजी भाइयों के कार्यक्रम, ये एक दूसरा प्रभाव था जो हमारे समय की युवा पीढ़ी पर पड़ा, मनोरंजन का साधन। महिलाएं रसोई में काम कर रही हैं तो गाने रेडियो पर चल रहे हैं, फिर जब ट्रांजिस्टर आता है तो खेत खलिहान मजदूर हर व्यक्ति ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा है, गाने सुन रहा है, समाचार सुन रहा है और अपना काम कर रहा है। तीसरा प्रभाव जो पड़ा वो था समाचार। जो हिंदी के समाचार हम लोग सुनते थे उसमें देवकीनंदन पांडे,
1: रामानुज प्रसाद सिंह,
2: रोशन मेनन, सुरजीत सेन, लोतिका रत्नम, लोतिका सिंह, पमेला सिंह, इंदु वाही, ये वो नाम थे जिनको घर घर में बच्चा जानता, बाद में पत्रकार बना। जब लड़ाई हुई 1965 की और 1971 की, और उस दिनों जो कार्यक्रम बनाए गए वो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और लोग रेडियो पर कान लगाए रहते थे कि कब समाचार से हमको जानकारी मिले। तो समाचार जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन रहा है और आज भी है। और अभी भी मैं एक बात बीच में कह दूं कि जब सरकार ने FM रेडियो के लाइसेंस देने शुरू किए, लेकिन समाचार अपने बनाने की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है। वेव्स हैं रेडियो की, ये किसी और के हाथ में देना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम समझते हैं। आकाशवाणी की वो इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी दुश्मन ने आपकी आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया तो समझिए वो देश आधा पस्त हो गया। इतना महत्वपूर्ण काम है आकाशवाणी का, और उसी लिए ये आकाशवाणी को इतना महत्व दिया गया। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है आकाशवाणी के समाचार की जो विश्वसनीयता के बारे में। एक बार क्या हुआ कि गोवा के एक मुख्यमंत्री थे दयानंद बंडोडकर, उनकी बेटी बाद में मुख्यमंत्री बनी, और उनको ये लगा कि मैं अपने पिताजी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हो रही थी तो डमी शूटिंग होनी थी और उसमें वो खबर जानी थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उस जमाने में न्यूज एजेंसी फ्लैश फ्लैश फ्लैश करती थी, फ्लैश फ्लैश फ्लैश, गोवा CM डेड। अब ये हो गया शूटिंग, लेकिन जो टेलीप्रिंटर ऑपरेटर था वो स्विच को ऑफ करना भूल गया।
1: अच्छा।
2: उसके चलते वो गोवा से समाचार मुंबई पहुंच गया, मुंबई ने दिल्ली को दे दिया, दिल्ली ने उसको प्रसारित कर दिया। अब आकाशवाणी को ये इंस्ट्रक्शन थी और आज भी है कि अगर ऐसा कोई समाचार एक न्यूज एजेंसी से आता है आप उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले दूसरी न्यूज एजेंसी से आप उसको कन्फर्म करें।

0: तो उसके चलते वो आकाशवाणी से समाचार प्रसारित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन से फोन आ रहे हैं कि आप आकाशवाणी से क्यों प्रसारित नहीं कर रहे, गोवा के मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है। आकाशवाणी के डीजी ने कहा, साहब हमने दूसरी एजेंसी से कन्फर्म किया है, उसका कहना है साहब ऐसा कोई समाचार नहीं है। मैं ये प्रत्यक्ष बता रहा हूँ आपको कि फिर राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय ने सेटेलाइट से नेवल हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न कमांड का है उससे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। अब उस जमाने में क्या हुआ कि संपर्क टूट गया गोवा और मुंबई के बीच में उस एजेंसी का। जब संपर्क जुड़ा तो उसने कहा कि वेयर इज द फॉलो अप, उसने कहा क्या फॉलो अप, आपने कहा था गोवा सीएम डेड, उसका फॉलो अप क्या है। तब रियलाइज हुआ कि शूटिंग करते समय एक स्विच ऑफ ना करने से कितना बड़ा देश, लेकिन आकाशवाणी अपने उस पर डटी रही और इसके कारण दुनिया को गलत समाचार नहीं मिल पाया। आज भी लोग कहते हैं कि जरा रेडियो की खबर सुन ली जाए, आकाशवाणी जो बात कहेगी वो सत्य है, उसमें कोई ना तो गॉसिप है और ना ही कोई बढ़ा चढ़ाकर है और ना ही इसमें किसी प्रकार का देश के अंदर जो एक सद्भावना है उसको खत्म करने की कोशिश है। तो आकाशवाणी ने 90 साल में ये जो एक अपनी इमेज बनाई है, बल्कि शांति स्थापित करवाने में सहयोग दिया।
1: देखिए जिस तरह आपने बताया कि आकाशवाणी पर भरोसा करते हैं, मुझे 1971 के वो दिन याद है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था, उस समय भी ऐसा होता था। पाकिस्तान हर बार अपने रेडियो से प्रसारित करता था हमने भारत की सेना को पीछे खिसका दिया, इसको ये कर दिया, जबकि हमारी सेना सीधे लाहौर तक पहुंच गई थी। तो तब आकाशवाणी ने कार्यक्रम शुरू किया था ढोलकी पोल। ढोलकी पोल इतना अच्छा कार्यक्रम था जिसके अंदर पूरा व्यंगात्मक तरीके से ये बताया जाता था कि पाकिस्तान किस तरह झूठ बोल रहा है, और पाकिस्तान उस कार्यक्रम से इतना परेशान हुआ था कि उसने झूठ बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन आप ये देखिए आकाशवाणी के सामने इन 90 सालों में कितनी चुनौतियां आई हैं, कितनी बार ऐसे लगा कि बस आकाशवाणी अब जाने को है, इसका जमाना चला गया। तो तभी 85 के समय भी ऐसा लगा, लेकिन आप देखिए फिर किस तरह धीरे धीरे जो है आकाशवाणी ने FM चैनल शुरू किए, कम्युनिटी चैनल शुरू किए, और उसके बाद फिर ऐसे लगने लगा शायद फिर पीछे हो रहा है। तो लेकिन आप देखिए 3 अक्टूबर 2014 को जब मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ आकाशवाणी पर, और आप देखिए उस एक कार्यक्रम ने आकाशवाणी को इतना लोकप्रिय बना दिया है, आकाशवाणी को राजस्व भी मिल रहा है, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, उसको सभी लोग सामूहिक रूप से सुनते हैं, और आकाशवाणी के उसी कार्यक्रम को सारे तमाम चैनल्स, रेडियो के चैनल्स हैं चाहे वो टीवी के चैनल्स हैं, उसी को आगे प्रसारित करते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा वर्तिका नंदा से। वर्तिका नंदा एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, और इतने सालों से मैं इनको देख रहा हूँ, और कई बार हम टीवी के कार्यक्रम में, कई बार रेडियो के कार्यक्रम में भी साथ होते हैं। इन्होंने पत्रकारिता में तो किया, अध्यापक के रूप में जो कर रही है वो भी है, साथ ही इन्होंने जेल के ऊपर जो काम किए हैं वो इतने अनुपम है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, और आकाशवाणी के साथ भी लगातार जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप खुद इतने साल से आकाशवाणी के कार्यक्रम भी कर रही हैं, तो आपको आकाशवाणी के ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके दिलों में अभी घर की हो।
2: देखिए 12 नवंबर 1947 को जब महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार आकाशवाणी में आए, उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जब ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें कहा कि गांधी जी आप आइए, उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत में मेरा आना उचित नहीं है, मैं तो तब आऊंगा जब भारत आजाद होगा, और भारत के आजाद होने के बाद ही यहाँ पर आए। वो ऐतिहासिक घटना थी जिसे जन सेवा प्रसारक दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
1: हमारे आकाशवाणी में आज भी वो स्टूडियो है,
2: और आज वो बापू धाम बन गया और उस बापू स्टूडियो में अब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वही बापू स्टूडियो जहाँ महात्मा गांधी आए थे
1: जी।
2: इन सालों में बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन एक बात जो और बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुई वो थी मन की बात। मन की बात ने ये साबित कर दिया कि अगर देश का प्रधानमंत्री आकाशवाणी के माइक को चुनता है पूरे हिंदुस्तान से बात करने के लिए, तो इसका मतलब जाहिर तौर पर आकाशवाणी में कोई ऐसा जादू है जो बहुत से लोग शायद ना समझ पा रहे हों। आकाशवाणी ने एक और काम किया, उसने इतने सालों में हमें सुकून भी दिया, हमें संवेदना दी, हमें संस्कार दिया और हमें सहूलियत भी दी। आकाशवाणी ने शिक्षा की जो मुहिम चलाई, शिक्षा से जुड़े बहुत से कार्यक्रम इग्नू के साथ जोड़कर आज भी आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे हैं। जो अशिक्षित है उसे शिक्षा से जोड़ रहा है आकाशवाणी, और जो शिक्षित है उसके अंदर भाषा के बेहतर संस्कार को जगा रहा है। एक और बड़ी रोचक बात लगती है, सैनिक भाइयों का कार्यक्रम बड़ा ही लोकप्रिय रहा, खास तौर पर इसलिए कि जो सरहद पर है अपने परिवार से दूर उदासी से घिरा हुआ, उनको थामने का काम भी आकाशवाणी ने किया। किसानों की चिंता भी आकाशवाणी ने कही। असल में ऐसा लगता है कि जो जिंदगी की मूलभूत जरूरतें थीं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, रोजगार, ऐसे तमाम बड़ी चीजें जिसके बिना हम जिंदगी जीने की कल्पना नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों वो जन सेवा प्रसारक माध्यमों के हिस्से में डाल दी गई, और कमर्शियल मीडिया के पास आ गया तिजोरी भरने का काम। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा।

0: तरह के ब्रॉडकास्टर्स से हमारा परिचय रहा, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया। इन सालों में आकाशवाणी ने हमारे सामने कई खिड़कियां खोली। उसने ये बताया कि हम जब बात करते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, उस बात को चरितार्थ किया आकाशवाणी ने। हर कार्यक्रम का चुनाव, चाहे वो बच्चों का कार्यक्रम हो, बुजुर्गों का हो, युवाओं का हो, मन की बात हो, किसानों का कार्यक्रम हो, या फिर शिक्षा की अलख जगाने का कार्यक्रम हो, और खास तौर पर संगीत हो। जिंदगी में संगीत खोलने का काम भी आकाशवाणी ने किया, और उसने ये भी बताया कि संगीत के साथ साथ भी आप कैसे अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। इस बात की जिक्र मैंने खास तौर पर इसलिए भी किया कि जब कोई आकाशवाणी को सुनता है तो वो ये भी जानता है कि हम जो पढ़ाते हैं क्लासरूम्स में, थिएटर ऑफ द माइंड, आकाशवाणी हमारी कल्पनाओं के संसार को बड़ा उर्वर करता है। आपके सामने वो कलाकार नहीं है, आपके सामने वो अभिनेता भी नहीं है, और वो संगीतकार भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग तुरंत उन तस्वीरों को बुनने लगता है। चाहे प्रधानमंत्री के निधन की खबर हो और चाहे सुनामी हो, आकाशवाणी ने अपनी धुन को, अपने तरीके को, अपने स्वर को भी कभी नहीं बदला। आप जिस कमर्शियल मीडिया की तरफ बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर वो शोर आकाशवाणी के कानों तक भी पहुंचा, लेकिन आकाशवाणी की खूबसूरती है कि उसने अपने आप को कभी भी एक नकलची बंदर नहीं बनाया। वो कभी भी इस डर में नहीं आया कि बाकी लोग हमसे आगे गुजर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तिजोरी की खनक को समझ लिया है और पकड़ लिया है। आकाशवाणी उस तिजोरी की चमक दमक से परे बड़ी शालीनता से अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता रहा। अभी भी हर बार हम देखते हैं जब भी कोई विशेष तिथि होती है तो यहाँ विशेष कार्यक्रमों को बनाया जाता है, और अब मैं देखती हूँ कि तकनीक में इतने बदलाव के बावजूद, आकाशवाणी ने उन तकनीकों को अपनाने के बावजूद अपने उस पुराने गौरव को और अपने उस संस्कार को, अपनी उस गति को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। पुरानी रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी में महफूज हैं, महात्मा गांधी की आवाज से लेकर पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस तक। कितनी आवाजों को आकाशवाणी ने सहेज कर रखा। एक शिक्षक, एक छात्र और किसी भी एक नागरिक के लिए आकाशवाणी एक कमाल का उड़न कटोला है। सारे रस हैं इसमें। वियोगी के लिए, दुखी व्यक्ति के लिए मरहम का काम करता है, किसी ऊर्जावान व्यक्ति के लिए नई ऊर्जा देने का काम करता है, जिसके पास रोजगार नहीं है उसके सामने रोजगार के अवसर पैदा कर देता है। तो मतलब ये कि आकाशवाणी का चाहे न्यूज रूम हो, साहित्य का दरवाजा हो, या फिर संगीत का विशाल पटल हो, वो सब किया जो किसी सफल और सार्थक ब्रॉडकास्टर को करना चाहिए था या करना चाहिए है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। कितने ही कार्यक्रम को मैं आज याद करता हूँ पुराने। एक कार्यक्रम हवा महल, जो बचपन से हमारे दिलों में घर करके बैठा हुआ है। आपने सैनिकों की बात की, सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम जयमाला शुरू हुआ, नरगिस दत्त ने उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले वो सैनिकों के लिए संदेश सुनाती थी। मेरी नरगिस जी और सुनील दत्त साहब से बहुत अच्छे संबंध रहे, तो दत्त साहब बताते थे कि जब भरत सिंह के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद वो जगह जगह जाके सैनिकों के लिए अपनी झोली फहरा के नरगिस जी और सुनील दत्त साहब पैसे बटोरते थे, लोगों से भीख मांगते थे एक तरह से, हमें दीजिए इनकी सहायता के लिए। तभी आकाशवाणी ने सोचा इतनी दूर दराज के लोग सैनिक बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कैसे उन तक संगीत पहुंचे, कैसे उनके संदेश पहुंचे, कैसा उनका परिवार के साथ वार्तालाप हो। तब जाके ये जयमाला कार्यक्रम शुरू किया जो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसमें सैनिकों के संदेश सुनाए जाते थे, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती थी, और नरगिस ने उसको पेश किया, देवानंद साहब ने पेश किया, अमिताभ बच्चन जी ने पेश किया, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बहुत से लोगों ने पेश किया। वो कार्यक्रम इतना अच्छा था, आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है अपने अलग रूप में, और आज भी उसकी पुरानी यादें जो है आती है उसके अंदर। तो प्रज्ञा जी, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब अपनी युवावस्था में थी तब आपको कौन से कार्यक्रम ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे, इनको मिस ना करूं, जरूर सुनूं।
2: कार्यक्रम गीत संगीत के अतिरिक्त जब बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट आकाशवाणी का एक है न्यूज सर्विसेज डिवीजन। उसके जो अनेक कार्यक्रम, यदि आप बात करें करेंट अफेयर्स से जितने संबंधित प्रोग्राम है, चाहे आप सुर्खियों में ले लें, स्पॉटलाइट ले लें, या करंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कशंस ले लें, ये कार्यक्रम बहुत समय से चल रहे हैं। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि आजकल जो कोचिंग एकेडमीज हैं, जो यूपीएससी या अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशन या दूसरे एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करती हैं, वो पूरा पूरा उस कार्यक्रम का ट्रांसक्राइब करा के उसको अपनी वेबसाइट्स पे डाल देती हैं। कॉपीराइट है या नहीं वो उस बात में नहीं, लेकिन अनेकों ऐसी एकेडमीज हैं, और इन कार्यक्रमों को हर छात्र, युवा जो है वो जरूर सुनता है। साथ में पॉलिटिकल, एजुकेशनल स्फीयर, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, या पार्लियामेंट से रिलेटेड बजट हुआ, विशेष मौके आते हैं उन पे आधारित जो विशेष

0: कार्यक्रम मनाए जाते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और ज्ञान परक होते हैं, तो हर बच्चा उसको सुनना चाहता है। और जब हम लोग देखा करते थे हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं कमेंट्रीज, और हॉकी की कमेंट्री का तो अलग ही लेवल होता था, हॉकी बहुत फास्ट गेम है, उसी हिसाब से होती थी जसदेव सिंह की या मेलविन डी मेलो वाली जो कमेंट्री होती थी उसकी खासियत सुनते थे। एक चीज और जो आकाशवाणी के कार्यक्रम में आते थे और मुझे याद है मेरे पेरेंट्स भी सुना करते थे, और फिर वो दूरदर्शन में आया जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते थे, वो सारे जितने वरिष्ठ कवि उस समय के, चाहे नीरज जी हो, कवियों को
1: सबने, महादेवी वर्मा, सबने,
0: सुरेंद्र शर्मा जी हैं, तो वो सब इस माध्यम पे आते थे। तो वो जो विशेष श्रृंखलाएं आकाशवाणी की हैं उनको बहुत पसंद। और मुझे याद है पढ़ते समय हम लोग समाचार सुनते थे, जितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स से वाकिफ होंगे, जैसे वर्तिका जी ने कहा इग्नू के जो प्रोग्राम भी गए थे,
1: हाँ।
0: ज्ञानवाणी, और वो इस तरह के कार्यक्रम शुरू से ही सुने हैं, गीत संगीत तो सुनते ही थे। और आज भी आप देखिए जो किसानों की सलाह के कार्यक्रम होते हैं, हम लोग यहाँ बड़े शहर में बैठ के ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन बड़े शहरों में उनकी प्रासंगिकता नहीं है इसीलिए नहीं सुन रहा, लेकिन गाँव में आज भी उन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य वाले, हम लोगों को यहाँ पे तो सारी मेडिकल एडवाइस मिल जाएगी जैसे मैंने पहले भी कहा था। और फिर जिस प्रकार के इन करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है बिजनेस से रिलेटेड समाचारों का, मार्केट मंत्रा, उसको मैं शाम को सुनती थी, तो आर्थिक जगत में क्या हो रहा है वो पूरे दिन का एक समरी आ जाती थी कि स्टॉक्स ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, क्या कारण है, भारत की क्या स्थिति है। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई और नहीं कर सकता, ये आकाशवाणी एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है।
1: बिल्कुल, स्वास्थ्य और जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बताए उसमें सवैकी प्रोग्राम बहुत एक प्रसिद्ध रहा, और मैं भी उसको 1980-82-83 के दशक से उसको करता आ रहा हूँ। और मुझे आज याद आ रहा है कि आज 2 जून है जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, तो आज ही के दिन जो राज कपूर है उनका निधन हुआ था 2 जून 1988 को। और मेरा एक बड़ा एक शायद पता नहीं कोई पूर्व जन्म का रिश्ता था या मेरा सौभाग्य था कि उनके अंतिम समय में मैं ही उनके साथ था एम्स के अंदर, मैंने ही उनसे आखिरी बात, इतने बड़े फिल्मकार ने इतने संवाद लिखे लेकिन उसने जीवन का आखिरी संवाद मेरे साथ किया। वो कार्यक्रम भी सवाईकी में 2 जून 1988 को गया था, जो आज ये रिकॉर्डिंग का दिन है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी वो देता है कि किस तरह आप देखिए कि ये सब हुआ। और जिस तरह स्वास्थ्य की बात की तो मैं खुद आकाशवाणी के लिए बहुत समय तक स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम करता रहा, मैं विश्वविद्यालयों में जाता था, अलग अलग कॉलेज में जाता था, उस समय बड़ा मुश्किल था आज के समय के हिसाब से अपना जो छात्राएं हैं उनसे, खासतौर से परिवार नियोजन की बात करें, शादी की बात करें, आज तो बहुत एडवांस हो गए लेकिन 40 साल पहले 35 साल पहले बहुत मुश्किल होता था, लेकिन मैं तब भी अपना वो पुराना मेटल रिकॉर्डर हो जाता था वो ले जाता था और जाके यूनिवर्सिटी में बैठ जाता था, लॉन के अंदर फिर बुलाता था बाहर से किसी को, फिर उनसे बातों बातों बात करता था। लेकिन उसके बाद वो इतने अच्छे कार्यक्रम बनते थे कि बहुत ही शिक्षा उनको मिलती थी, डॉक्टर से भी बात करते थे, लोगों से भी बात करते। कोरोना के दिनों में स्पेशल कार्यक्रम शुरू हुए वो भी इसके अंदर चल रहे हैं। तो टंडन साहब एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपका एक इतना एक अलग अनुभव, आप क्या देखते हैं आकाशवाणी के भविष्य को किस रूप में देखते हैं आप आज?
2: मैं उससे पहले एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो कोई बहुत बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा जो आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन था जिसमें कितनी ही विदेशी भाषाओं में हम समाचार प्रसारित करते थे और उनके समाचारों को हम इकट्ठा करके फिर यहाँ पर बुलेटिन में डालते थे, तो मैं समझता हूँ कि वो सर्विस भी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी चलती है। पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत नजदीक से आकाशवाणी के संवाददाताओं के साथ काम किया, विदेश में चाहे प्रधानमंत्री की विजिट हो, राष्ट्रपति की हो या कोई और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, उनके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर भी रहता था जिसमें उनको वॉइस रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती, बाइट्स जिसको आज कहते हैं वो लेने पड़ते थे, और हम लोग तो अपनी कॉपी जितनी लंबी मर्जी लिख लें उनको छोटे में न्यूज बुलेटिन के हिसाब से वो बनानी पड़ती थी खबर, हम देखते थे कितना मुश्किल काम करते थे। और मैंने लगभग 20 साल तक तो आकाशवाणी के करस्पॉन्डेंट के साथ काम किया, देश में भी विदेश में भी, और उन पर जितना दबाव रहता था क्योंकि उनका समाचार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और ये जो दबाव में काम करने में आकाशवाणी के संवाददाताओं ने योगदान दिया जिसके चलते आकाशवाणी के समाचारों की विश्वसनीयता बनी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कार्यक्रम की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि जब 1971 की लड़ाई में सरेंडर कर दिया पाकिस्तान की सेना, तो यहाँ से एक स्पेशल वार कॉरेस्पॉन्डेंट बन के सुरजीत सेन गए थे और उन्होंने वहां पर बिल्कुल उसी ग्राउंड जीरो से लाइव ढाका से किस प्रकार से जनरल ए के नियाजी ने सरेंडर किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन

0: किया इसका लाइव उन्होंने, आप सोचिए टेलीविजन में लाइव दिखाना आसान है, लेकिन आकाशवाणी के एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के नाते उन्होंने जो एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि सरेंडर कैसे हुआ, तो ये इतने महत्वपूर्ण एक ऐसे आयाम हैं जिसको आकाशवाणी के संवाददाताओं ने कवर किया और कितनी कठिनाई में दुर्गम स्थानों पर जाकर और फॉरवर्ड एरिया में जाकर सियाचिन जैसी जगहों पर जाकर तो इन लोगों ने जो काम किया। देखिए अब अगर आप भविष्य की बात करें तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, समय के साथ आकाशवाणी ने भी टेक्नोलॉजी अपनाई है, आज डिजिटल मीडिया में आकाशवाणी की रीच सबसे ज्यादा है और जो कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम लोग सुनते थे एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके हाथ में एक फोन होगा, उस पर आप आकाशवाणी के समाचार भी सुनेंगे, आप उसमें टीवी की खबरें भी सुनेंगे, आप उसमें संगीत भी सुनेंगे, आज वो हमारे सामने है, हमारे हाथ में है। तो उस युग को आज आकाशवाणी जी रहा है और किसी भी तरह से वो इस फील्ड में अपनी जो उसकी एक सुप्रीमेसी है उसको छोड़ने वाला नहीं है, चाहे टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए आकाशवाणी आकाशवाणी ही रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आकाशवाणी आकाशवाणी रहेगा, उसको आप ऐप पर सुन सकते हैं, अपने पुराने कार्यक्रम को सुन सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह आकाशवाणी से आज भी कदम ताल मिलाकर, श्रोता भी चल रहे हैं, आकाशवाणी भी कदम ताल मिलाकर आज की जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ चल रही है। आकाशवाणी में इतने आधुनिक स्टूडियो आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की बहुत सुगमता हो गई है, पहले एक जरा सी गलती जाती थी बहुत मुश्किल हो जाता था, हमें याद है जब रिकॉर्डिंग कर लेके बड़ा एक मेटल का रिकॉर्डर लेके जाते थे, इतना भारी होता था तब जाके लोगों से बात करते थे तो कितनी समस्या आती थी, आज सब कितना आसान हो गया है। तो मैं अब वर्तिका जी आपके पास फिर एक बार पूछना चाहूंगा कि आज मैं कितने भी टीवी चैनल्स पे जाऊं, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं मुझे आमंत्रित करते हैं, लेकिन जब मुझे आकाशवाणी से आज भी किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलता है तो मुझे जो सुखद अनुभूति और जो आनंद मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप किस तरह देख रही हैं आकाशवाणी को बदलते स्वरूप में, इसकी पहुंच को लोगों तक, और आज के जो आप कॉलेज में पढ़ाती हैं तो वहाँ किस तरह लोगों के अनुभव रहते हैं आकाशवाणी को लेकर?
2: देखिए आकाशवाणी बहुत सुंदर मिश्रण है परंपरा का भी और आधुनिकता का भी। इस भवन के अंदर आते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं पुराने सेट और बहुत सुंदर है वो तस्वीर, और वो भी तस्वीर जहाँ महात्मा गांधी का जिक्र है।
1: बिल्कुल।
2: उसके बाद अंदर आने पर अभी देखिए हम जिस स्टूडियो में है पंडित रविशंकर, उनके नाम पर इस स्टूडियो का गठन किया गया है और तमाम स्टूडियोज ऐसे ही नामों के साथ जुड़े हैं। जो यहाँ का जो गलियारा है वो भी इतिहास की बड़ी सुंदर तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो इसका मतलब ये है कि आकाशवाणी ने हमेशा से ये समझा कि इतिहास को सहेजना, उसका सम्मान करना, वर्तमान पर पूरी नजर रखना और भविष्य की तरफ उन दरवाजों को खुला रखना, जो इन तीनों को एक साथ सहेज लेता है वही आगे बढ़ पाता है। आकाशवाणी इसका बहुत सुंदर प्रतीक है। एक और बात जो लगती है कि आकाशवाणी ने आर्काइव्स पर बहुत जोरदार काम किया, उसने किसी भी तरह से इतिहास को मिटने नहीं दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी की जिस परेड को और जिस भव्य समारोह को दूरदर्शन के आने से पहले या फिर आने के बाद भी लोग तन्मयता से सुना करते थे और कल्पना करते थे कि क्या हो रहा होगा, वो झांकियां क्या होगी, उसे आंखों देखा बताने वाला आकाशवाणी हम सबको ये भी बताता रहा कि बिना देखे भी आपके अंदर एक टेलीविजन है। रेडियो आपके लिए टेलीविजन बन गया था और आज भी रेडियो हमारे लिए वो टेलीविजन है। तो मैं समझती हूँ कि रेडियो का भविष्य, आकाशवाणी का भविष्य इस लिहाज से भी बहुत सुनहरा है कि ये हमारे इतिहास को संजोकर रख रहा है, वर्तमान के बदलावों को वो सोख रहा है और आने वाले समय में जिस तरह की आकाशवाणी की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से वो अपने आप को रोज बदल रहा है। आकाशवाणी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो बुजुर्ग हैं उनका भी आकाशवाणी था, जो आज बच्चा है उसका भी आकाशवाणी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी आकाशवाणी की मौजूदगी हमेशा रहेगी। ये बात अलग है कि जब सिलेबस डिजाइन होता है हर बार इस बात की बहस होती है कि जो तिजोरी भर रहा है कहीं वो ज्यादा प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन वो बहस हर बार इस दबाव के आगे हार जाती है कि आकाशवाणी की जगह कोई नहीं ले सकता। असल में आकाशवाणी हमारा नींव है, उस नींव के आगे ही बाकी संसार है।
1: तो अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं चाहूंगा कोई भी श्रोता जो यहाँ बैठे हुए हैं कोई सवाल पूछना चाहे हम किसी से तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, आप बताइए अपने नाम के साथ।
3: मैं डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक, मैं स्वयं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ, रेडियो पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ लिखा है और माननीय वर्तिका मैम भी पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप महाविद्यालय में पढ़ाती हैं। मैं विद्यालय स्तर पर 11वीं-12वीं को पढ़ाता हूँ। मैं माननीय टंजन जी से एक सवाल करूँगा कि आज के परिदृश्य को लेकर के हम

0: क्या ऐसा करें कि आकाशवाणी विश्व में क्रांति लाए आज के युग में।
1: जी टंडन साहब,
2: धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे उद्गार रखे, लेकिन मेरा मानना है कि आकाशवाणी आज उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां पर उसको पहुंचना था, और किसी भी तरह से वो न तो तकनीकी तौर पर न और व्यवहारिक तौर पर किसी भी दुनिया के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनसे किसी मामले में कम नहीं है। हम विकासशील देशों के तो अग्रणी हैं ही हैं। आज आकाशवाणी और प्रसार भारती का जो मुकाबला है वो विकसित देशों के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनके साथ हो रहा है, और मैं ये कहना बिल्कुल उचित समझता हूँ कि कई विकासशील देशों के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट कास्टर्स के लोग हमारे यहाँ भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं कि वो कैसे अपने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को सुधार सकते हैं। हम अग्रणी हैं और अग्रणी ही रहेंगे। अभी भी बहुत सारे देश जो हैं वो भारत की ओर देखते हैं कि यहाँ का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऐसे कैसे इतनी सक्षमता के साथ चल रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर पर विशेष तौर पर आकाशवाणी के समाचार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि ये केवल और केवल सरकार की खबरें देता है और उसमें संतुलन नहीं बनाता, और ना ही कभी किसी तरह का प्रोपेगेंडा करता है। सरकार के पक्ष का भी नहीं है, और लोकतंत्र के नाते भारत में क्योंकि एक फ्री प्रेस है तो उसमें हम कभी ऐसा भी नहीं है, मैंने स्वयं देखा है कि बुलेटिन के बारे में पूरा लोग एनालिसिस करते हैं कि कितने मिनट सत्ता पक्ष को दिए गए, कितने मिनट विपक्ष को दिए गए, कितने मिनट किस नेता को दिए गए। तो अभी तक आकाशवाणी के न्यूज बुलेटिन के बारे में कभी किसी विरोधी दल ने शिकायत भी नहीं की कि आप बायस्ड हैं। ये जो एक आकाशवाणी ने अपनी एक साख बनाई है उस साख को आगे बढ़ाकर रखना है, और कोई कारण नहीं है कि जो आप चाहते हैं कि आकाशवाणी और इससे ऊंचे मुकाम पर जाए। वो जहां जहां पर भी ब्रॉडकास्टिंग का मुकाम जाएगा दुनिया में स्टैंडर्ड जाएंगे। भारत न तो बीबीसी से पीछे है, न वॉइस ऑफ अमेरिका से पीछे है, न चाहे डॉइच वेले है, ये दुनिया के जितने बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं या उन सब की अग्रणी श्रेणी में भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आता है और हमेशा बना रहेगा।
3: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात का, जब उन्होंने पूछा कि भविष्य में कैसे और ग्रो कर सकता है। देखिए, भारत जो देश है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, और अभी हम लोग ने सुना कैसे जापान सबसे एजड कंट्रीज में से है, तो उनकी अलग चुनौतियां हैं। लेकिन यदि आकाशवाणी को युवाओं में लोकप्रिय होना है, क्योंकि हमारी आपकी जनरेशन, टंडन साहब की जनरेशन, तो हम लोग तो अभी भी आकाशवाणी पे जाएंगे, लेकिन यदि युवाओं में आकाशवाणी को उतना ही पॉपुलर रखना है जितना पहले रहा है, उसके लिए युवाओं पर केंद्रित विशेष प्रोग्रामिंग वो करनी होगी। और अभी मैंने ये देखा है कैसे सोशल मीडिया पे आप देखिए रील्स, आकाशवाणी ने जो रील्स का अपनाया, आज युवाओं में रील्स बहुत पॉपुलर है, तो वो रील्स को भी आकाशवाणी ने अपना लिया है, और जो रेडियो पे नहीं सुन रहे हैं वो रील्स के माध्यम से ही आकाशवाणी को सुन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की मन की बात की अलग अलग विषयों की छोटी छोटी स्टोरीज बनी हो, या फिर कोई घटनाएं हो रही हैं, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, चाहे अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको जो रील्स के रूप में आकाशवाणी दे रहा है, तो यदि यंगस्टर्स में पॉपुलर होंगे तो भविष्य भी उज्जवल होगा।
1: बिल्कुल। और कोई सवाल पूछा चाहे जरा बताएं। जी आप बताएं।
4: मेरा सवाल प्रज्ञा मैम से ही है। खुश हुई इस बात की जानकर के सर की पहली कमाई मैम की भी युवाणी से, आपकी भी और मेरी भी सर वहीं से हुई। मैम, मेरा नाम मनीष आजाद, रेडियो वाला है, और मैं पिछले 26 वर्षों से यहाँ जुड़ा हूँ, और कई सारे स्कूल में कॉलेजेस के अंदर मैं रेडियो पढ़ाने के लिए जाता हूँ,
1: इसीलिए रेडियो वाला आपका नाम है।
4: सर, ये लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है, क्योंकि मैं आकाशवाणी का प्रोडक्ट हूं, तो मैं आकाशवाणी को हर समय आगे रखता हूं। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नहीं, आप और प्राइवेट चैनल्स को और बताएं, उनके बारे में बताएं, उनके आरजेस के बारे में बताएं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, तो वहां पर मैं कैसे मैम तालमेल किया जाए?
3: आपने सही कहा कि जो मैंने पहले बात कही थी कि आज जो यंगस्टर्स में कौन पॉपुलर है, हम आकाशवाणी को रेस में नहीं पढ़ना है पॉपुलैरिटी की, लेकिन जो तरीका है एंटरटेनमेंट का ही देने का वो थोड़ा सा बदल गया है। कैसे और ज्यादा पुराना एक आकाशवाणी का पैटर्न होता था उस हिसाब से हम कैसे बदलें आज के समय के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि वो अनर्गल जो बातें कर रहे हैं वो हम लोग लाएं, गंभीरता भी मनोरंजक तरीके से, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गंभीरता भी दी जा सकती है, क्योंकि हमारा काम है एंटरटेन करना, सूचना देना, दोनों को कैसे एक अच्छा बैलेंस बनाया जाए वो आकाशवाणी को करना बहुत ही जरूरी है।
1: जी आप पूछिए सवाल।
5: जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
5: मैं डॉक्टर पारुल राज।

0: से मैं बनारस से हूँ, मैं कवित्री भी हूँ, तो मेरा एक रहता है स्त्री विषय मेरा है मेन। तो जो कहते हैं ना कि एक कोना जो खाली है, वो अगर हम उस चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के और उसको हम प्रसारित करें, कार्यक्रम बनाएं, और तो वो मेरे मतलब एक मेरा ये सुझाव है।
1: ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है। हालांकि महिलाओं को लेकर केंद्रित कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और कवियों को लेकर भी चल रहे हैं, और यहाँ भी बहुत सारे कवियों को आमंत्रित करके विशेष कार्यक्रम

0: से है जो लोकप्रिय है। जी मैं एक बार आपसे और जानना चाहूंगा टंडन साहब कि आप वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार भी रहे, तो वाजपेयी जी कोई बहुत कवि तो थे ही और दिग्गज राजनेता थे, वो रेडियो को लेकर कैसे सुनते थे आकाशवाणी को और क्या उनका रहता था?
1: अटल जी की बहुत सारी कविताएं आकाशवाणी पर भी प्रसारित हुई हैं, तो देखिए वो भी जिस युग में पढ़े भले, तो रेडियो तो जीवन का एक अंग था ही। और मेरा ऐसा मानना है कि समाचार सुनने में, सामयिकी या और ऐसे कार्यक्रमों को सुनने में सभी राजनेताओं का बहुत विशेष एक ध्यान रहता था आकाशवाणी की तरफ, इंतजार करते थे लोग कि कब समाचार बुलेटिन आए, कब शाम के जो इनका चर्चा आए। वो सारी जनरेशन तो आकाशवाणी के साथ ही आगे बढ़ी है और उसमें राजनेता कहीं कोई अलग नहीं है।
0: जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे जाहिर है इतने सारे अखबार आते थे, उनका मीडिया क्लिपिंग्स आती थी, तो तब भी उनका रेडियो के प्रति खासतौर समाचारों के प्रति।
1: जैसे जैसे समय बदलता गया तो आकाशवाणी के जो समाचार हैं वो लोग कार में बैठकर ही चलते हुए सुनते हैं और आज भी वही है। आज मुझे नहीं लगता किसी भी घर में रेडियो होगा और ना ही हमने कभी रेडियो पर समाचार सुने। आज समाचार बुलेटिन केवल और केवल कार के अंदर ही सुना जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और जितने लोग भी कार से सफर
0: सुबह 8 बजे शुरुआत होती है वो,
1: तो
0: रेडियो।
1: वो इसीलिए जुड़े रहते हैं कि वो देश दुनिया के साथ उनका जुड़ाव है, क्योंकि चलते हुए भी उनको पता चलता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पत्रकार होने के नाते भी कि जो आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन है या जो उनके विशेष कार्यक्रम है स्पॉटलाइट है, ये आज भी बहुत आवश्यक है, हिस्सा है जीवन का। तो इससे लोग अलग नहीं हो सकते। अपने मोबाइल पर भी हम समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के सुन सकते हैं। तो ये जो सुविधा आई है इसमें मेरा ऐसा मानना है कि समाचार बुलेटिन और ये जो कार्यक्रम है सामयिकी, इसमें कोई प्राइवेट चैनल इसका मुकाबला नहीं।
0: बिल्कुल।
2: नमस्कार, मैं एज इंजीनियर यहाँ, मेरी पहली नौकरी यहाँ लगी थी।
0: अच्छा।
2: और मेल्ट्रॉन का जो ये रखा है टेप रिकॉर्डर, इसको हम ही मेंटेन किया करते थे, सरदार जी होते थे। लेकिन मैं इंजीनियर से साहित्यकार बन गया, मैं आज मैं पोएट हूँ, वो सब इसी की देन है। आकाशवाणी में जो आर्टिस्ट लोग आते हैं, तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजिकली भी आकाशवाणी को सुने लोग बाग ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें आर्ट कहीं खुलती जा रही है। बस इतना ही।
0: ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है। और आप भी आइए।
3: मैम मेरा नाम कीर्ति बैद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पत्रकारिता को 200 वर्ष हो रहे हैं, रेडियो को 100 वर्ष 2027 में हो जाएंगे, और एक शोधार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि हमारी जो इतनी लंबी यात्रा रही है उसमें शोध की दिशा में भी काम होना चाहिए। क्या आकाशवाणी भी इस दिशा में काम कर रहा है?
4: बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और पीएचडी रिसर्च के लिए जो आकाशवाणी के जो आर्काइव्स हैं उसमें बहुत लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए। किसी को कोई क्लिप पुराना भाषण सुनना है विशेष रूप से, आकाशवाणी के पास जो रिकॉर्ड है, चाहे वो प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन है, यदि उसका भी विश्लेषण करना है, रिसर्च करनी है,
0: बड़े-बड़े तो संगीतकारों की जो उनकी रिकॉर्डिंग है,
4: बिल्कुल, और उनके जो साक्षात्कार है उस पर आधारित बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बने हैं और अभी भी लोग कर रहे हैं।
0: बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे काम जो आकाशवाणी ने किए हैं वो हमेशा याद रहेंगे, और आज भी आकाशवाणी जो है वो सभी से आगे है। आकाशवाणी का भी मैंने कुछ 2-3 पंक्तियां लिखी है अपने मेरे कवि बनने की, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, 90 वर्षों से लुभा रही सभी को ये अनुपम वाणी, बस मिलता रहे यूं ही श्रोताओं का प्रेम स्नेह, युगों युगों तक अमर रहेगी हमारी ये आकाशवाणी।
5: बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
6: आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना। कार्यक्रम का नियामन कर रहे थे कमल किशोर बड़ाइक। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा, और कार्यक्रम का संयोजन किया था राम अवतार बैरवा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की

अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जलजनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एमटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: To develop the industrial ecosystem.
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
2: R&D and innovation oriented businesses.
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार

0: निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
2: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
3: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
1: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
4: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

द ट्रेन इस फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

0: आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर को, फिल्म थी दिल ही तो है, साहिल उद्यानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था।
1: क्या हुआ?

0: हाय गम का फसाना बन गया अच्छा
1: अच्छा जी
0: एक बहाना बन गया अच्छा
1: अच्छा।

0: वर्मा मलिक के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था, महेंद्र कपूर को आपने सुना, फिल्म थी दिल और मोहब्बत।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

पाकीज़ा इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़, कैफी आज़मी के बोल थे, गुलाम मोहम्मद का संगीत था और यही थी आपके लिए इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज का

0: ये कार्यक्रम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार कार्यक्रम बस कुछ ही पलों के बाद

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज बात एक ऐसी अदाकारा की जो अपने अंदाज से जितना लुभाती है उससे ज्यादा भाती है उनके फिटनेस की चमक। अपनी मौजूदगी से ही वो कर देती हैं पॉजिटिविटी की बौछार और दिल ये कह उठता है,
1: चुरा के दिल मेरा गोरिया चली।
0: जी हाँ, आज बात 3 दशकों से फिल्मी दुनिया में अपनी मुस्कान का जादू बिखेरती शिल्पा शेट्टी की।

शिल्पा शेट्टी, जिन्हें दुनिया भर में उनकी फिटनेस से तो पहचान मिली ही, साथ ही वो कई अलग अलग सामाजिक मुद्दों से भी जुड़ी हुई हैं। वो न सिर्फ एक अभिनेत्री हैं, बल्कि फिटनेस गुरु, बिजनेस वुमन, सामाजिक कार्यों की बुलंद आवाज, एक बेहतरीन माँ और पत्नी हैं। शिल्पा जिस अंदाज में घर और बाहर के कामों में संतुलन रखती हैं, वो कई महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं। फिटनेस का आलम ये है कि उम्र के 5 दशक पार कर चुकी शिल्पा अपनी उम्र को मात देती नजर आती हैं।

4 जून 1975 को कर्नाटक के मैंगलोर में जन्मी अश्विनी शेट्टी, जिन्हें आज हम शिल्पा शेट्टी के नाम से जानते हैं। उनके पिता सुरेंद्र शेट्टी एक बिजनेसमैन थे और माँ सुनंदा शेट्टी अपने समय की मशहूर मॉडल। अब आप ये सोचें कि शिल्पा को यहीं से फिल्म में जाने की प्रेरणा मिली, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुंबई में पढ़ाई कर रही शिल्पा तो अपने पिता के बिजनेस को संभालने की तैयारी में थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।

स्कूल के दिनों में शिल्पा अपनी खूबसूरती को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो एक रफ एंड टफ लड़की मानी जाती। अपने स्कूल की वॉलीबॉल टीम की कैप्टन शिल्पा शेट्टी खेल में खोई रहती। खेल के कारण फिटनेस का सिलसिला बचपन से ही साथ रहा। वही भरतनाट्यम में पारंगत हुई तो वो शुरू से ही डांस में भी अच्छी थी और इसके साथ ही शिल्पा कराटे में ब्लैक बेल्ट है। वैसे ध्यान दें तो ये सारी क्वालिटी एक फिल्मी हीरो की छवि दिखाती है। शायद यही कारण है कि शिल्पा भी अपनी अनुशासन से भरी लाइफ के चलते कई लोगों के लिए एक हीरो ही है।

भले ही शिल्पा खुद को हीरोइन की तरह नहीं देख रही थी, लेकिन 10वीं पास करते ही मॉडलिंग करने लगी थी। वो कई कमर्शियल्स में भी नजर आती हैं और इस तरह उन्हें मिली उनकी पहली फिल्म गाता रहे मेरा दिल, जो कभी भी दर्शकों के सामने आई ही नहीं, बल्कि पहली बार शिल्पा बड़े पर्दे पर नजर आई शाहरुख खान के साथ। 1993 की ये फिल्म थी बाजीगर।

बाजीगर में शिल्पा के काम को सराहा गया, उन्हें काम भी मिलने लगा, लेकिन बाजीगर जैसी सफलता के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। इस दौरान आई उनकी बहुचर्चित फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ शिल्पा की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया।

मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म में शिल्पा ने एक डांसर की भूमिका निभाई थी और उनके इस किरदार और उनके इस डांस ने उन्हें एक अलग पहचान दी। शिल्पा के करियर में उन्हें ऐसे कई किरदार और गीत मिले जिनमें उन्हें डांस करते देखा गया और ये गीत हिट भी हुए। कुछ फिल्मों में तो शिल्पा सिर्फ एक गाने के लिए भी आई क्योंकि वो डांस उनके ऊपर ही जचता है, फिर वो शूल का गीत हो या दोस्ताना का अंदाज। शिल्पा को आज भी उनके इन डांस नंबर्स के लिए याद किया जाता है।

शिल्पा ने एक्टिंग के गुर सेट पर ही अपने अलग अलग किरदारों को निभाते हुए सीखे, पर एक समय के बाद शिल्पा एक ही तरह के किरदार करते हुए थक चुकी थी। वो कुछ अलग करना चाहती थी। शिल्पा जो चाहती थी वो उन्होंने कर भी दिखाया। फिल्म जानवर में जब शिल्पा ने ममता ओबेराय के रूप में एक माँ के अपने बच्चे से बिछड़ने का दुख बयां किया, तो दर्शकों की आंखों में आंसू और आलोचकों के मुंह से वाहवाही साथ ही निकले।

रिश्ते फिल्म में शिल्पा का मछुआरन का किरदार उनके डायलॉग्स के अंदाज और कॉमिक टाइमिंग से एक अलग रंगत में ढल गया। वैसे शिल्पा इससे पहले ही अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी थी। साल 2000 में आई उनकी फिल्म धड़कन। इस फिल्म में जिस तरह बेबसी, लाचारी, प्यार, जुनून जैसे भावों को शिल्पा ने अपने अभिनय से दर्शकों तक पहुँचाया, लोगों को पर्दे पर शिल्पा नहीं नजर आई तो सिर्फ अंजलि।

शिल्पा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अपना नाम कमा रही थी। तमिल, तेलुगू, कन्नड़ फिल्मों में उनके काम को सराहा गया। वैसे यहाँ ये बताते चलें कि शिल्पा 6 भाषाओं का ज्ञान रखती हैं। वो हिंदी, अंग्रेजी के अलावा मराठी, गुजराती, तेलुगु और तमिल भी बोल लेती हैं। उनके अभिनय की भाषा दर्शकों के दिलों तक पहुँचती है।

शिल्पा की हर फिल्म की चर्चा करना तो संभव नहीं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनकी बात करना जरूरी है। साल 2004 में आई शिल्पा की वो फिल्म जिसे आज तक देश विदेश में सराहा जाता है, ये फिल्म थी फिर मिलेंगे। शिल्पा ने तमन्ना साहनी के किरदार के जरिए एक HIV पॉजिटिव लड़की के जीवन को लोगों के सामने रखा। ये फिल्म नहीं बल्कि लोगों को एड्स पीड़ितों की परेशानियों और एक समाज के तौर पर हमारे कर्तव्यों को उजागर करने की पहल थी। इस फिल्म से मिली सारी रकम शिल्पा ने HIV पॉजिटिव पीड़ितों के लिए दान दे दी। फिर मिलेंगे को शिल्पा अपनी बेहतरीन फिल्मों में से एक मानती हैं।

शिल्पा का अभिनय लगातार निखर रहा था। वो खुद को एक एक्टर के तौर पर पसंद करने लगी थी। कन्नड़ फिल्म ऑटो शंकर में शिल्पा ने नेगेटिव किरदार यूं निभाया कि उन्हें साउथ के गब्बर सिंह की उपाधि मिल गई। शिल्पा की बेहतरीन एक्टिंग का एक और नजारा मिला। फिल्म थी लाइफ इन अ मेट्रो। शिल्पा को शिखा घोष के किरदार में देख न जाने कितनी महिलाओं ने उसमें अपनी कहानी देख ली।

दीपा ने अपनी माँ सुनंदा द्वारा निर्मित इंडियन चाइनीज फिल्म द डिजायर में भी एक रोमांचक भूमिका निभाई। वैसे शिल्पा शेट्टी टीवी में आने वाली शुरुआती फिल्म सितारों में शामिल हैं। वहीं उन्होंने यूट्यूब ऐप डीवीडी वगैरह की ओर भी पहले कदम बढ़ाया। इसी तरह का एक और जोखिम भरा काम उन्होंने किया जब साल 2007 में वो ब्रिटिश रियलिटी शो बिग ब्रदर में एक कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुई। पूरे समय कैमरों के सामने रहना आसान नहीं होता। शिल्पा के सामने कई तरह की परेशानियां भी आईं, लेकिन वो डटी रहीं। विनम्रता, सहनशीलता और दृढ़ता को उन्होंने अपना साथी बना लिया और इस शो की विनर बनी।

दोस्ताना के इस गाने में शिल्पा थिरकती नजर आईं और फिल्म के स्टार से ज्यादा शिल्पा की चर्चा हुई। शिल्पा अपने फिल्मी पर्दे से निकलकर टीवी की दुनिया में छाने लगी। वो कई रियलिटी शोज का हिस्सा बन रही थी, फिल्मों से एक दूरी सी बनती जा रही थी और यही वो समय था जब शिल्पा ने लंबे समय से दोस्त रहे राज कुंद्रा से शादी कर ली। शादी के 3 साल बाद साल 2012 में शिल्पा पहली बार मां बनी। उनके बेटे वियान भी अपनी मां की तरह ही फिटनेस और मार्शल आर्ट के दीवाने हैं। साल 2020 में शिल्पा सरोगेसी के जरिए दोबारा मां बनी अपनी बेटी समीशा की। शिल्पा अपने बच्चों को हर त्योहार का आनंद दिलाती हैं। एक मां के तौर पर उनका ये अंदाज भी फैंस को पसंद आता है।

लंबे समय तक फिल्मी पर्दे से गायब रहने के बाद शिल्पा ने बतौर निर्माता ढिस्कियाओं फिल्म से वापसी की और अभिनेत्री की तरह नजर आई फिल्म निकम्मा और सुखी में। इन फिल्मों में शिल्पा ने कुछ हट के किरदार निभाए। रोहित शेट्टी की ओटीटी सीरीज पुलिस फोर्स में भी शिल्पा के किरदार तारा शेट्टी को सराहना मिली, लेकिन हंगामा 2 में शिल्पा का वही अंदाज देखने मिला जो उनके फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में दिखा था। यहाँ भी शिल्पा एक बार फिर अपने उसी सुपरहिट गाने

वहीं शिल्पा को स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया और यहां उन्होंने चैंपियंस ऑफ चेंज का अवार्ड अपने नाम किया। शिल्पा अपने ग्लैमरस अंदाज, कातिलाना मुस्कान और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। इन बातों के लिए भी उन्हें कई बार अलग अलग लिस्ट में टॉप पे रखा जाता रहा है।

रहती हैं। उनका मानना है कि योग और ध्यान के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। शिल्पा शेट्टी का मूल मंत्र ही फिटनेस है और ये बात उनकी दिनचर्या का भी हिस्सा है। पॉजिटिविटी, परिवार का साथ, योग, ध्यान, संस्कृति से जुड़ाव, जीवन को सरल रखना जैसे कई ऐसे गुण शिल्पा शेट्टी में नजर आते हैं जो उनके फैंस भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं। ये बातें उन्हें एक रोल मॉडल तो बनाती ही है, साथ ही लोग खुद को उनसे जुड़ा महसूस करते हैं। शिल्पा इसी तरह सरल और सहज बनी रहें और आने वाले कई दशकों तक लोगों को फिटनेस और सकारात्मकता की ओर प्रेरित करती रहें। हमारी यही

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था तीन दशकों से फिल्मी दुनिया में अपनी मुस्कान का जादू बिखेरती शिल्पा शेट्टी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, छाया गीत।
1: सुनना ना भूलिएगा दिन बुधवार दिनांक 10 जून सुबह 11 बजे से FM रेनबो पर।

0: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 10 बज चुके हैं और अब प्रस्तुत है रूपक।
1: प्लास्टिक की भयावहता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया ये रूपक विकल्पों के द्वार। आलेख कीर्ति श्रीवास्तव का है, वाचन स्वर नवनीत मिश्र और कुमकुम धर। प्रस्तुत करता है अतिश कुमार श्रीवास्तव।
2: सन 1907 दुनिया में पहली बार एक ऐसी चीज का आविष्कार हुआ जो न गल सकती थी, न सड़ सकती थी, न हजार वर्षों तक नष्ट हो सकती थी, और कीमत महज चंद सिक्के। तब शायद खुशी की कोई सीमा न रही होगी, ऐसा लगा होगा जैसे दुनिया जीत।

0: आप जानना चाहेंगे वो आविष्कार क्या था? वो आविष्कार था प्लास्टिक, जिसने आज इतने सालों में दुनिया को कचरे के ढेर पर बिठा दिया है। हमारे महासागरों में प्लास्टिक के अरबों खरबों टन कचरे ने अपना साम्राज्य फैलाया हुआ है। अगर ये इसी गति से बढ़ता रहा तब शायद हमारी सांसें भी खुल जाएंगी, क्योंकि पृथ्वी की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन समुद्र में बहने वाले छोटे पौधे और सूक्ष्म जीव ही बनाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तब वो दिन दूर नहीं जब समुद्र की सतह पर प्लास्टिक की मोटी परत जमने से सूरज की रोशनी इनके पास तक नहीं पहुंच पाएगी और रोशनी के अभाव में ये पौधे नष्ट हो जाएंगे। पूरी दुनिया के वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा।
1: अब समय बैठकर चिंता करने का या रोने का नहीं है, बल्कि त्वरित गति से विकल्पों को तलाश कर उन्हें अपनाने का है। सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्लास्टिक के बहुत से विकल्पों पर काम हो रहा है, लेकिन प्लास्टिक इस तरह से हमारी जिंदगी में रचा बसा है कि इसे पूरी तरह से निजात पाने के लिए हमें प्रबल इच्छा शक्ति दिखानी होगी, संवेदनशील बनना पड़ेगा।
0: आवश्यकता है नए नजरिए के साथ पुरानी परंपराओं को अपनाने की, अतीत में झांकने की, क्योंकि हमारी सारी समस्याओं के समाधान हमें वहीं मिलेंगे। और यकीन मानिए, आज के समय में प्लास्टिक के जो भी विकल्प सामने आ रहे हैं वो सब हमारी उसी पुरानी जीवन शैली का आधुनिक रूप है, जो कि विज्ञान और तकनीक के संयोजन से गढ़े जा रहे हैं।
1: आपको याद है वो जूट के भारी भरकम बोरे, अनाज और सब्जियां रखने के लिए? इनसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। माना कि इधर बहुत सालों से प्लास्टिक के बोरों का भी इस्तेमाल होने लगा था, लेकिन फिर भी अपनी उपयोगिता के कारण ही जूट के बोरे पूरी तरह से कभी गायब नहीं हुए, और आज वही जूट नए रंग रूप में सजकर हमारे पास आ रहे हैं। मॉल में, बाजारों में जूट के बैग और थैले बिक रहे हैं। ये वाकई एक सुखद अनुभूति है।
0: हाँ, लेकिन तब और ज्यादा अच्छा लगेगा जब हर व्यक्ति घर से निकलते समय अपने साथ एक जूट का या कपड़े का थैला रखने की आदत विकसित करे, जैसे कि पुराने समय में बड़े बुजुर्ग करते थे। फिर आप कोई भी सामान खरीदें, आपको दुकानदार से पन्नी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
1: लेकिन अब जूट सिर्फ थैले तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने आधुनिक रूप में बहुत सारे चोले ओढ़ कर आया है, और सब पर्यावरण के हितैषी हैं, चाहे वो जूट से बने सैंडल हों, या लैपटॉप और मोबाइल कवर्स, या घर सजाने का सामान, ज्वेलरी, यहाँ तक कि कूरियर के लिफाफों में जो जाली लगी होती है वो भी जूट से बनी होती है।
0: वर्तमान समय में पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए नदियों के किनारों पर जूट की मोटी चटाई बिछाई जा रही है। जूट की चटाई की सबसे अच्छी बात यह है, ये कुछ समय बाद मिट्टी में घुलकर खाद बन जाती है, और जूट से बने सारे उत्पाद बायोडिग्रेडेबल होते हैं।
1: अब हम बात करते हैं अपने रसोई घर की, जहाँ पर खाने के सामान से ज्यादा तो प्लास्टिक का सामान है, लेकिन अब सरकार और जागरूक लोगों के द्वारा भी इस दिशा में काम हो रहा है। बहुत से स्टार्टअप शुरू हुए हैं जो बहुत ही आकर्षक रूप में हर साइज और डिजाइन में स्टील, कांच, चीनी मिट्टी और मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, जिनका इस्तेमाल करना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है।
0: अगर हम कांच के बर्तन में खाना खाते हैं तो ये अपने किसी भी रसायन को भोजन में मिलने नहीं देता, इसलिए भोजन पूरी तरह शुद्ध रहता है। अपने अक्रिय गुण के कारण ही कांच हमारी रसोई के लिए बहुत उपयोगी है।

0: अगर हम मिट्टी के बर्तनों की बात करें तो मिट्टी के बर्तनों की बनावट सूक्ष्म रूप से छिद्रपूर्ण होती है। मटेरियल साइंस के अनुसार ये भोजन के एसिडिक स्तर यानी कि पीएच लेवल को प्राकृतिक रूप से संतुलित रखती है। समय की मांग के अनुसार मिट्टी के बर्तन भी आधुनिकता के साचे में ढल गए हैं। आज इनके विभिन्न रूप देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बिना बिजली वाला फ्रिज, वाटर कूलर, प्रेशर कुकर, वाटर बॉटल और भी बहुत सारे रूप।
1: इन बर्तनों का इस्तेमाल करना हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि स्टील और कांच दोनों को हजारों बार रिसाइकिल करके नए रूप में ढाला जा सकता है, तब भी उसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आती। जब हमारी रसोई के लिए हमारे पास इतने स्वास्थ्यप्रद और पर्यावरण हितैषी विकल्प मौजूद हैं, तब हमें प्लास्टिक को गुडबाय कह देना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान देने योग्य है, हम खाना रैप करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल, क्लिंग फिल्म्स, प्लास्टिक कोटेड बटर पेपर यूज करते हैं, या बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो वो भी प्लास्टिक के डिब्बे में आता है। ये भी स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से सही नहीं है।
0: लेकिन अब इनके विकल्प भी बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे कि हमारी परंपरागत भारतीय रसोई में रोटी को सूती कपड़े में लपेटकर बर्तन में रखा जाता था। अब विज्ञान और तकनीक के मेल से इसका रूप आधुनिक हो गया है, जिसे बीज वैक्स रैप का नाम दिया गया है। जब सूती कपड़ों के टुकड़ों को मोम, राल यानी प्राकृतिक रेजन और जोजोबा ऑयल के मिश्रण में डुबोया जाता है, तब कपड़ा एक ऐसी त्वचा के रूप में परिवर्तित हो जाता है जिसमें अगर आप खाना रैप करें तब ये प्लास्टिक की तरह खाने से चिपक जाता है और खाने को फ्रेश भी रखता है। इन्हें काफी लंबे समय तक धोकर सुखाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने देश में ये तकनीक काफी लोकप्रिय हो रही है, कई स्टार्टअप इसे बना रहे हैं। ऑनलाइन साइट्स पर भी ये खरीदी जा सकती हैं। फ्रिज में फल सब्जियां रखने के लिए कॉटन की जालीदार थैलियां भी मार्केट में आ गई हैं। कॉटन के पोटली, बैग और पाउच भी बन रहे हैं। आजकल प्रीमियम ब्रांड्स के गहनों, जूतों और कपड़ों की डिलीवरी में इनका काफी यूज हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अब 100% ऑर्गेनिक कॉटन से बने सैनिटरी पैड्स और दोबारा इस्तेमाल होने वाली बेबी डायपर्स भी बाजारों में अपनी दस्तक दे चुके हैं, जो त्वचा और पर्यावरण दोनों के लिए सुरक्षित है।
1: अगर वास्तव में समस्याओं का समाधान खोजने की इच्छा शक्ति हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। हमारे देश के तटीय शहरों में सदियों से पत्तलों में खाना खाने की परंपरा रही है। केले के पत्ते, पलाश के पत्ते, सुपारी के पत्ते और साल के पत्ते, इन पत्तों में भोजन करना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और पर्यावरण के लिए भी। पलाश और केले के पत्तों में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। जब इनमें खाना गर्म सर्व किया जाता है तब इसके पोषण तत्व खाने में मिलकर खाने के स्वाद को बढ़ा देते हैं। देश के बहुत से युवा इस क्षेत्र में भी स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं। विज्ञान और तकनीक का प्रयोग कर इन पत्तों को आधुनिक रूप में ढाला जा रहा है। पत्तों को सुखाकर इन्हें हाइड्रोलिक हीट प्रेस मशीनों के जरिए डिस्पोजेबल बर्तनों का रूप दिया जा रहा है। आजकल शादी और पार्टीज में प्लास्टिक के स्थान पर ज्यादातर इन्हीं पत्तों से बने डिस्पोजेबल बर्तनों का इस्तेमाल हो रहा है और भी बहुत से उपयोगी सामान बन रहे हैं। पहले केले की फसल कटने के बाद उसके तने को बेकार समझकर फेंक दिया जाता था, लेकिन अब इस तने के कचरे से मजबूत कार्डबोर्ड, कूरियर बैग, एग ट्रे और पेपर बैग्स बन रहे हैं। सुपारी के पत्ते जब सूख कर पेड़ों से गिर जाते हैं तब इनके निचले हिस्से का इस्तेमाल करके बायोडिग्रेडेबल क्रॉकरी, फूड पैकेजिंग बॉक्स, मिठाई, फल और होटल का खाना पैक करने वाले कस्टमाइज्ड डिब्बे बनाए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इन्हें इस्तेमाल के बाद मिट्टी में फेंक दिया जाए तो ये बस कुछ ही हफ्तों में गलकर खाद बन जाते हैं।
0: सच में प्रकृति ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से संतुलन स्थापित कर रखा था। हम इंसानों ने ही प्रकृति से छेड़छाड़ करके असंतुलन की स्थिति उत्पन्न कर दी है, लेकिन अब समय है अपनी भूल को सुधारने का, वातावरण को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने का। इस दिशा में हमारे देश के जागरूक युवा प्रयास कर भी रहे हैं। आइए मिलते हैं कुछ युवा उद्यमियों से, जिनका ध्येय व्यवसाय द्वारा सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं है बल्कि दुनिया को प्लास्टिक मुक्त बनाना है।
2: मैं अंजलि सिंह, संस्थापक हूँ जूट फॉर लाइफ की। और आज जब पूरी दुनिया प्लास्टिक प्रदूषण और पर्यावरण चुनौतियों का सामना कर रही है, तब हम सभी की जिम्मेदारी है एनवायरनमेंट के अनुकूल विकल्पों को अपनाएं। इसी सोच के साथ वर्ष 2009 में जूट फॉर लाइफ की हमने शुरुआत की। हमारे द्वारा निर्मित जूट बैग, जूट ज्वेलरी, गृह सच्चा उत्पाद और अन्य विविध उत्पाद देश के विभिन्न

0: बरसों तक पहुंच रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारी कारीगरों द्वारा बनाई गई राखियां भी अयोध्या में रामलला तक पहुंच चुकी हैं। जूट फॉर लाइफ ने पिछले वर्षों में तकरीबन 7,500 से अधिक महिलाओं और युवतियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है। तो आइए आज हम सब मिलकर प्लास्टिक के स्थान पर जूट और अन्य पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को अपनाने का संकल्प लेते हैं।
1: मेरा नाम राकेश शुक्ला है, मैं सिहूरा जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। लकड़ी की मैं कंघी बनाता हूँ और बनवाता हूँ। जब कोरोना के बाद मेरे बाल झड़ने लगे थे तो मैंने विकल्प तलाशने की कोशिश की। जब ध्यान आया कि 50 साल या 40 साल पहले हम लकड़ी की कंघी से हमारे यहाँ कंघी होती थी, तो फिर मैंने उस विकल्प को ढूंढा और जो उनको बनाने वालों को ढूंढा और फिर उनसे बनवाया और खुद भी बनाया, तो लकड़ी की कंघी का इस तरीके से पुनर्जीवन मेरे हाथ हो गया। मैं प्राकृतिक चीजों में काम करता हूँ, तुलसी अर्क बनाता हूँ, ब्राह्मी का अर्क बनाता हूँ, हल्दी का अर्क बनाता हूँ, मिट्टी का इत्र बनाता हूँ। अच्छी चीजों का रिस्पांस सकारात्मक होता है और प्राकृतिक चीज का आप कोई भी काम अगर शुरू करते हैं तो उसमें पॉजिटिविटी ही मिलती है। मेरा ऐसा अनुभव पिछले 5 साल 6 साल में रहा है।
2: सही मायनों में देश का भविष्य देश के युवाओं के हाथों में है। हमारे देश के युवा इतने संवेदनशील इतने जागरूक हैं कि अब हम अवश्य ही निकट भविष्य में एक प्लास्टिक मुक्त दुनिया का सपना देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं बायोप्लास्टिक के बारे में, जो प्लास्टिक के खिलाफ जंग में हमारा प्रमुख हथियार है। बायोप्लास्टिक दो प्रकार से बनता है, पहला PLA पॉलीलैक्टिक एसिड, दूसरा PHA यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्किनोइड। PLA बायोप्लास्टिक नवीकरणीय जैविक स्रोतों जैसे कि मक्का गन्ना आलू के स्टार्च से बनाया जाता है। सबसे पहले इनका स्टार्च निकालकर ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है, फिर विशेष बैक्टीरिया द्वारा इनका फर्मेंटेशन कराया जाता है जिससे लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है। लैक्टिक एसिड के अणुओं को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा आपस में जोड़कर एक लंबी चेन बनाई जाती है, इसे ही PLA यानी पॉलीलैक्टिक एसिड कहते हैं। और दूसरा PHA बायोप्लास्टिक, जिसे कि बैक्टीरिया वाला प्लास्टिक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विशेष जीवाणुओं को गन्ने के रस या वनस्पति तेल पर पाला जाता है। ये बैक्टीरिया जब इस भोजन को पचाते हैं तब अपनी कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा को एक प्राकृतिक पॉलीमर के रूप में एकत्र कर लेते हैं। बाद में इन्हीं कोशिकाओं को तोड़कर शुद्ध PHA बायोप्लास्टिक निकाल लिया जाता है। भारत में इन दोनों बायोप्लास्टिक का निर्माण कृषि और उद्योगों से निकलने वाले कचरे से होता है। चीनी मिलों से निकलने वाली गन्ने की खोई, शीरा और देश में जो फसलें और सब्जियां खराब हो जाती हैं, उनके वेस्ट स्टार्च का इस्तेमाल बायोप्लास्टिक बनाने में हो रहा है।
3: पूरे विश्व में बन रहे बायोप्लास्टिक के लगभग 41% भाग का उपयोग सिर्फ पैकेजिंग उद्योग में ही हो रहा है। भारत में भी कंपोस्टेबल शॉपिंग बैग, फूड पैकेजिंग, बॉटल्स का निर्माण बड़ी मात्रा में हो रहा है। पैकेजिंग के अलावा भी सिंगल यूज कटलरी, स्ट्रॉ, नर्सरी में इस्तेमाल होने वाले छोटे गमले और खेतों में नमी बनाए रखने और खर पतवार रोकने के लिए बिछाई जाने वाली मल्चिंग शीट्स का भी निर्माण हो रहा है। अच्छी बात यह है कि फसल काटने के बाद इसे हटाने की जरूरत नहीं होती। मेडिकल क्षेत्र में भी इसका उपयोग हो रहा है। शरीर के अंदर लगने वाले टांके और दवाइयां पहुंचाने वाली प्रणालियां जो समय के साथ खुद ब खुद शरीर में घुल जाती हैं, सब बायोप्लास्टिक से बन रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी बायोप्लास्टिक धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। मोबाइल कवर, कीबोर्ड के पार्ट्स और हेडफोन के बाहरी हिस्से और गाड़ियों के निर्माण तक में बायोप्लास्टिक का यूज हो रहा है, जैसे कि डैशबोर्ड के कंपोनेंट्स, कार की सीटों के कवर इत्यादि। लेकिन इसमें मुख्य रूप से टिकाऊ और मजबूत बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है।
2: यहाँ पर एक बार ध्यान देने की आवश्यकता है, PLA बायोप्लास्टिक व्यावसायिक रूप से अधिक स्थापित और सस्ता है, इसीलिए बाजार में दिखने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट इसी से बनते हैं, जबकि PHA बायोप्लास्टिक का उत्पादन बैक्टीरिया फर्मेंटेशन प्रक्रिया के कारण काफी महंगा होता है। इसका उपयोग अभी उस क्षेत्र में ही अधिक किया जाता है जहाँ उत्पादन का प्राकृतिक रूप से जल्द ही नष्ट होना आवश्यक हो, जैसे कि मेडिकल के क्षेत्र में खुलने वाले टांके, दवा पहुंचाने वाले कैप्सूल आदि। PHA बायोप्लास्टिक से बनती है।
3: अब चलते हैं अपने खेतों की तरफ, जहां हर वर्ष हम लाखों टन पराली जलते हुए और उसके धुएं से अपने शहरों को प्रदूषित होते हुए देखते आए हैं। लेकिन अब हमें यहां भी एक सुखद एहसास की अनुभूति हो रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में भी कार्य हो रहा है। सरकार के सहयोग से हमारे देश के युवाओं द्वारा स्टार्टअप शुरू किए गए हैं, जो खेती के कचरे को बायो कंपोजिट तकनीक के जरिए महत्वपूर्ण उत्पादों में परिवर्तित कर रहे हैं। गेहूं और चावल

0: भूसे से बनी होती है। थर्मोकोल जैसे कुशनिंग पैड्स बनाए जा रहे हैं जो भारी सामान की पैकेजिंग और सुरक्षित डिलीवरी के क्षेत्र में बेहतर विकल्प साबित हो रहे हैं। गेहूं की भूसी और चावल के छिलके के गूदे से शादी समारोहों में इस्तेमाल होने वाले डिस्पोजेबल बर्तन बन रहे हैं जो पूरी तरह वाटरप्रूफ और माइक्रोवेव सेफ होते हैं। साथ ही मजबूत बर्तन भी बनाए जा रहे हैं। गेहूं की भूसी के पाउडर में प्राकृतिक रेजन को मिलाकर जैसे कि लंच बॉक्स, चाय के कप, बच्चों के सिपर और पानी की बोतलें और मोबाइल कवर भी बन रहे हैं। ये सभी उत्पाद दिखने में बेहद आकर्षक हैं और लंबे समय तक इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा स्टेशनरी और ऑफिस प्रोडक्ट भी बनाए जा रहे हैं। फाइल, फोल्डर, डेस्क ऑर्गेनाइजर, क्लिप बोर्ड और पेपर वेट जैसे उत्पाद अब राइस हस्क कॉम्पोजिट से बनाए जा रहे हैं। अब ऐसे पेन भी मार्केट में आ रहे हैं जिनकी बाहरी बॉडी गेहूं की भूसी से बनी होती है। ये सब उत्पाद बेहतर विकल्प साबित हो रहे हैं। इन उत्पादों की सबसे सुंदर बात ये है कि जब इनका जीवन चक्र पूरा होता है ये मिट्टी में मिलकर मिट्टी के ही हो जाते हैं।
1: निर्माण के क्षेत्र में भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। चावल की भूसी को रिसाइक्लेबल प्लास्टिक या बायोपॉलीमर के साथ मिलकर WPC बोर्ड बनाए जा रहे हैं जिनका उपयोग दरवाजे, खिड़कियों के फ्रेम, आउटडोर फ्लोरिंग और फर्नीचर बनाने में किया जाता है। ये वाटरप्रूफ और दीमक रोधी होते हैं, लेकिन यहाँ इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि इन निर्माण से जुड़े उत्पादों को बनाने में रिसाइक्लेबल प्लास्टिक और बायोपॉलीमर का भी इस्तेमाल हुआ है, इसलिए किसी भी मिट्टी में डालने से नष्ट नहीं होंगे। इन्हें नष्ट करने के लिए इन्हें औद्योगिक कंपोजिट प्लांट तक ले जाना होगा।
0: हमें इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक ही हमारे और हमारे वातावरण के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि प्लास्टिक का हर रूप विनाशकारी है। इसके बारे में बता रहे हैं वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सोनकर जी।
2: अभी कुछ महीने पहले मैंने माइक्रोप्लास्टिक पर एक वीडियो रिपोर्ट जारी किया था, तो जिसको रेफर करते हुए मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। ही वॉज वेरी हैप्पी, ऐसा लग रहा था कि वो सोच रहे हैं कि प्लास्टिक से संबंधित सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अभी वास्तव में इस बात से ऐसा लगता है कि हमें प्लास्टिक के बारे में जानकारी ही नहीं है। हम किस तरह से एक प्लास्टिक एज में जी रहे हैं। आप सरप्राइज होंगे कि बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां से प्लास्टिक हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में पहुंच रहा है।
3: प्लास्टिक की जो असल प्रॉब्लम है वो प्लास्टिक का यूज है। प्लास्टिक का एक गुण है कि एक प्लास्टिक के बॉटल में पानी लिया हुआ है आपने, थोड़ी देर बाद उसके माइक्रोन और नैनो साइज के कण जो है पानी में माइग्रेट कर जाएंगे अपने आप, और अगर पानी गर्म हो जाए तो ये क्रिया तेज हो जाएगी, और अगर पानी एसिटिक है या कोरोसिव है तो ये क्रिया और तेज हो जाएगी। मान लीजिए हमें ये ज्ञान हो गया कि भाई प्लास्टिक बहुत खराब चीज है, तो हम जब प्लास्टिक को जो है डिस्कार्ड करते हैं तो अपने घर से बाहर निकाल देते हैं उसको। लेकिन जो प्लास्टिक आप अपने घर की सफाई से, घर से निकाल के बाहर फेंक देते हैं, जब लौटता है तो आपके घर में नहीं लौटता, वो आपके ब्लड में लौटता है। आपने देखा होगा प्लास्टिक शुरू शुरू में बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे रखे हुए वो अपने आप सूरज की रोशनी में आकर के वो ब्रिटल हो जाता है और टूटता है, और टूटते टूटते वो नैनो और माइक्रोन साइज का हो जाता है। तो जब बारिश होती है तो ये बहकर हमारे नदियों में चला जाता है, नदियों से हमारे समुद्र में चला जाता है, और ये नैनो साइज के और माइक्रोन साइज के प्लास्टिक इतने छोटे होते हैं कि जब वेपोराइजेशन होता है तो ये वेपर के साथ बादलों में चले जाते हैं और सुदूर हमारे ग्लेशियर्स में, हमारे पहाड़ों में, हमारे जो है फॉरेस्ट में, वहां जाके बरस जाता है। तो ऐसी जगह पर भी नैनो और माइक्रोन साइज के प्लास्टिक पहुंच गए हैं। डुंड्रा से लोग आए थे, वो साइबेरिया से मेरे पास, कि यहां पर माइक्रोप्लास्टिक कैसे आ गया, यहां पर तो ह्यूमन रहता नहीं। अब समुद्र का पानी खारा हो तो उसमें अगर कोई प्लास्टिक किसी भी रूप में जा रही हो तो टूट करके उसको नैनो और माइक्रोन साइज की होनी है। और कई प्लास्टिक ग्लोमरेट मैंने डिस्कवर किया था अंडमान में, जो पहाड़ी चट्टान का रूप ले लिया था, वहां पर जो कैल्सिफाइड जो रॉक्स थे उसमें मिक्स होकर के रॉक का रूप ले लिया, पहाड़ी का रूप ले लिया था जो है प्लास्टिक का। हमारा जो फूड चेन है उसकी जो सबसे पहले स्थान पर एल्गी हो, तो जो समुद्री जीव होते हैं वो एल्गी को खाते हैं। तो ये जो प्लास्टिक है इतना छोटा है कि वो उसी एल्गी में इन्वॉल्व हो गया है, तो वो उनके शरीर में उनके ब्लड में ये पहुंच जाता है। तो जो ऊपर वाला जीव है वो जब उसको खाता है तो उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो इस तरह पूरी फूड चेन में ये पहुंच गया है, सबसे खतरनाक बात। अब आप

0: ने जो बाहर फेंका अब वो बारिश में भी चला गया, आपके ग्राउंड वाटर में भी चला गया, जब आपके पीने का पानी आया आपके टेबल पे जो है आपके खाने के प्लेट में पहुंच गया वो, ये इतना खतरनाक है।
1: अब ये समय है जब हमें शर्मिंदा होना चाहिए और रुक जाना चाहिए।
2: डॉक्टर अजय सोनकर की बातें सुनकर आप जरूर समझ गए होंगे कि प्लास्टिक हर रूप और हर अंश में कितना घातक है। प्लास्टिक के सभी विकल्पों को अपनाकर ही हम एक प्लास्टिक मुक्त दुनिया बना सकते हैं। वास्तव में हमारी समृद्ध विरासत में जीवन को सही ढंग से जीने के लिए हमेशा से इतना कुछ रहा है कि अगर हम खोजने निकले तो शायद नए कीर्तिमान गढ़ लेंगे। हम बात करते हैं दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधे बांस के बारे में। वैज्ञानिक इसे कोई पेड़ नहीं बल्कि घास की एक प्रजाति मानते हैं। बांस को काटने के बाद दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपनी जड़ों से स्वतः उगाता है। ये पारंपरिक पेड़ों की तुलना में 10 गुना अधिक बायोमास यानी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा करता है और पारंपरिक पेड़ों की तुलना में 35% अधिक ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ता है। बांस स्टील जितना ही मजबूत होता है। अभी तक घरों और होटलों में PVC के वॉल पैनल, सोफा, कुर्सी आदि बनते रहे हैं, लेकिन अब बांस के रेशे और बायोरिजिन को मिलाकर बनाए गए सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, अलमारी, डिजाइनर लैंप और घर सजाने के सामान भी बन रहे हैं। बांस के रेशे से ही टूथब्रश, होटल कटलरी, रिजुरेबल स्ट्रॉ, बांस के रेशे से बने कपड़े और हल्के वजन वाले मोबाइल और लैपटॉप कवर भी बन रहे हैं। बांस में भारी धातुओं और हानिकारक रसायनों को सोखने की क्षमता होती है, इसीलिए कारखानों के प्रदूषित पानी और सीवेज के पास बांस के पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि ये पानी में मौजूद नाइट्रोजन या फास्फोरस को अवशोषित कर पानी को शुद्ध रखते हैं। इसलिए बांस की खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो ये हमारे हवा पानी को शुद्ध रखेंगे और दूसरी तरफ इनके उत्पाद बनाकर हम प्लास्टिक मुक्त भी रह सकेंगे।
3: भारत के तटीय नगरों में नारियल का कचरा बड़ी मात्रा में इकट्ठा होता है। अब यही नारियल का छिलका मानवता के सबसे बड़े दुश्मन यानी कि प्लास्टिक और थर्माकोल को कड़ी टक्कर देने जा रहा है। इस क्षेत्र में कई स्टार्टअप काम कर रहे हैं जो वेस्ट नारियल पानी और बैक्टीरिया की मदद से चमड़े जैसे बायोडिग्रेडेबल उत्पाद बना रहे हैं। ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ, लचीला और पर्यावरण के अनुकूल होता है। इस मटेरियल से बैग, पर्स, वॉलेट, जूते, सैंडल, बेल्ट, घड़ी के स्ट्रैप, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट जैसे कि पासपोर्ट होल्डर, कीचेन, लग्जरी प्रोडक्ट को पैक करने के लिए बॉक्स, कपड़ों पर लगाने वाले स्टिकर बनाए जा रहे हैं। इस मटेरियल की खासियत ये है कि इस्तेमाल के बाद जब इसे फेंका जाता है तब ये मिट्टी में मिलकर 60 से 90 दिनों में पूरी तरह डिकम्पोज हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, नारियल के छिलकों से निकलने वाले मजबूत रेशों में प्राकृतिक रीजन या सिंथेटिक रीजन को मिलाकर मजबूत शीट बनाई जाती है। इसमें दीमक भी नहीं लगती और यह पानी और नमी को सोख लेती है। हमारे घरों में जो कोयर मैट्रेसेस यानी कि नारियल की जटा वाले गद्दे इस्तेमाल होते हैं ना, उनमें इन्हीं शीट्स का यूज होता है। आज के समय में प्लाईवुड के विकल्प के रूप में उनका इस्तेमाल अलमारी के दरवाजे और केबिन के पार्टीशन बनाने में हो रहा है। कारों और बसों की सीटों में कुशनिंग के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। नारियल की जटाओं से सुंदर गमले भी बनते हैं और इनके सख्त छिलकों को तराश कर कस्टमाइज कटोरी भी और हमारे घरों की सजावट के लिए सुंदर आर्टिस्ट भी। सच में बड़े कमाल का है ये छोटा सा नारियल का गोला। केरल की एक कंपनी नारियल के छिलकों से बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है और ऑनलाइन साइट्स पर भी नारियल से बने प्रोडक्ट मिल रहे हैं।
2: अब हम बताने जा रहे हैं मशरूम माइसेलियम के बारे में, जो कि वास्तव में मशरूम की जड़ों का एक पूरा जाल होता है। जब इसमें धान का भूसा या लकड़ी का बुरादा मिलाया जाता है तब ये कुछ दिनों में ही उस कचरे को जकड़कर एक बेहद मजबूत लेकिन हल्के ढांचे के रूप में परिवर्तित कर देता है, जो कि भारी सामानों की पैकेजिंग के क्षेत्र में थर्माकोल का एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। सिर्फ पैकेजिंग ही नहीं बल्कि इस उत्पाद से लेदर जैसे जैकेट और वॉलेट भी बनाए जा रहे हैं और ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है। अगर हम इसे तोड़कर मिट्टी में डाल देंगे तो ये कुछ ही हफ्तों में खाद बन जाएगा।
3: अब तक हमने उन विकल्पों और तकनीकों के बारे में बताया जिनका की व्यापक स्तर पर प्रयोग हो रहा है। अब हम उन विकल्पों और तकनीकों के बारे में बताएंगे जो अभी या तो अपने प्रारंभिक स्तर पर हैं या जिन पर अभी प्रयोग हो रहे हैं। प्लास्टिक के खिलाफ जंग में अब समुद्र भी हमारा साथ दे रहा है।

0: जी हाँ, सीवीड यानी कि समुद्री घास और काई, जिनके अंदर एल्गिनेट और कैरे गीगन जैसे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, और इनका ही उपयोग करके ऐसी पतली झिल्लियाँ बनाई जाती हैं जो पानी या जूस को होल्ड कर सकती हैं और जो पूरी तरह से खाने योग्य भी हैं। सीवीड से बने पॉलीमर से पानी के कैप्सूल बनाए जा सकते हैं। कचरा शून्य वातावरण का ये एक अच्छा उदाहरण है। सीवीड के साथ ही एल्गी यानी कि शैवाल का भी यूज हो रहा है। एरिजोना की एक कंपनी ने शैवाल से ऐसे जूते बनाए हैं जो अगर नदी में गिर भी जाए तो मछलियों का भोजन बन जाते हैं।
1: भांग की एक प्रजाति का नाम है हेम्प, जो आज के समय में प्लास्टिक का एक अच्छा विकल्प बनकर उभरा है। हेम्प के मजबूत रेशों से हेम्प प्लास्टिक बनाया जाता है। इतना मजबूत होता है कि इससे कारों के बम्पर, बड़े बड़े डैशबोर्ड, निर्माण कार्य के ब्लॉक और भारी डिब्बे बनाए जाते हैं। लेकिन अपने देश में ये तकनीक अभी शुरुआती दौर में है। यहाँ पर इससे बस कुछ लाइफ स्टाइल एक्सेसरीज ही बनाई जा रही हैं। लेकिन हाँ, निकट भविष्य में इसके व्यापक स्तर पर उपयोग की बहुत संभावनाएं हैं।
0: स्कॉटलैंड और यूरोपीय देशों में मछली के प्रोटीन से चश्मों के फ्रेम, बटन और लग्जरी पैकिंग के डब्बे बनाए जा रहे हैं। यूरोप और अमेरिका की लैब में दूध से मिलने वाले केसीन नामक प्रोटीन से एक ऐसी पन्नी बनाने पर काम हो रहा है जो नॉर्मल प्लास्टिक की तुलना में 500 गुना बेहतर तरीके से ऑक्सीजन सोख ले। इसके अंदर पैक किया गया खाना खराब नहीं होगा और ये 100% खाने योग्य है। मतलब अगर इसमें सूप का मसाला पैक किया जाए और आप इसे गर्म पानी में डालें तो पन्नी पानी में घुलकर प्रोटीन बन जाएगी और सूप मिलने से आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा।
1: खुली आंखों से अगर दुनिया देखोगे तो हर तरफ चांदनी ही पाओगे, क्योंकि कुदरत ने इतना कुछ बिखेर रखा है धरती के दामन में हमारे लिए। तो अब बात करते हैं स्टोन पेपर तकनीक की, जो कैल्शियम और चूने से बनता है। ये कागज इतना सख्त होता है कि न तो फटता है और न गलता है। पानी के अंदर होने पर भी इस पर लिखा जा सकता है। भारत में अभी इस तकनीक की बस शुरुआत ही हुई है, लेकिन निकट भविष्य में इससे बहुत ही उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे कि लग्जरी डायरियां, टिकाऊ नोटबुक, कूरियर बैग, फील्ड वर्क के लिए वाटरप्रूफ डायरियां, कॉपियां, हैवी ड्यूटी शॉपिंग बैग्स, फूड रैपिंग पेपर्स, सेना के लिए वाटरप्रूफ मैप, ट्रेवलर के लिए वेदर प्रूफ नक्शे आदि बहुत से उत्पाद बनाए जा सकते हैं।
0: आपने आइसोमॉल शुगर एल्कोहल के बारे में तो सुना होगा ना, जिसका उपयोग केक सजाने और फिल्मों में टूटने वाले नकली शीशे बनाने के लिए किया जाता रहा है, क्योंकि ये दिखता सिर्फ कांच जैसा है, इसमें धार या पैनापन नहीं होता है। लेकिन अगर इसमें प्राकृतिक एडिसिव जैसे कि लकड़ी के बुरादे को मिलाते हैं तो ये एक बेहद मजबूत और हल्का मटेरियल बन जाता है जो बिल्कुल प्लास्टिक जैसा दिखता है। इसे बिना किसी केमिकल यूज के बार बार पिघलाकर नए नए उत्पादों में ढाला जा सकता है। वैज्ञानिक इसे डिस्पोजेबल बर्तन, पैकेजिंग सामग्री, होटल यूज की छोटी बॉटल जैसी चीजें बनाने के विकल्प के रूप में देख रहे हैं।
1: सरकार के प्रयासों और समाज की भागीदारी द्वारा ही प्लास्टिक से जंग जीती जा सकती है।
0: अब जानते हैं पर्यावरण संरक्षक श्री कृष्णानंद राय के विचार, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही समाज को जागरूक बनाने में लगा दिया।
2: प्लास्टिक का तो निवारण है कि जैसे हम घर से चलते हैं तो मोबाइल चेक करते हैं, मोबाइल मेरे पास आया कि नहीं। ये देखना है हमको कि हमारे हाथ में कपड़े का झोला आया कि नहीं आया। एक बड़ा झोला में छोटे छोटे झोले भी आप रख सकते हैं, टमाटर के लिए, धनिया के लिए, मिर्चा के लिए। एक आदमी अगर सिपाही बन जाए पर्यावरण का कि हमें स्वच्छता अपनाना है, नदियों को बचाना है, तो आज सरकार की भी जिम्मेदारी है, जनता की विशेष जिम्मेदारी है। प्लास्टिक को लेकर के अभी महाकुंभ 2025 बीता था, उसमें मैं पूरा प्रयास किया। मैं तो बहुत दिनों से बिगा रहा हूँ, झोला लेके जइहा बजरिया, असाफर ही गौआ सहरिया, पोलोथीन से पटलवा नदी नाला नहरिया, तनी बदला आपन नजरिया, पर्यावरण स्वच्छता का लेला खबरिया, झोला लेके जइहा बजरिया, साफ रही गौआ सहरिया, ताप रही गौआ सहरिया।
0: बहुत सुंदर विचार। अगर प्लास्टिक मुक्त देश बनाना है तो दादी का झोला वापस लाना ही होगा।
1: वास्तव में धरती में कचरा कुछ भी नहीं है।
0: हाँ, हर पदार्थ बस अपना रूप परिवर्तित करता है और हर रूप की अपनी उपयोगिता है।

0: अभी आप सुन रहे थे रूपक विकल्पों के द्वार, आलेख कीर्ति श्रीवास्तव का था, वाचन स्वर थे कुमकुमधर और नवनीत मिश्र, प्रस्तुतकर्ता अतीश कुमार श्रीवास्तव।
1: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 10:30 हुए और प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं निशांत खान का राग चांदनी कल्याण में सितार वादन।

मीडियम वेव 401.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।

0: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सूले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है, ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: It depends. Almost 60% of population is in this sector. It is showing contribution, and the farmers of this country have worked hard through the ages to make India food secure. In fact, just recently I was talking to High Commissioner of African Nation, South Africa. He was mentioning in the context of the India-Africa Forum Summit, which of course could not take place, that the entire India, the kind of food basket India has, that not only produces for its own 1.4 billion, but also exports. So he said it's much more what the population of Africa, I mean, so they said we're looking to countries like India, which have. So this tells you the long journey our farmers have made in this country, and in the last decade, how much of extra effort is being put in by the government or across the pillars Mr. Anand mentioned in particular, because they are multi-pronged. As far as you said, what are the three takeaways? I mean, there could be many for different people, but I think some of the logistical issues that have been problematic for this country is to ensure irrigation. We are largely still rain-fed irrigation, so the government has been addressing this in multiple, including micro-irrigation, and one of the things is per drop more crop, which is talking of micro-irrigation drip. And this has been, again, going on for almost a little over two decades, because I remember way back in the year 2000, when Mr. Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister, he sent a mission under then, I think, Mr. Chandrababu Naidu to work on this. So it has been a constant work in progress that there. I think that one of the technological-driven aspects is the Namo Drone DV, which is now using modern technology, as Mr. Anand mentioned about ENAM, using the technology for market access. Now you're using the drone technology by training women to operate as a pesticides, help them in modern farming.
1: Yes.
0: Lowering the cost, because agriculture, we know, remains a labor-intensive sector. Yeah. And increasingly, the hands get costly, because when you employ more people, obviously the farm cost goes. So government is mix and match kind of a thing, how to use technology and how to bring a better thing. So I think these are a couple of issues, but I also believe the larger aspect is the Agriculture Infrastructure Fund, which has a massive outlay to catalyze, you know, the creation of post-harvest management infrastructure, okay, cold chains, community farming. So these are still progresses, but these are sectoral reforms, I mean, reforms within the sector that the government is looking at the large, the problems that have been affecting at this particular sector.
1: ओके मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं. जो मैंने अभी मिस्टर आनंद, मिस्टर प्रसाद से पूछा, वही प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से किसानों का सशक्तिकरण हुआ है, हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसका मजबूतीकरण हुआ है, जो हम देख रहे हैं प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी फिगर्स में, आप हमें बता सकते हैं कि कौन से आप ऐसे प्रमुख 2-3 इनिशिएटिव्स जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण आंकते हैं, जो उठाए गए हैं इस दौरान एग्रीकल्चरल पॉलिसी के डायरेक्शन?
2: एक तो सबसे बड़ा मुझे लगता है जो 12 साल में सरकार ने उठाया था, वो है एमएसपी का फिक्सेशन. पहले एमएसपी का फिक्सेशन सारे फैक्टर्स को आधार करके लिया जाता था, जिसमें इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है, डोमेस्टिक प्राइसेस क्या है, उसमें इन्फ्लेशन कितना है, उसका डिमांड सप्लाई सब कुछ देखा जाता था. आज भी वही फैक्टर जरूर है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया 2018 में कि एमएसपी जो होगा वो मिनिमम 50% प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा. और 2018 से पहले आप देख लीजिए, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो लोग बताते थे कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा गवर्नमेंट फिक्स कर ही नहीं सकता
1: जी,
2: क्योंकि पूरा बोझ सरकार के ऊपर आएगा, सरकार को खरीदना पड़ेगा. लेकिन 2018 में जब लिया, आज देख लीजिए पॉसिबल है, सबके सामने 8 साल हो गया, सरकार हर साल मिनिमम 50% एंश्योर करके एमएसपी डिक्लेयर कर रही है. शुरुआत में जरूर जो मार्केट प्राइस था थोड़ा सा ज्यादा एमएसपी से नीचे बिका, लेकिन आज जो देखिएगा, ये खरीफ और रबी सीजन गया है, इसमें जो एमएसपी से नीचे बिक भी रहा है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है. पहले तो 30% तक शुरुआत में थी, क्योंकि मार्केट प्राइस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन आज मार्केट प्राइस भी एडजस्ट हो चुका है, फार्मर को बेटर प्राइस मिला है, उसमें कोई दो राय नहीं है. कुछ कुछ चीजों में एमएसपी नहीं मिल रहा है, ज्यादातर इस साल की बात करूं तो कई सारे फसल में एमएसपी से ऊपर मिला है. और अब मस्टर्ड का देख लीजिए, अभी मस्टर्ड का सीजन है, एमएसपी से ऊपर है. चना का देख लीजिए, चना ऊपर है. व्हीट का तो सरकार खुद ही 40-45% प्रोक्योरमेंट कर रही है एमएसपी पे, तो मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर रहता है. इस साल कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा थोड़ा, मतलब 50-100 रुपए नीचे बिकने की रिपोर्ट आई थी, लेकिन आज वहां पे भी ऊपर आ गया है प्राइस, मार्केट प्राइस. तो लगभग सारे जो रवि क्रॉप्स है वो एमएसपी से ऊपर

0: है या एमएसपी के बराबर के पोजीशन में है।
1: तो एक फेयर प्राइस मिल रहा है फार्मर्स को।
0: बिल्कुल बढ़ोतरी हुई है, काफी अच्छी बढ़ोतरी, क्योंकि 50% जब A2 प्लस FL के आधार पे दिए हैं वो एक बहुत बड़ा कदम था उस समय की देखा जाएगा
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: और उसके अलावा जो मैं गिनाऊंगा तो इन्होंने फसल बीमा योजना शुरू किए, इन्होंने अभी 2 साल पहले एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया, पल्सेस मिशन लॉन्च किए और बहुत सारे चीजें इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश किए। एक रिफॉर्म जरूर है कि इन्होंने कोशिश किए थे जो थी 3 फार्म लॉज लेके आए थे कृषि कानून, जो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी फार्मर को साथ लेते हुए, ऐसा नहीं है कि हम ले आए तो उसको करना है, फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, नहीं माने तो फार्मर जबरदस्ती थोप नहीं दिया, जो भी चीजें हैं फार्मर जो चीज यस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस तभी होगा जब आप फार्मर को साथ लेके चलेंगे
1: जी।
0: कोई भी स्कीम हो।
1: मिस्टर विनोद आनंद, कमिंग टू यू, आप जिस कमेटी के मेंबर हैं सरकार की, उसमें एमएसपी पर फैसले होते हैं, उस पर बातचीत होती है, तो आप हमें बता सकते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो टूल है सरकार के पास, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो किया गया है और इन 12 वर्षों में किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है किसानों को एमएसपी के माध्यम से, और बाकी भी जो आर्थिक सशक्तिकरण के जो पहलू है उन पर भी हम आपका विचार चाहेंगे।
2: जी देखिए, 3.5 गुना वृद्धि हुई है टोटल एमएसपी वैल्यू में, अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां 2004 से 14 तक 7.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, 2014-26 तक वो 26.3 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 10 वर्षों में जो 2014 के पहले जहां 7.4 लाख करोड़ हुए थे, वो 26.3 यानी कि लगभग 3.5 गुना जो है वो खर्च सरकार ने एमएसपी के ऊपर किया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये खर्च हुआ कहां, किस तरफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम स्वस्थ नेशन बने, न्यूट्रिएंट हमारा अच्छा हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं उसको हम मीट कर पाए, इसलिए जैसे मैं आप मोटा अनाज जो है जैसे ज्वार है और बाजरा है, आपको जान के आश्चर्य होगा 163% यानी 163% 1530 रुपए जो ज्वार की एमएसपी थी अब वो 4023 रुपए हो गई। ये दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार से वृद्धि नहीं हुई है। सोयाबीन के ऊपर भी 123%, मतलब आप जिसमें भी देखेंगे अमूनन 5 से 10 फसलें ऐसी है जो खरीफ के मार्केटिंग सीजन में जिसमें 100% से भी ज्यादा खर्च हुआ है, 100% ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि अपने आप में दर्शाती है कि एमएसपी को लेकर के और किसानों को समर्थन देने में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं की जा रही बल्कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं कहीं पे 179% बढ़ाया गया जिससे वो उन फसलों के प्रति जा सके। आपको जान के आश्चर्य होगा इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जैसे अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, किसानों के लिए जो सबसे बड़ा इंफ्रा होता है वो उनकी क्रेडिट की व्यवस्था होती है
1: जी।
2: क्रेडिट की व्यवस्था में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट्स थे वो 6.4 करोड़ थे, लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास किसानों के पास केसीसी अकाउंट थे, आज की तारीख में ये 10.2 लाख करोड़ है यानी कि लगभग 2 गुना हो गया, लगभग 90% इसमें इजाफा हुआ है। तो ये अपने आप में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में खास करके पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग में इसमें अमूलचूल परिवर्तन हुई है। और जहां तक कृषि की बजट की बात है कि जितना बजट पहले हुआ करता था उतना तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को डीबीटी कर देते हैं, हमारे पास डीबीटी का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का है। तो कृषि में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है इससे यह दर्शाता है कि ये सरकार पूरी की पूरी विलेज लेड और फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी और इसी आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज हुए खास करके कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को बनने के बाद और उसमें जो पंचायतों में 2.5 लाख वेयर हाउसेज बनाने की बात, आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में वेयर हाउसिंग में कहीं भी किसी भी समय में भी कभी नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो सारे पैक्सों को वेयर हाउस में कन्वर्ट करना और वेयर हाउस वो नीली छत और पीली दीवार वाले नहीं हो करके स्मार्ट वेयर हाउसेस कैसे हो जो ब्लॉकचेन से लिंक्ड हैं, एवरी ग्रेन इज ट्रेसेबल, ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको हाँ। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए और खास करके जो मार्केट एक्सेस जो पहले नहीं था, एमएसपी को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाई जाए, इसके लिए 26 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसका जिसका मैं भी सदस्य हूँ, जो 5 इसमें सचिव महोदय भी इसके सदस्य हैं, तो इतनी बड़ी कमेटी के द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन पिछले 4 वर्षों से जा रहा है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है और आप आमूलचूल परिवर्तन

0: रहे हैं कि किस प्रकार से ना सिर्फ केसीसी अकाउंट और प्रोक्यूरमेंट में और एमएसपी में एक गुणोत्तर वृद्धि में, बल्कि जो सबसे ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो डीबीटी हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, इन सब में एक आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है और खास करके हम बड़े सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा किसान सिर्फ बीज बोना और उगाना नहीं जानता था
1: जी,
0: बल्कि वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो पूरी एक वैल्यू चेन थी उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहां खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में, ऐसी नीति बनाई जा रही है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है।
1: सो मिस्टर प्रसाद, जैसा कि मिस्टर प्रधान ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसके हर कदम पर जो सरकार है वो समर्थन प्रोवाइड कर रही है, एक कोलैबोरेटिव वे में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सशक्त किया जा रहा है। डीबीटी की उन्होंने बात की, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डीबीटी इनिशिएटिव यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव माना जा रहा है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो शुरू बात होती है जब एक क्रॉप साइकिल की, क्या इसका महत्व है किसानों के लिए और जिस लेवल पर इसका जो यूज हो रहा है, 9.44 करोड़ फैमिलीज से ज्यादा बेनिफिट करे हैं इसमें और 4.2 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं 22 इंस्टॉलमेंट्स में, इसका जमीनी तौर पर जो किसान है उनके लिए क्या महत्व है?
2: सुनो जी, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहे हैं और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं, तो एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान और कृषि के काम के लिए नहीं, उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है। तो वो पारंपरिक जो तरीके हैं और गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे यानी कि पैसा लेते थे ब्याज पे, तो काफी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए एक मदद के लिए कि जैसे आपने साल में 6,000 मिलते हैं, 2,000 के डीबीटी यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है, तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उसके खाते में पैसे हैं, अपने रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनके खर्चे हैं वो निकल जाते हैं, तो एक उनको तसल्ली होती है, हर आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होता है कि भाई हाँ मेरे खाते में पैसे हैं, कभी जरूरत हो तो मैं उसको और जैसे आंकड़े आपने बताए हैं जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.44 करोड़ किसान परिवार को मिला और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा साथ इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका, तो ये एक जिसे कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
1: और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है पूरे जो एक साइकिल होती है एग्रीकल्चरल साइकिल। अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाते थे। तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई, आपको लगता है ये एक तरह से फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है, ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
2: जी सुनिए, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर हैं वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाड़ लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखे होंगे, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल में नुकसान हुआ है, तो ऐसे में एक किसान बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये काफी सारा व्यापक है और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम राशि जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से गए तो करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने दिसंबर 25 तक इसमें फायदा उठाया है। सोनू जी,
1: जी बिल्कुल, एंड मिस्टर आनंद, कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन 2.5 times इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स व्हिच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी द क्वालिटी आल्सो, द फिशरीज द एलाइड सेक्टर्स दे हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड एंड इनफैक्ट फॉर द एलाइड सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल मिनिस्ट्री एंड देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ

0: cooperation. So you think that enhancing the income of farmers, these allied sectors are playing a very major role?
1: देखिए जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है
0: जी।
1: ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नीयत के बारे में। नीतियां तो बाद में बनती है और एग्जीक्यूट होती है, तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहाँ हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना है, किनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा, ये
0: पैक्स जो आप कह रहे हैं कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज
1: जी बिल्कुल, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट हैं उसकी तरफ। 25 बिजनेस एक्टिविटीज पैक्स अपने आप में कैसे रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जो इनपुट का बिजनेस है उसमें कैसे भागीदारी ले पाए, इसके लिए उनको 25 बिजनेस एक्टिविटीज से उनको जोड़ा गया। यहां तक कि आपको पेट्रोल पंप, एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जन औषधि केंद्र, इस प्रकार से जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेज हैं वो भी कोऑपरेटिव को पैक्स को दिए गए। 79,630 यानी कि लगभग 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। 61,886 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया ईआरपी के माध्यम से, यानी कि हर समय शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में अब ये कंप्यूटराइज हो गई, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी, तो कहां 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी उससे हम कहीं दूर, बहुत दूर बैठे थे। तो एक तो ये सबसे पहला सुधार किया गया। आपके माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। हमारे यहाँ अब है वन नेशन वन राशन कार्ड और वो भी डिजिटाइज्ड है, यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूं और दिल्ली में किसी कारणवश रह रहा हूं तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथन किए गए, वो फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए, यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाएं, बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ई नाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर हैं इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया, एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहां से ये सारी चीजें हो रही है। मेगा फार्म फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी, सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आप आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और वो फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
0: तो आप
1: कुछ ऐसे चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे, जैसे मान के चलिए 100 जिले थे, तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए, जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है, इन जिलों में x/8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है। तो उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सिक्योरिटी रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में और जो डेयरी में, आज आप देख रहे हैं लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है, तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम

0: इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में, तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है।
1: जी
0: चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायो इथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है कंप्रेस बायोगैस में,
1: जी
0: और ये कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टरबाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं, और
1: जी
0: एक तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टरबाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही हैं। तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंट्रिसिटी की बात ये है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए,
1: जी
0: ये फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है टेक्नोलॉजी ड्रिवन है वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है, पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए, हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
1: मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती हैं, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, इस मंत्रालय के महत्व के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए इनका क्या महत्व है?
2: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए, पहले भी एफपीओ बनते थे लेकिन सरकार ने जब अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन, वो डेडलाइन से पहले ही बन गए 10,000। उन्होंने बनवाए क्या, उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50% इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे। कोई भी कंपनी वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है उसका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन लेता है, वहां पे उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें, लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है। कई एफपीओ करोड़पति बन गए हैं और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
1: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओज होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
2: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओज को, जो चाहे वो कर सकते हैं एज ए बिजनेस एंटिटी, उनको बिजनेस बढ़ाना है। और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है, किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहाँ से सोर्स करना है क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
1: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
2: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है सप्लाई करती है वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं, और अपने फार्मर को कई एफपीओ तो ऐसे हैं जो कॉस्ट जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं। तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है। जब मार्केट पे इस दूसरे

0: empowerment aspect for farmers?
1: See, fertilizer in India is considered the cheapest in the world when you talk about urea particularly. Why? Because government has not raised the price for past 2 decades or so. And urea currently is available at 267 rupees per bag of 45 kg. Last international price at which India bought urea was $954 per ton. So roughly, if you take $1,000, it comes to around 95,000 per ton. 95,000 means 9,500 per quintal. It is a big amount. So when farmers are sold at 267 rupees, just imagine how much money the government is subsidizing. The result is farmers are getting the product fertilizer at the very cheap rate, so that their cost of production is also limited within certain range. And it is also reflected in the end price which they are selling their produce. If you raise the input cost, the product will also be costlier for the consumers. So it is based on this theory that you subsidize the input to some extent so that the end product also becomes cheaper for the consumers, and our inflation is also remain under control.
0: Mr. Anand, Mr. Prasad, Mr. Mishra, thank you so much for this insightful discussion on the various aspects of how the farmers and the agriculture sector has been empowered in the last 12 years.
2: Thank you.
3: Thank you very much.
1: Thank you very much.
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants were Binod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, K.V. Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani.
5: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार में एमएसपी और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद व प्रभुदत्त मिश्रा. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.
6: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है. इस समय रात्रि के 11:45 हुए हैं और अब हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है. कल प्रातः 5:50 पर अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे. तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए. शुभरात्रि. जय हिंद.